0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। चिंता की प्रतिक्रिया करने वाली दवा आत्मविश्वास है। जब हमें मार्ग नहीं सूझता तब हम असफलता की आशंका से भयभीत होने लगते हैं, परंतु अपने उद्देश्य पर दृढ़ विश्वास हो तो मार्ग आप ही सूझ जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, उत्साही रहना आसान है, साहस करना आसान है, उपाय सोचना आसान है। इन सारे आसान कामों के द्वारा ऐसा आश्चर्यजनक कार्य संपन्न हो जाता है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं और उस काम को अति कठिन बल्कि असंभव समझते हैं। जिसके मन में बेचैनी हो वह स्पष्टतया सोचने विचारने की शक्ति नहीं रखता। उसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता। उसके विचार उत्साहपूर्ण साहसपूर्ण तर्कपूर्ण नहीं होते। चिंता मस्तिष्क को धुंधला कर देती है, सोचने की शक्ति को क्षीण कर देती है। स्वास्थ्य की बातें कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। उन्नति की बातें कीजिए, आप उन्नति करेंगे। सफलता की बातें कीजिए, आप सफल होंगे। विजय की बातें कीजिए, आप विजयी होंगे। इसके विपरीत यदि आप चिंताग्रस्त रहते हैं तो साफ तौर पर कुछ नहीं सोच सकते, अच्छी योजना नहीं बना सकते। अपनी कार्य शक्तियों को यशवर्ती करके अपने उद्देश्य के लिए नियोजित नहीं कर सकते। आप चिंताग्रस्त रहकर ना तो किसी को मुग्ध कर सकते हैं न प्रसन्न। चिंता आपकी अपनी प्रसन्नताओं को भी छीनती है, दूसरों की प्रसन्नताओं को भी छीनती है। चिंता से आपकी मोहकता समाप्त हो जाती है, आकर्षकता मिट जाती है। प्रसन्नता की बातें कीजिए, हंसी खुशी की बातें कीजिए, संसार को और दुखी न बनाइए। जो व्यक्ति कष्टों में भी मुस्कुराता रहता है उसका साहस कभी कम नहीं होता। उसके विपरीत जो व्यक्ति कष्ट सामने आते ही हिम्मत हार बैठता है वह काम क्या करेगा। जब सब काम इच्छा के विपरीत हो रहे हों उस समय भी जो मुस्कुरा सकता है, हिम्मत और साहस के साथ अपने पथ पर बढ़ता जा सकता है, वह स्पष्ट प्रकट कर देता है कि उसका तन मन उस धातु से बना है जो दब नहीं सकती, मुड़ नहीं सकती, तोड़ी नहीं जा सकती।

कार्लाइल का कहना है कि कुछ लोग संकट आ पड़ने पर और भी प्रबल हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग जहां जाते हैं भय की भावना, खतरे का ख्याल, दुख का विचार फैलाते हैं। वे चिंता, भय, दुख का विष फैलाते जाते हैं। वे अपने मन की निराशा और चिंता का दूषित प्रभाव दूसरों पर भी डालते हैं। वे जोर देकर कहते हैं, हमारा जीवन ही कष्ट पाने, दुख भोगने के लिए हुआ है, इसलिए चिंता करना और भयग्रस्त रहना ही हमारा भाग्य है। परंतु ये सब मूढ़तापूर्ण विचार है। किसी भी मनुष्य का जन्म दुखी रहने के लिए, दीनहीन रहने के लिए नहीं हुआ। संसार में दुख की भावना फैलाने का किसी को भी अधिकार नहीं। दुखवाद ही निराशावाद है। अकर्मण्यता का जन्म निराशावाद से ही होता है। मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि वह प्रसन्न रहे, हर्ष से प्रफुल्लित रहे, आनंद मग्न रहे। मनहूस और मुहर्रमी सूरत लेकर अपने इष्ट मित्रों या संबंधियों में जाने का आपको कोई हक नहीं। दुख, निराशा और अकर्मण्यता फैलाने का आपको कोई अधिकार नहीं। कुछ लोगों को जब चिंता का दौरा पड़ता है तो वे उसका स्वागत करते हैं। वे अपनी फिक्र, चिंता, भय और दुख को खोल खोल कर बयान करने लगते हैं। वे अपने दुर्भाग्य का रोना रोने लगते हैं। वे अपने कष्टों के कारणों का, अपनी गरीबी के कारणों के प्रकट या छिपे स्वरूप का विस्तृत विवरण देने लगते हैं। उन्हें अपने जीवन को कटु बनाने वाली बातों को खुलासा बयान करने का चाव सा होता है। उनकी उन्नति किन कारणों से नहीं हो सकती, इसका पूरा हाल सुनाने के लिए वे आतुर रहते हैं। इस प्रकार अनजाने ही वे अपने अवचेतन मन के अंदर शत्रु विचारों की जड़ मजबूत करते रहते हैं और इसका उनके चरित्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के चिंताग्रस्त, निराशावादी, रुदनशील प्राणी अपनी सारी प्रतिभा कष्टों और दुखों के चित्र चित्रित करने में ही व्यय करते रहते हैं। वे ऐसा प्रकट किया करते हैं कि जैसे सारे संसार के कष्टों का बोझ उन्होंने ही अपने कंधों पर उठा रखा है। इस प्रकार के व्यक्तियों की उपस्थिति से मुस्कुराना कठिन हो जाता है, शांत रहना मुश्किल हो जाता है, उन्मुक्त सांस लेना दुभर हो जाता है। आप चाहे कितने ही उत्साही, कितने ही प्रफुल्लित, कितने ही हर्षित क्यों न हो, वे अपनी निराशाजनक, उत्साह नाशक बातचीत से आपको शिथिल करने में कसर नहीं छोड़ते। वे संदेह, निराशा और अकर्मण्यता की बर्फ से आपका सारा उत्साह ठंडा कर देते हैं। जितनी ही बार आप उनके पास जाएंगे, आपको यही प्रतीत होगा कि सूर्य के प्रकाश से आप रौ रौ नरक के अंधकार में जा पहुंचे हैं। तो कहने का भाव यह है, जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, उनकी निराशावादी सोच का प्रभाव सारे वातावरण पर भी पड़ता है और सामने वाली व्यक्तियों पर भी पड़ता है। तो बेहतर यही है कि हम सकारात्मक बने, आशावादी बने, जिससे हम अपने शुभ चिंतन द्वारा, शुभ वाइब्रेशंस द्वारा भी दूसरों को सुख दे सके, प्रसन्नता दे सके।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ईश्वर ने यह सुंदर भूमि बनाई और उस पर हमें हंसने मुस्कुराने खिलने खिलाने के लिए प्रेषित किया। उसने हमें यहाँ रोने झींकने कुलबुलाने विलाप करने नहीं भेजा। उसने हमें इसलिए यहाँ नहीं भेजा कि हम शिकायत करते, निराशा फैलाते, हाय हाय करते, कीड़ों की तरह रेंगते फिरे। इमर्सन ने कहा है, प्रसन्नता से खिला बुद्धिमता पूर्ण मुखड़ा सभ्यता और संस्कृति की चरम सीमा है, श्रेष्ठता का शिखर है। इस प्रकार के शोभाशाली मुख का हम जितनी बार दर्शन करते हैं उतनी ही बार ऐसी आभा देखते हैं जिसकी झलक न पृथ्वी पर है न सागर में। उसके दर्शन से हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का दिव्य शक्ति से कुछ आंतरिक संबंध है। आभामयी फिर भी शांत, तेजस्वी फिर भी शोभाशाली, विचारशील फिर भी प्रसन्नता से उत्फुल्ल ऐसा मुखड़ा देखकर प्रतीत होता है कि हमने पवित्रों से भी पवित्र के दर्शन प्राप्त कर लिए। निराशाग्रस्त रोने कलपने वाला शिकायतें करने वाला मनहूस चेहरे वाला व्यक्ति कई बार समस्त परिवार में ही मुर्दनी और निराशा फैला देता है। वह परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सुख शांति और प्रसन्नता हरण कर लेता है। अपने काल्पनिक दुख से वह दूसरों की वास्तविक प्रसन्नता को नष्ट कर डालता है। इस प्रकार निराशावृत और विषादमय रहना क्या शक्तियों को क्षीण करना नहीं है? क्या लाभ हो सकता है इस प्रकार की मानसिक स्थिति का? क्या लाभ है इस प्रकार मनहूसियत फैलाने का? सर्वत्र हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनकी ऊंची महत्वाकांक्षाएं थी, परंतु वे कीड़ों की तरह रेंगते नजर आते हैं। वे छोटी छोटी नौकरियों से ऊंचे उठने में असमर्थ रहे हैं। प्रतिदिन घोर काम की चक्की में दिन काटने पर वे मजबूर हैं। इसका कारण है उनकी मनहूसियत, उनकी विषादमयी प्रवृत्ति, अपने दुखड़े रोते रहने की उनकी आदत। कहने का भाव यही है कि अगर हम हमेशा ही अपने दुख का रोना रोते रहेंगे तो कभी भी सुख की सूरत नहीं देख पाएंगे। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमेशा खुशी की बातें कीजिए, सुख की बातें कीजिए।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: जो व्यक्ति अपने दुर्बल विचारों का दास है वह कभी अग्रणी नेता नहीं बन सकता। वह मनुष्यों में शक्तिशाली मनुष्य की पदवी कभी नहीं पा सकता। वह कितनी ही विलक्षण बुद्धि वाला हो, कितनी ही योग्यता और कार्यक्षमता से युक्त हो, परंतु वह अपने मूड का दास बनकर और पूरी तरह असमर्थ बनकर रह जाता है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति में मनुष्य अपने हथियार डाल देता है और उसके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। उत्साहहीनता आने से व्यक्ति की निर्णय और न्याय की शक्ति घट जाती है। भय के दबाव से मनुष्य मूर्खतापूर्ण निर्णय कर लेता है। शक्ति, समझदारी, संतुलन, मानसिक संतुष्टि, इन सभी वांछनीय संपदाओं को वह खो बैठता है। प्रभावशाली कार्य करने के लिए इन गुणों की नितांत आवश्यकता होती है। जिस समय किसी मनुष्य पर संकट आ पड़ता है या आकस्मिक रूप में किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आ पड़ती है, उसी समय तो उसके धैर्य की परीक्षा होती है, उसके पौरुष की परीक्षा होती है, उसकी प्रसन्न चित्तता की परीक्षा होती है, उसकी निर्णायिका शक्ति की परीक्षा होती है। किंतु ऐसे समय वही व्यक्ति मुकाबला करने में असमर्थ हो सकता है जो मन की शांति और सहज प्रसन्नता को नष्ट न होने दे। अपने को वश में कीजिए, मन को संतुलित बनाइए, अपनी स्थिति का धीरज से विश्लेषण कीजिए, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक घटना की उचित नापतोल और जांच कीजिए, तभी आप सही निर्णय कर सकते हैं। परंतु सही निर्णय के लिए मन की साम्यपूर्ण स्थिति, प्रसन्नतापूर्ण स्थिति और सुविचारपूर्ण स्थिति आवश्यक है। मनुष्य का जन्म इंद्रियों का दास बनने के लिए, मनोभावनाओं का भृत्य बनने के लिए नहीं हुआ है। उसका पौरुष इसी में है कि वह इनका स्वामी बने, जो इन पर शासन कर सकता है वही अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में सफल हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए मुस्कुराते।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, ये बात गौर करने वाली बात है कि आज स्वास्थ्य को लेकर अनेक चीजें सोशल मीडिया पर चलती हैं। हम यहाँ वहां पर व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब के जरिए या कहीं पर भी जो चीज न्यूज़पेपर में आई है या इन चीजों को बिना सोचे समझे आजमाए या बिना खुद पर एक्सपेरिमेंट किए एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं, कहते रहते हैं। मगर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम कुछ चीजों को पहले आजमा कर देखें, पहले उन कोशिशों को अपने ऊपर करके देखें और उनसे क्या फायदे होते हैं, तब उन फायदों को अगर हम दूसरों को गिनाएं, तब दूसरों को हम वो चीज बताएं, तो शायद वो बहुत ज्यादा फायदेमंद और कारगर होता है। वैसे भी चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो अनेकानेक उपाय देखने को मिलते हैं। जिस व्यक्ति को जिस चीज से फायदा होता है वो उस चीज की बात करता है। मगर प्रकृति चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहाँ पर व्यक्ति साइड इफेक्ट यानी किसी दुष्परिणाम को बहुत कम देखता है, क्योंकि शरीर के अंदर कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी चीज हम डाल नहीं रहे हैं। हम प्रकृति के तत्वों से ही अपने आप को ठीक रखने के प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जुड़े हैं, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: ओम शांति, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि जब हम प्रकृति के अलग अलग तत्वों को ही चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ दवाइयों को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है या बाजार से खरीदने की जरूरत पड़ती है, प्रकृति प्रदत्त चीजें आसानी से हमारे आसपास मौजूद हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है, क्या ये इतना आसान है कि बस इतना करने से हो जाएगा?
1: भैया, ये जो सोच रहे हैं उससे भी आसान। हम प्राकृतिक चिकित्सक ये बात मानते हैं कि जो सबसे अच्छी दवा है वो आपके अपने किचन में मौजूद है और जो सबसे खराब चीज है वो आपको डिलीवर करी जा सकती है, जो पैक्ड है या जो उसको लेकर आ रहा है। आप ये देखिए, एक माँ किसी भी तरीके से अपने बच्चे को शुद्ध भोजन देने की पूरी कोशिश करेगी। वो अगर आप दो रोटी खा रहे हैं तो हमेशा कहे कि एक रोटी और ले लो, और उसका भाव ये रहेगा, अरे मेरा बच्चा एक रोटी और खा लिया। आप यही देखिए, अगर किसी स्टाफ से आप एक रोटी एक्स्ट्रा बनवाइए तो कहेगी अरे तो रोज दो खाते थे, आज एक एक्स्ट्रा खा लिया। तो एक माँ का भाव हमेशा अच्छा होता है। भैया, आप, मैं बोलता हूँ, आप जो भी खाना चाहिए, मैं मुंह खोल के बोलता हूँ, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, चिप्स खाइए, अगर आप उसको घर में बना के खा रहे हैं तो उससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि आप जो भी सामान उसमें डालेंगे वो सबसे अच्छा डालेंगे और आप उसमें केमिकल कम डालेंगे, क्योंकि आपको उसको पैक करके किसी को भेजना नहीं है और पैक करके उसको रखना नहीं। ये तो इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सरल है, बहुत सहज है, और ये आपके अपने घर में कुछ भोजन में चीजें जोड़कर, कुछ भोजन में चीजें घटाकर, कुछ की मात्रा बढ़ा के, कुछ को भोजन में एकदम बंद करके, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा धूप, थोड़ी सी खुली हवा, इतना अगर आप ले लीजिए तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन आपको मिल गया, हवा और धूप लेने का क्या मतलब है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको टहलना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाने अनजाने में आप कुछ एक्सरसाइज जरूर करेंगे, आप कुछ व्यायाम करेंगे, और सबसे अच्छा सबसे सस्ता व्यायाम पैदल चलना है। महात्मा गांधी जी दांडी मार्च निकाल के और पूरे जीवन भर पैदल चले। आप खुद देखिए, वो व्यक्ति ने सिर्फ कॉटन का कपड़ा पहना, अभी हम जो पट्टियों की बात कर रहे थे, वो आदमी जीवन भर कॉटन का कपड़ा पहना और खादी का प्रचार प्रसार किया। मैं तो ये कहता हूँ वर्ल्ड के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है खादी के लिए। लोग उन्हें अहिंसा के लिए जानते हैं, बट वो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है खादी के लिए, और जिन्होंने कॉटन का इतना प्रचार प्रसार किया कि उतना आज तक कोई नहीं कर पाया। और देखिए, वही कॉटन हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसको गीला करके अपने शरीर पे लगाने से हम कितने लाभ पा सकते हैं जो अनगिनत है।
0: बिल्कुल, जैसे आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आती है कि भोजन जब हम करते हैं बाहर से ना खरीद के, हम अपने घर में बनाते हैं, जो भी चीजें हम बनाते हैं, अगर खुद के घर में बनाते हैं तो कितनी सारी अच्छी चीजें हम डालते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में, हम कोई खराब चीज डालने से अपने आप को रोकते हैं, कोई मिलावट नहीं करते, हम अच्छी ही चीजें डालते हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारी परिवार में ये चीज सिखाई जाती है कि जो कुछ को आप बनाकर खाना चाहते हैं अपने घर में बनाकर खाइए, क्योंकि अच्छी चीजें तो आप फिजिकली डाल ही रहे हैं, मगर आप भोजन बनाते समय मन से भी उसके अंदर शुद्ध भाव डाल रहे हैं। आप किसी के लिए भोजन बना रहे, घर के सदस्य के लिए, तो आप प्रेम के भाव से बनाएंगे, आप चाहेंगे कि वो खुश रहें, वो खाएं और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ये शुभ भावनाएं उसमें होती है, ना कि आप बाहर का खाना खरीद के खा रहे हैं कि भाई इससे प्रॉफिट बन जाए, इससे इतने कस्टमर को खिलाया जाए। तो वो भाव डालना भी बहुत ही फायदा करता है जब आप घर में बना के खाते हैं। जैसे आप पूज्य बापू की बात कह रहे थे, महात्मा गांधी के योगदानों के बारे में जब कहा जाता है तो खादी एक ऐसा रेवोल्यूशन रहा है जो स्वदेशी को प्रमोट करता रहा, भारत के किसानों के लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, ग्रामोद्योग के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अब जब मैंने पहली बार खादी खरीदा, मुझे लगा कि मैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में ये चीज सुना कि कम से कम एक तौलिया या कम से कम एक रुमाल खादी का होना चाहिए, उन्होंने जब कहा था, तब मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्शियसली खादी खरीदा। कॉटन के कपड़े तो मैं पहनता ही था, मगर प्रकृति चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप कॉटन के कपड़ों के लिए खादी का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक तरीके से खादी को प्रमोट भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभ भी मिल सकता है। वेट पैक्स की जब आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आई कि ये चीजें कितने फायदेमंद है और कितने इजीली अवेलेबल है, इसके लिए कुछ फैंसी करने की आवश्यकता नहीं। तो वेट पैक्स लगाने में आपने कहा कि शरीर के कुछ अंगों में आप लगाएंगे तो उन अंगों के हिसाब से आप वो फायदे ले सकते हैं। अब कुछ और फायदे बताएं कि क्या शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जहां नहीं लगाने हैं या कहीं और भी हम इसको लगा सकते हैं, वो चीजें समझी जाए।
1: भैया आपने जो खादी की बात की, हमारे चिकित्सालय में सारी चद्दरें सारे कंबल खादी ग्राम उद्योग से ही आते हैं और ये स्वदेशी को हमारे जो ग्रैंडफादर थे डॉक्टर विठल दास मोदी जी और मेरे पिताजी डॉक्टर विमल कुमार मोदी, ये सब उसी को प्रमोट करते हैं, इसीलिए हमारे चिकित्सालय में हम जितना हो सकता है सामान वो खादी आश्रम से ही खरीदते हैं। अब पट्टियों की जहां तक बात की, हमने विभिन्न अंगों की पट्टियों के बारे में बात की थी, जैसे गले की पट्टी, छाती की पट्टी, पेट और कमर की पट्टी या पैर या हाथों की पट्टी। अगर किसी को दोनों हाथ, दोनों पैर और कमर पे पट्टी देनी है तो उसके लिए हमें 5 पट्टियों की जरूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा उसके पूरे शरीर को पट्टी में लगा दो। तो इसको अंग्रेजी में होल बॉडी वेट शीट पैक कहते हैं और हिंदी में इसे सारे बदन की गीली पट्टी कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है, पहले एक कंबल रखा जाता है और फिर उसके ऊपर एक चादर रखी जाती है और उस चादर को पानी से भिगो के निचोड़ के उस कंबल के ऊपर बिछा दिया जाता है और फिर आदमी का गर्दन के नीचे से पहले हम उस कॉटन की जो चादर है जो भीगी हुई है उससे उस आदमी को लपेट देते हैं। जिसको भी हम चिकित्सा देते हैं उससे कहते हैं कि एकदम कम कपड़े पहनो या सिर्फ अपने अंडर गारमेंट में रहो और फिर हम इसको गर्दन के नीचे पूरे शरीर में लपेट देते हैं और फिर जो इसके नीचे जो कंबल है उसको लपेट देते हैं और ऊपर से एक एक्स्ट्रा कंबल उस व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं। इस पूरे चिकित्सा में आदमी सोचिए बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसका शरीर पहले एक कॉटन चादर से ढका है और फिर उसे कंबल से ढक दिया गया है। इसके बाद उसके सर पे गीले पानी का कपड़ा रखते हैं कि सर में गर्मी न चढ़ जाए, क्योंकि यदि जैसे पूरा शरीर ठंडा है कॉटन की वजह से पर गर्दन बाहर निकली हुई है तो उसके सर पे गर्मी ना चढ़ जाए। यदि हम सर पे ठंडे पानी का कपड़ा नहीं रखेंगे तो उसके सर में दर्द होगा, सिर भारी होने लगेगा, आंखों में जलन होने लगेगी और उसको इस चिकित्सा का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पूरा दिमाग उस सर दर्द की तरफ चला जाए। ये चिकित्सा सारे बदन की गीली पट्टी फादर केनाइफ ने जर्मनी में भी इसका प्रयोग किया और ये कहा जाता है कि वाटर थेरेपी की ये सबसे अच्छी चिकित्सा है। इस चिकित्सा से जो हमने अलग अलग विभिन्न पट्टियों के बारे में बात की उनका लाभ तो मिलता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य लाभ भी मिलते हैं। अब जब हम इस चिकित्सा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आदमी को ठंडा लगता है, फिर 10 मिनट के बाद उसको न ठंडा न गर्म लगता है, न्यूट्रल टेम्परेचर आता है। उसके बाद फिर उसको अंदर गर्मी लगने लगती है क्योंकि हमने उसे दो कंबलों से ढक रखा है और अंत में उसको पसीना आता है। ये 45 मिनट से एक घंटे का इलाज है और कंटिन्यूअसली उस व्यक्ति के सर पे हम ठंडे पानी का कपड़ा रखे रहते हैं। इस इलाज को लेने से पहले मरीज को ये कहते हैं कि आप 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए क्योंकि आपको पसीना होगा, तो अगर आपका पानी शरीर का निकाल लेंगे तो आपको शायद डिहाइड्रेशन होने लगे या आपको हल्का सर दर्द होने लगे क्योंकि आप पानी लूज कर रहे हैं। पर अगर आप पानी पिए रहेंगे तो वो पानी अपने जो पेट में आपके पानी है वही आपके बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देगा। ये चिकित्सा सबसे ज्यादा कारगर जो है वो नर्वस डिजीजेस में है। सन 2000 के पहले हमारे चिकित्सालय में हमको अनिद्रा और डिप्रेशन, अस्वाद, इन दो चीजों के मरीज एकदम नहीं मिलते और इस समय हमको अनिद्रा, अस्वाद, चरम रोग, ये इतने ज्यादा मरीज मिलने लगे हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो अगर आपका पूरा शरीर इससे लिपटा हुआ है तो आपको बुखार में, अनिद्रा में, मोटापे में, जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस में, खुजली में, दमा में, ये सब में आपको ये आराम दे। अब जैसा हम लोग ने समझा कि जब हम अलग अलग पट्टियां बांधते तो सिर रक्त संचार उस एरिया का पहले कम होता है फिर समय के साथ वापस आता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और फ्रेश ब्लड जब आता है तो हमें स्फूर्ति और ताकत देके जाता है। जब हम सारे बदन की गीली पट्टी देते हैं तो पूरा का पूरा रक्त जो हमारे त्वचा में घूम रहा होता है, स्किन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए, और त्वचा भी हमारी एक ऑर्गन है जिसे हम एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हमारे त्वचा से पूरा जो रक्त संचार जो चल रहा है वो एकाएक हमारे कोर में या हमारे जो बीच का शरीर है उसमें जाता है, तो आदमी को ठंडक लगती है। और हमारी सारी त्वचा जहाँ दो ग्लैंड्स होती है, एक स्वेट ग्लैंड, एक सेबेशियस ग्लैंड, एक जो तेल निकालती है ग्रंथियां, एक जो पसीना निकालती, और इन दोनों ग्रंथियों के साथ हमारी नसें भी वहां पे होती हैं जिसको हम अंग्रेजी में नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। अगर ये नर्व एंडिंग्स है, आपको किसी ने छुआ तो ये आभास ये नर्व एंडिंग्स ही देती हैं या नसों की छोटी इकाइयां आपको देती है। तो जब हम सारे बदन की गीली पट्टी लेते हैं तो पूरा रक्त संचार सोचिए हमारे कोर में गया और फिर 15-20 मिनट के बाद जब हमको न ठंडा न गर्म तो एक रेगुलर सर्कुलेशन शुरू हुआ, फिर जब गर्म लगने लगा तो वो सर्कुलेशन जो है वो वापस कोर बॉडी में या बीच के शरीर से निकल के हमारी त्वचा में आया, और जब पसीना होने लगा तो वो ठीक से हमारे पूरे के पूरे त्वचा में वो रक्त दौड़ने लगा। तो इसने क्या किया, जो नसें हमारी सूख रही थी उसको इसने तरोताजा किया, हमारी रीढ़ की हड्डी जो पूरी की पूरी गर्म थी या हम जो स्पाइन है वो भी ठंडे से लिपटा हुआ है, तो उससे हमारी जो नसें निकल रही थी उसको भी इसने ताकत देना शुरू किया। तो जहां वो ताकत मिली तो आदमी का मन शांत होना शुरू होता है, और जहां आदमी का मन शांत होगा वहां उसे अनिद्रा, अस्वाद मतलब नींद ना आना, और डिप्रेशन, दोनों में उसको आराम मिलने लगेगा। अब हमारी त्वचा इससे ढकी हुई है तो हमें जितनी भी त्वचा रोग है, खुजली है, आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, उसमें हमको आराम मिलने लगेगा। अगर आपके यहाँ कहीं थोड़ा फुंसी हो रही है, आपको कोई और स्किन रिएक्शन हो रहा है, आपको एलर्जिक रिएक्शन स्किन में हो रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और 45 मिनट बाद जब हम इसे खोलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आप पहले कंबल हटाइए, फिर कॉटन कपड़े को हटाइए, फिर आप बैठिए और आप फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से ठीक से नहा लीजिए, क्योंकि आप नहा लेंगे तो जो पसीने से आपकी गंदगी, जो टॉक्सिन आपके त्वचा पे निकले हैं और वो सारे के सारे निकल जाएंगे। इन पट्टियों के साथ एक चीज का हमें और ध्यान देना चाहिए कि हम इसको बांधने के बाद इसको साफ पानी में जरूर धो लें, क्योंकि इन पट्टियों पे भी हमारे शरीर से निकले हुए टॉक्सिन्स रहते हैं। तो दूसरी बार प्रयोग करने से पहले इसे पानी से खंगाल के तुरंत धूप में सुखा लें, और यदि एक से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही पट्टी को तो उसे प्लीज ठीक से साबुन से धो लीजिए कि और उसे धूप में सुखाइए, साबुन से उसकी सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे, और सनलाइट जो है वो बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए सबसे अच्छी चीज है। तो हम इसे इसीलिए अपने यहाँ चिकित्सालय में चिकित्सा के बाद जो भी पट्टियां हैं, जो भी कंबल है, उसको धूप में सुखाते हैं कि पूरे का पूरा जो बैक्टीरिया या वायरस जो उसमें रह गए हो या एक रोगी से दूसरे रोगी को वो न मिल जाए तो वो धूप से मर जाए। और ये भी देखा गया है कि सारे बदन की गीली पट्टी में आदमी ये इलाज लेते समय भी बहुत गहरी नींद में सोता है, और जब इलाज लेके बाहर निकलता है और नहाता है उसके बाद भी उसको बहुत अच्छी नींद आती है, और वो जो नींद आती है वो एकदम पावर नैप की तरह होती है। जो नींद आपको 2-4-6 घंटे में मिलती है वो आपको मात्र आधी घंटे में उस उतनी तरोताजगी आपको मिलती है, क्योंकि आप रक्त संचार ठीक हो जाता है, आपके शरीर से टॉक्सिन निकल जाते हैं और आपका नर्वस सिस्टम रिजेनरेट हो जाता है। तो सारे बदन की झीली पट्टी के बहुत लाभ है, ये हर जगह इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ, अगर कोई आपका खुला घाव है जो रिस रहा है तब कहते हैं कि उस एरिया को इससे मत ढको, क्योंकि वो आपकी उसके हीलिंग प्रोसेस में आपको डिस्टर्ब करेगा। या आपने अभी कोई सर्जरी तुरंत कराई हो तो उस समय इसका प्रयोग को हम लोग मना करते हैं, नहीं तो कोई भी इसे कभी भी ले सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि ये पूरे बदन की जो गीली पट्टी है, ये स्वाभाविक सा प्रश्न हो सकता है कि जब गीली पट्टी पूरे बदन पे लगाने से फायदे है तो हम छोटी छोटी पट्टियां लगाने से अच्छा तो एक बार पूरा ही लगा लें, क्या ये लोग नहीं कहते?
1: अगर आप सारे बदन की गीली पट्टी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबसे बड़ी जो आदमी को जरूरत है वो चादर और कंबल की नहीं, एक दूसरे व्यक्ति की है, क्योंकि वो आपको बांधेगा। तो छोटी पट्टियां हैं वो आप अपने हाथ से खुद बांध सकते हैं,

0: सोटी पट्टी लगा के आप खुद इधर उधर घूम सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। सारे बदन की गीली पट्टी लगाने के लिए आपको एक व्यक्ति की जरूरत है और वो व्यक्ति आपके साथ रहना चाहिए। पता चला आपको घबराहट होने लगी, आप परेशान होने लगे, तो आपको निकालेगा कौन? और दूसरा, हर थोड़ी देर पे आपके सर पे ठंडा पानी डालेगा कौन? तो सारे बदन की गीली पट्टी के ज्यादा फायदे हैं, मगर छोटी पट्टियां ज्यादा प्रैक्टिकल है लगाने के लिए और घर पे बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है। हम कभी भी सारे बदन की गीली पट्टी घर पे रिकमेंड नहीं करते हैं लोगों को, कि जो रेगुलर इस इलाज को नहीं लिए हैं उनको। खासकर पता चला आप ले रहे हो, आप घबरा गए, आप लगे चिल्लाने, आपके अड़ोसी पड़ोसी आके कहेंगे अरे क्या बेवकूफी कर रहे हो यार, कौन तुमको समझा दिया ये। और गलती से अगर आप बीमार होंगे तो जो डॉक्टर आएगा वो सबसे पहले कहेगा यार तुमको कितनी बार कहा है कि ये सब ट्राई मत किया करो। तो इसीलिए मैं कहते हैं कि छोटी पट्टियां घर पे इस्तेमाल करें, सारे बदन की गीली पट्टी किसी योग्य निरीक्षक के अंडर में इसका प्रयोग करें।
1: ये बहुत ही सुंदर आज की बातचीत में ये बात समझ में आई है कि छोटी पट्टियां और होल बॉडी वेट पैक जो है, पूरे बदन की जो गीली पट्टी है, इन दोनों में अंतर क्या है और दोनों के फायदे क्या है, ये बात समझ में आ रही है। और दोस्तों, मैं समझता हूँ जैसे डॉक्टर साहब ने ये हमको गाइडेंस दी है, उससे हम सोच समझ कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे छोटी पट्टियों के बारे में बताया गया है कि हम इन्हें बांध कर अपना काम भी कर सकते हैं, और दिन में आधे आधे घंटे के लिए अगर आपको ये लगाना है तो ये आपको दिनचर्या में कोई अड़चन नहीं पैदा करता, आप आसानी से इन चीजों को कर भी पाएंगे। डॉक्टर साहब, बातों बातों में फिर वही बात मैं कहूंगा कि वक्त पूरा होने को आता है और मेरे मन में सवाल रह जाते हैं, और मैं समझता हूँ मेरे दोस्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी जब ये सुन रहे होंगे उनके मन में भी कुछ प्रश्न उठते हैं। और मैं अपने दोस्तों से यही कहूंगा, श्रोता दोस्तों, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप बेहिचक आपके प्रश्नों को लिखकर भेजें 9414151415 पर व्हाट्सएप करें या फिर SMS करें। आपके इन प्रश्नों को भी मैं डॉक्टर साहब के सामने रखूंगा, उन प्रश्नों के लिए भी उत्तर लेने की कोशिश जारी रहेगी। रेडियो मधुबन पर यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य, और आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं आज डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद बात करता हूं कि वो आज आ पाए और उन्होंने हमें पूरे बदन की गीली पट्टी के बारे में बताया कि कैसे कपड़े को गीला करके, पानी में गीला करके, उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे सभी दोस्तों की तरफ से आपका पुनः एक बार धन्यवाद।
0: ओम शांति, नमस्कार।
1: दोस्तों, ये है रेडियो मधुबन 107.8 FM और कार्यक्रम है सहज स्वास्थ्य। डॉक्टर राहुल मोदी जी से बात करते हुए ये बात समझ में आई है कि स्वास्थ्य को वापस ले आने के लिए हम कितनी सहज तरीकों से पानी की गीली पट्टियां बनाकर इनका इलाज कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर, डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना आसान था ये सब कुछ समझना, लेकिन हम सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला। हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी और जान ही नहीं पाए कि छोटे छोटे चीज़ें ही तो थीं जिन्हें बदलना था और ज़िंदगी बदल जाती। इतनी मुश्किलों से गुजरते रहे थे हम। आज एक बार फिर रिश्तों को नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं और घर से बाहर निकल चुके हैं। अब एक दूसरे परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वो परिवार जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ हम काफ़ी वक्त गुजारते हैं और हम अच्छा भी महसूस करना चाहते हैं। हम सिर्फ अचीव ही नहीं करना चाहते, हम वो हर पल जो वहाँ होते हैं वो खुश और सुखी होकर गुजारना चाहते हैं। तो क्या है वो गुरु मंत्र, क्या है वो छोटी छोटी बातें जो उन सिचुएशंस में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सुख जिसे हम तलाश रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र में, वो भी हमें मिल सकता है। हर बार की तरह इस सफर के हम सफर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को याद करें तो बहुत अच्छी आपने बात दी थी। मैं कहूँगी गुरु मंत्र था कि एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार पर जाने की, वहाँ पर जाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर होता है, एक सुबह सुबह का जो प्रेशर होता है, जो हमने कहा था कि हफ्ते भर फिर अनदर वीक, वो हट जाता है।
1: You look forward another week, you know, just the whole attitude changes to going back to the same place. Yeah.
0: And if I remember, हमने ये भी बात की थी कि अगर मुझे appreciate नहीं किया जाता, क्योंकि अब मैं परिवार में आ गई हूँ, एक नए परिवार में, एक ऐसा परिवार जो मेरा अपना ही choose किया हुआ है, हो सकता है वो लोग जिन्हें मैं अपने रिश्तेदार हैं और जो यहाँ जो हैं वो अलग हैं, लेकिन उनके साथ interpersonal relationship तो मेरा रहेगा ही, और उन सिचुएशंस को अब मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो एक सिचुएशन तो थी कि अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया मेरे बॉस ने, या कहीं कुछ जो मैं चाह रहा था कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या मेरी अचीवमेंट होगी, आगे बढ़ूंगा, वो नहीं हो पाया, उसको भी कैसे हैंडल करें। एक और सिचुएशन जो आम देखी जाती है जब हम काम पर जाते हैं, वो ये कि जेलस फैक्टर, वो मुझसे बहुत जलते हैं। मैं जितना भी अच्छा कर लूँ, वो मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटर हैं, और हर बार मेरे खिलाफ मेरे बॉस के या लोगों के कान भरते हैं, उनको कैसे हैंडल करूं?
1: हमें समझना पड़ेगा कि जेलसी क्या होती है, ईर्ष्या क्या है, और कौन मेरे से ईर्ष्या करता है। नॉर्मली वी फील के ये जो ईर्ष्या कर रहे हैं कि यू नो इट्स सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, क्योंकि आपका मुझसे ईर्ष्या करना अर्थात आपका अपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं होना। यू नो समवेयर दैट मे बी आई कैन डू बेटर देन यू, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स जेलसी। सो इफ मुझे पता चल गया कि यू आर जेलस ऑफ मी, आपको ईर्ष्या है, तो मुझे अब उस पर परेशान होने की पहली बात कोई बात नहीं है। दूसरा, गुस्सा आप पर करना ये तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, यू नो, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर में हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। तो अब अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं या अगर मेरे अंदर वो कंपैशन है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इफ़ यू आर जेलस एंड आप जेलसी वश कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, कुछ लोगों से बोल रहे हैं, तो मुझे आपके प्रति सिंपथी होनी चाहिए, क्योंकि यू नो नॉर्मली हमें नफरत आने लग जाती है,
0: इरिटेशन, यू डोंट लाइक, आई डोंट वांट टू बी यू नो विद द पर्सन हु इज जेलस ऑफ
1: मी, राइट, बट यू विल हैव टू लुक एट दैट पर्सन एज अ वुंडेड पर्सन, जिसे चोट लगी है, जो अपनी कैपेबिलिटी पर अब ध्यान नहीं देकर सारा ध्यान मेरे कैपेबिलिटी पर देखकर अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है। अब आपके एंगल से अगर देखो, जिसको ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए नुकसान ये हो रहा है कि उसकी जो, लेट्स से माय यू नो योर कैपेसिटी इज हियर एंड आपको लग रहा है कि माय कैपेसिटी इज लिटिल हियर या माय वर्क इज अ लिटिल बेटर, तो आप मेरे वर्क को देखते जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आप भी उधर तक पहुंचते जाएं या मेरे जैसे करने लग जाएं। नॉर्मली जेलसी में क्या होगा कि हम उनके जैसा करने लग जाएंगे कि वो कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे औरों को यू नो खुश रखते हैं, व्हाटएवर डिफरेंट वेज दैट वी वांट, तो हम इनके जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं। एंड क्योंकि ये नेचुरल है कि हम किसी की तरह बन तो सकते ही नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान न देकर अपनी विशेषताएं, अपनी शक्तियों को सारा भूलकर,
0: अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं,
1: अपनी ब्यूटी उसको भूलकर इनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं. एंड इनके जैसा तो बन नहीं सकते, लेकिन जो अपना था वो भी खो जाते हैं. एंड इन द प्रोसेस आई एम नीदर हियर नोर आई एम हियर एंड आई एब्सोल्युटली कोलैप्स. तो जेलसी से जो हम औरों के प्रति वर्णन करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और अंदर खुद ही खुद खुलते जाते हैं, तो हमारी जितनी कैपेसिटी थी हम उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं. तो हमें अगर किसी और के अंदर कोई कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है तो एक तो डरना नहीं. सी दैट इट इज़ दैट फियर विच ऑटोमेटिकली मेक्स मी यू नो स्टार्ट गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक. फियर सबसे बड़ा इंस्टिगेटर है गलत की तरफ जाने के लिए. लेकिन अगर मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि मुझे खुशी चाहिए, वो मेरे जीवन का हिस्सा होगी इररिस्पेक्टिव केस ऑफिस में कितने भी लोग आ जाएं. अब उस खुशी को मेंटेन करने के लिए अगर मुझे अपने परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, तो अब अगर मुझे लग रहा है कि somebody is better than me, maintaining my positivity, go and try and learn if you want to learn. उसके लिए हिम्मत चाहिए, requires lot of courage कि आप जाकर दूसरे से सीखते हैं. अगर वो कर ले तो नथिंग लाइक इट. जेलेसी तभी होती है जब सामने वाले के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमें फील कर रहा है कि हमारे अंदर नहीं है, और मुझे लगता है कि उस चीज के लिए लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए और इसीलिए मुझे उनकी वो वाली चीज चाहिए, और क्योंकि मुझे उनकी वो वाली चीज नहीं मिलती तो मैं उनके बारे में,
0: अच्छा मेरे प्रति कोई जलस है, मैंने तो गलती नहीं की, इट इज नॉट आई एम नॉट एट फॉल्ट. उनकी जलसी ने मेरे लिए मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी कि मैं उस माहौल में ही नहीं रह पा रहा बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी.
1: राइट, अब अगर आपने जैसे कहा कि उनकी जलसी है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो सबसे पहले तो ये मेंटेन करना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जिस तरह से चल रहा था वो ठीक था. तो अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे कुछ प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. क्योंकि ज़्यादातर आप इमेजिन करिए एक सीन कि ऑफिस में बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू नो यू एंटर एंड यू सी पीपल टॉकिंग अबाउट यू, और यू कम टू नो कि यू नो सो एंड सो वाज़ सेइंग सो एंड सो थिंग अबाउट यू. तो अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम एक एक को जाकर अपनी पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स हम भी उसी गेम में चले जाते हैं कि अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए
0: दूसरे को डाउन करेंगे,
1: दूसरे की यू नो बुराई करने की शुरू कर देते हैं. एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट तो मैंने तो अपनी विशेषता को खो दिया. तो अगर आपको फेथ है कि जो आपके बारे में कहा जा रहा है दैट्स नॉट ट्रू, देन डोंट इवन बॉदर. डोंट बॉदर बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर इम्पोर्टेंट. Everybody wants your quality and that's why they're talking about it. Don't bother. Keep on working on that quality even more. Bilkul bhi is cycle mein jana hi nahi chahiye because hum kabhi bol kar apni baat ko siddh nahi kar sakte. Aur jo baat, again, if it's the truth, agar wo right hai, to usko siddh karne ki koshish nahi kare. Ek chota sa phase aayega beech mein jahan aapko feel hoga कि आप अकेले पड़ गए.
0: बहुत ये इसी में सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसी में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसी को निकालना मुश्किल हो जाता है.
1: तो ये फेस तो आएगा, दैट्स ओके, बट सी अगेन क्योंकि आपके पास वो विशेषता है तभी तो सारे उस तरफ चले गए एंड दे आर सो कॉल्ड जेलस ऑफ व्हाट यू हैव. लेकिन इफ यू नो व्हाट यू हैव, मेंटेन इट. तो वो छोटा सा फेज आएगा, लेकिन हमें निश्चय रखना होगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा फेज है. अब इस छोटे से फेज में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी स्टेप, ईगो नहीं, अगेन देयर इज अ वेरी थिन लाइन हियर, सेल्फ एस्टीम, ईगो. कि एक सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखेंगे उस व्यक्ति की क्या निशानी होगी, सेल्फ एस्टीम हाई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई नहीं है, कि ठीक है जैसा चल रहा है, मुझे जाकर एक एक को प्रूफ नहीं करना है कि पता है मैंने ऐसा नहीं किया था, वो गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, मैंने, आई डोंट नीड टू डू ऑल दैट. और दूसरा, अगर सेल्फ एस्टीम हाई है तो मैं उस व्यक्ति के प्रति जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, या उन सारे लोगों के प्रति जो मेरे अगेंस्ट होकर एक दूसरी साइड पर हो गए, उनके प्रति कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी. दैट विल बी द साइन ऑफ अ सोल विच हैज़ हाई सेल्फ एस्टीम. क्योंकि उस आत्मा को ये पता है कि ये खुद सब दर्द में है, तो जो खुद ही दर्द में है जो खुद ही कमजोर हैं और डरे हुए हैं, उनको क्या डराना, वो ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, उनसे क्या नफरत करना या उनको क्या गुस्सा करना जो ऑलरेडी बाहर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है लेकिन इंटरनली वो बहुत डरे हुए हैं।
0: जिस तरह से आपने कहा कि वो एक फेज आएगा जब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ऐसे में जो अपॉर्चुनिटीज मिस हुई कहीं ना कहीं वो पूरे मेरी वर्किंग पे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं लोनलीनेस या एक मैं बार बार नहीं जा रहा अपने आप को प्रूव करने, तो मैं अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ऐसा फील होता है कि मिस होती हैं।
1: अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिस होंगी लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, जस्ट क्योंकि आप अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। उस समय लगेगा अगेन यू नो ये इल्यूजन सारे क्रिएट होंगे कि ये मेरे हाथ से जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इस समय सारे मेरे अगेंस्ट हैं,
0: मुझे नहीं बुलाया
1: तो ये मुझे नहीं दिया गया काम, ये किसी और को दिया गया, इट्स ओके, मेंटेन दैट पेशेंस वो थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो व्यक्ति ये मेंटेन कर पाएगा उसका नुकसान हो ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा कि अगर आपने पॉजिटिविटी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल नेगेटिविटी उन लोगों के प्रति, यू नो एक होता है, क्योंकि इसमें जो थिन लाइन आती है, एक है मेंटेनिंग इनर स्टेबिलिटी और दूसरा है विड्रॉ। ये विड्रॉ नहीं है, ये विड्रॉ नहीं है, आप वही हैं, आप सबके साथ ही हैं, आप इंटरनली सबके लिए वही शुभ भावना रख रहे हैं।
0: यू नॉट हेटिंग देम, यू नॉट डिसलाइकिंग देम,
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
0: दे आर बीइंग बैड टू मी, आई डोंट लाइक देम,
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन कर पाएगा जिसको ये फेथ होगा कि मैं राइट हूँ, जो मैंने किया वो राइट है, या जो मेरी विशेषता है वो है, इन लोगों को उस विशेषता से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी विशेषता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर डाउट अपने ऊपर जब आने लग जाता है, दैट इज लो सेल्फ एस्टीम, और वो लो सेल्फ एस्टीम किसको होगा, जो खुद को ही नहीं पहचानता और जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि सेल्फ एस्टीम क्रैश होने का कारण, अपने स्वमान क्रैश होने का कारण सिर्फ ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, आजकल मेरा क्या इम्प्रेशन है सबके ऊपर, यू नो वी थ्रो दिस वर्ड इम्प्रेशन क्या है, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। तो इफ आई एम ओके with that quality, just carry on. And if I'm okay and I come to know कि there is a negative undercurrent, never mind. I feel compassion कि कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा. In fact, मैं indirectly भी उनको वो जो चीज़ है जो वो शायद सीखना चाहते हैं या चाहते हैं, I can share even if they don't ask. Normally withdraw हम कर लेते हैं, अपनी विशेषता को अपने तक सीमित रखते हैं, एंड हम कोशिश करते हैं कि ये चीज मैं किसी को नहीं बताऊंगे, यू नो एक होती है विशेषता, एक होती है कोई स्किल, आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है जो आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप औरों को वो चीज सिखा सकते हैं, लेकिन डर क्या होता है कि अगर मैंने इनको सिखा दी
0: तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी।
1: आज सारे ऑफिस में मेरी इंपॉर्टेंस इस स्किल की वजह से है, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ये जो कंपटीशन आता है, तो हम उस स्किल को अपने तक रखते हैं, जैसे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी, अगर कोई पूछ भी लेता है तो उसको गोल गोल घुमाकर इनडायरेक्टली कुछ कर देते हैं, उसको अपना पूरा का पूरा जो आपको आता है वो नहीं सिखाते हैं। दिस इज साइन ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है, हमें जितना आता है पूरा एंड टू एंड उसको पूरा का पूरा बता देना चाहिए, ये फेथ होना चाहिए, दिस इज फेथ ऑन द सेल्फ, ये पूर फेथ होना चाहिए कि किसी और को सिखाने से मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा, उल्टा वो विशेषता और भी बढ़ती जाएगी अगर कोई और आगे बढ़ेगा। दिस इज व्हेन वी अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक लेवल पर सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि कोई अगर और आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगी, बिकॉज वी लुकिंग एट थिंग्स ओनली ऑन दैट लेवल। मटेरियल प्रोग्रेस में भी अगर हमने किसी को आगे बढ़ाया है तो शिव बाबा हमेशा हमें ये बताते, किसी को आगे बढ़ाना मतलब खुद ही आगे बढ़ जाना, एंड ये हमने मतलब हर स्टेप पर इसका अनुभव किया है। तो किसी को आगे बढ़ाना नॉट विद द इंटेंशन कि ताकि हम आगे बढ़ जाएं, नहीं, लेकिन सच में किसी को आगे बढ़ाने का यू नो वो फील आना कि सब लोगों को ये आ जाए, जो मुझे आता है आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर इट विद एवरीबडी, परमात्मा ने दिया है, आई वुड वॉन्ट टू शेयर इट विद एवरीवन, वो आगे बढ़ेंगे, उनके आगे बढ़ने में मेरा आगे बढ़ना अपने आप समाया हुआ है।

0: बिकॉज अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, लॉ ऑफ कर्म. सो मैनी ब्लेसिंग्स, सो मैनी गुड विशेज, जिसको कहते हैं दुआओं का खाता, इतना जमा होता है कि वो दुआओं का खाता अगर हम अपनी विशेषता से चलते तो हम इस स्पीड पर चलते, लेकिन अगर जब हमें इतनी सारी दुआएं मिल जाती हैं तो हम इस स्पीड पर नहीं चलते. वी जस्ट
1: एनर्जी, एनर्जी एक और मिल जाती है
0: हमें, अपनी एनर्जी नहीं, सिर्फ
1: सबकी एनर्जी,
0: सबकी एनर्जी मिलती है. और वो जो इतनी सारी एनर्जी हमें सबकी मिलती है, इट जस्ट pushes us way ahead, even in terms of material progress. And most important is कि आपको वो material progress मिला, लेकिन साथ साथ आपकी internal state बहुत happiness की थी.
1: लेकिन सिस्टर शिवानी, यहाँ एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि हमने किसी दूसरे को सिखा दिया इस intention से कि सबको आना चाहिए, उसमें क्या problem है. उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके मेरी position को नीचे कर दिया, और ये बहुत बार देखा गया. यही प्रॉब्लम है, तभी लोग जो हैं वो नहीं सिखाते या यू नो अपने पास ही रखना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं वो बाकी सारे तामझाम या जो भी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, जो मैं चाहे मैं इनस्टेबिलिटी में भी रहा लेकिन वो आगे पहुँच गया, तब मेरा क्या रिएक्शन.
0: अगर मैंने किसी और को किस इंटेंशन से कुछ सिखाया था, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हुए ये नहीं सिखाया था, देन आई एम ऑलवेज गोइंग टू लाइक कि हमने उनको सिखाया, क्योंकि मेरी भावना है देने की. वी अंडरस्टूड एट एवरी स्टेप कि आत्मा का नेचुरल संस्कार है देना, लेना नहीं. लेकिन हमने आज उसको चेंज कर दिया कि हमें सारा दिन लेना है, देना कुछ भी नहीं है. तो देने के बाद हमेशा अच्छा लगेगा. अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जो आप कह रहे हैं, मे बी इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि वो व्यक्ति आपसे बहुत आगे चला जाए, बट देन हाउ डज दैट मैटर, विद वॉट इंटेंशन डिड आई गिव इट, डिड आई नॉट शेयर इट विद दिस इंटेंशन कि आगे बढ़े. एक पेरेंट अपने बच्चे को किस इंटेंशन से सब कुछ सिखाता है, इसी इंटेंशन से सिखाता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे चला जाए. तो अगर मैंने भी उस भावना से सिखाया होगा कि ये भी सीखे, ये भी सीखे, ये भी आगे बढ़ जाए. एक टीचर एक स्टूडेंट को किस भावना से सिखाता है, नेवर सेज के आप मेरे को जितना आता है आप उससे कम रहो, नो. एंड फिर वो टीचर को कितनी खुशी होती है, पेरेंट को कितनी खुशी होती है जब वो आगे बढ़ता है बच्चा. तो उसमें कोई उनका नीचे होना नहीं होता है. वो बच्चा हमेशा अपनी सफलता का डेडिकेशन किसको देगा,
1: पेरेंट,
0: उन्हीं को देगा, टीचर को देगा. अब इन दिस केस मे बी यू विल नॉट गेट इट, दैट काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनल
1: डीप विद इन आई थिंक द पर्सन नोज कि क्या,
0: द पर्सन नोज फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट, एंड सूनर और लेटर यू विल स्टिल गेट इट बैक इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस. लेकिन जहां तक इनर फीलिंग की बात है वो तो आपको ऑलरेडी मिल गई है,
1: बिकॉज़ व्हेन यू गिव इट गोस थ्रू यू,
0: इट गोस थ्रू यू. अब अगर उसके बाद आप हर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यू हैड गिवन इट
1: विद एन इंटेंशन.
0: तो हर कर्म में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस इंटेंशन से गिरे. अगर आपको डर है कि कहीं आगे निकल जाए, फिर मत दीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ चांस कि वो आपसे बहुत अच्छा सीख ले,
1: क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है.
0: बट दैट्स ओके, व्हाई नॉट. अगर मुझे खुशी हो औरों को आगे बढ़ता हुआ देख, एंड दैट विल हैपन व्हेन कि व्हेन आई एम नॉट इन द रेस. जो उनकी स्पीड उनकी है, मेरी स्पीड अपनी है, दैट्स ओके. आई एम गोइंग टू मूव एट दिस स्पीड, आई लाइक माई सेल्फ एट दिस स्पीड. लेकिन इफ दे गो फास्टर, इट्स इज फाइन. आई एम हैप्पी सीइंग अदर कार्स गोइंग अहेड ऑफ मी, देन इट्स फाइन. लेकिन अगर डर है तो फिर नहीं देना, देन कीप इट टू योर सेल्फ. बट इट्स अ वेरी लिमिटेड फीलिंग. आप सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही करते हैं, और इसमें कभी खुशी नहीं अनुभव
1: हो सकती. हमने घर की बात की थी तो मूल्यों की बात की थी. कहीं ना कहीं गिरते मूल्य हम घर में बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के सामने आना है, हमें बच्चों को देने हैं. लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऑफिस पहुँचते हैं, वहाँ मूल्य ताक पर रख दिए जाते हैं. अपने मूल्य हम बचाने की कोशिश भी करें ऑफिस पहुँच कर, जब माहौल ऐसा दिखते हैं तो मूल्य में करप्शन एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, या और भी सारे अगर जीवन मूल्यों को देखते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि जो माहौल है उसी के साथ मैं भी उसी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो तभी मैं जी सकता हूं. तो ऐसे माहौल में अपने मूल्यों पे कायम रहना वो बहुत मुश्किल आज के वक्त में लगता है, और अपने मूल्यों को सही रूप में पहचानना, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें.
0: ये तभी हम कर पाएंगे अगर हमने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर दिया है. अगर हम अपने आप को सिर्फ एक शरीर समझते हैं. अगेन सोल कॉन्शियसनेस पर बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम समझते हैं इतना सा ही तो जीवन है. इस जीवन में जो कुछ मिल जाए यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ प्राप्त करना है जल्दी कर लो. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जस्ट कीप गेटिंग गेटिंग गेटिंग, दिस इज़ हाउ मच यू हैव टाइम, यू वॉन्ट टू गेट, यू कैन गेट एवरीथिंग. जब ये एटीट्यूड होगा तब हम उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं. तो मतलब हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अपनी वैल्यूज़ को गिव अप कर देंगे. जब हमें समझ में आ जाता कि ये शरीर है, मैं इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, आत्मा की वैल्यूज़ हैं, आत्मा के गुण हैं, आत्मा के संस्कार हैं, खुशी जो है वो मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिलने वाली, वो मुझे इंटरनल जो मैं एक एक कर्म करूँगी, किन वैल्यूज़ पर बेस्ड करूँगी, वो तब मुझे मिलने वाली हैं. अब मुझे अपनी लाइफ को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर मुझे एक प्रमोशन, एक मतलब बंगला, गाड़ी, वट एवर दीज थिंग्स, ये सब मिलने वाली हैं एट द कॉस्ट कि मेरी खुशी जाएगी. क्योंकि वैल्यूज़ को साइड पे रख के प्राप्त की हुई वस्तु मन की स्थिति को खुशी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि बीज नेगेटिव था. तो हर एक के लिए अलग अलग है. वी आर नॉट गोइंग टू से हियर और वी आर नॉट हियर टू टेल एनीवन कि दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट. दिस इज फॉर यू टू डिसाइड. अगर आप कहते हैं नहीं जी करप्शन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स योर डिसीशन. एब्सोल्युटली आपका निर्णय है ये. प्रेशर लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी वायुमंडल में लोग हैं जो इस चीज के लिए झुकते नहीं है. भले आप समझें कि बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन अगर एक भी कर सकता है
1: तो सब कर सकते.
0: तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन शायद उस एक व्यक्ति को जो इसके अगेंस्ट जाता है उसको थोड़ा सहन करना पड़ता है. शायद उसको वो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, वो भी इफ़ यू फील नहीं मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी. बट उसके लिए वो इनर सैटिस्फैक्शन शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमें अपने लिए और अपने परिवार के लोगों को प्लीज पूछ लीजिएगा एक बार. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी मानसिक स्थिति होगी वो सबको मिलने वाली है. तो अगर कल को मैं परेशान रहूं और बच्चे भी, घर के लोग और भी परेशान रहें, और वो कहें ऐसा किया ही क्यों, एंड आई से आई डिड इट सो दैट आई कुड बाय यू द कार, दे माइट से वी डोंट नीड द कार. सो व्हेन यू टेक द डिसीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वैल्यूज, take the decision with your family, अपने परिवार, because we had decided कि जो right और wrong हम set करने वाले हैं वो परिवार की राय के साथ मिलजुल कर हम set करने वाले हैं. तो अपने परिवार में, चाहे बच्चे बहुत छोटे हों लेकिन जो भी बड़े आपके साथ हैं, ask them कि do we want all this at the cost of values, या क्या हम अपने value system को intact रखें. And 99.9% I would think कि आपको मिलेगा keep it intact. ये हम compromise कर देते हैं ये सोच के नहीं नहीं नहीं मेरे परिवार को ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, अगर मैंने अपने बच्चों को ये नहीं दिया तो वो you know upset हो जाएंगे. नहीं, everybody wants happiness and nobody wants to lose their happiness at the cost of materialistic comforts. हम सोच रहे हैं कि people want happiness with material, it's not like that. I need to talk. और इसीलिए इन बातों की घर में बातें, डिस्कशन होनी चाहिए. वी शुड डिस्कस कि वैल्यूज क्या है, हैप्पीनेस क्या है, हाउ मच आर वी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, और शुड वी बी दैट काइंड ऑफ फैमिली जो स्टिक टू आवर वैल्यूज.
1: और यहाँ स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए, ना कि वो स्ट्रेस जो हम खुद क्रिएट करते हैं.
0: इस स्ट्रेस को एक्चुअली कोप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा, बिल्कुल नहीं स्ट्रेस क्रिएट होगा, अगर आपने अपनी चॉइस से वो डिसीजन लिया होगा, अगर वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी. लेट्स से ऑनेस्टी या ब्राइब नहीं देना या नहीं लेना, इफ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग एल्स, यू नो, देन एनी कार और बंगलो, I will not get stressed. Even if my job is at stake, it doesn't matter. क्योंकि मेरे पास वो value है जो शायद आज बहुत कम है लोगों के अंदर. तो वो value कोई ना कोई होगा जो उस value को recognize करेगा. तो मुझे वो tension वाले period से नहीं गुजरना पड़ेगा, if inside I'm very sure. लेकिन अगर मैं कमज़ोर हूँ, एक बार सच बोला, थोड़ा सा उसका कुछ pressure पड़ा, नहीं नहीं नहीं सच बोलने से तो नहीं चल सकता, झूठ बोल दो, कर दो, देन आई एम नॉट फिट टू डू इट, देन आई विल हैव टू डू जो ऑल द थिंग्स जो सारे लोग कर रहे हैं एंड देन आई विल हैव टू गेट जो सबको मिल रहा है.
1: इट मींस वही आ जाती है कि हाउ मच आई वैल्यू माय वैल्यूज.
0: एब्सोल्युटली. इट्स नॉट अबाउट ये लेम एक्सक्यूज

0: I will have to do something different. I will have to be somebody different. That's very important. तो अगर वो खुशी चाहिए, it's in your hand already. गवाना नहीं है उसको इन छोटी छोटी बातों के लिए.
1: ये जो values की जो बात हम कर रहे हैं या जिस तरह से जो छोटी छोटी situations सामने आती हैं उस पर कैसे आप अडिग रह सकते हैं, अडिग भी रहने की जरूरत नहीं, जस्ट माइंडसेट
0: प्रायोरिटाइज कि ये बोले ये झूठ बोलना ही पड़ेगा. आई एम सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकता. नाउ आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट. आपको ये डिसऑनेस्ट कर्म करना ही पड़ेगा. आई एम सॉरी सर, ये मैं नहीं कर सकता. नाउ आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग एंड देन इट शुड बी एनीथिंग आई एम रेडी टू फेस, बिकॉज ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता. तो फाइन, मे बी इट इज समथिंग अ पार्ट ऑफ द जॉब जो मैं नहीं कर सकता, तो आई एम रेडी टू फेस उसके लिए, लेकिन आई विल नॉट डू इट.
1: कुछ चीज़ें जो हैं वो अडिग रहनी चाहिए, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती. उनमें ये है, चेंज हमें अपने एटीट्यूड्स को ज़रूर करना है, अपने थॉट्स को कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ को नहीं, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं.
0: और यहाँ
1: फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझ में फ्लेक्सिबल
0: जहाँ चाहिए वहाँ
1: हो जाता है. सुजा शिवानी, ऑफिस में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो अभी भी जिनको इनके बारे में जानना बाकी है. ट्रस्ट की बात आती है, एंगर की बात आती है, और फिर अगेन मेडिटेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी इस परिवार में भी एक स्टेबिलिटी ला सकती है. तो अभी बाकी है काम, लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: ऑफिस में जब हम पहुंचते हैं, जब हमने उसे मान लिया, स्वीकार लिया कि वो मेरा परिवार है, फिर जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, जेलेसी की आज हमने बात की, और किस तरह से अपनी वैल्यूज़ पे हम अडिग रह सकते हैं, और अडिग रहना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगेन इट्स माय चॉइस कि मैं रहना चाहती हूँ, किसी और के कारण मैं रहूं या ना रहूं वो नहीं हो सकता. तो डिसीजन हर बार की तरह मेरे हाथ में रहेगा. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल गुनगुना रहा है, तो आपका स्वागत है. आप हमारे साथ शेयर कीजिए उसे, हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 9999 3445 9999 3 4 4 6 6 9 8 7 3 6 6 5 5, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में कुछ और रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब हम ऑफिस में होते हैं तो एक फेथ या ट्रस्ट या विश्वास का रिश्ता होता है, और साथ ही जिस एंगर को हम कई बार सही मान लेते हैं उसे भी क्या सही माना जाना चाहिए, क्या बिना गुस्सा किए भी ऑफिस में काम चलाया जा सकता है. ऐसे ही कई और बातें हैं जो हम अगली कड़ी में ज़रूर उठाएंगे. तो आप इंतज़ार कीजिए, मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. ओम शांति.

0: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और 12 मई 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शके 1948 शके 22 गते 29 शुद्ध ज्येष्ठ मंगलवार आज है। और इसके साथ ही बात करें हम लोग तो विक्रम संवत 283 शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी आज है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। बाबू जी नमस्कार
0: जी। बोलिए गुडीलाल जी।
1: मंगलवार भी आ जाता है और मंगलवार का तो हनुमान का वार होता है, हनुमान का एक गाना भी हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा और सभी साथियों को भी मजा आ जाएगा। तो सेम आज की एक बात है, संकट संकट में आते हैं केसरी नंदन हनुमान, भजमन जय सिया राम जय सिया राम, ये है गाना सर। ये हो जाएगा तो दिल के अंदर बहुत सारे भावनाएं और खिलखिलाहट मच जाएगी। ये मेरा निवेदन है सर और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और भी साथी मेरे इंतजार ही करते होंगे, उनका भी नंबर आ जाएगा। धन्यवाद सर।
0: जी जी जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका याद करने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा जो है संकट मोचन की याद था आपने की, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हनुमान जी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना पाऊँ, भजन सुना पाऊँ। और बात कर रहे थे हम लोग आज के दिन विशेष के बारे में और आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे है। 12 मई आज का तारीख है तो निश्चित तौर पे 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के लिए याद किया जाता है। नर्सिंग सेवाओं को याद किया जाता है, अच्छे नर्सों को याद किया जाता है। तो इस्लामी हिजरी 1447-24 जिलकद मंगल सऊद आज है, तो आप सभी को आज के दिन की अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। सुनते रहो नर्स रहो।
2: भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, संकट मोचन हनुमान जी त्योहारों का बहुत ही सुंदर हनुमान अष्टवक्र का गीत आपने सुना। निश्चित तौर पे ये जो गीत है हम सभी के लिए प्रेरणा सूत्र है। हम भी अपने आत्मा की शक्तियों को भूल गए हैं तो हमें फिर से परमात्मा जो है याद दिलाते रहते हैं, ताकि हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने और विश्व का कल्याण कर सके। लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूलने के कारण संकट में आ जाते हैं, और संकट का निवारण सिर्फ श्रीमति है। अगर आपको याद आ जाए कि आपके अंदर ताकत है, आप महान हैं, तो बाकी सारे संकट अपने आप दूर हो जाता है। तो ये गीत, ये भजन हम सभी को हमेशा सुनना चाहिए। सुन के सिर्फ हनुमान जी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, खुद के बारे में भी सोचिए कि आपके अंदर भी परमात्मा ने वही शक्ति दी है, उसका कैसे एक्टिवेशन हो, कैसे उसको जो है हम लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में विचारों के माध्यम से उसको अपनाएं। जैसे ही आप अपनाएंगे तो आपके जीवन के सारे संकट धूमिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और आप प्रज्ञा अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां पर आप निश्चिंत रहते हैं और परमात्मा के प्यार में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्होंने आपको सब कुछ दिया है जो आपके जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकता है। तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में संकट अगर है तो वो आपने अपने अंदर आत्मा को नहीं देखा या नहीं समझा। तो समझने की कोशिश कीजिए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के बारे में बातें करते हैं, और नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल 12 मई को ये इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है, नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अमीर और गरीब दोनों प्रकार के देशों में नर्सों की कमी हमेशा चली रही है। विकसित देश अपने जहां नर्सों की कमी को अन्य देशों से नर्सों को बुलाकर पूरा कर लेते हैं, उनको वहाँ पर अच्छा वेतन और सुविधाएँ दी जाती हैं, जिसके कारण विकसित देशों में जाने में देरी नहीं करती है। दूसरी ओर विकासशील देशों में नर्सों को अधिक वेतन और सुविधाओं की कमी रहती है, और आगे का भविष्य भी अधिक उज्ज्वल नहीं दिखाई देता। ऐसे कारण के कारण विकसित देशों के बुलावे पर नौकरी के लिए वो विकासशील देश से विकसित देशों में चली जाती है। तो निश्चित तौर पे हमें भी अपने यहाँ विकासशील देशों में भी, वहाँ पर भी अगर नर्सिंग सेवाओं को इम्पोर्टेंस दे, उनके बारे में समझे, उनके जीवन के बारे में समझे, जैसे और प्रोफेशंस होते हैं वैसे नर्सिंग भी एक प्रोफेशन है और वो नोबल प्रोफेशन है, ये जानकारी अगर हमें हो तो हमें उनके लिए जो चीज़ें, सुविधाएं जो हैं वो ठीक से हम मुहैया कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आइए, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। जीवन अनमोल है ये गीत आपको सुनाते हैं बीके भावना जी का, और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही सुंदर रेडियो साक्षात्कार आपको सुनाएंगे डॉक्टर कविता किरण और दीप्ति जोशी का। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप सुनने वाले हैं, दीप्ति जी हमारे साथ हैं। दीप्ति जोशी जी जो एक एंटरप्रेनर है, एक बिजनेसमैन है और साथ ही साथ मल्टीमीडिया में भी अपनी सेवा देते रहते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी समाज सेवाएं भी करती रहती हैं। तो वही उनसे भी बातें करेंगे और साथ में हमारे डॉक्टर कविता किरण जी भी हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी कविताएं बीच बीच में आप रेडियो माधवन पर सुनते रहते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। ओम शांति, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मधुमन का और रेडियो मधुमन के सभी श्रोताओं का।
0: जी जी, आइए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर कविता किरण जी से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा। डॉक्टर कविता किरण जी, वर्तमान में आप माउंट आबू आए हुए हैं, तो किस रिगार्डिंग आए, किस सिलसिले में आए, थोड़ी सी बताइए बातें।
1: दरअसल पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम आता है अतिथि देवो भव, उस कार्यक्रम के शूट के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है बीके भानो भाई द्वारा, उनका मूल्य मंच करके उनका एक यूट्यूब चैनल है।
0: जी, जी जी जी,
1: उस पर वो बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि मुझे रिकॉर्ड करना, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जा रही थी कि मैं आ नहीं पा रही थी। तो कल संयोग से सारी चीज़ें, संयोग ऐसा बैठा कि मैं भी फ्री थी और कल हमारा उसका शूट बहुत ही बेहतरीन ढंग से हुआ और जल्द ही उसको देख पाएंगे लोग पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल पे अतिथि देवो भव में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अतिथि देवो भव इस शूटिंग के लिए आपको बुलाया गया और आपने आकर वो शूटिंग भी पूरा हुआ और जल्दी से आप उस एपिसोड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या उस एपिसोड में हुआ है। आइए मैं एक और ख़ास मेहमान जिन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं, एक इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया था दीप्ति जी का। दीप्ति जी फिर से एक बार स्वागत है और बताइए आपका यहाँ पर माउंट आबू कैसे आना हुआ, किस रिगार्डिंग।
2: जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगता है यहाँ बार बार आना तो मेरी शुरुआत भी यहाँ पे स्पार्क कॉन्फ्रेंस से हुई थी, पहला निमंत्रण मुझे वहाँ से था। मैं मीडिया से भी जुड़ी हूँ और आपकी G20 विंग है जिसमें से आधे विंग के सिलसिले में मेरे काम चालू होते हैं तो आप जब भी बुलाएंगे मैं खुशी से आते रहूँगी एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आप बार बार बुलाएं। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये जगह अच्छी है माउंट आबू, ये सीज़न में तो बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आप मुंबई से कंपेयर करेंगे तो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है।
0: जी, जी,
2: और तब पता चलता है कि प्रकृति की कितनी ज़रूरत है। हम डेवलपमेंट करते हैं, हम हाई राइज टावर्स बनाते हैं पर हम वृक्ष कहीं ना कहीं लगाना भूल जाते हैं।
0: जी,
2: तो यहाँ जो पहाड़ है, पर्वत है, वृक्ष है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना रहता है। इसी समय आप मुंबई चले जाओ तो अप्रैल में मुंबई मेरे हिसाब से रहने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है जब ऐसी जगह पे आते हैं कि विकास के साथ साथ आध्यात्मिक समझ इंसान को इंसान बनाए रखती है जो हमारे ही फायदे में है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और एक तो माहौल अच्छा है, दूसरा है जो वाइब्स है यहाँ, जो मेडिटेशन किए जाते हैं, उस जो शांति है यहाँ पे, ये अब जैसे यहाँ आओगे पहले दिन पहले घंटे में आयुर्वेद से वो अनुभव होता है कि एक अलग ही पीस है। आप चाहो तो भी यहाँ किसी पे आप गुस्सा नहीं कर सकते हो,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: इतनी शांति है, तो वो एक है। दूसरा है कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई दैवी जगह पे जाओ तो जब बुलावा आता है तब तो जाते हो,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर बाबा बार बार बुलाते हैं तो एक ये फीलिंग आती है कि चलो कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड है। तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे,
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दीप्ति जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। और जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो एक अच्छी जगह पे अगर आप जाते हैं तो आपके मन को शांति भी मिलता है, आपको एक चेंज मिलता है, तो आपके जीवन में एक नयापन आता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को फिर से डॉक्टर कविता किरण जी से जोड़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस बीच आपने कुछ नई चीज़ें अतिथि देवो भव में भी सुनाया होगा और कुछ नई चीज़ें अगर आपने लिखी हो तो हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाइए आप।
1: जी ज़रूर, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं कुछ ऐसी सकारात्मक और मोटिवेशनल बात करूं कि उससे लोगों को प्रेरणा मिले,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और कहीं ना कहीं उनकी सोच भी सकारात्मक की तरफ मुड़े और
0: हाँ।
1: सकारात्मक ऊर्जा का उनमें संचार हो
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: वैसे तो हर विधा में लिखती हूं, लेकिन ये मेरा एक मकसद रहता है कि लोगों में अच्छी बात, अच्छा संदेश जाना चाहिए। और आजकल आप देखते हैं कि लोग तनाव में काफी जी रहे हैं, आम इंसान जो है चारों तरफ तनाव से घिरा हुआ है। तो उस तनाव को कम करने की कोशिश में गजल के चंद अशआर मैंने हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। और मैंने अपने आप से ये बात कही है,
0: अच्छा,
1: सबके लिए संदेश सभी के लिए है, लेकिन मैंने अपने आप से बातचीत की है कि चलो मन, मन में ठानो, मुस्कुराओ। जैसा कि आपका लोगो भी है ना कि सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, तो मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि अगर आप मुस्कान जो होती है एक पैंडेमिक की तरह होती है, अगर आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला भी मुस्कुरा कर ही उसका जवाब देता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इसको फैलाना चाहिए जहाँ तक हो सके। तो चलो मन, मन में ठानो, मुस्कुराओ, दुखों को तुच्छ जानो, मुस्कुराओ। ये माना कुछ नहीं बस में हमारे, ये माना कुछ नहीं बस में हमारे, मगर मुट्ठी न तानो, मुस्कुराओ। हुआ रोकर किसी का कुछ भला है, हुआ रोकर किसी का कुछ भला है, हमारी बात मानो, मुस्कुराओ। ये हुआ रोकर किसी का कुछ भला है, हमारी बात मानो, मुस्कुराओ। और नहीं दीवानगी से कुछ भी हासिल, नहीं दीवानगी से कुछ भी हासिल, न दर दर खाक छानो, मुस्कुराओ। और आखिर में मतलब है इसका, मकता है कि किरण जो बांटते हैं मुस्कुराहट। कहते हैं ना कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो ईश्वर की इबादत करते हैं, और अगर किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। कि किरण जो बांटते हैं मुस्कुराहट, उन्हें ईश्वर ही जानो, मुस्कुराओ। चलो मन, मन में ठानो, मुस्कुराओ, दुखों को तुच्छ जानो, मुस्कुराओ। ये माना कुछ नहीं बस में हमारे, मगर मुट्ठी न तानो, मुस्कुराओ।
0: चलिए, बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ दीप्ति जी भी जुड़ी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो दीप्ति जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना अनुभव साझा कीजिए, अभी वर्तमान में किन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं। जी
2: जी, तो जैसे कि आपने परिचय दिया कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, शुरुआत मैंने करी थी 2010 में। इससे पहले मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इंजीनियरिंग मैनेजर थी। पर जैसे हम सभी को पता है कि जब जॉब करते हैं तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं, और मज़ा तब है जब दिल से काम किया जाए। तो मैंने सोचा कि अब कमा तो लिया अच्छा खासा, ज़रूरत भी कम थी, तो ये सोचा कि एक बार कोशिश करते हैं खुद के लिए कुछ करने की। शुरुआत करी, 2-3 साल स्ट्रगल था, लेकिन उसके बाद ईश्वर ने बहुत साथ दिया। जैसे ही मैं स्टेबल हो गई, मैंने कुछ बच्चे अडॉप्ट करे थे। शुरुआत मैंने 3 बच्चों से करी, 2 ऑफिशियली करे थे, 1 बच्चा जो था वो ऑफिशियल नहीं था, मानसिक विकलांग बच्चा था। तो सरकार आपको परमिशन नहीं देता है, आपको कोर्ट से डिविजन लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये सब झंझट करने के बदले एक बच्चा हम अनऑफिशियल कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। पर जब 4-5 साल बीत गए तो ये देखा कि जो बच्चे ऑफिशियली अडॉप्ट किए थे उनके कंपैरिजन में जो बच्चा ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं किया था पर अडॉप्ट किया था, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगा। क्योंकि इन बच्चों को सिक्योरिटी था कि अब मम्मी है, घर है, सब है, तो पढ़ने में कमाने में इंसेंटिव नहीं था। ये बच्चे को गाइडेंस था, इंस्पिरेशन था, पर सिक्योरिटी की वजह से वो अपना अच्छे से
0: अच्छा एक्सेल कर रहा।
2: हाँ जी, और उस वक्त ना कुछ बच्चे थे जो बोलते थे, क्योंकि बाय देन मेरे बच्चे बड़े थे, आई अडॉप्टेड देम एट द एज ऑफ 13-14, तो वो जब बड़े हुए 15, तो बाकी भी मुझे बोलते थे कि आपने हमें क्यों अडॉप्ट नहीं किया। काफ़ी मेरे नेबर्स थे, काफ़ी फ्रेंड्स के बच्चे, तो मैंने बोला कि मम्मी बोलना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ नाउ वी हैव अ फैमिली ऑफ 35 चिल्ड्रन, सो टू ऑफिशियली अडॉप्टेड, एवरीबडी एल्स इज नॉट ऑफिशियली अडॉप्टेड. तो बहुत अच्छा लगता है उनके, अगर मतलब काफ़ी बच्चे हैं जो बड़े हैं, मैं उनको बच्चे बोलती हूँ. तो वैसे हमारा फैमिली जो है, हमारा परिवार है, 100 के ऊपर है. और ये जो आपस में भाई बहन का प्यार है, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ. रमेश भाई, आप ना ये मानेंगे नहीं कि जो सगे भाई बहन में कभी प्यार नहीं होता है, वैसा इनमें है. तो दिल्ली में मेरी बेटी का घर है, उन्हीं के बाजू में उत्तराखंड हरिद्वार पड़ता है, वहाँ मेरे सबसे बड़े बेटे हैं. तो ये इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो ये बिना सोचे, ऐसे इन दोनों को पता है कि रात के 12 बजे, रात के 2 बजे भी अगर हम कॉल करेंगे ना, तो हमारे लिए एक फैमिली तैयार है. तो ये बहुत अच्छी बात है. और मैं बोलती हूँ कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, करते ये लोग हैं, क्रेडिट मैं लेती हूँ. तो हम ऐसे बोलते ना कि परमात्मा का जो मतलब यूनिवर्स है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसमें एक नियम है कि आप 4 दाने अगर डाल दो तो 400 उसमें से वापस आते हैं. तो आपको सत्कर्म के 4 दाने ही डालने हैं, बस उतनी करेज आप में होनी चाहिए. कभी हम विश्वास नहीं रखते. काफ़ी लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि हम भी ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं, पर डर लगता है क्योंकि घर का EMI पे करना है, गाड़ी का EMI पे करना है, तो हमें कमाना बहुत ज़रूरी है. पर बस वो डर के आगे जीत है. हम अगर परमात्मा पर भरोसा रख के थोड़ा निस्वार्थ काम अगर शुरू करते हैं तो आगे तो होते जाता है अपने आप करने की. मतलब मेरा अनुभव यह है कि फिर हम करते नहीं हैं, हमसे कोई धक्का दे दे के करवाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है. तो अब तक काफ़ी अच्छा है. और जब मैंने बच्चे अडॉप्ट किए थे तो एज अ पे बैक मैं उन्हीं के अनाथ आश्रम में बाकी बच्चों को पढ़ाती थी. तो मैथ साइंस जब पढ़ाते थे इनको, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो पता चलता था कि इनको इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं. इनका काम था चोरी चकारी, भीख मांगना. तो उनको मैथ साइंस नहीं समझ में आता था, उनको इंटरेस्ट नहीं होता था. तो धीरे धीरे मैंने, मतलब एक लड़की थी छोटी बच्ची, वो मुझे कहने लगी, वो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे भीख मांगती थी. तो वो क्लास में मेरे बैठती थी तो वो बड़ा बोर होती थी, तो मुझे बोलती थी कि ये करके क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊँ तो मुझे 10 रुपये मिल जाएंगे. तो मैंने बोला कि मैं सिखाऊंगी कि 10 रुपये इज्जत से कैसे कमाना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी भी क्यों मांगना है. तो वैसे करके मैंने अंडर प्रिविलेज लोगों को उद्योगिता, स्वावलंबन सिखाने की शुरुआत करी. और आज ये है कि MBA कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस से मुझे इन्विटेशन आता है, कभी एज अ चीफ गेस्ट, कभी गेस्ट ऑफ ऑनर. तो अच्छा लगता है कि शुरुआत हमने बिना स्वार्थ के करी थी, पर हर काम जो निस्वार्थ भाव से शुरू होता है उसका परिणाम परमात्मा तो बहुत अच्छा देते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
2: तो आई वॉज इन्वाइटेड टू G20 ऑल्सो, तो वो बहुत ही खुशी की बात थी. मैंने कभी सोचा नहीं था कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे मेरा फोटो आएगा इतना जल्दी. एंड देन आई वॉज इन्वाइटेड टू अयोध्या ड्यूरिंग राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा बाय रामानंद मिशन. तो जहाँ बहुत कम विश्व के लोग आते हैं, भारत के लोग आते हैं, वहाँ अगर आपको इन्विटेशन आता है तो ये मैंने सपने, लोग कहते हैं कि सपने हमारे साकार होते हैं, मैं कहती हूँ जो सपने मैंने देखे नहीं थे वो साकार होते हैं जब आप ईश्वर के भरोसे कुछ अच्छा काम करते हो.
0: सही बात है. चलिए दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया. आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है. आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत. आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 107.8 FM पर. जी हाँ, सफर सुनते रहो, मस्कराते रहो.

0: आनंद है।
1: जी जी जी, मैं चाहूँगा कि एक आध सुंदर जो कविताएं हैं वो और सुनाइए, हमारे सभी श्रोताएं खुश हो जाएंगे।
0: जी जरूर, मैं भी दीप्ति जी को सुन रही थी, उन्होंने जो आपको बताया जिस ढंग से उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की हैं, बच्चों को अडॉप्ट किया
1: जी,
0: है
1: जी, जी, जी,
0: एक अच्छे काम के लिए जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति खुद हमारा साथ देती,
1: साथ देती है।
0: और ये बिल्कुल सही बात है। तो मुझे अपनी एक गजल के कुछ शेर सामने नजर आ रहे हैं जो मैं हाजिर करती हूँ कि जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कुछ करने का हौसला हमारे भीतर होना चाहिए। तब कहती हूँ कि दिल में उम्मीदें जगाओ तो सही, ख्वाब पलकों पर सजाओ तो सही, कि दिल में उम्मीदें जगाओ तो सही, ख्वाब पलकों पर सजाओ तो सही, और इतना भी ऊंचा नहीं है आसमां, इतना भी ऊंचा नहीं है आसमां, तुम परों को आजमाओ तो सही, तुम परों को आजमाओ तो सही, और कामयाबी दर पे देगी दस्तकें, घर उसे अपने बुलाओ तो सही, और साथ देगा वक्त भी इस शर्त पर, हौसला तुम भी दिखाओ तो सही, और अब तो मंजिल पाके ही लेना है दम, अब तो मंजिल पाके ही लेना है दम, तुम कसम ऐसी उठाओ तो सही, और ऐ किरण खुद राह चलकर आएगी, ऐ किरण खुद राह चलकर आएगी, दो कदम तुम भी बढ़ाओ तो सही, ऐ किरण खुद राह चलकर आएगी, दो कदम तुम भी बढ़ाओ तो सही, दिल में उम्मीदें जगाओ तो सही, ख्वाब पलकों पर सजाओ तो सही, और इतना भी ऊंचा नहीं है आसमां, तुम परों को आजमाओ तो सही। तो साहब, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी मंजिल की तरफ दो कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें भी कभी भी थक के हार के बैठना नहीं है, अपनी यात्रा को निरंतर रखना है, अनवरत रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी कविताओं का जो चंद मुक्तक सार सार सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, और मायूसी हमारी जो है खुशी में बदल जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से दीप्ति जी को जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ। दीप्ति जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना जो एजुकेशन विंग और आपने स्पार्क मीटिंग अटेंड किया तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वहाँ से आपने क्या सीखा।
2: जी, तो स्पार्क तो मैंने इस बार नहीं अटेंड करा, इससे पहले सितंबर में स्पार्क में आई वॉज अ स्पीकर और मीडिया विंग में आई वॉज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और इस बार एडुकेशन के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। और क्योंकि एडुकेशन मेरा फील्ड है और पहली बार स्पार्क से इनविटेशन आया था, फिर मुझे पता चला कि इतनी विंग है, तो मैं शिविका बहन से उस वक्त मिली थी, ग्लोबल समिट था उनका। बट आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ट्रेन का, रेलवे टिकट का रिजर्वेशन मिलना कितना डिफिकल्ट है। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मोस्ट वेलकम, और आधे घंटे में मुझे मैसेज आया कि मेरा टिकट कन्फर्म हो गया है। तो आई सेड नहीं, मैं अब अगली बार आऊँगी। तो अभी इनका जो हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा कि एक तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और जब यहाँ देखते हैं हर विषय पे जब चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है। मतलब हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन देखो तो वो एजुकेशन में ही है, और पूरी दुनिया ये बात जानती है, पर प्रयास जो है ना वो कुछ ही लोग करते हैं, उसमें से एक ब्रह्मा कुमारीज है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत में पुराने काल की अगर बात करें, जब सोने की चिड़िया माना जाता था भारत देश हमारा, तो उस वक्त दो ट्रेड है वो क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते थे। आप चाणक्य की कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें दो ट्रेड है जिसको क्रिमिनल ऑफेंस मानते थे, उसमें एक मेडिसिन था, दूसरा एजुकेशन था। आप ये दो चीज़ों को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको बेचोगे तो समाज में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, और आज हम वही देख रहे हैं। और हमारे नियम सीख करके यूके, यूएस, कनाडा अपने देशों में वो इम्प्लीमेंट करता है, हम क्योंकि गुलामी से गुजरे हैं हम थोड़ा पीछे हैं। तो जब बात हुई तो यहाँ सेक्रेटरी थे यहाँ UGC के, तो काफ़ी अच्छा लगा कि सिर्फ वहाँ बात नहीं होती है, वैसे भी व्यक्ति है जो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए समर्थ है। तो वो अनुभव काफ़ी अच्छा रहा कि जब उनसे बातें सुनी कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम होती है, और बात कॉमन थी कि भारत कुछ ही वर्षों में पूरे विश्व का एजुकेशन हब होना है।

0: लीडरशिप जो है वो भारत ने लेनी है, क्योंकि जो विचार जैसे G20 में अभी मैं गई तो एहसास यही हुआ कि जो हमारे एंशियंट एंसेस्टर्स थे उन्होंने जो प्रिजर्व किया है, जो इंटेलिजेंस हमारे देश में है वो आपको विश्व में वो चीज़ की कमी है जी, जो संस्कार हमारे बच्चों में ऑलरेडी है जेनेटिकली जो है
1: जी।
0: तो कितना पुरुषार्थ किया होगा हमारे पूर्वजों में, बस उसी को हम आगे बढ़ाएं तो भी काफ़ी, हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वी जस्ट नीड टू गो बैक टू आर रूट्स, हमें वो सीखना है समझना है। तो ये जो मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि साथ मिल करके काम करें, काम तो करना है सभी को पता है, पर मिल करके एकजुट होकर के कैसे काम करना, ये इंस्पिरेशन मैं इस बार यहाँ से लिख करके जा रही हूँ।
1: चलिए दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। एजुकेशन विंग का आपने प्रोग्राम अटेंड किया, वहाँ से आपको प्रेरणा मिली और जिस तरह से आप शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है और शिक्षा के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बताया, तो निश्चित तौर पे भारत जो है फिर से अपने पुराने संस्कारों के साथ जुड़ जाए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति वैसे भी पूरे विश्व के लिए एक हमेशा जो है सम्मान और सीखने जैसा रहा है। और आज फिर से हम लोग उसी कगार पर हैं, बस थोड़ी सी अचीवमेंट्स जो बाकी हैं उसे कर लेने के बाद मुझे लगता है भारत फिर से विश्व गुरु के नंबर वन विश्व में रहेगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूँगा डॉक्टर कविता किरण जी एक संदेश क्या सुनाना चाहेंगे आप?
2: संदेश तो दे ही चुकी हूँ, बस यही कि जो भी लोग रेडियो मधुबन के श्रोता हैं जितने
1: जी,
2: भी हैं
1: जी,
2: तो जो भी ब्रह्मा कुमारीज का हमारा संदेश है कि जीवन में पवित्र रहें, शुद्ध रहें और योग करें। सहज योग जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, योग की महिमा यहाँ हमें बताई जा रही है और
1: जी,
2: ये राजयोग है
1: जी।
2: तो कोई हठ योग नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े शारीरिक, तो राजयोग करें और जीवन को पवित्र रखें और जहाँ तक हो सके सभी विकारों से अपने आप को दूर रखें और सकारात्मक रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रेडियो मधुबन को सुनते रहें।
1: चलिए डॉक्टर कविता किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप जब भी आते हैं तो हमें जो है ज्ञान और अपने कविताओं से, अनुभव से जो है आप लाभान्वित करते हैं। आप इसी तरह इस मार्ग में आगे बढ़ते रहें और भी आगे आप अचीवमेंट्स आपको प्राप्त हो, ऐसी शुभ आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जाते जाते फिर से दीप्ति जी से भी एक संदेश सुन लेते हैं जी। कोई भी एक मैसेज आपका मन करे वो सुनाइए हमें।
0: कहने के लिए तो सारा कुछ और अब आदत ही हो गई है, जब तक स्पेसिफिक प्रश्न ना पूछा जाए आता नहीं। बट फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ आने पे लगता है कि घर जैसा ही माहौल है, तो क्योंकि घर के लोग हैं, मैं अपेक्षा आशा करती हूँ कि जो ऑडियंस भी है वही ऐसा फील करते हैं कि जैसे घर के ही लोग हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो एक एक ये होती है कि घर पे काफ़ी बार देखा जाता है कि हम फैमिली मेम्बर्स, जैसे यहाँ भी आए तो हम ये देख रहे थे कि घर के चार लोग आसानी से नहीं रह पाते हैं, यहाँ 400 लोग भी बड़े आसानी से रह जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शुरुआत जो है सुबह की कैसे करते हैं, जब सोने से पहले किस तरीके का हमारा रूटीन है। तो अपने घरों में भी अगर हम ये फॉलो करें, अगर हम पूरा टाइम डेडिकेट नहीं भी कर पाते, मतलब मेरे ख्याल से तो अपने लिए तो दिन का एक घंटा निकालना मुश्किल नहीं है, बट नो मैटर होम यू बिलीव इन, आप भगवान को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, आप नेचर को, प्रकृति को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, नहीं तो आप जिसको भी जो आप दिल से मानते हैं, सुबह उठ के थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट हो सके तो आधा घंटा वो परमात्मा को शुक्रिया अदा करने में गुजारे, क्योंकि हम काफ़ी लोग हैं जो सो जाते हैं फिर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं हमेशा के लिए, वो उठ भी नहीं पाते हैं। तो हमें दूसरे दिन, और खलील जिब्रान का ये वाक्य है कि पूरे दिन में हमने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए परमात्मा हमें दूसरे दिन उठाते हैं, वो निस्वार्थ भाव से हमें उठाते एक माँ की तरह, एक अपेक्षा करते कि अब मेरा बेटा सुधरेगा, अब मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा। तो उनकी जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने का प्रयत्न हम करें, ज़्यादा नहीं 5 मिनट से शुरुआत करें, तो बस यही मैं कहना चाहूँगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया और बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभवों को सुनकर। आप जिस तरह से अनाथ बच्चों को जो है अडॉप्ट करते हुए आप अपने जीवन में एक नई अनुभूति करते हुए लोगों को भी इस ओर अग्रसर कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उसका जो है ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा जो है सुकून देता है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको भी, आप भी अपने इस कार्य में आगे बढ़ते रहें और बहुत अच्छी तरह से आपको भी अचीवमेंट्स मिले ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने डॉक्टर कविता किरण जी से और दीप्ति जी से बात,
3: नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा।

0: करती हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार करती हैं। और दीप्ति जी जो है गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन पर काम करती हैं, जो लोग अनाथ हैं या फिर उन्हें उनके संपर्क में आते हैं तो वो उनके लिए एजुकेशन शिक्षा देने का प्रबंधन करती रहती हैं। तो आइए बात करते हैं, आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर बातें करेंगे। हेलो जी नमस्कार। चलिए आपका फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप वापस एक बार ट्राई कीजिएगा तो शायद फ़ोन लग जाए आपका। बातें कर रहे थे हम लोग नर्सिंग दिवस के बारे में, रोगी और नर्स के अनुपात में अंतर। दुनिया में अधिकांश देशों में आज भी जो ट्रेन्ड नर्स हैं उनकी भारी कमी चल रही है, जिसकी वजह से विकासशील देशों में ये कमी और अधिक ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर विकासशील देशों में उनकी वेतन क्षमता जो है कम हो जाती या वेतन नहीं दे पाती है कंपनीज या फिर हॉस्पिटल वाले, तो इस वजह से भी दिक्कतें आ जाती है। हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: सुरेश जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। ये भी दीप्ति जी और किरण जी ने बहुत अच्छी बात बताई, तो सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। संदेश भी बहुत अच्छा दिया कि हरदम मुस्कुराना है, अच्छी तरह से रहना है, बाबा की याद में रहना है, सुबह जल्दी उठना है और उठ के बाबा के याद में बैठ जाना है, तो बहुत अच्छा एक दिन की शुरुआत हो जाती है सर। बहुत अच्छा लगा, कल भी कार्यक्रम अच्छा
0: जी,
1: था
0: जी,
1: और परसों जो संडे के दिन आपने मदर डे पर जो कार्यक्रम बनाया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। तो गाने भी अच्छे अच्छे आपके जो भेजे थे बीच में बीच में, और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा माँ के बारे में। तो जैसे आप अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आते हैं तो हमको भी खुशी रहती है कि हम भी कुछ सुन के खुश हो जाते हैं, और कुछ न कुछ हमारी जो आपकी यादें हमारे पास रह जाती है। बहुत अच्छा लगा सर। मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, समय तो हो समाचार हफ्ता हो गया है, लेकिन बाद में एक अच्छा गाना सुना देना सारंगपुर वाले हनुमान जी का, ठीक है सर?
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका सुरेश जी, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मदर्स डे कल परसों के दिन शायद अच्छी तरह से मनाया था, और शिक्षाविद ने अपनी भावनाएं अपने विचार हमारे साथ साझा किया था। अब बात करते हैं हम लोग नाइट एंगल की, नर्सों में इनकी विशेष नाम आता है फॉरेंस नाइट एंगल। इन्होंने राष्ट्र की ऐसी सेवा की, और ख़ास करके जो देश सेवा में आर्मी लोग जख्मी हो जाते थे उनकी सेवा के लिए ख़ास इन्होंने ये नर्सिंग सेवा शुरू की थी, और इस वजह से उन्हें सम्मान नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हेलो जी नमस्कार।
2: हाँ नमस्ते, ओम शांति।
0: ओम शांति शगुना जी, बोलिए कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे, अभी ट्राई कर रहे थे, इतने समय से फोन नहीं लग रहा था, अभी सुरेश जी जुड़े तो आज मंगलवार है, मैं बोला वायु कार्यक्रम चल रहा है, लगता कि नहीं फोन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मंगलवार है, हनुमान जी के भजन सुना रहे हैं आपको।
2: हाँ, अभी जी भी जुड़े थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा सुनक दिया है हमको, पति थी जी उठ होके, तो आज मंगलवार है
0: जी,
2: तो मंगल का गाना हो जाए, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे।
0: ठीक है ठीक है, समाचारों के बाद हम लोग सुनाएंगे, ठीक है?
2: हाँ, समय हो तो सुना देना।
0: जी जी जी, ओम शांति, धन्यवाद, शुक्रिया। तेरा मंगल मेरा मंगल ये गीत आप सुनना चाहते हैं तो हम लोग समाचार के बाद जरूर सुनाएंगे। और आइए ये सुंदर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग बातें कर रहे थे खास नर्सिंग डे के बारे में, रोगी और नर्सेस के अनुपात में काफ़ी बड़ा अंतर है, और इस अंतर को पूरा करने के लिए जो है ज़्यादा में ज़्यादा नर्सिंग स्टेशंस या नर्सिंग के स्कूल्स भी ओपन होने चाहिए। तो आबू रोड में ऐसे नर्सिंग कॉलेज तो है ही है जहाँ पर नर्सिंग का पढ़ाई बच्चे पढ़ते हैं, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं विदेश चले जाते हैं, क्योंकि भारत में उनको उतना सम्मान या उतना वेतन नहीं मिलता, इस वजह से भी ये जो कमियां हैं वो बनी।

रहती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये दिन विशेष रूप से याद दिलाता है कि नर्स की सेवा बहुत अहम है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ही रहे, सुंदर सा प्रार्थना आप सुन रहे थे। चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का, अब सीधे समाचारों की तरफ आपको ले चलते हैं। समाचार डाउनलोड हो चुके हैं अब।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
9: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
10: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज जैसे कि 12 मई है, 12 मई विशेष हमें नर्सों की याद दिलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की याद दिलाती है। तो चलिए, आप सभी को नर्सिंग का इम्पोर्टेंस तो समझ गए होंगे। आइए इसके साथ ही मैं आपको कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य के बारे में बात करना चाहूँगा, जिनका आज जन्मदिन है। और इनका जन्म 12 मई 1875 को हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दार्शनिक रूप में काम करते थे और जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन भी किया। भट्टाचार्य जी का जन्म आज के दिन 1875 को श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल सेवा से बहल होकर कई कॉलेजों में व्याख्याता बने और 1930 में उन्होंने हुगली कॉलेज के स्थान पन्ना प्रधानाचार्य के पद पर कुलपति के रूप में अपना समय व्यतीत किया। अमलनेर के भारतीय दर्शन संस्थान के निदेशक के पद पर भी वे कुछ समय तक रहे और 1935 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के पंचम जॉर्ज प्रोफेसर का पद इनको दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने उच्च कोटि के व्यक्ति रहे जिन्हें ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ। दर्शन के विकास की अवधिया कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के दर्शन के विकास को तीन सुस्पष्ट अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रथम अवधि 1918, दूसरा अवधि 1925 और 32 तक, और तीसरा अवधि 1934 से 38 तक। अगर हम लोग बात करें तो पहला अवधि में जहाँ पर इन्होंने मुख्य रूप से वो निश्चित और अनिश्चितता के रूप में स्वरूप तथा इन दोनों के माध्यम से संबंध की सीमाएं समस्याएं थी। निश्चित वह है जिसका अनुभव इतना स्पष्ट हो कि कम से कम अनुभव के समय तो उसके किसी एक पक्ष पर या पूरे के बारे में किसी भी तरह का कोई संदेह विद्यमान ना हो। अनिश्चित ठीक उसके विपरीत होता है। इस अर्थ में इंद्र अनुभववादियों के लिए जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा प्राप्त है वो निश्चित है। इसी तरह के तर्क बुद्धिवादियों के लिए विषय का तार्किक संबंधात्मक पक्ष निश्चित बना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके जीवन में दिखाई देता और इनकी रचनाओं में भी ये दिखाई देता है। तो जब ही इन्होंने एक द प्लेस ऑफ इन्फिनिटी इन लॉजिक, विशेष रूप से अभी तक का जो विवरण दिया जाता है भट्टाचार्य के लेख में वो इस बात से आता है। और ये विचारधारा उनके दो लेखों में सम आस्पेक्ट ऑफ निगोशिएशन एंड द जैना थियोरी ऑफ अनिकेता वेदा, तो ये भी उनका एक किताब है, जैन दर्शन है, जिसमें इन्होंने उन चीज़ों को बताया गया है। तो ऐसे इन्होंने तीन पक्षों के बारे में बताया, संस्कार डॉक्ट्रिन ऑफ माया, करेक्शन ऑफ एरर एज ए लॉजिकल प्रोसेस, द फॉल्स एंड द सब्जेक्टिव। भट्टाचार्य ने विशेष मित्य संप्रदाय में निहित वास्तविक समस्याओं का विवरण किया है, जानकारी दिया है और उससे फिर कैसे सुधारा जाए, उसका दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, ज्ञान का दृष्टिकोण, उसमें उन्होंने बात की है। तो बहुत ही गहरा विषय और बहुत ही गहरी सोच के साथ उन्होंने अपने किताबों में जैन दर्शन को बताने का प्रयास किया है। तो चलिए, आप आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हनुमान जी का एक और सुंदर भजन, आपके नाम।

सीताराम सीताराम, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और हनुमान जन्मोत्सव पर ये गीत खास बनाया गया था। रघुवंशी जी का ये सुंदर प्रेजेंटेशन था जो आप सुन रहे थे अभी। अरे इसके बाद 9:32 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ और बातें कर रहे थे हम लोग कृष्णचंद्र जी के बारे में, भट्टाचार्य के बारे में, जिन्होंने अपनी आओ मानसिक विषय निष्ठता और अधिक मानसिक विनयता के पर बातें की। तीसरे अवधि में विशेष रूप से तथ्यों को उन्होंने देखा और उसके ऊपर उन्होंने काम किया और ब्रह्म के वैकल्पिक रूप के बारे में उन्होंने बातें की और फिर पर ब्रह्म के बारे में बातें लिखी और मूल संप्रदाय का पूर्ण विवेचन भट्टाचार्य जी ने अपने द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू में किया है। उन्होंने इस लेख में एक बार फिर से लिखा कि भावनाएं ज्ञान और संकल्प के क्या क्या कार्य है और उन्होंने भावनाओं को मुख्य बताया तथा ज्ञान और संकल्प को सेकेंडरी बताया है। तो निश्चित तौर पे हमारी शुद्ध भावनाएं ही काम करती हैं और उसके बाद हमारे ज्ञान और संकल्प सेकेंडरी हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने भट्टाचार्य जी ने इस बात का जिक्र किया है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं जय कृष्णमूर्ति के बारे में भी बात करना चाहूँगा और ये भी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने एक विश्व प्रदर्शी दर्शन तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल और परिपक्व लेखक थे। जैसे भट्टाचार्य उससे भी आगे ये निकल गए कृष्णमूर्ति और ये इतने पॉपुलर हो गए, लोग इनको सुनना पसंद करते थे, इनकी लिखी हुई बातों को पढ़ना पसंद करते थे। देश विदेश में तमिलनाडु से इनका जन्म हुआ और विदेश तक इन्होंने अपना लेखने के द्वारा परचम लहराया। तो आइए इनके बारे में बात करें तो एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल और परिपक्व लेखक थे। इन्होंने प्रवचनकर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त की और फिर धीरे धीरे मानसिक क्रांति, बुद्धि की प्रकृति, ध्यान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, इन विषयों आदि के बहुत ही गहरे विशेषज्ञ थे। अपनी मसीहाई छवि को बहुत ही अच्छा प्रबल रूप से अस्वीकृत करते हुए कृष्णमूर्ति ने एक बड़े और समृद्ध संगठन को भंग कर दिया जो उन्होंने को केंद्र में रखकर निर्मित किया गया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्य एक मार्ग रहित भूमि है और उस तक किसी भी औपचारिक धर्म दर्शन अथवा संप्रदाय के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता, ये उन्होंने बताया था। और फिर जय कृष्णमूर्ति का जन्म आज के दिन तमिलनाडु के छोटे से नगर निर्धन परिवार ब्राह्मण परिवार में 12 मई 1895 को हुआ था और अपने माता पिता की 8वीं संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कृष्णमूर्ति रखा गया। कृष्ण बी वासुदेव की 8वीं संतान थे। इनके पिता जिद नारायणिया ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते थे। उस समय जब कृष्णमूर्ति केवल 10 साल के थे तभी इनकी माता संजीवामा का निधन हो गया और बचपन से ही इन्होंने कुछ असाधारण जो विकल्प थी, थियोफेसिकल सोसाइटी के सदस्य पहले ही किसी विश्व गुरु के आगमन की भविष्यवाणी कर चुके थे। श्रीमती एनी बेसेंट और थियोसेफिकल सोसाइटी के मुख्य जय कृष्णमूर्ति में वो विशिष्ट लक्षण दिखाई दिए जो एक विश्व गुरु में होते हैं। एनी बेसेंट ने जय कृष्णमूर्ति की किशोर अवस्था में ही उन्हें गोद ले लिया और उनकी परवरिश पूर्णता धर्म और अध्यात्म से ओतप्रोत वातावरण में किया और थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्य को लगा कि जय कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्तित्व का धनी ही विश्व का शिक्षक बन सकता है। एनी बेसेंट ने भी इस विचार का समर्थन किया और कृष्णमूर्ति को अपने छोटे भाई की तरह मानने लगी और फिर 1912 में उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया और 1921 तक वे वहाँ रहे। इसके बाद विभिन्न देशों में थियोसोफिकल पर भाषण देने का क्रम चलता रहा और जय कृष्णमूर्ति ने सदैव ही इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक मनुष्य को मानसिक क्रांति की आवश्यकता है और उनका ये भी मत था कि इस तरह की क्रांति किन्हीं ब्रह्म कारक बाहर कारक के संभव नहीं है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक किसी भी प्रकार का हो, लेकिन बाहर से कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। और इनके विचार बड़े क्लियर थे, जन्म को उसी तरह मानते थे जिस तरह एटम बम का आविष्कार के होने को। कृष्णमूर्ति के विचारों को बहुत महत्व दिया उन्होंने।
अनेक बुद्धिजीवियों के लिए रहस्यमय व्यक्ति तो थे ही, साथ ही उनके कारण विश्व में जो बौद्धिक विस्फोटक हुआ, उनके अनेकों विचार को साहित्यकारों और राजनीतिकों को अपनी जद में ले लिया। उनके बाद विचारों का अंत होता है, उनके बाद सिर्फ विस्तार का ही बातें होती है। और 1927 में एनिमेशन ने उन्हें विश्व गुरु घोषित किया, किंतु दो वर्ष बाद ही कृष्णमूर्ति ने थियोसोफिकल विचारधारा से नाता तोड़कर अपने नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन आरंभ कर दिया। अब उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार देने शुरू किए। उनका कहना था कि व्यक्ति के पूर्ण रूपांतरण से ही विश्व से संघर्ष और पीड़ा को मिटाया जा सकता है। हम अंदर से अतीत का बोझ और भविष्य का भय हटा दें और अपने मस्तिष्क को मुख्य रखें। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग करते हुए कहा कि अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं। सच स्वयं तुम्हारे भीतर है। सच को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना होगा। कृष्णमूर्ति ने बड़ी ही पूर्ति और जीवितता से लगातार दुनिया को अनेक भागों में भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षा दी और लोगों से शिक्षा ली। पूरा जीवन एक शिक्षक छात्र के रूप में बिताया। मनुष्य के सर्वप्रथम मनुष्य होने से ही मुक्ति की शुरुआत होती है, किंतु आज का मानव हिंदू बौद्ध ईसाई मुस्लिम अमेरिकी आरबी में बैठा हुआ है। और कहा था कि संसार विनाश की राह पर आ चुका है और इसका हल तत्कथित धार्मिक और राजनीतियों के पास बिल्कुल नहीं है। तो ये उनका एक जीवन दर्शन के बारे में बताया, जय कृष्णमूर्ति के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ, और ये भी हनुमान जी का प्यारा भजन है आपके लिए। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, मोरे संकट के कटैया। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनील लोधी का कंपोजिशन आप सुन रहे थे। हनुमान जी का ये प्यारा भजन जो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा। आइए इसके साथ ही जीवन का लक्ष्य और जीवन की गहरी सोच जो है जय कृष्णमूर्ति कैसे देखते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार मदन जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ बस, और कार्य कर रहे हैं और बस सभी को याद कर रहे हैं और आसपास वालों के पास भी बातें कर रहे हैं और बस टाइम की देखते हुए घड़ियाल कह रही का फोन लगाना पड़ेगा। अच्छा मिनट बाकी हैं, 42 मिनट हो गए हैं, 8-9 बज के, तो अब आज जिनका भी जन्मदिन सभी को नमस्कार, ओम शांति। और आपको नमस्कार नवी किरण को और हमारे सभी शो को, और सुबह से सुने रात को सुने, अच्छा लगा, बहुत अच्छा से अच्छा लगते हैं। इतना रोज एक सुबह रोज सुनते इससे ज्यादा और भी अच्छे लगते हैं, जैसे सुनते ही जाए सुनते मजा आता है। एक दिन भी सुनते तो ना जाने कहाँ भटकने लग जाते हैं। तो आपको नमस्कार है और बस यही कहेंगे अंत में आज के इस समय को शुक्र मेरे मन को या तूने क्या इशारा बदलाए मौसम लगे जग प्यारा जग सारा शुक्र मेरे मन को तूने क्या इशारा बदलाए मौसम लगे जग प्यारा जग सारा शुक्र मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। नमस्कार सर, ओम शांति।
0: ओम शांति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ये थे मदन जी जो आप सभी को याद कर रहे थे और साथ ही साथ आपके लिए गाना भी उन्होंने गुनगुनाया। तो मैं बात कर रहा था जय कृष्णमूर्ति के बारे में। आज गंगा के बारे में उन्होंने लिखा है, गंगा बस उतनी नहीं है जो ऊपर ऊपर हमें नज़र आती है। गंगा तो पूरी की पूरी नदी है, शुरू से आखिर तक, जहाँ से उद्गम होता है और जहाँ से उसका अंत होता है, जहाँ सागर से एक हो जाती है वहाँ तक। सिर्फ सतह पर जो पानी दिख रहा है वही गंगा है, ये सोचना तो नासमझी होगी। ठीक इसी तरह से हमारे होने में भी कई चीज़ें शामिल है, और हमारी इर्ज इजादतें सूझे, हमारे अंदाज विश्वास, पूजा पाठ, मंत्र, ये सब के सब तो सतह पर ही है। इनकी हमें जांच परख करनी होगी और तब इनसे मुक्त हो जाना होगा। इन सब से सिर्फ उन एक या दो विचारों, एक या दो विविध विधानों से ही नहीं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो जी नमस्कार बाबू जी, आज महिपाल जी का जन्मदिन है। महिपाल जी का?
0: हाँ जी हाँ जी।
2: हाँ हाँ, आजा है चंद्रमा, आजा है आधी है रात, रहने जाए बात अधूरी, ये मेरा गाना अगर ये भी हो जाएगा तो मेरी भी बात पूरी हो जाएगी। मैं धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए गुड़ीलाल जी फिर से आप सभी को याद कर रहे थे, सरस्वती चंद्र का गीत को भी याद कर रहे थे। तो मैं आप सभी को ले चलता हूँ, जैसे हमने बातें की अभी, और बहुत ही एक गहरी सोच वाले व्यक्ति थे जय कृष्ण जी और जय कृष्णमूर्ति। आप सभी उनके लेक्चर सुने ही होंगे। और 17 फरवरी 1986 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने जीवन काल में शिक्षा, दर्शन, प्राथमिक और अंतिम मुक्ति, आज़ादी की खोज, ईश्वर क्या है, शिक्षा क्या है, ध्यान क्या है, इन गहरी चीज़ों पर विशेष रचनाएं उन्होंने लिखी। और अपने विशेष जादुई आवाज़ के लिए भी बहुत ही पॉपुलर थे। और इस महान व्यक्तित्व को 91 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1986 में इनका निधन हुआ कैलिफोर्निया में। कृष्णमूर्ति ने बड़ी ही पूर्ति और जीवटता से लगातार दुनिया के अनेकों भागों में भ्रमण किया, लोगों को शिक्षा दी, लोगों से शिक्षा ली और पूरा जीवन एक शिक्षक छात्र के रूप में बिताया। मनुष्य के सर्वप्रथम मनुष्य होने से ही मुक्ति की शुरुआत होती है, किंतु आज का मानव कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अरबी, अरबी, अमेरिकी ऐसा कहकर भटक गया है और कहा था कि संसार विनाश की राह पर आ चुका है। इसका हाल कथित धार्मिकता और राजनीति के पास बिल्कुल नहीं है, यानी हम जो धार्मिकता करते हैं और फिर हम जो राजनीतिक सिचुएशन को देख रहा है, विनाश के समय में ये चीज़ें कारगर नहीं होगी, ये उनका मानना था। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में कुछ ही पल में आपको बताते हैं। तब तक आपके लिए एक और सुंदर सा भजन सुनाते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मेरे बोले की कर दो नजर, बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आज है 12 मई। जी हाँ साथियों, 12 मई में भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी का जन्म आज के दिन हुआ 2002 में। पहला भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्मदिन भी आज है, 1989 में इनका जन्म हुआ था। और आज मुंद्री लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश से 17वीं लोकसभा के सांसद है। मार्गनी भारत 1982 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता है ऋषि सुनक, 1980 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश थे केजी बालकृष्णन, 1945 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे घनश्याम नायक, 1944 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे, विशेष इंटरनेशनल खिताब जीता जिन्होंने था। और नंदू नाटेकर, इनका जन्म आज के दिन 1933 को हुआ। प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, 1875 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। एक दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल और परिपक्व लेखक थे जे कृष्णमूर्ति, 1895 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता एक नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 1820 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और राजनीतिक और तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के पालनी स्वामी, 1954 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। बड़ौदा की महारानी थी सीता देवी महारानी, 1917 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज हुआ है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। कहते हैं चरित्र की सुगंध चारों ओर फैलती ही है, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर सिर में रूसी फराश हो जाए तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ। और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट खट्टा अचार, लेकिन कौन सा वाला वो आप आशियाना सुनिए तो जानेंगे। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहेगा। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ने की कोशिश करिएगा, खुशनुमा जीवन में अपनी राय भी व्यक्त करिएगा और आज के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश भी जरूर करिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को डायल कीजिए 100 अपने फोन से सजग रहिए सुरक्षित रहिए रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, चरित्र की सुगंध चारों ओर फैलती ही है। कैसे, तो आइए आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। फूलों को कभी इत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, वो अपनी सुगंध से स्वयं के साथ साथ समस्त प्रकृति को सुगंधित करते हैं। अपने अच्छे कार्यों के लिए किसी से प्रमाण पत्र की आशा मत रखो, आपके अच्छे कर्म ही स्वयं में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र है। इत्र की सुगंध तो केवल हवा की दिशा में बहती है, पर सद्गुणों की सुगंध सर्वत्र बहती है। चरित्र का इत्र ही सबसे प्रभावशाली और सबसे टिकाऊ इत्र है। आपकी प्रशंसा तब नहीं होती जब आप चाहते हैं, अपितु तब होती है जब आप अच्छे कर्म करते हैं। पानी पीने से प्यास स्वतः बुझती है, अन्न खाने से भूख स्वतः मिटती है और औषधि खाने से आरोग्यता की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अच्छे कर्म करने से जीवन में श्रेष्ठता आती है और समाज में आपका सम्मान भी स्वतः बढ़ जाता है। चरित्र की सुगंध तन को नहीं अपितु जीवन को महका देती है, इसीलिए कहा गया है चरित्र की सुगंध चारों ओर फैलती ही है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। अगर फरास या रूसी हो जाए सिर में तो क्या करना चाहिए, ये समस्याएं आजकल बढ़ती जा रही है। और कहते हैं ना, समस्या बढ़ती जा रही है और समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो और भी टू मच बढ़ जाएगी। इसलिए आप भले डॉक्टर को भी दिखाइए और घरेलू उपाय भी साथ ही साथ चालू रखिए, ठीक है। दवा और दुआ दोनों ही मिलकर के अच्छा काम करेंगे। तो देखिए, फरास रूसी सिर में क्यों होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। सिर में रूसी हो जाने पर फिर बाल झड़ने लगते हैं। रूसी ज़्यादातर बालों की भली प्रकार सफाई नहीं रख पाने की वजह से होती है, ये कारण है, ठीक है। बालों में से जैसे साबुन सही तरीके से नहीं धुल पाता है, या इस रोग में सिर पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे भूसी के समान कण बन जाते हैं। कंघी करते समय या सिर खुजलाते समय ये कण अलग अलग हो करके सारे ही बालों में रक्त बीज की भांति फैलने और पनपने लगते हैं। रूसी के कारण बहुत ज़्यादा खुजली मचती है। बार बार बेतहाशा खुजली करने पर सिर का वह स्थान गर्म हो जाता है। परिणाम यह रहता है कि उस स्थान के बाल पतले रूखे और कमज़ोर हो करके झड़ने लगते हैं। स्वस्थ बालों की सबसे बड़ी शत्रु होती है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, रूसी। रूसी न केवल बालों की जड़ों को कमजोर बनाती है बल्कि इससे त्वचा से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। हमारी त्वचा के अंदर कोशों के टूटने और नवीनीकरण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है। ये प्रक्रिया सिर की त्वचा में भी होती है और मृत कोष अपने आप जड़ जाते हैं। किंतु यदि ये मृत कोष बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने और झड़ने लगे तो ये एक रोग है, ठीक है। इसका उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। रूसी दो प्रकार की होती है, शुष्क जो खुजलाने पर झड़ती है और चिकनी जो खोपड़ी पर चिपकी रहती है। जब सिर में बहुत अधिक पपड़ी जम जाती है ना तो बालों की जड़ों में हवा नहीं पहुँच पाती और बाल कमज़ोर होकर के झड़ने लगते हैं। तो इतने सारे कारण हैं, और भी कारण बताना चाहूँगी। बहुत अधिक मात्रा में रूसी होने का कारण सिर में गंदगी का होना, रक्त संचार में गड़बड़ी, इन्फेक्शन और असंतुलित भोजन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बचाव कैसे करेंगे, देखिए ये एक छूत का रोग है, ठीक है। जिन लोगों को ये रोग है उनके कंघे, हेयर ब्रश, तौलिया, तकिया ये सब अलग रखना चाहिए। जब ये बीमारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो चेहरे पर भोह और बरौनियों में भी हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, नहाने के पानी में थोड़ा सा डिटोल डाल करके नहाइएगा, छूत का रोग नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला बचाव ये करना है, नहाने के पानी में थोड़ा सा डिटोल डाल करके नहाइएगा, इससे छूत का रोग नहीं होगा। अब अगला उपाय सुनिए, 4 चम्मच खसखस दूध में पीस करके बालों की जड़ों में लगाइए। आधे घंटे के बाद सिर धोइए। धोने में शैम्पू या साबुन काम में ले सकते हैं। सप्ताह में 2 बार इस तरह बाल धोइए, रूसी बालों से निकल जाएगी। तो क्या करना है, 4 चम्मच खसखस दूध में पीस करके बालों की जड़ों में लगाना है। आधे घंटे के बाद सिर धो लेना है, ठीक है। सप्ताह में 2 बार इस तरह धोइए तो रूसी बालों से निकल जाएगी। अगला उपाय भी बहुत अच्छा है, 4 बड़े चम्मच बेसन 1 बड़े गिलास पानी में घोल करके बालों पर मलिए, फिर सिर धो लीजिए। इससे फरास या रूसी होगी तो दूर हो जाएगी। 4 बड़े चम्मच बेसन 1 बड़े गिलास में पानी डाल करके उसको घोलिए और घोल करके बालों पर मलिए, फिर सिर धो लीजिए। इससे फरास या रूसी होगी तो मिट जाएगी। तीसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, रात को 1 कप छिलके सहित अरहर की दाल में पानी में भिगो दीजिए, अरहर की दाल। सुबह इसे पीस कर सिर में लगा दीजिए। आधा घंटे के बाद सिर धोइए, फिर गीले बालों में ही कंघी करिए, रूसी निकल जाएगी। रात को 1 कप छिलके सहित अरहर की दाल पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसके पीस करके सिर पर लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, उसके बाद सिर धो लीजिए, फिर गीले बालों में ही कंघी करिएगा, इससे रूसी निकल जाएगी। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, सप्ताह में 2 बार दही से बालों को धोइए, इससे फरास ठीक हो जाएगी। सप्ताह में 2 बार दही से बालों को धोएंगे तो इससे फरास दूर हो जाएगी।
तो ये सारे ही जो उपाय बताए हैं आपको लाजवाब है, आप आजमा सकते हैं। इनमें से देखें इतने सारे उपाय बताए, उनमें से एक करना है, ऐसे नहीं कि सारे के सारे आप करने लगो तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर बोलेंगे उषा दीदी ने कहा था ना इसलिए हमने किया। ये इतने जो उपाय बताए उसमें से एक को कंटिन्यू करना, ठीक है। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है? ये आज का प्रश्न है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या दे सकती है? तो प्रश्न का जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बहुत अच्छे हैं। अभी आपका लाइक आइकन चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बातें भी हो रही है, हमारे मित्र भी और जुड़ेंगे, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं होता कि दीदी आए नहीं आए, लेकिन आप आ गए हैं
0: जी।
1: हम आपसे बात भी कर रहे हैं, लोगों को भी बात करने का मौका मिल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का विषय मैं रख रही हूँ
1: जी,
0: आज का विषय है किसी से बदला लेने की सोच बिल्कुल मत रखिए। खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि मन बदलने के मौके तो मिलेंगे पर शब्द बदलने के नहीं। क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल सही दीदी बताया। देखो आज कई लोग बोल जाते हैं, ऐसे सबसे बोल देते हैं, तो बोलते जैसे बोलने लेकिन ये शब्द तक को लोग ध्यान याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हमने बोल दिया तो बोल दिया था तो उसको कुछ नहीं होगा, वो हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो समय आता है दीदी तो वो शब्द उसका उसको बहुत परेशान करता है, तो ऐसा शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग याद नहीं रखे, आप तो लोग याद रखते हैं। अब तो देखो दीदी कई सारी बातें भी याद रखते हैं, तो हमारे ये मेरी भाई ने हमने शादी को बुलाया, वो खाने के लिए बुलाया था, हमको क्यों नहीं बुलाया, और वो नहीं बुलाया, इसने नहीं बुलाया, तो सभी याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पैसे किसी को बोलना ही नहीं है, ये शब्द वो तीर का जो लगता है तो इसका तो खार उठ जाते हैं, लेकिन जो ये शब्द होता है दीदी वो जन्म तक रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे बोलना नहीं है, आज ऐसा नहीं है, पहले से दीदी ऐसा नहीं था, इस जमाने में तो लेट को कर देते थे
0: जी,
1: लेकिन आज नहीं करते कोई।
0: आजकल तो पूरा बदला, एक सुनाया है सामने वाले ने तो हम चार नहीं सुनाएंगे तब तक हम शांत नहीं रहेंगे।
1: पूरा बदला ले लेते हैं, जैसा नहीं पहले तो क्या था, तो समझ जाते थे चलो भाई वो बोल रहा है, उसको पता नहीं था बोलता है, कई बात नहीं
0: जी,
1: लेकिन तो पूरा बदला ले लेते
0: हैं।
1: बस हम तो ऐसा दीदी कहेंगे की बस किसी का ऐसा शब्द न बोले जो शब्द हमको लास्ट तक वो सुनना पड़े और याद रखे लोग
0: जी। अच्छा चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। कैसे हम छोटी छोटी बातों से तनाव में चले जाते हैं, घर में टेंशन उत्पन्न हो जाता है, आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है। चाहे भले विवाद ना हो तो मन को कचोटता है, तो भी टेंशन से तो है ना, खुशनुमा जीवन तो हमारा नहीं है, तो हम कैसे के हम छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर के अपने जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे, इसमें आज का विषय बहुत ही सुंदर रखा है। हमारे श्रोता बंधुओं से बात करना चाहूंगी। हेलो,
2: हेलो दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, भूरीलाल जी कैसे हैं आप?
2: अरे बात मतलब बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात, विषय भी अच्छा रखा है, और बात को सुन करके मजा ले रहा हूँ मैं।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है,
2: आपका विषय बहुत बढ़िया विषय है। तो ऐसा पका पका या दुनिया खाती है
0: जी,
2: मार के खाने में और पका हुआ उसको लगा करके पका के खाने में समस्या आती है
0: जी।
2: पड़ा या पका पकाया खाने में कोई समस्या नहीं आती, इसलिए अपन लाड़ी पे लाते वो मिल जाता है, और उसको पकाने में बहुत परेशानी आती है, इसलिए कभी भी बोली निकालनी है, वाणी निकालनी है तो मीठी वाणी निकालनी है। अच्छा, उसके बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए
0: जी,
2: कभी भी बदले की भावना रखोगे तो अपने साथ में बुरा बर्ताव होगा
0: जी।
2: इस बुरे बर्ताव को बचाने के लिए अपन को अच्छी भावना, अच्छी बातें करते से अच्छा लगता है
0: जी,
2: हमारा भावना बहन जी
0: जी।
2: तो इसलिए हम ये चाहते हैं कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करना, उसकी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, बदला रखेंगे तो बदला अपने को ज्यादा डबल मिलेगा। निवेदन है कि कभी भी किसी के साथ में बुरा बर्ताव, बुरा बदले की भावना नहीं रखनी है
0: जी।
2: और क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया, आप सभी की दुआ
2: हमारी क्लास है। आज के अंदर तो हम जब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक हमारे दिल के अंदर शांति नहीं मिलती है
0: जी।
2: शांति पाने के लिए एक दूसरे की वाणी सुनने के लिए हमारे को संतुष्टि मिल जाती है
0: जी अच्छा, और आज का प्रश्न मैं दोहरा रही हूँ, आज के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। एक शिक्षित नारी, ठीक है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है?
2: शिक्षा होगा, नारी आगे बढ़ती रहेगी और बाद भी आएगी, परिवार भी आगे बढ़ता रहेगा।
0: अच्छा,
2: यदि शिक्षा नहीं है तो ज्ञान ज्ञान विज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, न बच्चे पढ़ेंगे न पढ़ेंगे, न आगे विज्ञान होगा, न काम कलंग काम काज होगा, न घर के अंदर रक्षा होगी, न कुछ नहीं होगा। इसलिए उसके साथ में शिक्षा हो तो बढ़िया वातावरण मिलेगा, बढ़िया काम होगा। ये मेरे निवेदन है सर
0: जी। चलिए देखते हैं बोरीलाल जी, आपका जवाब सही है गलत है, आप कार्यक्रम सुनिए, कार्यक्रम के अंत में जवाब देंगे, ठीक है?
2: ठीक है सर, बहुत नमस्कार।
0: हाँ जी, नमस्कार,
2: प्यार भरा नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से, आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। किसी से बदला लेने की सोच बिल्कुल मत रखिए, खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि मन बदलने के मौके तो मिलेंगे पर शब्द बदलने के नहीं। क्या कहेंगे आप, बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी आप मतलब व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं जवाब के तौर पर, अगर जुड़ नहीं पा रहे हैं तो बाकी कोशिश करिएगा जुड़ने की। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप मैसेज के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट और बात कर सकते हैं, खुशनुमा जीवन की बातें कर सकते हैं, आज के विषय को स्पष्ट कर सकते हैं, आज के प्रश्न का आप जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है और विषय भी बहुत सुंदर है कि हम छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो भाई कैसे कह दिया, अब तो उसका बदला लेना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ जी भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
3: ट्रीटमेंट चालू है और आपको प्रोग्राम सुन के ये कर रहा हूँ, बाकी मैं बोला मैं उल्टा बैंक जी को राम राम सब बोल रहा
0: हूँ। जी जी जी,
3: तो मधुबन भाइयों को और सबको मेरा प्रणाम
0: जी। आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे?
3: कौन सा विषय है?
0: आज का विषय है किसी ने कुछ कह दिया, जैसे कुछ अपशब्द बोल दिए हैं, तो हम जब तक उसको चार गाली वापस जवाब नहीं दे देते, चार अपशब्द नहीं बोलेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो ये बदले की भावना अच्छी है या खराब, क्या कहेंगे आप?
3: नहीं, ये बदले की भावना बहुत गलत है और किसी से ये गैर भावना रखनी बोले तो गलत है कि आगे वाला बोले और मतलब विपरीत बोले तो भी उससे क्या करना है, उसको गाली गलौज नहीं करना, अपने को दुख बैठने में पड़ जाए, यदि फिर बाद में अपन भी वो भी आवेश में आवे और अपन भी आवेश में आवे तो झगड़े का मूल ज्यादा ही बढ़ जाता है, मतलब नहीं है कोई उससे। इससे तो अच्छा बेहतर है कि भाई ये टाइम ही जो अभी खराब है वो हिसाब से चलो कि भाई का आगे वाला तो बोल रहा है तो लेट गो करके चुपचाप बैठ जाओ
0: जी,
3: और फिर बाद में उनका निर्णय साफ होता है, कोई बस ये होता है और क्या
0: जी,
3: और इतना ही बोलता हूँ।
0: अच्छा, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: कौन सा प्रश्न है?
0: आज का प्रश्न है एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है।
3: अरे बहुत बढ़िया, ये तो आपने सुना है
0: जी,
3: लड़की मैंने पढ़ाया ये फोन करके
0: जी
3: सर्विस पे लगाया,
0: क्या बात
3: और
0: है।
3: और वो आज मैं बीमार हूँ तो उसका ससुराल से भी संभालती है और मेरे को भी आके वो रोज आके मेरे को ट्रीटमेंट करके जाते हैं, नर्सिंग होम में।
0: अच्छा,
3: लेकिन वो मेरे को भी आप ट्रीटमेंट करके जाती है, मेरी आत्मा शांत होती है कि मेरे बच्ची ने पढ़ाया और लिखाया
0: जी,
3: दोनों घर का वो संभालती है,
0: बहुत
3: घर का भी उनके सास ससुर है उनकी भी सेवा करती है और मेरी भी सेवा करती है, मतलब एक शिक्षित नारी बोले तो दो घर संभालती है
0: जी,
3: दोनों को घरों का भविष्य उजार करती है।
0: बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है संस्कारिक होती है, दोनों तरफ संभालती है, बहुत बढ़िया जी। चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम के अंत में इसका जवाब देने की, ठीक है? हाँ जी, आभार आपका। तो ये थे भुराराम जी ओर से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया और आज वो दो दो परिवार को संभाल रही है, बहुत बड़ी बात होती है। बेटियाँ कभी अपने माता पिता को भी नहीं भूलती और ससुराल के फर्ज को भी हमेशा याद रखती है, उनका भी बड़े प्यार से सेवा करते हैं और ऐसी नारी शक्ति को मैं दिल से सलाम करती हूँ। आइए अब यहाँ पर एक अल्पविराम लेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज का विषय बहुत ही सुंदर है, खुशनुमा जीवन का। किसी से बदला लेने की सोच बिल्कुल मत रखिए, खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि मन बदलने के मौके तो मिलेंगे पर शब्द बदलने के नहीं। क्या कहेंगे आप? तो आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या दे सकती है, यह आज का प्रश्न है। तो प्रश्न और विषय दोनों में ही आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि बात चल रही थी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़े, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है इस विषय को कि भाई बदला लेने की क्यों सोचते हो। किसी ने कुछ गाली दे दी या कुछ अपशब्द बोल दिया तो ऐसे तीर की तरह चुप जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस चार सुना दो, सुना देते खरी खोटी, उसके बावजूद भी चैन नहीं मिलता। उसने मुझे कैसे सुना दिया? अरे भाई, आपने चार सुना दिया, आप तो शांति से बैठ जाइए। आपने सुना है तो उसके भी तो दिल पर लगी होगी, लेकिन वो भले लगी, शुरुआत जिसने की होती ना, उसको लोग छोड़ते नहीं। फिर उसको कितना ही सुनना पड़ता है, उसके बावजूद भी रिश्ते में दरार पड़ जाती है और यही कहते कि आपने हमें ये सुनाया। अगर वो सामने वाला स्पष्ट करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है कि भाई आपने भी तो सुनाया, तो बोले हमने सुनाया, वो तो आपका पलटवार किया हमने, लेकिन आपने हमें बोला ही कैसे? ऐसा हो रहा है, कहते हैं ना, बहुत सारे कारण है रिश्ते टूटने में, परिवार में दरार आने के बहुत सारे कारण है। उसमें से एक कारण ये भी है, सहन शक्ति नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। कभी कभी इंसान मजाक के मूड में भी बोल देता है, लेकिन मजाक भी कहते हैं ना, सभ्यता से की जाती है। अब शब्द अगर उसको मजाक के रूप में माना जाए तब तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी मजाक मजाक में ही कोई ऐसा बोल देता है कि सामने वाले का सीधा दिल में चला जाता है, तो भी दूरियां बढ़ जाती है। तो ऐसी मजाक करनी ही क्यों? क्या मजाक करने के लिए हमारे पास अच्छे शब्द नहीं है? लेकिन ऐसा भी होता है, बहुत सारे कारण है। फिर गुस्सा आता है तब तो बात ही मत पूछिए, मुंह से डायरेक्ट ही अपशब्दों की बौछार निकलेगी।

बॉक्स में नहीं होता है, पलटवार हर कोई फटाफट कर लेता है। लेकिन बात है कि भाई शुरुआत हमें ऐसी करनी ही नहीं है कि सामने वाले का दिल दुखे। कहते हैं ना कि मन खराब होता है तो भी कुछ के कुछ निकलते हैं और सामने वाले को कितना ही कुछ सुना देते हैं। फिर मन तो थोड़ी देर के लिए खराब हुआ है, उसके बाद बदल भी जाता है मन, अच्छा भी हो जाता है। लेकिन क्या रिश्तों में मधुरता हो पाती है? रिश्ते सुधर पाते हैं? रिश्ते अच्छे हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सामने वाले ने उस बात को पकड़ ली कि आपने ऐसा कहा, अब हमें आपसे रिश्ता नहीं रखना है। कितने ही अच्छे अच्छे रिश्ते इस तरह टूट जाते हैं, जिनके हमें रात दिन ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हमें उनके बिना काम ही नहीं चलता है, फिर भी अगर इस तरह की बातें हो जाती है तो रिश्तों में दूरियां आ जाती है। फिर कितने ही काम हमारे रुक जाते हैं, हम कितनी मनुहार करते हैं, कितना ही मनाते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब आ भी जाइए, मान लीजिए, माफ़ कर दीजिए, अब आइए। लेकिन नहीं, आपने हमें ऐसा कहा ही क्यों? कहा है तो बस अब आप भुगतो, हम नहीं आएंगे, हमारे में ताकत नहीं ये सब कुछ सुनने की। इस तरह की बातें होती है, विवाद बढ़ता है और रिश्तों में दरार पड़ जाती। वैसे आजकल सीमित रिश्ते होते जा रहे हैं, पहले तो मामा मौसी सब होते, अब आजकल तो एक बेटा एक बेटी या दो बेटे या दो बेटियां, है ना? तो कहाँ परिवार बड़ा हुआ है? आने वाली पीढ़ी के सामने न मौसी है, न चचेरे भाई बहन है, कुछ भी नहीं है ना। तो वैसे ही परिवार सीमित होते जा रहे, उसमें भी अगर हम शब्दों का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम अपने पर संयम नहीं रखेंगे तो और भी रिश्ते टूटेंगे। भाई कौन सुनेगा? हर कुछ सुनाएंगे, कौन सुनेगा? आजकल तो ऐसा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे हैं लोग। मतलब एक आपने सुनाया तो चार में सुनाऊंगी, तभी मैं शांति से बैठूंगी, चार सुनाने के बाद भी दोष आपके ऊपर ही मढ़ूंगी कि आपने मुझे ऐसा कहा, कहा ही क्यों? इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु। कभी कभी मन खराब हो जाता है, इंसान है, स्वाभाविक है, हो जाता है। उस समय आप शांति से बैठ करके कोई अच्छे आध्यात्मिक किताबें पढ़िए, या कोई अच्छी चीज़ देखिए टीवी में पॉजिटिव, या फिर कोई आपका जिसके भी आपके हॉबी हो, कोई रेसिपी बनाने की या कोई कलात्मक चीज़ें बनाने की, बहुत जने आर्ट बनाने में माहिर होते हैं, कोई क्या बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, किसी को गेम्स में रुचि होती है, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को उधर लगा लीजिए मन खराब है तो। लेकिन किसी से उलझिए मत, किसी का मन खराब है और किसी ने आ करके, बच्चे भी देखिए, बच्चों ने भी आके कह दिया मम्मी भूख लगी है, पापा ये चीज़ चाहिए, जिसका मन खराब है 10 बात बच्चों को सुना देंगे, बच्चे सहम करके चले जाएंगे, फिर दूसरी बार वो खुल करके सामने नहीं आएंगे, पता नहीं किस मूड में होंगे मम्मी पापा, हमें बात नहीं करनी। तो आपने तो एक बार सुना दिया, एक बार आपका मन खराब हो गया, लेकिन जिंदगी भर वो दहशत फैली रहती है, ठीक है? इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अरे हमने तो इतना सा कह दिया, क्या फ़र्क पड़ गया, अपना समझ के कहा। अरे भाई अपना समझ करके अच्छी बातें भी तो कह सकते थे। ऐसा होता है कितनी बार कि अरे हमने तो अपना समझा ना, इसलिए हमने उनको ऐसा बोल दिया। भाई ऐसा क्यों बोला? अपना समझे हो कोई बात नहीं, आपके अपने ही हैं, लेकिन अच्छा भी तो बोल सकते हैं, नेगेटिव ही क्यों? गलती हर एक से होती है, प्यार से टेकल करिए। परिवार में एक छोटा बच्चा है, वो भी प्यार की आशा रखता है, प्यार से कोई भी बुलाएगा परायों के पास भी चला जाएगा, धुतकार करके बुलाएगा, कड़कपन से बुलाएगा तो अपनों से भी बच्चे दूर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ हर एक के लिए बात है, चाहे दोस्ती हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी पति पत्नी हो, चाहे तेरानी जेठानी हो, घर परिवार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कोई गलती है सामने वाले से भी हुई है तो भी आप प्यार से उस बात को रखिए। मन खराब है तो स्वयं को अन्य कार्य में अपनी रुचि है उसमें व्यस्त रखिए। उस समय बोलने का मूड नहीं है तो मत बोलिए, और बोलना है तो अच्छे शब्दों में ही बात करिए, यही सभ्य इंसान की पहचान है, ठीक है? बाकी कहते हैं ना कि खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाएंगे, उसे हमें तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हो तोड़ ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप गिर जाते हैं। ऐसे ही बदला नहीं लेना है कि उसने मुझे ये कहा है तो देखो, कोई कोई तो ऐसे उस समय तो सुन लेते हैं, फिर चार जनों के सामने ऐसा सुनाते कि सामने वाले की बोलती बंद। ऐसा भी हमें नहीं करना है। कौन सा

मारना है, क्या जीतना है हमें? सभी के दिलों को जीतना है, न कि हमें कुछ और जीतना है। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा, संभल के रहिएगा। मन खराब है तो मन खराब मत कीजिए, है तो अपने आप को अपनी रुचि जिसमें रुचि है उसमें अपने आप को व्यस्त कर दीजिए। लेकिन सामने कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या बोलने जा रहे हैं। यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते, इस विषय को यही समाप्त करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत ही फ़ोन कॉल्स करिएगा 94-14-15-14-15 पर। बाकी आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या दे सकती है? यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्प विराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आइए पधारिए आशियाना के किचन में। आज आपको सिखाएंगे लसोड़े का भरवा अचार। लसोड़ा जिसको राजस्थान में गुंदा बोला जाता है। अभी गुंदे का सीजन चल रहा है, केरी का भी सीजन चल रहा है, तो गुंदा केरी का भरवा अचार आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट अचार है, नई रेसिपी है, आप लिख सकते हैं ठीक है और बना सकते हैं। बनाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और साल भर के लिए भी आप टिका करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। आप ले लीजिए कच्ची केरी देसी, ठीक है, फिर आप लीजिए गुंदा। जैसे आप 250 ग्राम माने पाव भर गुंदा ले रहे हैं तो एक कच्ची केरी ले लीजिए मीडियम साइज की। ठीक है, अब आप लीजिएगा जो अचार में डालने के सरसों के दाने आते हैं उसकी दाल। ठीक है, वो अचार की स्पेशल दाल होती है, दालिया भी बोलते हैं इसको, सरसों के दाल। फिर आप लीजिए सौंफ, मेथी, हींग लीजिएगा, धनिया पाउडर लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और सरसों का तेल। ये हो गई सामग्री जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आप ले लीजिए गुंदा, केरी, फिर आप लीजिएगा सौंफ, सौंफ जिसको वरियाली कहते हैं गुजराती में, फिर आप लीजिएगा राई की दाल, सरसों की दाल तो नहीं बोलते उसको, मोटी राई होती ना राइडा, उसकी दाल, उसको सरसों का दाना भी कहते हैं, तो दाल आती है, भले आप राई की दाल बोलेंगे तो भी मिल जाएगी आपको मार्केट से। ठीक है, तो वो दाल लेनी है, अगर नहीं है तो फिर मोटी वाली राई लीजिए, उसको अतकचरा कूटना है। ठीक है, तो इस तरह लीजिएगा। फिर मेथी लीजिएगा, हींग पाउडर लेना है, लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा और नमक लेना है स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लीजिएगा और सरसों का तेल लेना है। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, गुंदा केरी जो भी लिया है अच्छी तरह धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद आप गुंदे के बीज को निकालिएगा, जहाँ गुंदे का मुंह होता है ना, बीट होता है, उस बीट को निकालना। उसके बाद चाकू से धीरे से अंदर से गुठली निकाल देना, तो सारे गुंदे के धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके बीट की तरफ से बीज निकालना है। गुंदा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, भरवा अचार बना रहे हैं तो तोड़ना नहीं है, ठीक है, और बीज आपको निकालना है और केरी के छिलके उतार करके इसको कद्दूकस कर लीजिए। अब कद्दूकस की हुई केरी आप तैयार रखिएगा। इधर जो मेथी ली है, सौंफ लिया है, इनको आप थोड़ा सा गर्म करिए, ठीक है, और जो दाल ली है राई की, हल्का सा ही एक दो पलटी मारनी है बस, और गैस बंद कर देना है। ठीक है, अब आप मेथी, सौंफ, इन सबको अतकचरा कूट लीजिए। अगर राई की दाल नहीं मिली तो राई को भी इसके साथ अतकचरा कूट लेना है। फिर ये के जो कद्दूकस के कर रखी है ना केरी, इसमें डाल दीजिए इन मसालों को जो आपने अतकचरा किया है, इन मसालों को डालिए। साथ ही साथ आप धनिया पाउडर डाल दीजिए थोड़ा। अब आप डालिए लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और हींग, ये सब डाल करके अच्छी तरह स्वाद के अनुसार नमक डाल करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। कद्दूकस की हुई केरी के अंदर ये सारे मसाले मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद अब गुंदा के बीज निकल चुके हैं तो इन मसालों को गुंदा में भर दीजिए। ठीक है, एक एक गुंदा में आपको सारा मसाला भर के ख़त्म करना है। और ये जब सारे गुंदे आप भर लो, उसके बाद तेल को गर्म करिए। गर्म हो जाने पर थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा हींग पाउडर तेल में डाल दीजिए और भी इसको अच्छी तरह ठंडा होने दीजिए। और ये जो गुंदा आपने मसाला भरा है, इसको आप एक कांच के बर्तन में रख दीजिए और जब ये तेल ठंडा हो जाए तो ऊपर से डाल दीजिए और अब इसको आप बंद करके रख दीजिए। 2 दिन इसको गलने दीजिए, उसके बाद आप इस अचार को खा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी आप टेम्परेरी तो बना ही दीजिए, है ना, टेम्परेरी तरह तरह के अचार का आप आनंद ले सकते हैं बना बना करके। जब आपको लगता है कि अब साल भर का बनाना है
तो गुंदा थोड़ा सा बड़े वाले लेना और केरी थोड़ी और आप अगर जून महीने में लेंगे तो अच्छी बात है। कहते हैं ना एक बारिश हो जाए उसके बाद वो कच्ची केरी का आप अचार डालेंगे तो वो 12 महीना टिकेगा और अचार भी स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह लसोड़े का भरवा अचार तैयार हो चुका है। केरी गुंदा भी कहते हैं, लसोड़े को गुंदा कहा जाता है राजस्थान में। तो केरी गुंदे का भरवा अचार बनाया है। विधि में फटाफट दोहरा रही हूँ, फिर से ध्यान से सुन करके अच्छी तरह बनाइएगा। आप क्या करेंगे, केरी की धुलाई करके छिलके निकाल करके इसको कद्दूकस करके रख दीजिए। गुंदे की धुलाई करके जो बीट है, बीट की तरफ आप बीट निकाल करके वहाँ चक्कू से धीरे से खड्डा करके बीज निकाल दीजिए। गुंदे को तोड़ना नहीं है, ठीक है, दो टुकड़े नहीं करना है। और अब ये कद्दूकस केरी करके रख रखी है, इसमें आप नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालिए और सौंफ, राई की दाल और मेथी, इनको हल्का सा सेक करके दरदरा पीस करके डाल दीजिए इसमें, और धनिया पाउडर ये सब डाल करके मसाले को अच्छी तरह मिक्स करिए। और मसाला में देखिए ना, तो तेल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये कद्दूकस की हुई केरी इसमें पानी छूटता है ना, गीली होती है, इसी में ये मसाला मिक्स हो जाएगा। फिर इस मसाले को आप गुंदे के अचार, जो गुंदे के बीट आपने निकाला है, बीट तोड़ करके बीज अंदर से गुठली निकाली है, अब इसमें भरिए, एक एक गुंदे में आप भरिए ये मसाला, और फिर एक कांच के बर्तन में रख दीजिए सारे गुंदे भर जाए तो। और फिर तेल गरम करिए, सरसों का तेल लेना है। तेल गरम हो जाए तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर हींग पाउडर डालिए, फिर और अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो आपने कांच के जार में जो गुंदा रख रखा है इसमें तेल डाल दीजिए। बस आप ये ध्यान रखिएगा पहले आधा तेल डालना है, ठीक है, जितना आपने गुंदा भर के रखा है उससे आधा तेल डाल करके एयर टाइट ढक्कन लगा करके आप रख दीजिए। दूसरे दिन देखिए अचार थोड़ा नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि तेल की थोड़ी सी कमी है तो थोड़ा सा और ऊपर से डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, हमारा अचार अंदर डूबना चाहिए, तेल ऊपर रहना चाहिए, तो ये मसाला, ये अचार टिकेगा, नहीं तो 2-4 दिन में ही फूग आ जाएगी, ठीक है। और एक गुंदे के फूग आई तो पूरा अचार ही बिगड़ जाएगा धीरे धीरे, इसलिए तेल आप तरमा रखिए। तो तुरंत ही आपको इतना तेल नहीं डालना है क्योंकि अचार बनाते हैं ना, ये बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। आप रात भर छोड़ देंगे तो ये बैठ जाएगा, फिर देखिए आप दूसरे दिन देखिएगा तेल ऊपर आ गया, फिर आपको लगेगा अभी भी गुंदे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा तेल ऊपर से और डाल दीजिए, ठीक है। तो कोई भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं, अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद ही आप इस अचार का आनंद लीजिएगा। 2 दिन रखे रहिए, 2 दिन के बाद आप खा सकते हैं इस अचार को, ठीक है। तो चलिए, स्वादिष्ट सुंदर आपको केरी गुंदे का अचार सिखाया है। अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे पुनः, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर सिर में फरास हो जाए, रूसी हो जाए तो क्या करना चाहिए, किस कारण से होता है, कैसे उसको ठीक करना, ये सब कुछ आपने जाना है। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में जो आपको केरी गुंदे का भरवा अचार सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है? बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और आज का प्रश्न तो भाई बहुत ही सुंदर था। आज का प्रश्न था, एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है? हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं ने जवाब दिया है, इसमें से नाम सुनाना चाहूँगी। नीलम राठी माउंट आबू से, आपने कहा है शिक्षित समाज, बिल्कुल सही है। श्यामली बहन रेडियो मधुबन के संगीत टीचर है, आपने भी निर्भयता कहा है। स्वर्णलता जी आप भी आरजे है रेडियो मधुबन के, आपने भी सही जवाब दिया है, निर्भयता और एक संस्कारी अच्छा सुदृढ़ समाज। फिर अलका काबरा कपासन से, आपका भी जवाब सही है। सुरेश भाई जोटाना से, आपका जवाब भी सही है। भूरीलाल जी मानपुर से, आपने जवाब नहीं दिया है, नहीं आपने भी दिया, परिवार आगे बढ़ेगा, मतलब एक नारी शिक्षित होगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। फिर भूराराम जी आपका भी जवाब सही है। तो वेदांत उदयपुर रहता है, रेडियो का आरजे रहा हुआ है, तो आपका भी जवाब सही है। तो आप सभी ने सही जवाब दिया है, संस्कार, जागरूकता और उज्ज्वल भविष्य। तो इसमें ये सब आ जाता है, ठीक है? एक शिक्षित नारी होगी तो वो संस्कारिक होगी, अच्छे उसके अच्छे संस्कार पूरे परिवार पर, बच्चों पर, समाज पर पड़ेगा। जागरूकता, खुद जागरूक है इसलिए सभी को जागरूक करेगी, और भविष्य तो उज्ज्वल है ही, और जो भी उनके संपर्क में आएंगे, जो बच्चे भी जन्म लेंगे वो भी शिक्षित होंगे। इसलिए बहुत ही सुंदर शॉर्ट में जवाब है, संस्कार, जागरूकता, उज्ज्वल भविष्य। फिर किसी ने निर्भयता भी कहा है, सही जवाब है। और आप विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से, और भूराराम जी और से, भूरीलाल जी मानपुर से, आप तीनों के लिए भी क्योंकि आप विषय में जुड़े हैं। बाकी सभी ने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जवाब दिया है, ठीक है? और आज का मीठा मोती है, अपने मार्ग में आने वाले किसी भी विघ्न से घबराए नहीं, हर विघ्न को उन्नति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी समझे। अब मैं आपको मदर्स डे पर माँ पर प्यारी सी कविता सुनाऊंगी। परसों मदर्स डे था, और वो कहते ना एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता है, माँ का तो आप सम्मान हर रोज करिए, एक दिन मना करके भूल नहीं जाना है माँ को, ठीक है? इसलिए माँ पर प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। माँ ममता की छाव है, माँ ममता की छाव है, जीवन की वो ठाव है, दुख में देती हिम्मत हमको, खुशियों की वो नाव है, दुख में देती हिम्मत हमको, खुशियों की वो नाव है। थक जाए जब ये दुनिया सारी, माँ फिर भी मुस्कुराती है, अपने आंचल की खुशबू से हर पीड़ा दूर भगाती है, अपने आंचल की खुशबू से हर पीड़ा दूर भगाती है। माँ से सुंदर रिश्ता कोई इस जग में हो नहीं सकता, माँ के चरणों से बढ़कर कोई मंदिर हो नहीं सकता, माँ से सुंदर रिश्ता कोई इस जग में हो नहीं सकता, माँ के चरणों से बढ़कर कोई मंदिर हो नहीं सकता। और अंत में यही कहना चाहूंगी, माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है, माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है, खुद भूखी रहकर भी औलाद की झोली खुशियों से भर देती है, खुद भूखी रहकर भी औलाद की झोली खुशियों से भर देती है।

0: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था फिर क्वेश्चन का ही पता नहीं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि इतनी सारी चीजें होती हैं, समझ में ही नहीं आता कि भाई सोल्यूशन क्या है, और कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, और सोल्यूशन सोचते सोचते हम किस बारे में सोच रहे थे वो ही भूल जाते हैं। बाप रे, इतनी सारी चीजें चल रही होती है जिंदगी में, इतनी सारी चीजें चल रही होती है दिमाग में, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा इजी करें, लाइफ को थोड़ा आसान बनाए लव यू जिंदगी के साथ। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले कल्पना जी का स्वागत करते हैं, ग्लोबल अस्पताल से जुड़े हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी है और स्पिरिचुअल काउंसलर भी है। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी।
0: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि रेडियो के जाने माने आरजे भी है और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। लव्यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आप सभी से फिर रूबरू हूँ, क्या खुशी हो रही है।
0: जी बिल्कुल, और जितनी लाइफ आसान होती है उतनी खुशी डबल होती जाती है, ये तो अब हम समझ गए हैं। और पिछले ही एपिसोड में हम बात कर रहे थे अपनी सोच की, थॉट्स की, जिनकी स्पीड बड़ी तेज होती है, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा कई बार। और हमें कल्पना जी बता रहे थे कि चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, तो मैं सबसे पहले यही एक बार शुरुआत में मैं जानना चाहूंगी दीदी आपसे कि जो आपने चार प्रकार के थॉट्स बताए थे उसकी अवेयरनेस किस तरह से हम बढ़ाएं या सेग्रीगेशन कैसे बेटर कर पाए, अगर उस बारे में आप कुछ बताएं।
1: सबसे पहले श्रोताओं को एक काम है कि अपने विचारों में से पांच ऐसे विचार बताएं जो उनको लगता है कि पॉजिटिव है। हमें पता है कि श्रोता सुन रहे हैं और वो जरूर अपने आप को ये काम देंगे कि सोचे कि कौन से पॉजिटिव विचार मेरे मन में आते हैं। तो जब भी हम सोचते हैं तो हमारे सोच के तीन ही दायरे होते हैं, दायरे मतलब कि स्थान होते हैं, वो मर्यादा होती है। तो हमारी सोच पहले अपने लिए चलती है, मैं मेरे लिए सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे लिए क्या सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे नेचर पसंद है, मैं बहुत खुशमिजाज हूँ, या फिर मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। तो ये विचार जब मेरे आते हैं तो उन्हें पॉजिटिव विचार कहा जाता है। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसका डर लगता है, ये व्यक्ति जो ऐसे करते हैं ना, मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मैं बार बार गुस्से में आ जाती हूँ, छोटी छोटी बात में मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती है, मुझे अपने पर डाउट है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं है। सो ये जो अनसर्टेनिटी है मेरे थॉट्स में, उसको नेगेटिव विचार कहा जाता है। अननेसेसरी थॉट्स क्या है कि पहले कभी 10 साल 15 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, बार बार वही मुझे याद आता है, वो शायद बुरी घटना थी, तो मुझे बार बार याद आके उसके कारण डर लगता है, या मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ। फलाना व्यक्ति सामने आता है तो उसके साथ मेरा जो बुरा अनुभव हुआ था वही मेरे विचारों में आता है, और 2-4 दिन तक लगातार वही मेरे मन में चलता रहता है, ये अननेसेसरी है। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता में सारा दिन मैं बिता देती हूँ, ये अननेसेसरी है। और

0: जब मैं ऐसे विचार करती हूँ जो कि शांति से रिलेटेड होते हैं, कि मैं नकी लेक घूमने के लिए जाऊं, वहां पर खूबसूरत नेचर को देखते हुए मुझे शांति का एहसास हो, मुझे बहुत खुशी हो, पीसफुल फील हो, और मेरे मन में विचार आए कि अरे मैं कितनी अच्छी जगह पर रह रही हूँ, मुझे कितना परमात्मा ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं वॉक कर सकूं, मैं नेचर का आनंद ले सकूं, या मैं अपनी बालकनी में बैठ के पौधों को देखती हूँ, फूलों को देखती हूँ, तो मुझे खुशी होती है और शांति महसूस होती है। फिर मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, सो मुझे पता है कि मेरी ये कैपेसिटीज है और इस एरिया में मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, तो इन विचारों को एलिवेटेड थॉट्स कहा जाता है, पीस से रिलेटेड, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड। तो हमें अक्सर अपने थॉट्स को देखने का अभ्यास जब हम करते हैं तो पता चलता है कि ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा, उसके बारे में जब हम फील करते हैं ना, पॉजिटिव थॉट्स हमें खुशी देकर जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमें दुख देकर जाते हैं, परेशानी देकर जाते हैं, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं।
1: मुझे एक सवाल था बस इसमें से. आपने जैसे कहा कि भविष्य के बारे में थॉट्स, जो हमारे अनसर्टेनिटी के लेके डर है, या फिर हमें लगता है ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन भविष्य के बारे में तो हम सोचेंगे ही क्योंकि हमें प्लानिंग करनी है, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज तो उसमें आएगी ही. तो क्या अननेसेसरी होगा ही वो चीज?
0: ओके, मैं आपको एक काम देती हूँ, एक प्रश्न है ना, आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं, कैसा देखना चाहती हैं? सो आप जरूर पॉजिटिव ही सोचेंगी कि मैं अपने आप को इस आरजे के पोस्ट पर देखना चाहती हूँ, इस तरह से देखना चाहती हूँ। तो आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ? जब ये सवाल अपने आप से पूछती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ये डायरेक्शन है, मेरा ये प्रोफेशन है और इसमें मुझे यहाँ पहुंचना है, एज अ पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो मुझे यहाँ पहुंचना है। तो आप प्लान्ड बुद्धि से अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, लेकिन जब आपके पास कोई विजन नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं है, तब आप वेग थॉट्स के साथ फ्यूचर के बारे में कंफ्यूज होकर सोचते हो, जैसे आपने पहले गाना बताया ना, कंफ्यूजन मी कंफ्यूजन है
1: सॉल्यूशन का पता नहीं जी,
0: का पता नहीं।
1: राइट, वेग है वो, सब नहीं क्या
0: हाँ
1: सोच रहे हैं, बहुत कुछ. ओके, डायरेक्शनलेस मतलब हम सोच रहे हैं, तब वो उस कैटेगरी में जाता है. ओके श्रीनिधि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी दो चीजों में डिफरेंस. एक तो क्योंकि हम थॉट की अवेयरनेस की बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में भी, तो एक तो हम कहते हैं कि ख्याली पुलाव पकाना ना, दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, सोच रहे हैं कुछ अच्छा, सोच रहे हैं, खुशी हो रही है, बट वो रियलिटी नहीं है. और एक मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि आप जो आप चाहते हो वही सोचो. तो डे ड्रीमिंग और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है?
2: मैं कल्पना जी ने जहां बात छोड़ी, मैं वहां से उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि आप अपने आप को 5 साल में कहां देखते हैं. ये सिर्फ मैं समझता हूँ थेरेपी के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिजनेस के जगत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. खासकर हम लोग जो एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक व्यक्ति को जब आप एक ऐसे पोजीशन पे हायर कर रहे हो जब उसका अनुभव बहुत लंबे समय का है, तो हम अक्सर उनसे पूछते हैं कि आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, इस कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं, या यहाँ पर आप काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं. तो ये पूछने का सबब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति कितना ग्रो करना चाहता है, इसके मायने ये होते हैं कि हम ये भी समझते हैं कि जब वो अपने आप को इतना ग्रो करने के बारे में एक विजन रखता है, तो उसके इस सफर में उसके साथ जो भी लोग होंगे वो भी ग्रो करेंगे, या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम करेगा वो भी ग्रो करेगा. इसे हम एक ग्रोथ माइंडसेट के रूप में कहते हैं, यानी हम अपने आप के बेहतरी के लिए कि हम आगे कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव वे में हम किस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को देखें, अपने बढ़ते हुए स्वरूप को देखें. तो आप ख्याली पुलाव की बात कह रहे थे, ख्याली पुलाव वैसे टेस्टी तो बहुत होता है मगर वो खाने को नहीं मिलता, वो ख्याल में ही रहता है. तो यहाँ पर जो चीज है कि मैनिफेस्टेशन में और ख्याली पुलाव में अंतर है कि ख्याली पुलाव सिर्फ ख्याल में है, वो जुबान तक नहीं आता. मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन में हम इस चीज को यूं देखते हैं कि जैसे मैंने वो चीज हासिल कर लिया है, मैं ऑलरेडी वो हूं, ये चीज मैं समझ कर चलता हूं, मैं ऐसा बनूंगा ऐसा करूंगा, इसके बारे में मैं नहीं सोचता. कि इसको करने के लिए मुझे ये करने की जरूरत है। अक्सर हम इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं कि हम तिकड़म लगाते रहते हैं, हालांकि ये लफ्ज बहुत ही स्टैंडर्ड लफ्जों में नहीं गिना जाता, मगर उर्दू की जुबान में तिकड़म को एक अच्छा लफ्ज गिना जाता है। यानी मैं कैलकुलेशंस करते रहता हूँ कि भाई मैं ये करूंगा तो ये होगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाए तो वो हो जाएगा, बट वो कुछ भी हुआ नहीं है। आप सिर्फ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा, मगर अपने आप को, जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि 5 साल में मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, आप अपने लिए एक विजन क्रिएट करते हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि मैं ये हूं 5 साल में। हो सकता है कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 5 साल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ किसी कंपनी या किसी डिपार्टमेंट का, मैं सीईओ हूँ, या एक विद्यार्थी ये कह सकता है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैं एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन चुका हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, या मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत लिया है, मैं विनर हूँ। ये मैनिफेस्टेशन के लिए ये मेरा विजन बोर्ड है कि मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ कि मैं विजेता हूँ, मैंने वो चीज हासिल कर ली है। क्योंकि मैं अपने आप को उस तरीके से देखता हूँ और ऑलरेडी मैंने अपने आप को ऐसा विजुलाइज करना शुरू कर दिया है, तो उस जर्नी पर पहुंचने में मुझे बहुत आसानी होती है। मैं ये तिकड़मबाजी नहीं करता, मैं कैलकुलेशंस नहीं करता, जीवन के चैलेंजेस आते हुए भी मेरे मन में वो गोल क्लियर रहता है कि मुझे तो करना ही है, वो मैं हूं ही। इसके लिए अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर बात कही जाती है और खासी मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये बात कही जाती है कि द बेस्ट वे टू बिकम इज टू बी, कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा नहीं, मैं ऑलरेडी हूं। ये चीज समझ लेना, अपने आप को उस जामे में अपने आप को देखना, वो जामा अपने आप को पहना लेना, वो सक्सेस के करीब आपको ले जाता है। और आज इतने ज्यादा लाइफ कोचेस हो गए हैं, मैनिफेस्टेशन कोचेस हो गए हैं, इतने ज्यादा कोर्सेज होने लगे हैं इसके विषय पर, लोग लाखों रुपए देकर आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, आप देखो अपने आप को ऐसा। यही सीक्रेट है कि कोई गोपनीय या गुह्य बात नहीं है कि अगर आप हासिल करना चाहते हो अपने सामने वो छवि बनाओ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप 1 करोड़ रुपए आप कमाना चाहते हो 5 साल में तो आप लिख के लगा लो, 1 करोड़ रुपए का चित्र आपके सामने बेडरूम में लगा होना चाहिए, सुबह उठते रात को सोते आपको वो चीज देखना है, देखना है, देखना है। और लोग कहते हैं कि भाई 5 साल बाद वाकई में मेरे साथ हुआ, अगर आपको एक मर्सिडीज कार चाहिए या स्पोर्ट्स कार चाहिए या एक ऐसा बंगला चाहिए, लोग बोलते हैं वो सामने रखो, अपने सामने विजन रखो उस चीज का। और विजन रखने का अर्थ ये नहीं है कि मैं सिर्फ विजन रखूं और मैं कुछ काम नहीं करूं, नहीं, काम तो मैं करी, मगर मैं अपने लिए वो विजन साफ बना रहा हूं और मेरे पास वो चीज है, उसे मैं देख रहा हूं, उसे साफ साफ नजरिए से मैं देख सकता हूं, ये मेरी मंजिल है। और मंजिल के लिए रास्ता तो हम तय करेंगे ही, मगर बिना रास्ता तय किए हुए कोई मंजिल नहीं पहुंचता। मगर अगर मंजिल ही डिसाइड ना किया जाए और हम यूं ही रास्ते पे चलते रहें, अच्छा चलो इधर आया तो इधर चल दिए, उधर आया तो उधर चल दिए, तो फिर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते।
1: मतलब जो डे ड्रीमिंग है उसमें कहीं ना कहीं टाइम जायर हो रहा है और जो मैनिफेस्टेशन है उसमें टाइम इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि उसमें एक्शंस भी जुड़े हैं साथ में। और आपने जैसे बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचते रहो, करना भी है और जो बनना है वो बन गए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव होकर सोचना है। तो कल्पना जी, जैसे आप थॉट्स बता रहे थे कि 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए थे, तो ये एलिवेशन में आता है, एलिवेटेड थॉट्स में आता है कि पॉजिटिव थॉट्स में इसको काउंट करेंगे?
2: मैं एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा इससे पहले कि कल्पना जी इसका जवाब दें। बहुत बार जो ख्याली पुलाव है उसमें हम ख्यालों में ही खोए रहते हैं। हमें लगता है कि जो डे ड्रीमिंग की आप बात कर रहे थे, दिवा स्वप्न की आप बात कर रहे थे, उसमें हम उसी में खुशी महसूस करने लगते हैं, हमें लगता है कि वाह, खुशी रहते हैं, वाह ये मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि नाम इनका त्रिलोकीनाथ है और रहते हैं किराए के चौबारे पे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ हमारे कुछ कॉन्क्रीट एफर्ट्स होने चाहिए। बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, मगर हम कुछ करने वाले हैं उसके लिए दिन ब दिन छोटे छोटे एक एक कदम तो रखने की जरूरत है। जिगर मुरादाबादी का एक शेर मुझे याद आता है, वो लिखते हैं, फिक्र मंजिल है ना होश ज्यादा, ये मंजिल मुझे, जा रहा हूँ जिस तरफ ले जा रहा है दिल मुझे। कहने का मतलब ये है कि हमें मंजिल क्या है उसकी फिक्र नहीं करनी है। अगर मुझे सिर्फ ये तय करना है कि ये मेरी मंजिल है और मुझे अपने दिल को ये बता देना है कि ये मेरी मंजिल है और दिल मुझे उस तरफ ले जाएगा, अगर इतना अगर हम करें अपने दिल को वो डायरेक्शन दे, अपने मन को वो सही दिशा दे दे, वो मंजिल दे दे, तो मन हर दिन मुझे उस मंजिल के करीब ले जाएगा।
1: क्या बात कल्पना जी, आपसे अगेन मैं उसी क्वेश्चन पे आती हूँ, या आप कुछ ऐड करना चाहें तो, कि ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट जो हम कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज होने लगे हैं आजकल, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, गुरुज हैं, बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, रील्स में आते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी ऑफ थॉट्स में आता है?
0: ये है एलिवेटेड थॉट्स। मैनिफेस्टेशन कोई दिवा स्वप्न नहीं है या कोई ख्याली पुलाव नहीं है। मैनिफेस्टेशन जो भी हम सोचते हैं, हमारी सोच का पहला असर हमारे हार्मोन्स पर होता है, हमारे संपूर्ण शरीर की एक्टिविटी पर होता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करने लगते हैं, और जैसा हम फील करते हैं वैसी ही हमारी वृत्ति अर्थात एटीट्यूड बनता है। तो अगर हम थॉट की जर्नी को देखें, तो थॉट को अगर हम सीड कहे, तो थॉट के बाद नंबर आता है फीलिंग्स का, इमोशंस का, इमोशंस के बाद नंबर आता है एटीट्यूड का, वृत्ति का, वृत्ति के बाद नंबर आता है व्यवहार का, एक्शंस का। सो जैसा थॉट होता है, बीज होता है, वैसे ही फीलिंग्स बढ़ती हैं, वैसा ही एटीट्यूड होता है, और वैसे ही एक्शंस ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। तो दूसरा असर जो होता है आपके थॉट का, आपके बॉडी के बाद दूसरा असर होता है आपके एनवायरमेंट पर। आपका एनवायरमेंट आपके थॉट के अकॉर्डिंग बदलने लगता है और वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड होने लगता है। सो आज की एक बात बताती हूँ। एक क्लाइंट है पुराने, मेरे युवा साथी है, जो निराशा से घिरे हुए रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। पिछले कुछ एक डेढ़ साल में उन्होंने नौकरी किया, अच्छा परफॉर्म किया स्कूल में एज ए टीचर, तब वो ठीक थे, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई, अभी वो घर में बैठे हैं। आज उन्होंने मुझे मैसेज लिखा कि मैं रोज 108 बार लिखता हूँ कि मैं मर जाऊं, मैं इतना निराश हूं। तो मैंने उनको कहा कि आपको लिखना ही है, तो मृत्यु आपके हाथ में तो है नहीं, जब होनी है तब होगी, क्यों नहीं आप ये लिखते हो 108 बार कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, सक्सेस मेरा कदम चूमती है और मैं विजय जरूर होऊंगा। तो दो थॉट्स है कि मैं, मेरी मृत्यु जल्दी हो जाए इतना मैं निराश हूं, या फिर मैं एक विजय व्यक्ति हूं, सक्सेसफुल हूं और मेरी सक्सेस मेरा कदम चूम रही है। इन दोनों ही थॉट से मेरी फीलिंग क्या हो, एक से मेरी निराशा बढ़ेगी और दूसरे से मेरा होप क्रिएट होगा। सो आप निराशा के साथ चलना चाहते हैं या होप के साथ चलना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। निराशा के साथ चलेंगे तो हाथ में निराशा ही आएगी। तो जब हम अपने थॉट्स को पहचानना शुरू करते हैं, तब हम उन्हें चेंज कर सकते हैं।
1: तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने कही थी। मैं बस एक इसमें से सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे हमारे साथ ऐसा होता है, अचानक से हमारे अंदर डर बढ़ गया, पहले हम इतना नहीं डरते थे, अब ज्यादा डरने लगे हैं या ज्यादा हर्ट होने लगे हैं, यानी हमारे थॉट्स चेंज हो गए हैं, थॉट की अवेयरनेस हमें लानी है, हमें मतलब देखना है कि हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, अगर हम फील कर रहे हैं हर्ट ज्यादा या फील कर रहे हैं डर ज्यादा आजकल, पहले नहीं करते थे, यानी थॉट्स में चेंजेस हैं।
0: बिल्कुल, हमारे थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं इसलिए हमें फियर फील हो रहा है। ओके, अगर मुझे डर लग रहा है किसी बात से, और अगर मैं खुद से कहूं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो पॉजिटिव है, और मैं डरती नहीं हूँ, हिम्मत मेरा, करेज मेरा स्वभाव है, तो तुरंत हमारा माइंड हमें उसका रिस्पॉन्स करता है। फियर की जगह हम करेज को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, भले वो थॉट आपको लगेगा कि झूठा है, अरे मुझे लग तो डर रहा है और मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं बहुत बहादुर हूँ, तो झूठा लग सकता है, बट वो झूठी चीज भी धीरे धीरे हमारा मन स्वीकार करने लगता है, और फिर फियर की जगह हम रिप्लेस करते हैं करेज, हिम्मत को, ऑटोमेटिक ये होता है। तो इसी के लिए एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को कहा जाता है थॉट रेगुलेशन की कोर टेक्निक है ये, उस टेक्निक को कहा जाता है कैच, चेक एंड चेंज। तीन वर्ड्स है, सी से शुरू हो रहे हैं, कैच, चेक एंड चेंज। आपको डर लग रहा है, डर ही आपकी महसूसता है, परंतु डर के लिए आपके मन में विचार कौन सा चल रहा है, अरे मेरा बॉस मुझे आज डांटेगा क्योंकि मैंने कोई गलती की है, है ना, विचार ये है, और उसकी फीलिंग ये है, डर लग रहा है आपको उसके सामने जाने की, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी,
1: थोड़ी सी है ना ऑकवर्ड सी,
0: कॉन्फिडेंट वाली नहीं,
1: कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा,
0: नहीं होगी। सो एक थॉट ने आपको फीलिंग की तरफ बढ़ाया, बॉडी लैंग्वेज की तरफ बढ़ा दिया, और बॉस के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो सचमुच आप डांट मिलेगी, क्योंकि आपने शुरुआत थॉट से की। उसकी जगह पर एक प्रैक्टिस करके देखना, भले आपने गलती की है लेकिन आप ये सोचना कि गलती करके ही तो मैं सीखता हूँ, और इस बार जो गलती की है मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, और बॉस को मैं ये विश्वास दिलाऊंगा। तो आपकी फीलिंग क्या होगी कि नहीं, बॉस डांटेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप को प्रूफ भी करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो आपके बॉडी लैंग्वेज में डर नहीं होगा लेकिन एक आत्मविश्वास दिखाई देगा, और वो आत्मविश्वास लेकर जब आप बॉस के सामने जाएंगे
1: जी,
0: तो ऑटोमेटिकली ये एक असर है आपके बॉडी लैंग्वेज का सामने वाले के ऊपर, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ मिलेगा। हो सकता है वो डांटे लेकिन प्यार से डांटे, देखो आप बहुत कैपेबल हो, आप कर सकते हो, इस बार आपकी गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान देना। तो एकदम गुस्से वाली डांट एक असर्टिवनेस वाली समझ के साथ बदल सकती है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस के साथ गए। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, अभी हम कर सकते हैं, हमारे श्रोता भी कर सकते हैं, कि आप इमेजिन करो कि आपको किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाकर कुछ बोलना है, कुछ कहना है, अपनी बात कहनी है, और आपको उसमें हिचकिचाहट, डर लगता है। तो आपकी केवल बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने से आपके थॉट में वो करेज आ जाएगा। जब आपके मन में डाउट होता है, फियर होता है, तो आपके कंधे झुके हुए होते हैं, आपकी गर्दन झुकी हुई होती है, लेकिन जब आपके थॉट में कॉन्फिडेंस होता है तो आपके कंधे कैसे होंगे, चौड़े होंगे, गर्दन सीधी होगी। तो ये वाइस वर्सा है, थॉट्स थोड़े कमजोर है लेकिन हम बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा अलर्ट कर ले, और उस अलर्ट बॉडी पोस्चर के साथ अगर हम सामने जाए तो आपको महसूस होगा कि आपके थॉट में भी वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। सो ये करके देखना कि जब भी किसी के सामने जाना है तो बहुत अलर्ट बॉडी पोस्चर के साथ जाए, सीधे खड़े हो, कंधे चौड़े हो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो, और जो भी बोलना है हम फ्लो में आराम से बोलते जाए। देखना बॉडी पोस्चर का आपके थॉट्स पर भी असर होगा।
1: एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये भी, कहीं ना कहीं। तो कहाँ से शुरू करें? मैं श्रीनिधि जी आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या पर्सनली आपने कभी फील किया कि आपने इस पे काम किया हो, एंड यू नो आपने कोई भी टेक्निक को यूज किया हो, अगर कोई चीज आई, कोई भी यू नो ऐसी फीलिंग आई जो आपको लगा कि नहीं मेरे लिए करेक्ट नहीं है, तो थॉट्स पे काम किया हो या वाइस वर्सा?
2: जो बात आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ, कल्पना जी बता रहे थे कि कैसे हम अपने बॉडी पोस्चर को उसके ऊपर काम करके मुस्कुराते हुए इन चीजों को करते हैं तो भी मतलब आप बेहतर कर सकते हैं। जब हम इन चीजों को इस तरीके से करने का प्रयास करते हैं तो कुछ चीजें हमारे लिए तो हेल्पफुल है ही, मगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी वो एक बहुत ही, ये कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव छवि क्रिएट करता है, तो एक सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, वो व्यक्ति आपसे अच्छे शब्दों में प्रभावित होता है। और मैं समझता हूँ कुछ चीजें जो मेरे को अपने करियर की शुरुआत में मुझे सीखने को मिली वो यही चीज थी कि आप सब कुछ जानते हैं इतना काफी नहीं। बहुत बार हमारे पास, जैसे एग्जाम की बात करते हैं, आप तो एग्जाम में सब कुछ पढ़ के जाते हैं, बट अगर आप एग्जाम के समय पर आपके मन में स्ट्रेस है या फिर एंग्जाइटी है, या आप ये सोचते हैं कि पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वही प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, आप इसी डाउट के साथ अगर आप चलते हो तो फिर शायद जो प्रश्न आए होते हैं आप सारा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ लेते हैं कि जो मैंने पढ़ा है पहले वो क्वेश्चन कहाँ है उसको मैं आंसर करूँ, इसके फिर आप कोशिश करता हूँ, तो उसके सबके होता ये है कि मैं जो पढ़ा है उसे छोड़कर जो अलग सवाल आए हैं उन सवालों के बारे में ज्यादा टेंशन लेने लगता हूँ कि भाई वो अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो स्कूल में हमारे टीचर्स ने मेरे को ये सिखाई थी वो ये थी कि पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करो, जो सबसे पहला सवाल आए जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ ये मैं आंसर कर सकता हूँ या इसके बारे में मैंने पढ़ा है तो पहले उसको अटेम्प्ट कर देना है, पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं।
1: Okay.
2: तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं ये जवाब जानता हूँ और इस जवाब को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ।
1: कॉन्फिडेंस बढ़ गया,
2: वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये एक तरीके का मेंटल प्रिपरेशन है,
1: राइट,
2: और ये आपका मानसिक प्रिपरेशन है, आपके मन के अंदर हो रहा है, इसे कोई देखता नहीं। मगर इस तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ तो ये चीज आपको धीरे धीरे बेहतर चीजें करने

0: पहले एक हफ्ता तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, एक हफ्ते बाद हमारी टीम लीडर ने मुझे एक चीज कहा कि तुम क्या मॉल घूमने आए हो?
1: अच्छा।
0: मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला एक हफ्ते से हम देख रहे हैं तुम टी शर्ट और ये जीन्स पहन के आ रहे हो, तो ऑफिस आ रहे हो तो तुमसे उम्मीद की जाती है कि भाई तुम प्रोफेशनल कपड़े पहन के आओ। और फॉर्मल्स पहनने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो मेरा तुरंत जवाब ये था कि मैंने कभी फॉर्मल्स खरीदे ही नहीं, मेरे पास फॉर्मल कपड़े ही नहीं है जो मैं फॉर्मल पहन के आऊँ। और मैंने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट हूँ, तो मैं उन्ही कपड़ों में आऊंगा। तो उन्होंने कहा शायद तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम फॉर्मल कपड़ों में आओगे तो लोग तुम्हें एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करेंगे, अगर तुम जीन्स और इन्हीं कपड़ों के साथ आओगे तो लोग तुम्हें यही समझेंगे कि ये कॉलेज स्टूडेंट है और तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसलिए तुम्हें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत। और बिल्कुल हुआ वही, मैं अगले हफ्ते गया, मैंने एक फॉर्मल पैंट खरीदा, शर्ट मेरे पास था ही, और जब मैं वो पहन के आया तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि मतलब ही इज नो लॉन्गर अ कॉलेज किड, तो ये कॉलेज जाने वाला लड़का नहीं है। और मेरे अंदर भी मैंने ये देखा कि अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ जैसे बर्ताव करता था उसी तरीके का बर्ताव मैं अपने वर्क प्लेस पर कोलीग्स के साथ नहीं करता था। वहां पर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो चीज मेंटेन करना मेरे लिए आसान था। बॉडी पोस्टर्स की बात कही जाती है, हम जानते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर में भी हम लोगों को ये चीज सिखाते हैं कि भाई आप अपने दोस्तों के कंधों पर हाथ रख के घूम सकते, बट यही चीज आप अपने ऑफिस में नहीं कर सकते। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उस तरीके का जो डेकोरम आप मेंटेन करते हो, आप अपने आप को याद दिलाते हो कि मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे से इस प्रकार का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, तो आप अपने आप को एक मोल्ड में डाल लेते हो और उसकी वजह से आप उसी तरीके से बिहेव करने लगते हो। और मैं समझता हूँ ये जो हम बातचीत कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए भी, हम एक मोल्ड तैयार कर रहे हैं अपने लिए, एक सांचा तैयार कर रहे हैं कि मैं ये हूँ। और मैं ये नहीं सोचता कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनूंगा, नहीं, वो मोल्ड तैयार करते हैं। मैं हर दिन अपने आप को उस सांचे में बिठा कर उसी तरीके से अपने आप को डिलीवर करता हूँ, उसी तरीके से मैं अपने आप को कैरी करता हूँ, और उसकी वजह गुण आपके अंदर आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम लोग कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग कराते हैं और करते भी थे, जैसे आप जानते हैं एयर होस्टेसेस होते हैं, गगन सखियां होते हैं या गगन सखा होते हैं, जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं, हवाई जहाज में आते हैं, वो हर एक से मुस्कुरा के बातचीत करते हैं, वो मुस्कुरा के वेलकम करते हैं, हालांकि वो उनके अंदर की खुशी नहीं है, ये उनके जॉब का रिक्वायरमेंट है कि वो मुस्कुराए। तो उनको यही चीज सिखाया जाता है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी अगर आप अपने आप को आदत डालेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह दिखाएगा और धीरे धीरे वो एक अच्छी आदत बन जाती है कि हाँ हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना हमारे काम का हिस्सा है। और धीरे धीरे मैं इस मुस्कुराहट के चलते लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी आसानी से डील कर सकता हूँ।
1: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल भी है। और जैसा आपने बताया कि एटीट्यूड का फर्क थॉट्स पे, थॉट्स का फर्क फीलिंग्स पे, और किस तरीके से आप एक पे काम करते हैं तो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन थॉट्स पे काम जब आप करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो आपकी फीलिंग्स, फिर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, सब कुछ बदल जाता है, और आपकी डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। और कल्पना जी ने हमें एक होमवर्क भी दिया कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप वो पहले से वो डर में, उस रिस्पॉन्स के उसमें मत जाएं, ऐसे मुझे बोलेंगे, होगा वो होगा, अपनी एक मेंटल इमेज क्रिएट करें आप ये कि नहीं ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस से बात करूंगा और ये डील इस तरह से करूंगा, वो पॉजिटिव होके जाएं ताकि बॉडी लैंग्वेज में भी आपके वो शो करे। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मिल गई हैं हमें जो हमें करनी है, और इनको कुछ मैं तो ये भी कहूंगी दोस्तों, नोट करके रखिए ताकि हम भूल ना जाए आगे करने के लिए। पर फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का, हम और भी चीजें सीखेंगे कैसे थॉट्स को रेगुलेट करें, कि प्रश्नों के और भी जवाब आपको मिलेंगे लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। कल्पना जी, श्रीनिधि जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आरुषि जी, कल्पना जी, और हमारे सारे श्रोता मित्रों का भी जो हर कड़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं और इन चीजों को सुनते हैं,
1: काफी शुक्रिया। तो दोस्तों फिलहाल लेते हैं इजाजत और दिल से कहते हैं लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: अभी बजे हैं दोपहर के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: लाखों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 ईयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: हाँ अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा। भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की हम, बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आए, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी।
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल की।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं, कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। माना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसे खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़े नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडीज स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में माना ठीक था, 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहे कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे।
1: खेल बिल पीटी ऐसा होता था, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिंग मिली।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविताओं वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को। पहले से पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़े करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी है, इनके अनुभव हमने

0: 93.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
1: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
2: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
2: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, कोई गाती हूँ।

0: नो। अच्छा तो आप मराठी में गाते थे, है ना?
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे। तो
1: हाँ
0: ये जो दो लाइन आपने सुनाई है, इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना, इसीलिए।
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था, और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी, गीत बनाते थे? अच्छा,
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता
0: और बोले हुए गीत गाते थे?
1: था। हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक, उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी। पूरन
0: अच्छा,
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं, रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी, उसमें की थी। और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: 2 बरस तक की,
0: अच्छा,
1: पगार
0: और
1: 400 रुपये था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपये?
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया
0: जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की,
1: था।
0: है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15 साल 17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी। सोना 140 रुपये है
0: तोला।
1: तोला।
0: जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बॉम्बे में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का आएगा।
1: तो छोड़ के बॉम्बे में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके, क्योंकि बॉम्बे में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बॉम्बे में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: हाँ।

0: इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया। अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: हाँ, बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की दो बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई, क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई,
1: बचपन से ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद,
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां और एक बेटी, वो तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
2: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उनको, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
1: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
2: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी ना। हमने कोर्स किया था
1: सिलाई का।
2: हाँ,
1: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
2: पुणे में किया था।
1: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
2: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
1: अच्छा, कभी आपने मॉल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
2: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
1: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
2: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
1: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
2: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
1: तो पूरे आपका ग्रुप था?
2: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
1: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
2: सत्संग नहीं इतना किया हम।
1: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
2: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
1: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
2: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
1: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
2: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
1: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
2: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
1: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
2: 1-2 बरस तक गई।
1: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
2: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
1: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
2: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
1: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
2: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
1: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
2: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
1: अच्छा, पर सारे मराठी में।
2: हाँ,
1: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
2: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
1: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
2: नहीं,
1: कभी कोशिश नहीं की?
2: नहीं, याद भी नहीं आए।
1: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
2: बाजू वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
1: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
2: हाँ।
1: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
2: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
1: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
2: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
1: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए।
2: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते है। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
2: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
1: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
2: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
2: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए, और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
1: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
2: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
1: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
2: नहीं, उसने नहीं किया।
1: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
2: शादी की उसकी, और अच्छी तरह रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
1: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
2: हाँ, दुआएं तो होती है पीछे।
1: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
2: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते जी।
2: आपका शुभ नाम?
3: तेजश्री।
2: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
3: जी हम बड़े हैं।
2: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आपको किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
3: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेली प्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
2: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
3: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा एक हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है, जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
2: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
3: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
2: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
3: जी देखो, ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मतलब शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है। तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा, कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
3: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए, और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
2: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
3: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना। तो ये मेरी सदिच्छा।

0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणा में रहे, पुणा में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
1: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी, इसीलिए हम उसके साथ आए।
0: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए।
1: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
0: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
1: 2 साल हुई।
0: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
1: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
0: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
1: हिंदी भी हम ऐसे बोलते है ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
0: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
1: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मन।
0: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
1: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
0: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

बेहद ही सच कहा है, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। यह जो हमारी और आपकी मुस्कान है, यह भी प्रभु की कृपा है, प्रभु वरदान है। कितना सुंदर कहा गया है, कितना अद्भुत है यह शब्द, है ना। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर से हम सब तैयार हो गए हैं सद्गुणों को, सद्विचारों को अपनारों के सागर प्रभु से। आज हम सद्विचार सद्गुण अपनाएंगे। फिर से रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोता बंधु हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में। गुलदस्ता कार्यक्रम आप सभी को आज यही पैगाम दे रहा है, यही संदेश दे रहा है कि सद्विचारों के झरने में अपने आप को ले आओ।

0: ओम शांति, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सुविचार, स्वच्छ विचार, साफ विचार सही दिशा की ओर बढ़ाता है हमें। स्वच्छ विचार के लिए प्योर एटमॉस्फेयर में रहना या बनाना आवश्यक है। दिव्य जीवन का उद्गम सद्विचार, सत्बोल, सत्कर्म से होता है। सद्भावना ही सुविचार और सत्विचार का बीज है। प्रभु से मिलन मनाना, खुशियों से मुलाकात करना, यह सब सत्विचारों के झरने में अपने आप को लेकर आने का एक सुगम मार्ग है। बने रहिएगा स्वर्णलता के साथ पूरे कार्यक्रम के अंत तक, क्योंकि आज का प्रोग्राम अन्य दिनों के कार्यक्रम से थोड़ा हटके है, थोड़ा भिन्न है, क्योंकि भिन्नता के सागर में ही हम सब हिलोरे लेते हैं। हर सप्ताह कार्यक्रम है गुलदस्ता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मुस्कान को बिखेरते रहिए।

का, सद्विचारों का, भिन्नता का, वैरायटी का सागर है वो प्रभु ईश्वर भगवान, जिनका ध्यान धरते ही सद्विचार, सद्बोल, सद्गुण चारों दिशाओं में फैलने लगते हैं। सद्गुणों का व सद्विचारों का झरना आज हम सब बनेंगे, और यह बनकर आइए कल कल करते हुए गिर पड़े सभी के हृदय में। तैयार है ना? आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कुछ ऐसे विचार जो मैं भी आपके पास ना हूं, और खास उन श्रोता बंधुओं के लिए जिनके पास ऐसे विचार पहुंचते नहीं हैं। तो ये विचार आज इंग्लिश में भी हो सकते हैं तो हिंदी में भी हो सकते हैं। बहुत दिनों से मेरा दिल कह रहा था कि मुझे जो बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस मिलते रहते हैं, इतने सारे गुणवान जो हमारे साथी हैं वो हमें भेजते हैं, तो क्यों ना हम उन साथियों तक ऐसे विचारों को पहुंचाएं जिन्हें सुनकर उनके अंदर भी प्रभु मिलन मनाने को जी चाहेगा, उनके मन में भी ऐसी बातों को अपने जीवन में धारण करने के लिए उत्साहित हो उठेगा। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्वर्णलता के साथ देते चले प्यार और दुआएं सभी।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: देते चले प्यार प्रभु का, लुटाते चले प्यार प्रभु का, बांटते हुए चले। ऐसा करने पर जीवन की जो बगिया है वह मुस्कुराती है। जीवन के बगिये में तरह तरह के रंग बिरंगे मन भावन फूल खिलते हैं और जीवन के रास्ते में दिए जगमगाने लगते हैं। ऐसी ही जिंदगी आप चाहते हैं ना, तो आज इन सुविचारों के झरने में आपको लेकर आ रही हूँ मैं स्वर्णलता। जैसा संग वैसा रंग, यानी अगर हम अच्छे विचारों वाले, अच्छे मन वाले लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ उठना बैठना करते हैं और प्रभु प्रीत के गीत के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हमारा मन का वातावरण भी तुरंत साफ हो जाता है। और मन का वातावरण कैसे साफ होता है? विचार पढ़कर, विचारों को आदान प्रदान कर, विचारों को बदल कर। विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, इसलिए सद विचारों को जब हम पढ़ते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो हमारा मन का आंगन स्वच्छ हो जाता है। बने रहिए स्वर्णलता के साथ और आज के सद विचारों वाले गीतों को सुनकर, सद्गुणों को धारण कर ऊंचे आसमान में उड़ते रहिए और उड़ाते रहिए।

सीख से भरे गीत, शिक्षा से भरे गीत, सद्गुणों से भरे गीत कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सुन रहे हैं, जहां पर अभी हमने सुना कि जब हम स्वयं को बदलेंगे तो जग बदलेगा। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज हम सुन रहे हैं ऐसे गीत जो सद्गुणों से, सद्विचारों से भरे हैं। कहते हैं हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान और दौलत है।

हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना और दूसरों के प्रति दया भाव रखना सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे सुविचार आज हम आपके साथ बांट रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं परमात्मा प्रमाण नहीं अनुभव है। गॉड इज नॉट अ विटनेस, इट्स एन एक्सपीरियंस। गॉड फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, यानी परमात्मा की याद सबसे फर्स्ट है, उसके बाद ही सब कुछ है। हर बड़ी सफल और भी ऐसे सद्विचार कहा गया है जो सोचेंगे वही। वास का मतलब ये नहीं है कि समझे कि आपको खुद की कोई जरूरत ही नहीं, कि सुविचार उन साथी नहीं है। तो आप सब बने रहिए और सद विचारों के आसमान में उड़ते रहिए।

0: की स्थिति और जीवन की परिस्थिति श्रेष्ठ विचार युक्त गीत सुनने से बदल सकते हैं, और बदलाव तभी आएगा जब हम उसे यूज करेंगे अपने जीवन में। जैसे अभी हमने सुना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। अब यह सब समझने के लिए जीवन हमें समय प्रति समय कोई ना कोई घटना से वाकिफ कराती है, कोई ना कोई परिस्थिति से वाकिफ कराती है, और जब हम उसमें जीत जाते हैं तो संभल जाते हैं, और जब हम हार जाते हैं तब भी संभलने के लिए उपाय ढूंढते हैं, और ये उपाय हमें इन श्रेष्ठ विचारों से ही मिलते हैं। कहा जाता है कि एक सच्चा शुभचिंतक वह है जो आपके सामने आपकी कमजोरियों के बारे में बात करता है और दूसरों के सामने आपकी योग्यताओं के बारे में गर्व से बात भी करता है। तो ऐसे शुभचिंतक क्या हमारे लिए? जरा गौर से देखिए। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है। आइए हम दुआएं दें और तुम जीवन में कुछ अच्छा अच्छा सोच सके, चाहे परिस्थिति। मुस्कुराते रहिए, बने रहिए।
1: बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
2: सावधान, अपना ओटीपी या एटीएम पिन

दिलों में दुआओं का सिलसिला चलता रहे नॉन नहीं, यह कैसे हो सकता है, कैसे संभव? विचारों के साथ अपने मन को, अपने इंटेलेक्ट को, बुद्धि को जोड़ते हैं, सार्वर ये गीतों को सुनते हैं जिसमें वैल्यूज भरे पड़े हैं, जैसे आज के गीतों को हमने सुना जिस गुण सतबोल भरे पड़े थे, ऐसे गीतों दिल को जोड़ देते हैं तो दुआओं का सिलसिला चलता रहता है। बारंबार ईश्वर भगवान पे दिल वारी हो जाता है जब वह एक पटरी बनकर जीवन को आसान बना देता है, और क्या करता है, बिन बताए अड़चनों को दूर कर देता है। क्योंकि ऐसे गीत तभी बने हैं जब ईश्वर का ध्यान किसी ने किया है ईश्वर को। ऐसे गीतों में हम जाइए और बने रहिए कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: साथ है प्रभु प्यारा तो गुनगुनाता है दिल मेरा, और हमारा दिल गुनगुनाता है क्योंकि कार्यक्रम गुलदस्ता आपके लिए लेकर आता है ढेर सारे ऐसे गीत जिसमें सुविचार होते हैं, आनंद होते हैं, जिसमें खुशी प्रदान करने वाली बातें होती हैं। तो सुविचारों से और सुविचार युक्त गीत सुनकर, प्रेरणादायक गीतों को सुनकर हम अपने जीवन में जागृति लाते हैं। तो आज के प्रोग्राम के गीतों को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारा मनोबल और भी बढ़ाता है और आपके लिए ढेर सारे गीत लाने के लिए मेरा मन जो है उत्साहित हो उठता है, वैसे भी हो उठता है। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए। जाते जाते आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए हम अपने मन को जब सत विचारों से, सुविचारों से भरेंगे, तभी हम अपने जीवन को श्रृंगार सकते हैं और तभी हमारा श्रृंगारा हुआ जीवन दूसरों के लिए लाभदायक हो सकेगा। तो इन्हीं सद विचारों के साथ स्वर्णलता को आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह एक बेहतरीन विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इन सुविचारों को जो आज आपने सुना, इनको अपने जीवन में अपनाइए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते दोस्तों, रश्मि को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना? अरे भाई रश्मि, रवि की घरवाली। क्या कहा? अब ये रवि कौन है? अरे भाई रवि मीना का पड़ोसी। खैर छोड़ो, अब हम सीधा चलते हैं रवि और रश्मि के घर। रश्मि ने कल ही एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। वो देखो, रवि दीवार पे टंगे कैलेंडर पे कुछ लिख रहा है।
1: 40, 41, 43, 44 और ये 45। अब से ठीक 45वां दिन। ये मैंने अपने पेन से 3 अक्टूबर पे बना दिया एक गोला।
2: ए जी, 3 अक्टूबर को कुछ खास बात है क्या?
1: हाँ रश्मि, बहुत खास बात है।
2: मुझे भी बताइए ना।
1: अब से ठीक 1.5 महीने बाद है 3 अक्टूबर। तभी तो मैंने इस कैलेंडर पे ये गोला बना के निशानी लगा दी है।
2: लेकिन है क्या उस दिन?
1: रश्मि, कल तुमने मुझे एक तोहफा दिया और अब
2: तोहफा?
1: हाँ भाई, हमारी बेटी, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा ही तो है। और ठीक 1.5 महीने बाद यानी 3 अक्टूबर को मैं तुम्हें और हमारी प्यारी सी बेटी को एक तोहफा दूंगा।
2: सच?
1: हाँ रश्मि।
2: बताइए ना, क्या तोहफा देंगे आप मुझे और हमारी बेटी को?
1: वो तो एक राज है जो ठीक 1.5 महीने बाद ही खुलेगा। अच्छा रश्मि, मैं जरा खेत तक होकर आता हूँ।
2: जी ठीक है।
0: भाई आखिर ऐसा क्या तोहफा है जो रवि अपनी बीवी और बच्ची को ठीक 1.5 महीने बाद ही देगा? रश्मि भी शायद यही सोच रही थी कि तभी मीना अपनी माँ के साथ वहाँ आई।
3: नमस्ते रश्मि चाची।
2: अरे मीना आओ आओ। नमस्ते भाभी।
4: कैसी हो रश्मि?
2: ठीक हूँ भाभी।
3: माँ देखो चाची की बेटी कितनी प्यारी है, छोटी सी। चाची आप अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगी?
2: चुटकी।
5: चुटकी चुटकी, जोर से बजाएगी चुटकी।
4: रवि कहाँ है रश्मि?
2: अभी अभी खेत पर गए हैं कैलेंडर पे गोला बना के।
3: अरे हाँ चाची, ये 3 अक्टूबर पे इतना बड़ा लाल रंग का गोला।
2: पता है भाभी, ये कह रहे थे कि अब से ठीक 1.5 महीने बाद ये मुझे और हमारी बेटी को कोई खास तोहफा देने वाले हैं।
4: अरे वाह रश्मि, क्या है वो खास तोहफा?
2: वही तो नहीं पता।
5: कहा भी था कि बता।
3: चाची मुझे लगता है कि रवि चाचा आपको एक नई साड़ी लाके देंगे।
2: नहीं मीना, मेरे ख्याल से वो मुझे चूड़ियाँ लेके देंगे, लाल चूड़ियाँ।
0: और 1.5 महीने बाद।
2: सुनिए सुनिए जी, छुटकी के बाबा, मैं तैयार हो गई हूँ, चलें?
1: अरे वाह रश्मि, छुटकी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: सुनिए अब तो बता दीजिए क्या तोहफा देने वाले हैं?
1: आंगनवाड़ी चलो, सब पता चल जाएगा।
2: आंगनवाड़ी?
1: हाँ रश्मि, आंगनवाड़ी में भी मिलता है वो तोहफा।
0: लो भाई, रवि और रश्मि चुटकी को लेकर आंगनवाड़ी पहुंच गए।
2: चुटकी के बाबा, तोहफा कहाँ है?
1: वो देखो रश्मि, दीवार पे लगा वो पोस्टर।
2: बच्चों को सही समय पर सभी टीके लगवाएं, एक भी टीका छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया।
6: रश्मि बहन।
2: नमस्ते नरस बहन जी।
6: नमस्ते। अरे तुम्हारी बेटी तो बड़ी प्यारी है। रवि भैया, रश्मि बहन, आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी को DPT का टीका लगवाने और पोलियो की पहली खुराक दिलवाने ले आए।
2: अच्छा तो ये है आपका तोहफा चुटकी के बाबा?
6: तोहफा?
2: जी नरस बहन जी, चुटकी के बाबा ने 1.5 महीने पहले ही कैलेंडर पे बोला।
0: रश्मि ने नर्स बहन जी को तोहफे की सारी बात बताई और नर्स बहन जी हंसते हुए बोली,
6: रवि भैया ने बिल्कुल ठीक कहा था रश्मि, DPT का टीका और पोलियो की खुराक छोटे बच्चों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आखिर ये बच्चों को कई बीमारियों से बचाते जो हैं।
2: वो कैसे बहन जी?
6: रश्मि बहन, DPT का टीका बच्चों को गलघोंटू, काली खांसी और टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है, जबकि OPV यानी पोलियो की खुराक उसे पोलियो से सुरक्षा देती है। रश्मि बहन, छुटकी का टीकाकरण कार्ड तो लाई हो ना?
2: जी वो तो।
1: ये लीजिए नर्स बहन जी, छुटकी का टीकाकरण कार्ड। ये कार्ड मैंने खूब संभाल के रखा हुआ है।
6: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, कि छुटकी को जन्म की खुराक अस्पताल में ही मिल चुकी है।
7: जन्म की खुराक?
6: रश्मि बहन, जन्म की खुराक मतलब BCG का टीका और पोलियो की खुराक। ये जन्म की खुराक बच्चे को पहले दिन ही दी जाती है।
7: हाँ नरस बहन जी, याद आया, अस्पताल वाले डॉक्टर साहब ने छुटकी के पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही ये टीका और खुराक उसे दी थी। लेकिन छुटकी के बाबा, आपको ये बात कैसे याद रही कि छुटकी को ठीक 1.5 महीने बाद यहाँ लेके आना है DPT का टीका लगवाने और पोलियो की खुराक दिलवाने?
1: मीना की वजह से।
7: मीना की वजह से?
1: हाँ रश्मि, 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे मीना और उसके कुछ दोस्त मिले। वो एक बहुत अलग सी कविता गा रहे थे।
8: सब बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाओ,
9: सब बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाओ,
8: DPT का टीका पोलियो की खुराक दिलवाओ,
9: DPT का टीका पोलियो की खुराक दिलाओ,
8: भूल न जाना, याद ये रखना बात हमारी पूरी,
9: भूल न जाना, याद ये रखना बात हमारी पूरी,
8: 1.5, 2.5 और 3.5 ये महीने बहुत जरूरी,
9: 1.5, 2.5 और 3.5 ये महीने बहुत जरूरी,
8: 9वें महीने में लगता है फिर खसरे का टीका,
9: 9वें महीने में लगता है फिर खसरे का टीका,
8: बच्चे की सुरक्षा का ये सबसे सही तरीका,
10: बच्चे की सुरक्षा का ये सबसे सही तरीका।
1: मीना बेटी, तुम लोग ये कैसी कविता गा रहे थे अभी?
8: रवि चाचा, हमने ये कविता नरस बहन जी से सीखी थी।
1: समझी रश्मि, उस दिन से मैं भी ये कविता रोज याद करता हूँ।
6: रवि भैया, फिर तो आपको 1.5, 2.5 और 3.5 के अलावा एक चीज और भी याद रखनी पड़ेगी।
1: वो क्या नर्स बहन जी?
6: वो है 9वां महीना।
7: 9वां महीना?
6: हाँ, जब बच्चा 9 महीने का हो जाए तो उसे खसरे का टीका लगाया जाता है। मैंने छुटकी के इस टीकाकरण कार्ड में सब लिख दिया है ताकि आपको याद रहे।
1: नर्स बहन जी, हम इस टीकाकरण कार्ड को तो बहुत संभाल के रखेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपनी दीवार पे टंगे कैलेंडर पे भी निशानी लगा देंगे ताकि हर बार याद से अपनी छुटकी को आपके पास ला सकें। और रश्मि, ये रहा तुम्हारा तोहफा।
8: लाल चूड़ियां।
1: हाँ रश्मि, और अगली बार 2.5 महीने पर और उसके बाद फिर 3.5 महीने पर।
0: भाई वाह, हम सबको भी रवि से शिक्षा लेनी चाहिए। आखिर छोटे बच्चों का सही समय पे टीकाकरण होगा तभी तो वो सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
8: माता पिता हर बच्चे के सीखे सही तरीके,
5: सही वक्त पे लगवाए बच्चों को सारे टीके।
0: भाई वाह, क्या कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।
11: टिक टॉक

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। अब चलते हैं बिल्कुल ठीक, अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार शहरों के नाम बताऊंगी, उन चार शहरों में से एक शहर किसी खास वजह से बाकी तीन से अलग है। तुम्हें मुझे उसी अलग शहर का नाम बताना है। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो उन चार शहरों के नाम हैं आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंडीगढ़ और चित्तौड़गढ़। फिर से बताती हूँ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंडीगढ़ और चित्तौड़गढ़। अब सोच के बताओ इन चारों में से वो कौन सा शहर है जो है बाकी के तीन शहरों से अलग।
3: मैं बताऊं बहन जी?
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: चंडीगढ़।
1: सही जवाब। लेकिन मीना ये तो बताओ कि चंडीगढ़ आजमगढ़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से अलग कैसे है?
3: बहन जी आजमगढ़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ भारत के अलग अलग शहर हैं, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। बच्चों पता है हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों की एक ही राजधानी है और वो है
2: चंडीगढ़।
1: शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

Hello students, this is Sandeep Trivedi, and today I am going to start with 8th point, which is wood. As you all know that we are studying models, and the lesson is lesson number 5th, A Hero, from the book Golden Race for class 10th RBSE. तो बच्चों अभी हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर का ये टॉपिक है, और अब 8वां हमारा टॉपिक है आज वुड. तो वुड कक्षा 10 के लिए, गोल्डन रेस बुक का नाम है, लेसन का नाम है अ हीरो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वुड. ठीक है, जाहिर सी बात है वुड जो है विल का पास्ट टेंस है, यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच. He told me that he would play kabaddi. उसने मुझे बताया कि वो कबड्डी खेलेगा. अब ये हो गया indirect speech. Direct speech में he said to me, I will play kabaddi. Direct speech हो गया. दूसरा example देखिए, दूसरा point है to express a past habit. जो हमारी पुरानी कोई आदत हो वो बताने के लिए, I would go up the hill daily in my childhood. अपने बचपन में मैं रोज पहाड़ पे जाया करता था. Here would can be substituted by used to. और देखिए would का इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहे तो यहां पर used to का यूज भी किया जा सकता है. Whenever I went there, I would see the shop closed. जब भी मैं वहां गया मुझे दुकान बंद मिली, ये इसका अर्थ हो सकता है. सी टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर. ऑफर यानी प्रस्ताव, कोई जैसे आप किसी को कुछ सुझाना चाह रहे हैं, वुड यू प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट, ये हो गई रिक्वेस्ट. वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, अपने कॉफी चाय का कप जो है किसी को ऑफर किया, तो ये ऑफर हो गया प्रस्ताव एक तरह से. वुड इज मोर पोलाइट देन विल. जाहिर सी बात है वही कैन कुड वाला मामला है, जैसे कुड ज्यादा पोलाइट है ऐसे ही वुड भी ज्यादा पोलाइट है. टू आस्क फॉर समथिंग मोर पोलाइटली, आई वुड लाइक योर सपोर्ट इन दिस इलेक्शन. इस चुनाव में मुझे आपका समर्थन चाहिए. आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस टिकट प्लीज. फिफ्थ नंबर पे है टू एक्सप्रेस वंस प्रेफरेंस. हमारी जो चयन है हमारा वो बताने के लिए, आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ यू. आपके साथ जाने से ज्यादा अच्छा है मैं घर पर रहूं. ही वुड रादर स्टडी इंग्लिश देन मैथमेटिक्स. वो इंग्लिश पढ़ेगा या He would rather study English than, वो गणित से ज्यादा अंग्रेजी को पढ़ना ठीक समझेगा. नाइन्थ टॉपिक है अब हमारा शेल. विल वुड की बात हो गई, अब शेल की बात करते हैं. मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शेल और विल दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर में. टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम विद फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन जो है उसका फ्यूचर बताने के लिए, आई शेल प्ले टेनिस इन द इवनिंग. ये सिंपल बिल्कुल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर सिंपल. मैं शाम को टेनिस खेलूंगा. वी शैल गो टू अजमेर टुमारो. हम कल अजमेर जाएंगे. नोट, इन प्रेजेंट डे इंग्लिश हाउ एवर देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू यूज विल इन ऑल पर्सन्स. आजकल जो है हर जगह विल का इस्तेमाल हो रहा है. टू इंडिकेट, दूसरा पॉइंट है टू इंडिकेट अ कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट. अगर धमकी देनी हो, कोई प्रॉमिस किया है या कोई कमांड आदेश देना है, तो शेल का यूज करेंगे. देखिए आप सी पी टी, इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट. यू शैल कम हियर एट वंस, कमांड हो गई, तुरंत यहां आओ. यू शैल गेट अ प्राइज इफ शी सिक्योर्स फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम. एग्जाम में अगर पहला डिवीजन आया तो आपको पुरस्कार मिलेगा, ये वादा हो गया. यू शैल बी पनिश्ड If you don't obey the rules, threat, धमकी. नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी. We often use shall
आई और शैल वी, अक्सर हम शैल आई शैल वी का क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करते हैं व्हेन वी आर आस्किंग और सजेस्टिंग व्हाट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जब किसी को सुझाव देना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाऊं। शैल आई बाय दिस बुक, क्या मैं ये किताब खरीदूं। शैल वी गो एंड सी दिस मूवी, क्या हम जाएं, आजकल तो सिनेमा हॉल बंद है इसलिए कोई सोचना भी मत। टेन शुड, शैल का शुड ये पास्ट टेंस है, यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ शैल। इन इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई शैल कम टुमारो, उसने कहा वो कल आएगा। ही सेड दैट ही शुड कम द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, सेकेंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, डी ओ, वी शुड कीप अवर वर्ड, हमें हमारे बात पर कायम रहना चाहिए। टू एक्सप्रेस सजेशन, एन एडवाइस और अ थिंग टू डू, यू शुड टेक बाथ डेली, यानी आप सलाह दे रहे हैं एडवाइस, रोज नहाना चाहिए। यू शुड सी द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वी शुड ऑबे अवर पेरेंट्स, हमें हमारे माँ बाप की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ है आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के बाद भी इसका उपयोग होता है, एक्सप्रेसिंग फियर, डर बताने के लिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। पांचवा है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, शायद। डीमोनिटाइजेशन शुड प्रिवेंट करप्शन इन फ्यूचर, हो सकता है भविष्य में विमुद्रीकरण, डिमोनिटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी उससे भ्रष्टाचार रुक जाए। एक्सरसाइज फिल, इसमें ए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट मॉडल्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ओके, देखिए कुड, विल, कैन, मस्ट, नॉट, वुड, कुड नॉट, मे, शुड नॉट, माइट, नीड नॉट, यानी कि कुड, विल, कैन ये तो हैं अफर्मेटिव, और वुड, मे, माइट और नेगेटिव में कौन कौन से हैं, मस्ट नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट और नीड नॉट। ओके, इन्हीं में से हमें भरने हैं, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाए, एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डिड नॉट फील वेरी वेल यस्टरडे, आई फिर ब्रैकेट है ब्लैंक, ईट एनी थिंग, मुझे कल अच्छा नहीं लग रहा था तो ठीक से कुछ खा नहीं सके, तो आई थिंक आई कुड नॉट आना चाहिए, आई कुड नॉट ईट एनी थिंग, और एनी थिंग आ गया उससे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, इफ यू वर्क हार्ड, यू खाली जगह हैव टू रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो अगले साल तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना होगा, यानी कि नेगेटिव का ही कुछ आएगा। तो देखते हैं हम इनमें से क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल से इसमें नीड नॉट, यू नीड नॉट हैव टू रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर। थर्ड क्वेश्चन, एट द एज ऑफ 10 शीला कुड प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, कुड आएगा खाली जगह, आई टेक अ फोटोग्राफ ऑफ यू, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, वुड, वुड आई टेक अ फोटोग्राफ, खाली जगह, यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू स्पीक फ्रेंच, ओनली अ फ्यू वर्ड्स, कैन आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, वी ब्लैंक ईट सो मच चॉकलेट, आई थिंक शुड नॉट, इट इज नॉट गुड फॉर मोरल ऑब्लिगेशन। सेवेंथ, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो, यू मस्ट नॉट बी लेट, मस्ट नॉट आएगा खाली जगह, आई खाली जगह, बी एबल टू हेल्प यू बट आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी, और लास्ट नहीं नाइन्थ, यू डू मी अ फेवर, विल यू,
Do me a favor, please. You, Khalijaga, worry about it. I have managed it. I think this may, last may, you should not worry about it. Yeah, you need not worry about it. I have managed it. So, ye, iski ek exercise bhi kar li humne, models ki. Aur kuch humne aaj models the, unko bhi pura kiya. Samjha. Okay. एक एक्सरसाइज है सी में, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. उसमें ब्रैकेट में जो हिंट्स हैं वो दिए हुए, उसके आधार पे मॉडल बनना है. सी में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल्स एक्सप्रेसिंग द नोशंस गिवन इन ब्रैकेट्स. व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड, ऑल खाली जगह स्टैंड इन अटेंशन. कमांड, कमांड में क्या आ सकता है? शुड. He said, it, khali jage rain, possibility, it may rain. Okay, may aega. Teesra hai, khali jage you give me your vehicle, request. So, request ke liye, could aa sakta hai, could you. You, khali jage, remain on leave tomorrow, permission. So, may. The clouds are low. बादल बहुत नीचे हैं. इट खाली जगह रेन, ये प्रोबेबिलिटी हो गया. इट माइट रेन, ज्यादा संभावना है. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन. शी खाली जगह बी इन द लाइब्रेरी. वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी कहाँ आया था, इसको देखते हैं. ये आज तो हमने जो पढ़ा है उसमें से तो नहीं है, इसको देखते हैं जरा. कल वालों में कहीं हो सकता है. आई थिंक विल आना चाहिए. Will, okay. Seventh, she khali jagah be in the library. Seventh ho gaya. The traitor khali jagah be immediately hanged. Should, should aaya gaya. Ninth question hai, khali jagah I make a call for you. Could I make? So is prakar hamare models complete hue. और छोटा सा ही टॉपिक था आज, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ था. नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम कल. व्हाट इज अमिस विद अस. तो आप लोग पढ़िएगा और फीडबैक दीजिएगा एंड देखते हैं. और हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छे से कर सकें, लेकिन सभी को मेहनत बहुत करनी है. इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है. तो ओके, आज के लिए इतना ही.

0: अरे सैंडी भैया स्कूल से आ रहे थे अपन, उसके सामने से वो कितना बदबू आ रहा था ना रस्ते में।
1: हाँ बहुत आ रहा था।
0: छोटे आदि तुझे नहीं आई बदबू?
2: अरे बहुत ज्यादा आई थी, नाक बंद कर ली थी।
1: सच्ची?
0: अच्छा
2: हाँ बहुत ज्यादा।
0: और तुझे बड़े आदि?
3: बहुत गंदी बदबू थी।
1: चलो ठीक है, आज दीदी से पूछेंगे इतना गंदगी होता कैसा ही है।
0: हाँ हेलो बच्चों।
4: हेलो दीदी, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आप जियो हजारों साल।
5: अच्छा मेरे बारे में बात कर रहे थे, पर मैंने तो सुना कि आप लोगों को नाक पे रुमाल रखना पड़ गया।
4: अरे हाँ। नहीं मतलब आपसे पूछने की बात
1: कर रहे हैं।
5: किस बारे में वो तो बताओ।
4: आदि एक्सप्लेन करेगा आप।
2: स्वच्छता के बारे में।
5: अच्छा हाँ भाई, ये टॉपिक तो बहुत अच्छा चुना आप लोगों ने, तो चलो एक काम करते हैं, आज हम स्वच्छता के बारे में ही बात करते हैं।
4: वाह दीदी बड़ा अच्छा सुझाव है।
5: ठीक है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्वच्छता से आप लोग क्या समझते हो।
4: साफ सफाई रखना।
5: साफ सफाई रखना? कहाँ कहाँ के साफ सफाई आप रखना चाहते हो या होनी चाहिए?
1: स्वयं को, घर के आसपास, हमारे चारों तरफ एरिया को।
5: सही कह रहे हो सैंडी, और बताओ।
2: नेबरहुड को।
5: नेबरहुड को? हाँ ये देखो आदि ने कितनी अच्छी बात कही। और आदित्य आप बताओ।
3: जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ से, स्कूल्स में,
4: हॉस्पिटल्स में,
5: हॉस्पिटल,
1: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड,
3: खुद के घर को।
1: वो तो पहले करेंगे,
4: उससे पहले खुद के कमरे को
1: फिर खुद को भी।
5: हाँ ये बात तो सही है, पहले खुद की सफाई भी जरूरी है। तो आप में से कितने लोग अपने कमरे को एकदम साफ सुथरा रखते हैं?
1: मैं कभी कभी कर लेता हूँ।
5: कभी कभी?
2: मैं भी कभी कभी।
5: अच्छा
4: मेरा पता नहीं।
3: मैं कभी।
5: हाँ भाई साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, और शुरुआत होती है हमसे और हमारे कमरे से। अच्छा ये बताओ मुझे, इतनी सारी जगह के आप लोगों ने नाम लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा साफ सफाई आपको कहाँ दिखती है?
4: दीदी मेरे ख्याल से मुझे तो कहीं नहीं दिखती।
2: मुझे भी।
3: हॉस्पिटल्स में।
5: हॉस्पिटल्स में साफ सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी होता है।
4: हाँ दीदी लेकिन
1: बट दीदी कोई कोई हॉस्पिटल में नहीं होते, ऐसा देखा है मैंने।
4: अगर होते भी हैं तो सिर्फ आईसीयू या बड़े वार्ड में, जनरल वार्ड में सब ज्यादा सफाई वफाई नहीं करते वो लोग।
5: मतलब हमें कहीं कहीं साफ सफाई नहीं भी दिखती है। लेकिन ज्यादातर जगह कुछ लोग इसीलिए एम्प्लॉयड होते हैं कि वो लगातार साफ सफाई का ध्यान रखें। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद है क्या कि आप लोगों ने साफ सफाई का कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा हो?
4: हाँ टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा है ना।
5: अच्छा कौन सा?
4: स्वच्छ भारत अभियान।
5: हाँ बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी चलाया ही जा रहा है।
1: हाँ दीदी
5: आप लोग क्या क्या जानते हो उस अभियान के बारे में?
1: दीदी मुझे तक जहाँ तक याद है कि ये 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब ऐलान किया था कि पूरे देश में साफ सफाई करेंगे और 2020 तक पूरा भारत पूरा स्वच्छ होगा, उन्होंने अभियान चलाया।
5: और आदि?
3: हमें अपने चारों तरफ को साफ रखना है और फिर शहरों को विकास के रास्ते पे लाना है।
5: ये बात तो आदित्य ने बहुत अच्छी कही क्योंकि साफ सफाई से विकास का रास्ता खुलता है ना।
1: हाँ दीदी।
4: दीदी और एडवर्टाइजमेंट में ये भी बताया था ना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे छोटे छोटे बच्चों की मदद से जगह साफ कर रहे थे ना। आदि तूने देखा था?
3: नहीं।
4: सैंडी भैया?
1: मैंने नहीं देखा।
4: अरे यार कोई टीवी देखता है कि नहीं?
1: हम बहुत कम टीवी देखते हैं।
5: बहुत सारे ग्रुप्स बनाकर अलग अलग जगहों पर सफाई का अभियान चलाए गए थे।
1: और हम दीदी हम लोगों ने किया भी है सफाई।
5: अच्छा कहाँ किया सैंडी?
1: स्कूल में।
4: हमने नाले की,
1: हमने जो हमारे स्कूल का कैंप चल रहा था 7 दिन का NSS का, तब उसमें हम लोगों ने पहले क्लास सफाई किया, फिर ग्राउंड, फिर पूरी स्कूल, उसके बाद से फिर हमारे आसपास के जितने स्कूल थे वो, फिर पूरे रोड को 7 दिन हम लोगों ने पूरा सफाई किया था स्कूल में।
5: 7 दिन पूरी सफाई की? तो स्कूल बिल्कुल शाइन कर रहा हो।
1: हाँ फिर आसपास की भी सफाई की थी हम लोगों ने, और फिर हमने ना पैम्पलेट बना के लोगों को जागरूक किया कि आप लोग सफाई रखो, कूड़ादान रखो, उसके लिए हमने रैली भी निकाली थी।
2: मैंने अपने गली की सफाई की थी।
5: अरे वाह।
4: और दीदी हम लोगों के घर के सामने से जो पानी का नाला गुजरता है उसमें अक्सर जब पानी बंद हो जाता है लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उसकी हम लोगों ने मिलकर सफाई करी थी।
5: अच्छा।
4: और उस टाइम हमने DJ में गाना भी बजाया था स्वच्छ।

0: और आदित्य?
1: हम स्कूल की तरफ से कैंपिंग के लिए गए थे, जहाँ पर गए थे वहाँ पर बहुत कूड़ा था, तो वहाँ पर भी हमने सफाई की थी। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता एक मंदिर है, पर नाम तो याद नहीं है अब। वहाँ पर हमने साफ सफाई की थी।
0: वहाँ पे आप लोगों ने साफ सफाई की थी, तो साफ सफाई आप लोगों ने किस प्रकार से की? झाड़ू से, हाथ से, क्या उठाया, किस तरह से आपने सफाई?
1: रोड पे बहुत सारे कचरे पड़े थे, तो हमने झाड़ू से उसको हटा के एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। फिर बाद में कुछ कुछ जगह पे रैपर्स पड़े थे, उसको भी हटाया। वो हमने हाथ में पॉलीथीन पहन के उसको उससे साफ कर लिया। और बाद में एक जो बायोडिग्रेडेबल थे उनको खाद बनाने के लिए गड्ढे में डाल दिया और बाकी सब जला दिया।
0: ये बात तो आप लोगों ने बहुत अच्छी नोटिस मिलाई कि बायोडिग्रेडेबल कुछ चीजें होती हैं। तो क्या आप लोग जानते हो कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे खाद बन सकती है, या वो मिट्टी में उपयोगी हो सकती हैं, या पानी को उनसे कोई नुकसान नहीं होता, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे नुकसान होता है, जिनकी साफ सफाई हमें तुरंत करनी चाहिए?
2: दीदी, जैसे सूखे पत्ते, डाली और जो हमारा
1: सब्जियों के छिलके,
2: वेस्ट मैन्योर।
0: बिल्कुल, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स। और बताओ सैंडी, आप जानते हो उस बारे में कुछ?
3: कुछ पॉलिथीन में जो अपने जलाते हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, उनको भी नहीं जलाना चाहिए सभी चीज।
0: और कई बार हम पानी में जब हम कोई भी ऐसा मटेरियल लेके आते हैं पॉलिथीन सहित, अगर उसे डाल देते हैं तो वो पानी को भी बहुत नुकसान करता है।
3: पानी को रोक लेता है,
0: क्योंकि पॉलिथीन को हम कहीं भी डिग्रेड नहीं होते, तो इसीलिए वो हमारे एनवायरनमेंट को, मिट्टी को, पानी को नुकसान करता है। तो उससे हमेशा हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए। ठीक है, और बताओ आदि, आपने कैसे और क्या साफ किया?
4: मैंने अपनी गली को झाड़ू से साफ किया था।
0: झाड़ू से साफ किया, अच्छा। और सैंडी आपने?
3: मैंने भी झाड़ू, फिर दोस्तों की मदद से, फिर कुछ उठाने के लिए हम लोगों ने कुछ सर ने दिया था उठाने के लिए, तगाड़ी बड़ी, उसमें कचरा उठाया, फिर हम लोगों ने आसपास की सफाई की।
0: और आकाश आपने?
2: दीदी हमने फावड़ा और तगाड़ी और झाड़ू से,
0: अच्छा,
2: झाड़ू से साफ किया, फावड़े से तगाड़ी में डाला, तगाड़ी से बाहर फेंक दिया, मतलब एक जगह इकट्ठा किया।
0: एक जगह इकट्ठा किया, तो ये भी हम एक हेल्प तो कर ही सकते हैं कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो बाद में जिन्हें कूड़ा उठाना है उन्हें आसानी हो जाएगी। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं डेली की हैबिट्स जिनका आप ध्यान रखते हो ताकि ये कूड़ा ऐसे फैले ही ना, कोई ऐसी चीजें हैं
2: जिनका हम ध्यान रखते हैं?
0: हाँ, जिनका आप ध्यान रखो तो इतना कूड़ा कभी फैले ही नहीं।
2: प्लास्टिक,
3: घर में कुछ खाने की चीजें लाए फिर उनके जो कचड़े होते हैं हम लोग एक कूड़ादान में डाल देते तो उससे कचड़ा नहीं होता, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और जो रखते हैं हम लोग।
0: ये सैंडी ने अच्छी बात कही कि अगर कोई भी हम चीज लेके आते हैं तो डस्टबिन में डालते हैं डायरेक्ट, तो कूड़ा बाहर फैलता
3: ही। घर में डस्टबिन रखना भी चाहिए।
0: हाँ, और जब घर के बाहर जाते हैं तब?
2: तब दीदी हमें हमारे जो चिप्स और वगैरह खाते हैं उन्हें आजू बाजू नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए।
3: हाँ, और मैं तो क्या करता हूँ, अगर मेरे पास बैग है, स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग को साइड में डाल देता हूँ, फिर घर आके डस्टबिन में डाल देता हूँ, देखता हूँ कि आसपास डस्टबिन है तो उसमें डाल देता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि बाहर हम जाएं तो डस्टबिन ढूंढें, जैसा आकाश ने बोला, और अगर डस्टबिन ना मिले तो जैसा सैंडी ने कहा, अपने पास थोड़ी देर हम उसे रख के फिर जहाँ डस्टबिन मिले उसे वहाँ फेंक दे, इससे हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं।
3: हाँ दीदी,
0: है ना, देखने में तो छोटी सी बात लगती है लेकिन हर एक अगर ऐसा करे तो बताओ कहीं स्वच्छता अभियान की जरूरत ही ना पड़े शायद।
3: हाँ।
0: और स्वयं ही हमारा भारत स्वच्छ हो, है ना आदि?

0: हटा सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, हम अपने घर के बाहर का कूड़ा भी हटा सकते हैं, और अगर रैपर्स वगैरह हमें दिख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स ने डाले या फिर किसी ने आसपास डाले तो उठा के हम उसे भी डस्टबिन में डाल सकते हैं।
2: हाँ दीदी, और फॉर एग्जाम्पल हम सोचते भी कि मैं क्यों करूँ, ऐसा कभी कभी होता है कोई चीज़ कड़ा कचरा देखते हैं तो मैं भी और कोई भी सोचता है कि मैं क्यों फेंकूँ उठा, तो हमें सोचना चाहिए कि वो हाँ पूरा देश हमारा है, हमें साफ करना है तो हमें खुद भी उठाना चाहिए।
1: ये देखो कितनी छोटी सी बात में आपने कितनी बड़ी बात कही, जैसे हमारा घर हमारा है वैसे हमारा
2: देश भी अपना है,
1: देश भी हमारा है तो इसकी स्वच्छता का ध्यान भी हमें ही रखना है। और एक बात बताऊं बच्चों?
3: हाँ दीदी।
1: कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे।
3: हाँ हाँ।
1: तो क्या पता हम कुछ अच्छा कर रहे हो या हमें देख कर कि हम कैसे साफ सफाई रख रहे हैं और उनको भी शिक्षा मिले।
3: हाँ दीदी,
1: है ना। और अच्छा आप ये बताओ साफ सफाई के बारे में आप अपने देश को कैसा देखना चाहते हो, या अपने देश का कोई विजन है या कुछ सोचते हो कितना साफ सुथरा होना चाहिए या क्या क्या चीजें होनी चाहिए?
4: मैं चाहता हूँ इस पूरी धरती को क्लीन रखा जाए।
3: कैसे आदि?
4: साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके।
1: हाँ मतलब झाड़ू पोछा जैसे हम घर पे करते हो तो एकदम क्लीन हो जाता है ना। तो वैसे ही चमकता हुआ हर स्थान होना चाहिए ऐसा आदि चाहता है ना। और
2: आदि अगर ये तुम्हें करना है तो तुम अपने कर्तव्य समझना चाहिए, पता तुम्हें? हम अगर करना चाहते हैं तो हमें अपना पहले खुद को सफाई करनी पड़ेगी, अगर हम खुद करना स्टार्ट कर देंगे तो कोई ना कोई करना स्टार्ट करेगा। देख देख
1: बिल्कुल, छोटे से छोटी मदद भी बहुत बड़ी मदद की एक निशानी होती है।
2: कहा ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो ऐसे हो सकता है।
3: खड़े खड़े से नदी, नदी नदी से समुद्र।
2: हाँ।
1: इस तरीके से हम अपना अपना करें तो पूरा देश क्लीन हो सकता है।
2: हाँ।
1: और आदित्य आप कुछ कहना चाहते हो?
0: हमें कचरा पानी में नहीं फेंकना चाहिए, उससे वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड्स में भी नहीं फेंकना चाहिए, उससे लैंड पोल्यूशन होता है, जिससे पानी अगर नाले में डालते हैं तो नाले का पानी अटक के बाहर आ जाता है, उससे और भी गंदगी फैलती है, हमें वो नहीं करना चाहिए।
1: ये बात तो आपने सही कही, और फिर परेशानी तो हमें ही उठानी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर अपने आसपास आप देखते हो कि कोई कूड़ा फैला रहा है या ध्यान नहीं दे रहा तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे?
2: दीदी पहले तो हम उन्हें समझाएंगे कि आप ऐसे कचरा मत फेंका करो, प्यार समझाएंगे, नहीं तो क्या पता बुरा मान जाए वो तो हमें डांटने लगे कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम उससे बड़े हो क्या। पहले तो हम उन्हें प्यार समझाएंगे कि अंकल कचरा मत फेंको, यहाँ अपना देश है, अच्छा नहीं लगता है, अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खुद ही उठा के डाल देंगे।
1: ये सैंडी अपने बात बहुत अच्छी कही, एक बार हम प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे और नहीं समझेंगे तो हम खुद कर देंगे। ठीक है, और ऐसा कितनी बार करोगे?
2: हर टाइम,
1: हर बार।
2: हाँ।
1: बुरा तो नहीं लगेगा?
2: नहीं।
1: और आप लोगों को?
3: हमें भी नहीं लगेगा,
4: हमें भी नहीं लगेगा।
1: हाँ क्योंकि हम बच्चे ही तो देश का भविष्य है तो हमें तो ये करना ही है।
2: हाँ दीदी,
1: है ना।

0: और आकाश आप बताओ।
1: दीदी हमें जो जैसे बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है उनको ही इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा, मतलब पॉलिथिन और इन सब का इस्तेमाल ना करके हम उनकी मदद ले लें। अगर बाजार में हम कुछ सब्जी खरीदने जाते हैं तो कपड़े का थैला लेके जाएं पॉलिथिन को अवॉइड करके, क्योंकि अगर हम पॉलिथिन ना खरीदेंगे तो जो पॉलिथिन दुकान से हम लेते हैं वो वाले कंपनी से नहीं मंगवाएंगे, अगर दुकान वाले नहीं मंगवाएंगे तो वो लोग बनाएंगे नहीं।
2: और इससे अगर पॉलिथिन का यूसेज कम हो जाएगा तो कूड़ा भी कम हो जाएगा। ये बात तो बहुत अच्छी बोली आपने, ये बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। और आदित्य आप बताओ।
3: हमें जो कूड़े होते हैं उन्हें अगर बायोडिग्रेडेबल हो तो उन्हें बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो तो उन्हें अलग से डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और हमें 4 आर्स वो रिसाइकल रीयूज रिड्यूस एंड रिकवर को भी फॉलो करना चाहिए।
2: अच्छा, और इसका क्या मतलब होता है?
3: मतलब कि वापस इस्तेमाल करना चाहिए, उनके यूज को कम करना चाहिए, उनको वापस मतलब बनाने की जैसे पिघला के वापस बनाते हैं।

0: करना चाहिए और उनकी जगह दूसरी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए।
1: बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे एनवायरनमेंट भी बचेगा और कूड़ा भी नहीं फैलेगा, साफ सफाई भी रहेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन कौन अपनी मम्मी को घर में साफ सफाई में मदद कर रहा
2: है? मैं।
1: सब लोग?
2: हाँ।
1: अरे वाह,
3: पर कभी कभी।
1: क्या क्या करते हो आप लोग?
4: मैं रोज करता हूँ।
1: हाँ आकाश बोलो।
5: मैं जब मम्मी बीमार होती है या तो मैं ही घर की झाड़ू पोछा करता, बर्तन भी मांज देता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ।
1: सफाई में मदद करवाते हो आप? और आदि?
6: मैं मम्मी की मदद कर पाता हूँ साफ सफाई करने में, अगर कमरे में कचरा फैला हो तो।
1: अच्छा, मम्मी के साथ झाड़ू करवाते हो, मतलब उठाते हो कचरा?
6: किताब को भी उठाता हूँ, जो चीजें फैली होती हैं उन्हें उठाता हूँ, मम्मी किचन में काम करी होती है।
1: कई बार कूड़ा तो होता ही है, लेकिन जो हमारा सामान भी बिखरा होता है ना, उसको भी साफ सफाई करके अच्छे से रखना बहुत जरूरी होता है।
3: हाँ दीदी।
1: और ये तो हम सब बच्चे कर सकते हैं।
2: हाँ।
1: और सैंडी आप बताओ।
3: इससे मम्मी कोई दूसरा काम कर रही हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि कचरा फैला हुआ है या कुछ स्थिर नहीं है, तो मैं उनको ठीक ठाक कर देता हूँ। बिस्तर हुआ, फिर मेरे कुछ, मैं कभी पढ़ा हो तो मेरे बुक्स इधर उधर फैले रहते हैं, अपने बुक्स को भी रख लेता हूँ। पापा के कुछ कागज पड़े तो पापा का कागज भी सही कर देता हूँ, तो ऐसे मम्मी की हेल्प करता हूँ। कभी कभी संडे को पूरा दिन मेरा छुट्टी रहता है तो फिर मम्मी की मैं झाड़ू लगाने में हेल्प कर देता हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, जब हमारी छुट्टी हो तो अपनी मम्मी को भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वो ही साफ सफाई रखते हैं। और आदित्य आप बताओ।
0: मैं अपने खुद के कमरे को साफ कर लेता हूँ और अपने सारे कपड़े वो सब खुद धोता हूँ, तो मम्मी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर उसके बाद मैं मम्मी को दूसरे कामों में मदद कर देता हूँ, जैसे झाड़ू करना और बर्तन मांजने में कभी कभी।
1: ये भी बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले तो अगर हम खुद का काम ही अच्छे से करें तो ये भी बहुत अच्छी मदद हो जाती है ना। अच्छा मुझे ये बताओ साथ में कि साफ सफाई से फायदा क्या होता है, हमें साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए?
0: बीमारियां नहीं फैलती चारों ओर।
1: बीमारियां नहीं फैलती, आदित्य ने अच्छी
3: बात। साफ सफाई से हमारा मन अच्छा रहता है, कोई भी काम करने में अच्छा लगता है, और कोई चीज अगर स्थिर हो साफ सफा हो तो हमें देखने भी अच्छा लगता है, कोई घर पे पहले तो बोला हाँ अच्छा लगता है, और हमारे मन को भी अच्छा लगता है।
6: अगर साफ सफाई नहीं होती तो अपना मन नहीं लगता कुछ भी काम करने में, और अगर साफ सफाई होती है तो सब कुछ करने का मन करता है।
5: हाँ, जैसे कॉपी में अगर सुंदर राइटिंग से लिखो तो पढ़ने का मन करता है।
3: हाँ, उदाहरण चाहिए दिया।
5: और दीदी एक और तरीका है कि अगर हम कूड़ा फैलाते हैं तो उसकी जो बैड स्मेल है वो पूरे एनवायरनमेंट को दूषित करती है, और जब हम स्मेल लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो गंदी स्मेल भी घुस जाती है,
3: जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है।
1: और बच्चों पता है, हमने तो कूड़ा फैलाया या छोड़ दिया, लेकिन आने वाले कितने लोग उसको देख के बुरा फील करते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है बताओ?
6: हमारी
1: हो जाती है, क्योंकि हमारे कारण न जाने कितने लोगों को परेशानी हुई। तो इसीलिए चाहे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे बस से, चाहे रोड पे, चाहे स्कूल्स में, हमें अपने कूड़े का तो ध्यान रखना ही है, कहीं फैलाना नहीं है, और जितनी हम साफ सफाई में हेल्प कर सकते हैं हमें करनी है।
3: हाँ दीदी।
1: अच्छा एक चीज और बताओ कि आप लोगों ने कभी ऐसी कोई एक्टिविटी या कूड़ा फैलाते कभी ऐसा कुछ देखा हो किसी को और आपको अच्छा नहीं लगा हो, या कहीं पे आप गए हो और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो क्योंकि वहाँ साफ सफाई नहीं थी?
6: हमारा शामली बहुत गंदा है, कीचड़ पड़ी रहती है, कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है, अब तो कुछ थोड़ा सुधर गया है, पहले बहुत गंदा था।
1: अच्छा मतलब अब साफ सफाई वहाँ पे रखी जाती है।
6: हाँ।
1: देखो कहीं हम भी जाते गंदा होते तो हमें अच्छा नहीं लगता ना।
3: और दीदी मैं तो अपने आब रोड की बोल रहा हूँ, आब रोड में वो नदी है ना उस साइड में, मैं उधर गया था, नदी पास में है और लोग उसके पास में कचरा फेंकते हैं, उससे एक तो प्रदूषण हो रहा, ऊपर से सफाई भी नहीं है, और जो वो कचरा नदी में जा रहा तो उससे और भी प्रदूषण हो रहा है और भी गंदगी हो रही है, मुझे देख कर बहुत बुरा लगा था।
1: और हम जो पानी को एंजॉय करते हैं, प्रकृति को एंजॉय करते हैं, वो भी नहीं कर पाते
3: नहीं।
1: है ना। हाँ आदि आप बताओ।
6: वो जब मैं आबू रोड से कहीं और जा रहा था तो बीच में एक नदी पड़ती है, तो वो नदी नहीं थी, पूरा नाला बन गई थी।
5: फिर आदि
6: वहाँ से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी, नाक बंद कर करके जा रहे थे।
1: अच्छा हाँ सही बात है भाई, अगर बदबू आएगी तो फिर हमें देखने का भी मन नहीं करता उधर की साइड, है ना। और आप बताओ आकाश।
5: दीदी मैं बताना चाहता हूँ, डायमंड कॉलोनी के पहले पीछे के साइड में वो जगह बहुत गंदगी है, वहाँ कीचड़ वीचड़ आता है, मतलब गड्ढा जैसा है, तो वहाँ पे बहुत सारे सुअर रहते हैं। जस्ट उसके सामने ही एक चक्की है, तो जब चक्की में जाता हूँ तो सब आटे की सुगंध आती है, तो उसका पता नहीं चलता, लेकिन जैसे थोड़ा सा बाहर जाता हूँ ना, बहुत गंदी बदबू आती
1: है, वहाँ अच्छा नहीं लगता,
5: मजा नहीं आता।
1: आदित्य आप बताओ।
0: हाँ, एक बार जब मैं बाहर जा रहा था अब रोड के ट्रेन से, तो रेलवे स्टेशन पे लोग खाना खा रहे थे और रैपर्स थे वो वहीं पे फेंक देते थे, और कोई कुछ लोग पान खाते थे और वहीं पे थूक देते थे, तो उससे बहुत बदबू आती
3: है।
5: किस जमाने में अब रोड साफ हुआ करता था, लेकिन अब नहीं,
3: अब अभी बहुत देखने मिलता रेलवे स्टेशन पे, ज्यादातर ज्यादा गंदगी तो रेलवे स्टेशन पे,
1: क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते थे।
3: डस्टबिन खोजना चाहिए, नहीं मिले तो बेगम रखना चाहिए,
1: नहीं तो ट्रेन के डस्टबिन होते हैं। हाँ। हम एक पॉलिथिन है, एक है ना, ऐसे ऐसे उपाय हम अपना
3: तो करना चाहिए, क्योंकि हमारी वो हमारा भी कर्तव्य है, वो हमारा है खुद का
5: भी है,
3: तो उसका
1: और बेनिफिट किसे मिलेगा लेकर, क्योंकि गंदगी तो हमें से किसी तरह की होती है।
3: हाँ, ऐसे तो बहुत सारी बीमारियाँ,
1: जब हम साफ सफाई रखते हैं तो फिर बीमारियों से भी बचते हैं।
3: जी,
1: और जैसे आपने कुछ बर्तन में खाना रखा है या कुछ रखा है तो उसे ढक कर रखें।
3: हाँ।
1: है ना, साफ सफाई में ये सब चीजें भी आती है ना। जब हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से धो के इस्तेमाल करें,
3: नहीं तो उससे भी और बीमारियां फैलती
1: हैं। नहीं तो उन सब चीजों से भी बीमारियां फैलती हैं। जहाँ हमारा खाने पीने की चीज है, हमें वहाँ भी बहुत ही शुद्धता और सावधानी रखनी चाहिए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को इस पे कोई मैसेज देना चाहोगे? सैंडी आप बोलो।
3: मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे बताया कि वो सब साफ सफाई रखते हैं, वो सब मुझसे काफ़ी अच्छे हैं, पर मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि डेली साफ सफाई रखो, आस पड़ोस, अपने स्कूल, अपने विद्यालय, अपना कॉलेज, जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक साफ सफाई रखो।
1: ठीक है, बिल्कुल, जहाँ तक हो सके हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। और आदि,
6: मैं अपने दोस्तों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो पूरी अपने एनवायरनमेंट और अपने नेबरहुड क्लीन रखें, और अपने घर को भी और अपने आप को भी।
5: और दीदी मेरे दोस्त किसी को करते देखेंगे ना तो वो भी कूद जाएंगे करने।
1: तो मतलब वो बहुत लोगों के लिए एग्जांपल्स बन सकते हैं, है ना? तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए?
5: क्या करना चाहिए? मैं उन्हें एग्जांपल दूंगा, देखो चैलेंज दूंगा, मैं कर रहा हूं।
1: हमें अच्छे अच्छे चैलेंजेस एक दूसरे को देने चाहिए।
3: हाँ।
1: और आदित्य आप बोलो।
0: मेरे दोस्त भी साफ सफाई तो रखते हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ उन्हें, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस।
1: तो आज से आप लोग साफ सफाई रखोगे?
2: हाँ दीदी।
1: प्रॉमिस?
2: प्रॉमिस।
1: अरे वाह, तो चलो सब लोग अपने लिए एक बार ताली बजा दो।

0: आज हमने बात की साफ सफाई पे और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए जो कि हम और हमारे फ्रेंड्स मिलके फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे बच्चों की दुनिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम सभी प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए
1: बाय बाय।

0: सुंदर।
1: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
2: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
1: सोनोग्राफी वो किस लिए?
2: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
1: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
2: फिर तुम शुरू हो गई।
1: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
2: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद का महाप्रयाण हुआ, परंतु क्या वो सचमुच का ही चले जाना चिर निर्वाण था? क्या ये सही है कि हम भारतवासियों के साथ चिर विच्छेद था? नहीं, स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके संदेश, उनका जीवन दर्शन, उनका प्यार हमारे साथ है और चिरकाल रहेगा। एक समय उन्होंने कहा था,
1: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़कर चला जाऊं, परंतु मैं कार्य करता रहूंगा। जब तक संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता, मैं सर्वत्र मानव मात्र के मन में प्रेरणा जगाता रहूंगा।
2: कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रोमा रोला को एक पत्र में लिखा था,
3: यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं।
2: कितनी विलक्षण एवं अद्भुत वाणी है। इन दो वाक्यों के माध्यम से ही गुरुदेव ने स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी प्रासंगिकता की घोषणा कर दी है।
0: यदि नव भारत का निर्माण करना है तो पहले हमें भारत के शाश्वत सनातन रूप को, उसके विगत 5,000 सालों से चलता आ रहा चैतन्य स्वरूप को जानना होगा। और यदि हम भारत का सही परिचय पाना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें विवेकानंद द्वारा दिखाए गए पथ पर चलना होगा, सुनना होगा, जानना होगा।
2: अर्थात उन्हें जाने बिना भारत के मूल स्वरूप को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपने ही शब्दों में विवेकानंद स्वयं एक घनीभूत भारत थे।
0: स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, किंतु उनके ज्वलंत विचारों ने 20वीं शताब्दी के भारत और विश्व की चेतना को झकझोर दिया था। हमारे सभी प्रमुख जननायकों, महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त कर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था और उन्हीं के विचारों से प्रकाशित होकर भारत को प्रगति के पथ पर ले गए थे।
2: आज हम 21वीं सदी के प्रारंभ में खड़े हैं। इस नई शताब्दी में, नए भारत के निर्माण में हमें जिस प्रकाश स्तंभ की आवश्यकता है, वो स्वामी जी के विचारों में ही निहित है। उनकी संज्ञा विवेकानंद ही है। वे आज प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके गंभीर, मनोरम, मोहक, तर्कसंगत और व्यवहारिक संदेश की आज भारत को बेहद जरूरत है। उनकी प्रासंगिकता हम आज भी महसूस करते हैं।
0: इसी प्रसंग में रूस के प्रख्यात भाषाविद एवं विवेकानंद साहित्य को आत्मसात करने वाले श्री चेलीशेव ने स्वामी जी के बारे में लिखा था,
3: वे केवल धर्मनायक ही नहीं, इससे कहीं अधिक हैं। वे शांति, मेल और मातृत्व के मसीहा हैं। उनका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक था। आज की दुनिया में समकालीन भारत एवं विश्व के लिए वो और भी ज्यादा प्रासंगिक बन गए हैं।
2: चेलीशेव के इस कथन में किसी कवि की भावुकता नहीं, वरन एक चिंतनशील मनीषी की युक्तिपूर्ण भावना ही व्यक्त हुई है।
0: स्वामी विवेकानंद के विषय में उनकी योग्यतम शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा था,
4: स्वामी विवेकानंद महान देशप्रेमी थे। मातृभूमि की आराधना को ही वे सर्वोपरि मानते थे।
0: वस्तुतः स्वामी जी के प्रति ये एक सही समझ है। स्वामी जी के पूर्व भी भारत ने अनेक रत्न महात्मा उत्पन्न किए, किंतु उन सब ने व्यक्तिगत मोक्ष का ही संदेश दिया था। विवेकानंद ही पहले ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने धर्म को जीवन से जोड़ा, समाज और राष्ट्र से जोड़ा। उन्होंने धर्म को पहाड़ और गुफाओं से उतार कर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ढालने का वंदनीय कार्य किया है।
2: हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक जीव ब्रह्म है, वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही युवक युवती है, और लाठी टेक कर चलने वाला वृद्ध भी वही है, परंतु व्यावहारिक जीवन में हमने इस बात को नकार दिया और हर तरह के भेदभाव हमारे समाज में छा गए। स्वामी जी ने कहा था,
1: हमें प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में शुद्ध अद्वैत की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जंगलों और पहाड़ों में रख गए हैं। मैं इसे अब वहां से लाकर संसार और समाज में प्रचारित करने आया हूं। जो मंदिर में शिव की उपासना करते हैं उनकी पूजा प्रारंभिक है, और जो जीव को शिव मानकर उनकी सेवा करते हैं उनसे शिव अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यही असली पूजा है, यही सच्ची उपासना का सार है।
0: स्वामी विवेकानंद एक घुमंतू सन्यासी या परिव्राजक थे। उन्होंने सारे भारत की यात्रा कर देश की जनता की दुरावस्था को देखा था। जनता की दुर्दशा देख उनका मन रो पड़ता था। उन्हें लगा था कि जब तक गरीबों की व्यवस्था में सुधार नहीं होता तब तक भारत के नव निर्माण की आशा नहीं की जा सकती।
2: लोगों को लगता था नव निर्माण क्यों, क्या जरूरत है। स्वामी जी समझते थे कि भारत सनातन है, परंतु उस पर रूढ़ियों की काई जम गई है। उसे जब तक मिटाया नहीं जाता तब तक भारत अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगा। उन्होंने घोषणा की,
1: मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा पाप राष्ट्रीय पाप है आम जनता की उपेक्षा करना, और वही हमारे पतन का कारण है। भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद द्वारा पीसना।
0: निम्न जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार से दुखी होकर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा था,
1: पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्तर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निम्न जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घूंटता हो। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब मनुष्य एक दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे?
2: तो फिर भारत के नवनिर्माण का उपाय क्या है?
1: हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्तित्व खो दिया है। हमें राष्ट्र के खोए व्यक्तित्व को वापस लाना है और आम जनता को उठाना है। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहितों तथा मठाधीशों के प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा।
2: उन्होंने इसी विषय पर और भी कहा था,
1: धर्म की बात सुनना हो तो पहले इस देश के लोगों के पेट की चिंता को दूर करना होगा। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं और हम उन्हें जरूरत से ज्यादा धर्मोपदेश दे रहे हैं, क्या मजाक है।
0: स्वामी जी ने किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त और विशेषाधिकार से रहित भारतीय समाज की कल्पना की थी। उनकी दृष्टि में विशेष सुविधा, योग करने की धारणा मानव जीवन के लिए कलंक स्वरूप है। शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सुविधाओं में से सर्वाधिक बुरा है आध्यात्मिक सुविधाओं का विशेषाधिकार। स्वामी जी की धारणा थी कि ये चारों प्रकार के शोषण मनुष्य के विकास में सबसे बड़े बाधक तत्व हैं, अतः इनका निराकरण होना चाहिए। वे कहते थे,
1: यदि ऐसे राज्य की स्थापना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके, उनके गुण दोषों को त्याग कर, तो वो आदर्श राज्य होगा।

0: भारत की समस्त दुर्दशाओं के मूल में स्वामी जी ने शिक्षा के अभाव को देखा है। उनका कथन है,
1: यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूम घूम कर वहाँ के गरीबों को भी अमन चैन और विद्या को देखकर मुझे अपने देश के गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? जवाब मिला, शिक्षा। शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से मन में ब्रह्म भाव जाग उठता है, परंतु हमारा वो ब्रह्म भाव क्रमशः संकुचित और खत्म होता जा रहा है।
0: स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में और बहुत कुछ कहा है।
1: भारत में हम गरीबों को, पतितों को क्या समझते हैं? हीन, तुच्छ और दयनीय। राक्षस जैसा क्रूर समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं, पर वे जानते नहीं कि वे भी मनुष्य हैं। समाज की ये दशा दूर करनी होगी।
0: अतः हमें यदि आधुनिक भारत का निर्माण करना है तो हमें स्वामी जी के कहे अनुसार भारतवासियों में सही शिक्षा का प्रसार करना होगा, उनमें मनुष्यत्व का भाव भरना होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करना होगा, उनकी दिव्यता को जागृत करना होगा। एक शोषण मुक्त स्वाधीन समाज के लिए मुक्त समाज और राष्ट्र के लिए ये अनिवार्य शर्तें हैं। इनके अभाव में अभिनव भारत नहीं गढ़ा जा सकता।
2: स्वामी जी ने हमें बताया कि चरित्र, सेवा, त्याग और प्रेम के द्वारा ही हम भारत का विकास कर सकते हैं। जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे तो कई लोगों ने उनसे कहा कि वे भारत की पराधीनता को दूर कर दें। जवाब देते हुए स्वामी जी ने कहा था,
1: ठीक है, मान लो कि मैं कल भारत को स्वतंत्र कर देता हूँ, तो क्या तुम उस स्वतंत्रता की रक्षा कर पाओगे? सारे देश में ऐसे लोग कहाँ हैं जो ऐसा कर सके?
0: इस तरह उन्होंने हमें बता दिया कि जब तक हमारे पास चरित्रवान मनुष्य नहीं होंगे, तब तक ना कुछ किया जा सकता और न ही कुछ पाया जा सकता है।
2: स्वामी जी ने देश के नव निर्माण के लिए सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा,
1: यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें पहले अपनी कोठरी के द्वार खुले रखने होंगे। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास जितने अभावग्रस्त लोग रहते हैं, उनकी तुम्हें यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित हैं, उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो। जो भूखा है, उसके लिए खाने का प्रबंध करो। जो ज्ञानी है, उसे वाणी द्वारा जहां तक हो सके समझाओ।
0: स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत तभी जगेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और तन से उन करोड़ों भारतवासियों के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता और अज्ञानता के अगाध सागर में डूबते जा रहे हैं।
2: ये सेवा अहंकार भाव से नहीं, उपासना के भाव से होनी चाहिए। स्वामी जी का कहना था कि जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ये एक प्रकार की उपासना है, और जब आप मानवता की सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते हैं तो ये उपासना का दूसरा प्रकार हो जाता है, क्योंकि जीव वस्तुतः शिव ही है। वे कहते थे,
1: हम मंदिरों में जाकर पाषाण मूर्ति में देवता की जो उपासना करते हैं, उसके लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, जबकि मनुष्य में देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। वो तो चलता फिरता मंदिर है और उसमें देवता स्वयं ही विराजित हो गए हैं। अतः ऐसे पीड़ित और असहाय मनुष्यों की सेवा रूपी उपासना से हमें ईश्वर का ही साक्षात्कार होगा।
0: आज हमारे सामने शायद ही कोई ऐसी समस्या है जिस पर स्वामी जी की तीव्र और पैनी दृष्टि न पड़ी हो और उन्होंने उसका समाधान प्रस्तुत न किया हो। जरूरत केवल इस बात की है कि हम उन समाधानों की ओर गहराई से ध्यान दें, उन पर चिंतन, मनन और अमल करें।

0: ये सच है कि देश आज अनेक कुरीतियों के अंधकार में आ फंसा है, लेकिन बुराइयों का रोना रोने मात्र से ही तो काम नहीं चलेगा, हमें अच्छाइयों की ओर जाना ही होगा। स्वामी जी ने बड़े प्रेरक शब्दों में एक मंत्र दिया था।
1: मैंने भारतवासियों से बारंबार कहा है और अब भी कह रहा हूं कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अंधकार फैला हुआ है तो क्या घोर अंधकार, भयंकर अंधकार कहकर चिल्लाने से अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं, रोशनी जला दो, फिर देखो कि अंधेरा आप दूर हो जाता है या नहीं। मनुष्य के सुधार का, उसके संस्कार का यही रहस्य है। उसके समक्ष उच्चतर बातें, उच्चतर प्रेरणाएं रखो। पहले मनुष्य में, उसकी मनुष्यता में विश्वास रखो। लोगों से ये भी कहने की जरूरत नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है, खराब है। जो कुछ अच्छा है उसे उनके सामने रख दो, फिर देखो कि वे कितने आग्रह के साथ उसे ग्रहण करते हैं।
2: उन्होंने देशवासियों के सामने गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण रखकर कहा था,
1: हमें केवल देश की दुर्दशा और दुरावस्था की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करके हम केवल अपना मनोरंजन करते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो, यदि तुम देश की भलाई करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने देशवासियों में भले ही हजारों दोष दिखाई दें, पर तुम उनकी रग रग में बहने वाले हिंदू रक्त की ओर ध्यान दो। पहले तुम्हें इन स्वजातीय नर रूपी देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए खास चेष्टा करें। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर अभिशाप और निंदा की बौछार करे तो भी तुम इनके प्रति प्रेम पूर्ण वाणी का प्रयोग करो। यदि ये तुम्हें त्याग दें, पैरों से ठुकरा दें, तो तुम उन्हीं वीर केसरी गोविंद सिंह की भांति समाज से दूर जाकर नीरव भाव से मौत की राह देखो। हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श रखना होगा। पारस्परिक विरोध भाव को भूलकर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा।
0: विदेश से लौटकर चेन्नई में स्वामी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वे समाज सुधार के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था,
1: हे मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, यदि हमारे समाज में, इस राष्ट्रीय जीवन रूपी जहाज में छेद है तो हम तो उसकी संतान हैं। जाओ, चलो उन छेदों को बंद कर दें, उसके लिए हंसते हंसते अपने हृदय का रक्त बहा दें। और यदि हम ऐसा ना कर सकें तो हमें मर जाना ही उचित है। हम अपना भेजा निकालकर उसकी डाट बनाएंगे और जहाज के उन छेदों में भर देंगे। उसकी भर्त्सना ना करें। इस समाज के विरुद्ध एक भी कड़ा शब्द मत निकालो।
2: स्वामी जी सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत के पक्षधर थे। इस संदर्भ में भी उनके विचार अनुकरणीय हैं। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात करता है, किंतु स्वामी जी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता नहीं, स्वीकृति की शिक्षा देते हैं। सहिष्णुता और स्वीकृति में अंतर है। उनका कहना था,
1: चूंकि एक ही सत्य सभी धर्मों के मूल में है, अतः हमें अन्य धर्मों की सत्यता को भी स्वीकार करना चाहिए।
2: वे कहते थे,
1: मैं सभी प्राचीन धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उनके साथ सम्मिलित होकर उपासना करूंगा। वे जिस किसी रूप में ईश्वर की पूजा करें, मैं उनसे प्रत्येक के साथ उस रूप में भगवान की आराधना करूंगा। मैं मुसलमानों के साथ मस्जिद में जाऊंगा, ईसाइयों के साथ गिरजे में जाकर क्रूसित ईसा के सामने घुटने टेकूंगा। मैं बौद्धों के मंदिर में प्रवेश कर बुद्ध और उनके धम्म की शरण लूंगा और वन में जाकर उस हिंदू के साथ ध्यानस्थ होकर बैठूंगा जो सबके हृदय को प्रभावित करने वाली ज्योति के दर्शन करना चाहता है।
0: स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपने जीवन में प्रदर्शित जितने मत उतने पथ का निर्देश ही स्वामी जी के इस धार्मिक सिद्धांत के मूल में निहित है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है,
3: भारतवर्ष की धार्मिक समस्या का जो समाधान रामकृष्ण ने दिया है, उससे बड़ा और अधिक उपयोगी समाधान और कोई नहीं कर सकता। ये एक बड़ा सत्य है। नव भारत के निर्माण में हमें इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना होगा। स्वामी जी ने इस देश के लिए इस्लामी शरीर तथा वेदांती बुद्धि के समन्वय पर जोर दिया था, अर्थात इस्लाम की समानता के आधार पर हमारे समाज की संरचना हो और हमारे मस्तिष्क में जन जन के प्रति अद्वैत की अभेद बुद्धि हो, तभी हमारा राष्ट्र सुसंगठित रह सकेगा और हमारी भावनात्मक एकता तथा अखंडता की रक्षा हो सकेगी।

0: भारत में आज जातिगत विषमता और ऊंच नीच, अगला पिछड़ा वर्गों की जटिलता बढ़ती जा रही है। स्वामी जी इन बातों से घृणा करते थे। वे दुखी होकर कहा करते थे,
1: मुझे विशेष दुख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के बीच इतना मतभेद चलता रहता है। इसका अंत होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों के लिए व्यर्थ है, खासकर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के एकाधिकार और विशेष दावों के दिन लद गए। प्रत्येक अभिजात्य वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वो स्वयं ही खोदे, और जितना शीघ्र से कर सके उतना ही अच्छा होगा। वो जितनी देर करेगा वो उतनी ही सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भयंकर होगी। अतः ये ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करे।
2: दूसरी ओर वे पिछड़े वर्ग के लोगों से कहा करते थे कि
1: ऐ पिछड़ी जाति के लोगो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है, और ये लड़ना झगड़ना और उच्च वर्णों की विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है। जातियों में समता लाने का एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्गों का बल और गौरव है। यदि ये तुम कर सको तो जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा।
0: स्वामी जी ये मानते थे कि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया, पर वे सबके लिए समानता के पक्षधर थे। वे कहते थे,
1: अगर किसी को ज्यादा अवसर देना है तो वो निर्बलों को देना चाहिए, निर्बलों को सबल से अधिक अवसर देना उचित है। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणों को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पिछड़ों को। यदि ब्राह्मण के लड़के को एक शिक्षक चाहिए तो पिछड़े लड़के को 10, क्योंकि अधिकतर सहायता उसे मिलनी चाहिए जिसे प्रकृति ने जन्म से कुशाग्र बुद्धि नहीं दी है।
2: स्वामी जी भारत में एक उन्नत और स्वस्थ समाज की कल्पना करते थे। वे सपना देखते थे कि
1: लाखों नर नारी पवित्रता के भाव से उद्दीप्त होकर, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर, तथा गरीबों पतितों एवं पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संकीर्ण भारत में उद्धार एवं समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे।
0: स्वामी जी हमेशा मनुष्यों की सेवा, दलितों के उद्धार की बातें सोचते रहते थे। वे कहते थे,
1: नियम या संविधान से बड़ा है मनुष्य। कोई भी देश इस बात से महान नहीं बनता कि उसके संसद में कैसे कैसे कानून बनते हैं, बल्कि इस बात से कि उसके पास मनुष्य कैसे हैं, क्योंकि मनुष्य ही नियमों को बनाता है। नियम मनुष्य को नहीं बनाते, मनुष्य रुपए पैदा करता है, रुपए मनुष्य को पैदा नहीं करते। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है, कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा नहीं करते।
0: अतः वे कहते थे,
1: मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो, तब देखोगे कि बाकी सारी चीजें स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ स्वयं हो जाएगा।
2: उनकी एक विख्यात उक्ति है,
1: जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता।
0: आधुनिक भारत के निर्माण के लिए लोगों को हृदयवान होना ही होगा। वे वज्र घोष के साथ कहते हैं,
1: मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट की चिंता से भारत बेचैन है। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए।
2: इस नव भारत के निर्माण के लिए स्वामी जी ने युवकों का, चरित्रवान युवकों का आह्वान किया। उनका विचार था,
1: भारत को कम से कम अपने सहस्त्र मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है, पर ध्यान दो, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। भारत तभी जागेगा जब इसके विशाल हृदय वाले सैकड़ों नर नारी भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर उन भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता तथा ज्ञान के सागर में डूबते जा रहे हैं।
0: उन्होंने एक नए अभिनव भारत की कल्पना की थी, जिस भारत में सभी लोग अपने अपने स्तरों पर कार्य करने में जुट जाएंगे।
1: एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेदकर, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, कारखानों से, हाट से और बाजार से, निकले झोपड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से।
2: अंत में विवेकानंद के बारे में रामधारी सिंह दिनकर की उक्ति ही सटीक प्रतीत होती है।
3: अभिनव भारत को जो कुछ कहना था वो विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संदेश विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वो सेतु है जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वो समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सबके सब समाहित होते हैं।
2: भारत के नव निर्माण के लिए स्वामी जी का दिया हुआ मंत्र हमें हमेशा याद रखना होगा।
1: उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति किए बिना विश्राम मत लो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी से रूबरू होता है। सफर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज 11 मई है और 11 मई की विशेष बातें आपसे शेयर करूंगा, कुछ खास लोगों का जिनका जन्मदिन है उनके बारे में हम लोग बातचीत करते ही हैं। और आज मुखशिरा नक्षत्र है। बात करें आज के दिन मृणाली साराभाई, सादत हसन मांटो, एस एम श्री गणेश, केवी के सुंदरम, शक्ति सिन्हा, सागर सरहादी, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही आबिदा सुल्तान, इनका पुण्य दिवस है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ। और आशा करूंगा कि आप सभी विचारों को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे होंगे और अच्छे विचार सुनते ही आपके मन को सुकून मिलता है। बस यही पर इस चीज को पकड़े रखिए कि सुंदर विचार ही आपके अच्छे मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, जो आपको अच्छा बनाते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं, याद रखिएगा, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। है ना कमाल की बात। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपके नाम, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सुनते रहो मस्करा।

0: रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही न टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बात करते हैं हम लोग आज के दिन विशेष में, जिन लोगों का जन्मदिन है, एक खास व्यक्ति के बारे में बात करूंगा मैं, मृणाली साराभाई, एक ऐसी नृत्यांगना जिन्होंने अपनी भारत की परम्परा को चारों ओर विदेश तक जो है उन्होंने फैलाया। ट्राई उनके बारे में जानते हैं और ये अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती भारत की बहुत ही पॉपुलर नृत्यांगना, उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए उनके उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। इनका जन्म आज ही के दिन 11 मई 1918 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट में बैरिस्टर थे। माँ अम्मू स्वामीनाथन आज़ादी की दीवानी थी जो बाद में देश की पहली संसद की सदस्य बनी। बहन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ थी। मृणाली ने बचपन का अधिकांश समय स्विट्जरलैंड में बिताया। यहाँ डेलक्रूज स्कूल से उन्होंने पश्चिमी तकनीकी से नृत्य कलाएं सीखी। फिर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की देखरेख में शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण की और यहीं से नृत्य उनकी जिंदगी बन गई। उनके पति विक्रम साराभाई देश के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। उनकी बेटी मल्लिका साराभाई भी प्रसिद्ध नृत्यांगना और समाजसेवी है। मृणालिनी की बड़ी बहन लक्ष्मी सहगल विशेष क्रांतिकारी थी और क्रांतिकारी के रूप में, आज़ादी के सेनानी के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की आजाद इन फोर्स की महिला सेना झांसी रेजिमेंट की कमांडर इन चीफ थी। तो है ना कमाल की बात, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक महिला जो है अपनी कला के माध्यम से, अपनी सूझबूझ से देश सेवा, समाज सेवा और नृत्य कला को बहुत ही अच्छा निखार सकती है और उसे दूर तक फैला सकती है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर। तो आइए एक और गीत आपके लिए खास, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं, जब हम बारे में कहते हैं, जिस पर हमको ध्यान देना होगा, नंबर वन एक्सरसाइज, नंबर वन ये बहुत जरूरी है कि हर दिन हम उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, उठकर आप कहेंगे सर एक्सरसाइज, वेयर इज द टाइम टू गेट एक्सरसाइज, वेयर इज द टाइम, भगवान से इंटरव्यू लिया गया, भगवान से बहुत सुविधा क्या क्या पूछा गया, भगवान से आप मनुष्य को देख कर सबसे ज्यादा आश्चर्य मनुष्य को क्या लगता है, सबसे ज्यादा अमल में भगवान का जवाब क्या था, लेकिन सबसे पहले आपको बहुत खुशी से आनंद के साथ करना है, जैसे आप सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, सर्जन धीरे-धीरे हमारे जो शरीर है जो अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज़ ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, शरीर में रोड में जो गाड़ियाँ चलती है उसमें हम गाड़ी यूज करती है, उसमें एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें जो हम फ्यूल यूज करते हैं, अच्छा बताइए कि हम फ्यूल दोनों क्वालिटी के फ्यूल कौन सा अच्छा होगा, क्वालिटी का फ्यूल कौन सा अच्छा होगा, राइट आंसर वेरी इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम, वेरी क्वालिटी ऑफ फ्यूल, यस इट द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ, इट इज इंपोर्टेंट व्हेन अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें, इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए, ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स फ्रूट्स जूसेस, तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूं, कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है, इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए, अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहे, अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट। भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना, जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके? यू नीड टू हेल्प एवरीवन। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत।
1: नमस्कार, सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दोस्त सभी लिसनर्स जो सुन रहे हैं, उपराम जी और भूपत सिंह जी, सुरेश जी जोटाना, सुरेश जी पिंडवाड़ा और दयाराम जी और सभी जो बड़े प्यार से सुनते हैं कार्यक्रम को, फिरोज जी वगैरह, सुभाष जी जलगांव से, आप सभी को याद भेजते रहते हैं और कार्यक्रम को सुनते हुए उन्होंने बड़े आनंद आता है उन्हें और मैसेज भी करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं बात कर रहा था मृणाली साराभाई के बारे में। जी, मृणाली साराभाई का जो ट्रेनिंग है नृत्य की, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उस समय वो दौर था जब कलाकार सिर्फ एक फॉर्म नहीं सीखते थे। मृणाली साराभाई ने भी नृत्य की अलग अलग शैलियों को, उसकी बारीकियों को जरूर सीखा। उन्होंने अमूबी सिंह से मणिपुरी नृत्य सीखा, कुंजू कुरूप से कथकली सीखा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले और मुत्तु कुमार पिल्ले से भरतनाट्यम सीखा। उनके हर एक गुरु का अपनी अपनी कला में जबरदस्त योगदान था। इसी दौरान उन्होंने विश्वविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई पंडित उदय शंकर के साथ भी काम किया। पंडित उदय शंकर का भारतीय कला को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। आधुनिक नृत्य को लोकप्रिय और कामयाबी के अलग मुकाम पर पहुंचाया। इस बीच मृणालिनी साराभाई कुछ दिनों के लिए अमेरिका भी गई और वहां जाकर ड्रामेटिक आर्ट्स की बारीकियां सीखी। इसके बाद मृणालिनी साराभाई ने देश दुनिया में भारतीय नृत्य परंपरा का विकास किया। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ। कभी कभी कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग गुरुओं के साथ मिलकर उनसे सीखना होता है, जिस तरह से मृणालिनी जी ने इतनी सारे लोगों से ट्रेनिंग लिया और फिर भारत लौटकर देश विदेश में सीखते हुए जानी मानी नृत्यांगना मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले से भरतनाट्यम का फिर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। इस तरह से अलग अलग लोगों से उन्होंने जो है सीखा। भारत सरकार की ओर से साराभाई को देश के प्रसिद्ध नागरिक सम्मान पद्म भूषण, पद्मश्री प्राप्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगलिया नविस यूके ने भी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मान किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सीखने के बाद उन्होंने देश और विदेश में अपनी एक नई शैली जो है वो विकसित करके लोगों को उनका प्रेजेंटेशन जो है नृत्य का किया करते थे और ये इतना प्रभावशाली होता था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे इनके नृत्य का प्रदर्शन देखकर। इंटरनेशनल डांस काउंसिल पेरिस की ओर से इन्हें एजुकेटिव कमेटी के लिए भी नामांकित किया गया और दर्पण एकेडमी की स्थापना मृणाली साराभाई ने की, जिसके माध्यम से वो देश दुनिया में अपना परचम लहराया और भारत की जो अलग अलग नृत्य शैलियां हैं उन्हें विकसित करते हुए मिक्स जो है सारे शैलियों का एक समृद्ध जो नृत्य का अभिभंगी या कहते हैं अभिव्यक्ति उन्होंने लोगों के बीच में रखा, इसलिए इनको आज भी याद किया जाता है। और मृणाली साराभाई जो है इनका जब 100वां जयंती था 2018 में, और इस महान नृत्यांगना को इस मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी थी। इस डूडल को सुदीप्ति टक्कर ने बनाया था और मृणाली साराभाई गूगल डूडल में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के ऑडिटोरियम में एक छतरी लिए हुए हैं और उनके पीछे नृत्य करती हुई नृत्यांगना है। गूगल ने एक पोस्ट में डूडल के बारे में ये लिखा था, आज के डूडल में भारतीय क्लासिकल डांसर मृणाली साराभाई को याद किया जा रहा है, जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी टेक्निक, ऊर्जा और मजबूती के दम पर भरतनाट्यम की साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म और कथकली की क्लासिकल डांस ड्रामा की लोगों को ट्रेनिंग दी और उसकी जगह जगह परीक्षण करते हुए प्रेजेंटेशन भी दी थी। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें मृणाली साराभाई के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक बात तो समझ में आता है कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन कला उसकी जिंदा रहती है और उस कला के माध्यम से व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। सहद सादत हसन मांटो। मांटो की बात अगर कहे तो ये एक ऐसे कहानीकार लेखक रहे जो इनके लेखनी को रेडियो, टीवी और फिल्मों में यूज किया गया। एक ऐसे कहानीकार मांटो फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। मांटो की कहानियों की बीते दशक में जितनी चर्चा हुई उतनी शायद उर्दू और हिंदी और शायद दुनिया के दूसरी भाषाओं के कहानीकारों की कम हुई है। और चेको के बाद, आंतोन चेको के बाद मांटो ही थे जिन्होंने अपनी कहानियों के दम पर अपनी जगह बनाई थी। तो अब आइए इनके बारे में बात करते हैं। और ये मांटो की गिनती ऐसे साहित्यकारों में की जाती है जिनका कलम ने अपनी वक्त से आगे की बातें, आगे की रचनाएं लिख डाली और जिनकी गहराई को समझने की दुनिया आज भी कोशिश कर रहे। कहानीकार मांटो का जन्म आज ही के दिन 1912 को यानी 11 मई 1912 को पुश्तैनी बैरिस्टरों के परिवार में हुआ। उनके पिता गुलाम हसन नवी बैरिस्टर और सेशन जज थे। उनकी माता का नाम सरदार बेगम था और मांटो उन्हें बीवी जान कहते थे। मांटो बचपन से ही बहुत होशियार और शरारती थे और मांटो ने एंट्रेंस एग्जाम 2 बार फेल होने के बाद पास किया और इसकी वजह उनकी उर्दू में कमजोर होना था। मांटो का विवाह साफिया से हुआ था जिनसे मांटो की 3 पुत्री हुई। उन्हीं दिनों के आसपास मांटो ने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रामेटिक क्लब खोला था और एक नाटक प्रस्तुत करने का इरादा किया था। ये क्लब सिर्फ 15 से 20 दिन रहा था इसलिए कि मांटो के पिता ने एक दिन धावा भूलकर हारमोनियम और तबले सब तोड़ दिए थे और कहा था कि ऐसी वाहियात काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तो क्या, दुकान इनकी बंद हो गई, नाटक कंपनी बंद हो गई। लेकिन मांटो की कहानियों की जो बात आती है, लिखना उनका जारी रहा और पढ़ाई पूरा किया अमृतसर में। उसके बाद 1931 में उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लिया और इन दिनों पूरे देश में और ख़ासकर अमृतसर में आज़ादी का आंदोलन पूरा उभर कर था। जलियांवाला बाग का नरसंहार 1919 में हो गया था जब मांटो की उम्र कुल 7 साल की थी, लेकिन उनके बाल मन पर उनकी गहरी छाप थी। और फिर जब वो लिखना शुरू कर दिया तो एक कृति उनकी जो है तमाशा, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, इस कृति में उन्होंने या इस जो रचना में उन्होंने जलियांवाला बाग की घटना से निकलकर कहानी तमाशा आई और ये मांटो की पहली कहानी थी। क्रांतिकारी गतिविधियों बराबर चलती रहीं और गली गली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुनते रहे और दूसरे नवजवानों की तरह मांटो की भी चाहत थी कि जुलूस और जलसों में बढ़कर हिस्सा ले और नारे लगाए, लेकिन पिता की सख्त मनाई के कारण मनसोख कर वो रह जाते थे। आखिरकार उनका ये रुझान अदब से मुखातिब हो गया और उन्होंने पहली रचना लिखी तमाशा, जिसमें जलियांवाला नरसंहार को 7 साल के बच्चे की नज़र से देखा गया। इसके बाद कुछ और रचनाएं भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के अवसर पर लिखा और 1932 में मांटो के पिता का देहांत हो गया। भगत सिंह को उससे पहले फांसी दी जा चुकी थी और मांटो ने अपने कमरे में पिता के फोटो के नीचे भगत सिंह की मूर्ति रखी और कमरे के बाहर एक तख्ती पर लिखा लाल कमरा। तो इस तरह से उनकी जो अलग अलग हरकतें और उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी। फिर इन्होंने लिखा मैं क्या लिखता हूँ, मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ, तोबा टेक सिंह खोल दो, घाटे का सौदा, हलाल और झटका, खबरदार करामत, बेखबरी का फायदा, पेशकश, इस तरह के तमाम जो है इनकी कुछ कहानियों का संग्रह है जो अलग अलग नामों से उन्होंने लिखे थी। अब धीरे धीरे साहित्य की ओर उनका ज्यादा रुझान बढ़ा और फिर वो साहित्य में बहुत सारे लोगों के साथ मना ऐसे साहित्यकारों की पढ़ने लगे वो, जिसमें विक्टर ह्यूगो, लॉर्ड लिटन, गोर्की, अंतोन चेकव, ऑस्कर वर्ल्ड, मोपासा आदि के पुस्तकों को उन्होंने काफ़ी पढ़ा और फिर अब्दुल बारी की प्रेरणा पर ही उन्होंने विक्टर ह्यूगो के एक ड्रामे द लास्ट डेज ऑफ द कमेंट का उर्दू में अनुवाद किया और फिर सरगुस्ते आशीर शीर्षक से लाहौर में उसको प्रकाशित किया। इस तरह से रचनात्मक कार्य में जुड़े रहे, कार्य क्षेत्र उनका साहित्य ही रहा और फिर पाकिस्तान की यात्रा उन्होंने की, वहाँ पर उनको कुछ अनुभव हुए वो भी उन्होंने किताबों में दर्ज की और फिर उसके बाद धीरे धीरे मांटो को ये बात समझ में आ रही थी कि क्या सही है और क्या गलत है और उन पर भारत और पाकिस्तान में हुए बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि मांटो को पूरी तरह समझ पाने के लिए 100 साल भी कम है, जो कि उनके मुताबिक शुरुआत में मांटो को दंगे, वारदात और वैश्याओं पर कहानियां लिखने वाला सामान्य व साहित्यकार माना जाता, लेकिन मांटो की कहानियां अपने अंत के साथ ख़त्म नहीं होती, वे अपने पीछे इंसान को झकझोर देने वाली सच्चाइयाँ छोड़ जाती हैं, उनकी सपाट बयानी वाली कहानियाँ फिक्र के आसमान को छू लेती। चलिए, ये थी कुछ खास बातें मांटो के बारे में। मांटो के 19 साल के साहित्य जीवनी में उठाने के बाद भी मांटो ने अपनी उन्हीं तेवरों के साथ इस दुनिया को, तो ये थी कुछ खास बात सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर। जी हाँ, और चलिए एक और खूब तेरा हो

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। SN श्री गणेश के बारे में बात करेंगे और थल सेना के विशेष सेना अध्यक्ष इन्होंने पद संभाला था, तो आइए ऐसे देश सेवा के विशेष व्यक्ति के बारे में जानते हैं। और जिस तरह से हम लोग अलग अलग व्यक्तियों की कहानी सुनते हैं तो मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि एक व्यक्ति कितनी सारी चीज़ें कर सकता है ना। इतने अभाव के बाद भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने कलाओं को, अपने भावनाओं को किसी न किसी रूप में व्यक्त ज़रूर करता है ना। तो चाहे आप नाटक कंपनी में काम करने के लिए तैयार भी हो, अगर निबंध हो जाता है तो कोई बात नहीं, उस नाटक को आप किताबों में छाप कर लोगों के बीच में तो रख सकते हैं, है ना। तो एक दरवाज़ा अगर आपका बंद हो जाता है किसी कारणवश, तो वहाँ पर नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि आपके लिए कितने और दरवाजे खुल गए हैं। ईश्वर एक बंद करता है तो उसके लिए चार खोल देता, तो उसमें से फिर आप अपने चॉइस के अनुसार उस जगह पर जाइए और अपने आप को उस जगह में साबित करके दिखाई, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और श्री गणेशन के बारे में अब बात करते हैं। और विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक जो कॉलेज हैदराबाद के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया था इन्हें कुछ समय के लिए, और सेवानिवृत्ति के पास माना आफ्टर रिटायरमेंट के बाद श्रीनिवास श्री गणेश जी को जो है 14 अक्टूबर 1959 से लेकर 12 नवम्बर 1960 तक अलग अलग जगहों पर उन्होंने आसाम के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और फिर बाद में मैसूर के राज्यपाल भी बने रहे। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। और इनका जन्म आज ही के दिन 11 मई 1903 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। इनका पिता डॉक्टर गणेश मल्ला हैदराबाद के निजाम के व्यक्तिगत चिकित्सक थे और बचपन में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। जनरल MS गणेश ने इंग्लैंड में एक पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। ब्रिटेन में सैडहेंट मिलिट्री अकेडमी के छात्र भी थे। उन्हें 20 साल की उम्र में ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। समझ सकते हैं आप इनकी जो पढ़ाई और इनकी जो गतिविधियां हैं वो इनको इस तरह से कम उम्र में बड़ा पोस्ट संभालने का मौका दिया। अब कार्यक्षेत्र की बात करें तो नॉर्थ स्टेफनशायर रेजिमेंट में नियुक्त होने के बाद जल्दी उन्हें बर्मा भेजा गया और फिर वहां पर मद्रास पायनियर्स पोस्ट किया गया। उनकी अगली नियुक्ति हैदराबाद रेजिमेंट में हो गई। फिर श्री गणेश ने सिंगापुर में एक एजुकेट के रूप में काम किया और 1939 में उनकी भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के ट्रेनिंग में का पदभार उन्होंने संभाला और 1939 में आसाम और बर्मा की लड़ाई में उन्होंने 6/19 हैदराबाद रेजिमेंट की कमान संभाली। जनरल SM श्री गणेश ने बर्मा में 19वीं भारतीय डिवीजन की 64वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाली। 1945 में उन्हें जर्मनी में भारतीय सैन्य मिशन के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। जर्मनी से लौटने के बाद SM श्री गणेश ने जापान में 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेडियर की कमान संभाली। मेजर जनरल के पदोन्नति और उन्होंने मद्रास क्षेत्र में GOC का कार्यभार संभाला। 1948 में उन्हें नई दिल्ली में सेना मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। तो अलग अलग पदों पर ये काम करते हुए राष्ट्र को समर्पित 34 वर्षों की सेवा पूरा करने के बाद ये रिटायर हुए। और नई दिल्ली में जब ये रहा करते थे तो 1977 को सुबह 27 अक्टूबर को श्री गणेश जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो और मुस्कुरा

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, और ये एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में बात करते आइए बात करते हैं शक्ति सिन्हा के बारे में। 1996 और 99 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर काम किया, और वाजपेयी दी ईयर दैट चेंज इंडिया इस शीर्षक पर इन्होंने किताबें लिखी थी। इनका जन्म 11 मई 1957 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ और 1979 में वे IAS अधिकारी बने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वे बहुत ही करीब थे और 98 से 2000 के बीच में उनके निजी सचिव भी रहे। दिल्ली के ऊर्जा सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। रिटायरमेंट के बाद शक्ति सिन्हा कई संस्थाओं में सेवा देते रहे और सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फाउंडेशन के महानिदेशक भी थे। शक्ति सिन्हा के परिवार में उनकी पत्नी सुरभा सिन्हा, बेटी सुहासनी सिन्हा और बेटा कार्तिकेय सिन्हा है। सुरभि सिन्हा रिटायर्ड IRS अधिकारी हैं। शक्ति सिन्हा के पिता शिवाजी सिन्हा देश के पहले बैच के IPS अधिकारी थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन के दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के शक्ति सिन्हा निदेशक भी रहे, और इसके अलावा वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्टडीज के निदेशक पद पर जिम्मेवारी संभालते रहे, और वो नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक रहे। दैनिक जागरण के हिंदी है हम अभियान में शुरुआती दिनों से जुड़े रहे, लेखन का कार्य भी करते रहे, और लेखन का कार्य करते हुए जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि वाजपेयी दी ईयर दैट चेंज इंडिया ये किताब शक्ति सिन्हा ने लिखा, और इससे पहले 2019 में उन्होंने नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तक के सीनियर फेलो हिमांशु राय के साथ मिलकर लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को लेकर पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज ये किताब लिखी थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुरभि सिन्हा, बेटी सुहासनी सिन्हा, ये सारे लोग उनके साथी रहते हैं, और काफ़ी उनको जो है अपने पिता पर नाज है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें शक्ति सिन्हा के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका,

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का लाइव इंटरैक्टिव सत्र सहयोग, जिसका प्रसारण पीएम विद्या चैनल्स पर किया जा रहा है, चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 तक, और साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल तथा एनसीईआरटी पीएम विद्या कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के यूट्यूब चैनल्स पर आप सहयोग सत्र देखने जा रहे हैं। मैं सृजन राजपूत हूं, मेरे साथ आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस अनुष्का शर्मा को देख रहे हैं। अनुष्का, आपका भी हम सत्र में स्वागत करते हैं। एज वी ऑल नो दैट आर सहयोग एंड परिचर्चा सेशंस आर ब्रॉट टू यू बाय मनोदर्पण अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर रूफ ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर साइको सोशल सपोर्ट एंड मेंटल वेलबींग ऑफ व्यूअर्स हु आर कनेक्टेड विद अस। छात्र छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को और मजबूती देने के लिए हमारे सहयोग और परिचर्चा सत्र मनोदर्पण के अंतर्गत काम कर रहे हैं। आज भी ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। फॉर टॉपिक फॉर टुडेज सहयोग सेशन इज डिजिटल वेलबींग नर्चरिंग हेल्दी टेक्नोलॉजी हैबिट्स फॉर लर्नर्स। ये हमारा आज का विषय है, जिसे स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, साथ ही आप मनोदर्पण काउंसलर से भी हेल्प ले सकते हैं। आइए इन सभी मीडियम्स को नोट कीजिए। सबसे पहले हमारा मनोदर्पण काउंसलर्स का नंबर आपको बताते हैं, ये है 8448440632। आप हमारे IVRS नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर इज 8800440559। एंड आप हमें मेल के जरिए अगर आप बात पहुंचाना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं कि आप सहयोग सत्र में किन विषयों पर बातचीत देखना चाहते हैं, तो ज़रूर लिख भेजें sahyog.ncert@cret.nic.in पर। हमारे दर्शक जो हमें YouTube चैनल्स के जरिए देख रहे हैं, वे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए, इस विषय को बताने के लिए हमारे साथ जुड़े आज के पैनलिस्ट के पास चलते हैं और इन प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों के जरिए इस विषय को समझने का प्रयास भी करते हैं। सो वी आर जॉइंड बाय मिस फिजा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम RIENCERT भोपाल। मैम नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका।
2: नमस्कार एवरीवन।
1: एंड स्वागत करना चाहेंगे मिस शिखा झा का, जो कि प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं हमारे साथ आज की। मैम नमस्कार, स्वागत है। तो चलिए इस विषय को जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू मिस फिजा। मैम वांट टू नो व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन मेंटेनिंग डिजिटल वेलबींग।
2: जी बिल्कुल, टू ऑल माय लर्नर्स, बिकॉज दिस सेशन इज एंटायरली फॉर देम, आई वुड से दैट सेल्फ कंट्रोल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल वेलबींग, बिकॉज यू नो द रेट विद विच वी आर प्रोग्रेसिंग और द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोबाइल फोन्स और एंड्रॉयड क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, एंड नाउ देर इज नो फिक्स्ड एज की किस एज के लर्नर्स के पास फोन आपको नहीं मिलेगा। एवरी लर्नर इज नाउ हैविंग द फोन, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ एवरी लर्नर इज यूजिंग अ मोबाइल फोन, देन हाउ आर दे एबल टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल ऑल्सो एट द सेम टाइम, कि उसको कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, क्वालिटेटिवली कैसे यूज करना है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। नाउ बिफोर वी डाइवर्ज ऑन टू द टॉपिक, सबसे पहले तो ये समझना इम्पॉर्टेंट होगा कि एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल है क्या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल वेलबींग। सो सेल्फ कंट्रोल की बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो लर्नर्स है, स्पेशली जो स्कूल गोइंग लर्नर्स है हमारे, वो इस एज में है, दे आर इन द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ऐसे में उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, द वन हियर, तो वो अभी इट इज इन द डेवलपिंग स्टेज, और इसका काम क्या रहता है, ये मैनेज करता है हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस को, देन इट ऑल्सो मैनेजेस द इम्पल्सिस दैट एज ह्यूमंस वी फील। तो अब ऐसे में क्या रहता है, बिकॉज हमारे लर्नर्स अभी दे आर यू नो वेरी हाईली एनर्जेटिक, सो ऐसे में दी सेल्फ कंट्रोल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं है, आपकी इम्पल्सिविटी इतने अच्छे से आपके कंट्रोल में नहीं है. सो जो हमारे स्कूल गोइंग लर्नर्स है, दे आर मोर प्रोन टू द पुल ऑफ द नोटिफिकेशंस, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस दैट दे आर कमिंग. सो व्हाट हैपेंस कि इमीडिएटली मोबाइल पे वी ऑल हैव, इनफैक्ट नॉट ओनली द लर्नर्स, वी एज एडल्ट्स ऑल्सो हैव दिस हैबिट कि द मोमेंट इट टिंग्स ऑन द मोबाइल वी इमीडिएटली सी कि क्या मैसेज है, क्या नोटिफिकेशन है.
1: राइट मैम.
2: Without even you know, even realizing ki whatever important thing we may be thinking about, but hum sab kuch wahi rok ke we switch to that. Ab aise mein what is happening, every time you are in a process of learning or you're doing some important task, but beech mein aap task rok ke you're seeing the phone, you're again then coming back to the topic, then again seeing the phone, aise mein the distraction, the number of distraction increases so much that eventually the learning fades away. Wo learning jo learner ko karni chahiye, wo learning pehli baat hoti ही नहीं है. ऑल्सो यू नो इट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द मूड एज वेल, क्योंकि जब आप देखते हैं एक घंटा बीत चुका है, व्हाट हैज बीन द लर्निंग प्रोग्रेस, तो आपको कोई लर्निंग प्रोग्रेस भी नहीं दिखती है उसमें. क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं हुआ, एवरी टाइम यू हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेल्फ कंट्रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स एज अ ब्रिज बिटवीन द इम्पल्स दैट यू आर हैविंग एंड द सेल्फ कंट्रोल दैट यू नीड टू हैव वेन एवर यू आर हैविंग एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ डिजिटल डिवाइस. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ कंट्रोल आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी भी देयर सर्टेन स्ट्रैटेजीज. जैसे कि यूजुअली क्या आदत रहती है एवरीबडी इन जनरल, कि बिफोर गोइंग टू स्लीप हम क्या करते हैं, अब जब हमें पता चल गया कि नाउ 10 PM इज द बेड टाइम, तो हम 10 से 10:30 या 11 बजे तक वी विल स्क्रॉल द फोन, फोन देखना, यू नो नाउ द कल्चर इज ऑफ यू नो स्क्रॉलिंग रील. तो ऐसे में क्या रहता है, इस कल्चर में रील स्क्रॉल करना, रील शेयर करना, सो यू आर मोर इनटू डिजिटल बिफोर यू आर गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ रेस्ट. एंड यू आर आल्सो वेरी मच यू नो इनटू द टच ऑफ द ब्लू लाइट. ब्लू लाइट आल्सो अफेक्ट्स आवर थिंकिंग प्रोसेस. तो आप जो आपको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो मिला नहीं, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोज ऑन गेम्स एंड वट एवर द लर्नर्स आर सीइंग, एंड देन उसके बाद दे गो टू स्लीप. अब ऐसे में क्या रहता है, द माइंड इज यू नो वो एकदम से शट डाउन नहीं होता, द माइंड इज स्टिल वर्किंग इन द बैकग्राउंड, एंड वो सोने चले जाते हैं. देन उसके बाद भी यू नो द स्लीप, इतनी स्लीप हाइजीन नहीं रहती है. नाउ व्हाट इज स्लीप हाइजीन, इट कम्स फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट कि आप या तो फोन देखते देखते ही सो गए, या यू नो यू डिड नॉट पेड अटेंशन, इट वॉज नॉट अ माइंडफुल काइंड ऑफ स्लीप, आप कुछ इंटेंशन से नहीं गए, वही फोन चला करके चले गए. तो अब ऐसे में क्या रहता है, लर्नर्स नेक्स्ट डे वेन दे वेकअप, तो दे डू नॉट हैव अ वेरी डिफाइंड यू नो क्लियर माइंड सेट कि आज हमें क्या करना है, क्योंकि जो सोने से पहले आपको गोल सेटिंग करनी थी वो आपने नहीं करी, यू आर मोर इन टू फोन्स, अगेन अ मूड स्विंग इज देयर, देन सम सॉर्ट ऑफ यू नो एंजाइटी इशूज कम्स इन, देन यू लॉट ऑफ इमोशंस देन कम्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि यू नो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा. इस तरीके से जस्ट वन डिवाइस, वन एक्टिविटी, एंड यू सी हाउ इट इज यू नो कंट्रोलिंग अस इन दीज मेनी वेज. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट द लर्नर्स हैव to keep in mind is ki the self control ki hame before 30 minutes prior going to sleep hame phone rakh dena hai. We have to be in that state ki now we have to sleep. We should think about that how we should start our day the next day, kaise hame apna din shuru karna hai. Then the second thing is that parents also have to have a very important role here. आजकल क्या होता है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुल ईटिंग. यू नो आजकल बच्चों को आदत हो चुकी है कि नॉट जस्ट किड्स, आल्सो से एडल्ट्स आल्सो वी हैव दिस हैबिट कि फोन में कुछ चल रहा होगा तभी वी वुड ईट. एंड यू नो थिंग्स लाइक कोको मेलन वी से उतना प्रोपोगेट हो रहा है, वो बच्चे बचपन से ही राइट फ्रॉम यू नो 1 or 2 years ऑफ एज दे आर इन टू दिस हैबिट ऑफ सीइंग द टीवी और मोबाइल, एंड देन उसके बाद वो उसमें पोम देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, देन दे आर हैविंग इट, हैविंग देयर फूड. सो अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है, जो माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए वेयर यू आर एक्चुअली फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट यू आर ईटिंग, द गुड टेस्ट दैट वो आना चाहिए, वो हम उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाते हैं. सो वो अगेन सेल्फ कंट्रोल वहाँ पे आना कि जो भी जितनी देर में आप खाना खा रहे हो, यू शुड सिट विद योर फैमिली, और इवन इफ यू आर ईटिंग इट यू नो सोलो इन योर स्कूल, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए खा सकते हैं. यू नो यू कैन शेयर, यू कैन हैव पीयर एक्टिविटी आफ्टर द लंच, बट यू नो एंश्योरिंग कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन और यू नो उसमें इंगेज नहीं हो रहे वैल यू आर ईटिंग. देन ऑल्सो टेकिंग आउट टाइम ड्यूरिंग स्टडीज. आजकल क्या एक और ट्रेंड इज वेरी यू नो दी वट एवर आई एम टेलिंग ना दीज हैव ऑल्सो बीन द रिसर्च स्टडीज सो फार कि लर्नर्स क्या करते दे आर स्टडिंग बट देन एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू सॉन्ग्स. Now the human brain is designed in such a way that we are wired to focus one at one task one at a time. तो एक बार में हम एक ही चीज़ पे फोकस कर पाएंगे. बट यू नो हमारा एक साइड पे म्यूजिक इज रनिंग, एक साइड पे हम लोग नोट्स बना रहे हैं या फिर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं. अब हमें ऐसा लगता है कि जब यू नो पढ़ाई हो रही है वी आर लर्निंग, बट इन रियलिटी आर ब्रेन इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द म्यूजिक और व्हाट्स एवर मीडिया इज बीइंग रनिंग इन द बैकग्राउंड एंड लेस टुवर्ड्स द कंटेंट दैट यू आर स्टडिंग.
1: राइट मैम.
2: देन अगेन सेम थिंग कि यू नो कंटेंट आपने आप पढ़ेंगे नहीं, आपका वो नो वो जो रियलाइजेशन आता है रियल में द रिसर्च शोज कि व्हेन यू आर वेरी डेडिकेटेडली लर्निंग तो आपकी पढ़ी हुई हर एक लाइन का एक पिक्चर आपके माइंड में बनता है. बट व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड तो वो पिक्चर नहीं बनता है आपके माइंड में. एंड व्हेन दैट पिक्चर इज नॉट क्रिएटेड दैट मीन्स वो फुलफिलिंग लर्निंग हुई ही नहीं है. सो अगेन द सेल्फ कंट्रोल इन द फैक्ट कैसे डिवाइस हमें गोल सेट करना है दैट देयर शुड बी 30 मिनट्स नो डिवाइस टाइम कि 30 मिनट का हम अपने स्टडी स्केड्यूल में ऐसा टाइम रखेंगे जहां 30 मिनट में हम कोई फोन कुछ भी कंप्यूटर कुछ भी टीवी नहीं यूज करेंगे ना देखेंगे. 30 मिनट्स ओनली बुक्स कॉपीज एंड पेन. सो लाइक दैट यू नो ग्रेजुअली. अच्छा वन मोर एस्पेक्ट इज कि एकदम से ये हैबिट्स नहीं डेवलप होती है. यू हैव टू बिल्ड ऑन यू नो वन बाय वन एक एक कदम लेना पड़ता है. तो आप एक धीरे धीरे करके यू नो ऑल्टरनेट डेज में ट्राई करिए कि हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे, ऑल्टरनेट डेज में ट्राई करिए हम स्लीप हाइजीन फॉलो करेंगे, ऑल्टरनेट डेज में ट्राई करिए कि हम नो डिवाइस वाला गोल सेट करेंगे फॉर 30 मिनट्स एंड ग्रेजुअली वी विल स्टार्ट लिविंग अ लाइफ विच इज वेरी मीनिंगफुल. एंड यू नो results have also shown that researchers have said that the academic performance of the learners increases, their emotional intelligence also increases, and nowadays we are giving more prominence to how well you are able to handle your emotions.
1: You're absolutely
2: so,
1: right.
2: So, is wajah se emotions are also very balanced. So, that would be from my side for this aspect.
1: So, definitely, ye bahut interesting topic hai jahan aaj ka sahyog satra hamara baat kar raha hai, digital well-being, nurturing healthy technology habits for learner. My next question is for you, Ms. Shikha Jha. Ma'am, want to ask that what is the current scenario of student technology dynamic like? What are some major challenges being faced in academics?
3: Thank you so much for asking that question. And I feel very privileged to be a practicing counselor kyunki main usi environment mein reh rahi hoon. Roz mera bachchon se interaction ho raha hai, students se interaction ho raha hai, and that is why this is a trend that I have been seeing for past couple of years. Immediately lockdown ke baad se ye ek bahut hi trend spike hua hai kyunki tab during the COVID lockdown it was a necessity. तो हमें अपने क्लासरूम्स को अपने फोन्स ही बनाने पड़े थे. दैट वाज अ नेसेसिटी, उस टाइम की जरूरत थी. लेकिन उस ट्रांजिशन के बाद से अभी तक बहुत सारा जो एक गैप कवर करना होता है बच्चों को एक वापस एक मीनिंगफुल स्टेट मिलाना, दैट हैज बिकम क्वाइट चैलेंजिंग. क्योंकि पहले हमारा लाइक बिफोर द लॉकडाउन, इवन बिफोर दैट लाइक 10, 7, 8 years अगो, अगर कोई बच्चे अगर आप किसी क्लासरूम में जाएंगे और बच्चों से बोलेंगे कि यू हैव अ स्पोर्ट्स पीरियड नाउ, बच्चे पूरे हफ्ते दे यूज टू लुक फॉरवर्ड टू हैविंग देयर स्पोर्ट्स पीरियड बिकॉज दे वुड गेट टू गो आउटसाइड एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स, बी ऑन द प्ले ग्राउंड. नाउ डेज वॉट वी आर सीइंग मोर एंड मोर इज किड्स वॉन्ट टू स्टे इनसाइड, दे डोंट वॉन्ट टू गो आउटसाइड. They say they are feeling sleepy, they are feeling tired, they don't want to run, they don't want to play. Can we just stay inside, ma'am? Can we just, you know, use the Educom? Because in a lot of schools, having an Educom is becoming very common now. So, the first thing is, can we move to the previous slide only? That is the relevant one. Yes, thank you. So, our attention spans are decreasing. When we say our, I do mean not just the children, but all of us who have been interacting with the digital media for quite some time now. Instant gratification ki hum ek aadat si ho gayi hai. Reels, short form videos, jo hum 30 second, 40 second, hume puri story mil jana, pura gratification mil jana. We have become accustomed to that. We have become accustomed to scrolling.
1: Yes.
3: We don't have the habit of looking for answers now. We can just go into any AI app, whether it's Gemini or ChatGPT or Grok, and we can have our entire assignments done. तो वो जो एक मेहनत का एस्पेक्ट था, एक क्यूरियोसिटी का एस्पेक्ट था. अगर आप पहले एक बच्चे से बोलते कि आपको एक 5 पेज का ऐसे लिख के लाना है, तो उसमें वो एक्चुअली 5 अलग सोर्सेस को देखेगा, फिर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखेगा, गलतियां भी करेगा, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग. बट नाउ डेज दैट 5 पेज ऐसे कैन बी डन इन अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स विद द यूज ऑफ AI, एंड एवरीथिंग हैज बिकम सो इंस्टेंट दैट बच्चों की critical thinking skills, problem solving skills, creativity, that has genuinely suffered. National Institute of Health ki research se pata chala hai ki around 98% of students, 98.2 to be exact, unka primary device is a smartphone and they use that smartphone for more than the recommended 2 hours a day. When they're in school, kafi common hai kafi schools mein that they will be in the presence of smart boards or smart panels. Otherwise, at home, they are attending online coachings, or if they are doing some self-study, even if they are like, you know, they want to do the self-study, it is done with the medium of a laptop, a tablet, or basically any online medium. So, awareness bahut hai bachchon ko. Bachchon ko technology ke bare mein, duniya ke bare mein kya ho raha hai, unhe bahut cheeze pata hai. Aap unse geopolitical baate kar lijiye, aap unse पॉप कल्चर की बातें कर लीजिए, दे आर वेरी अवेयर. बट द थिंग इज दैट अवेयरनेस नंबर 1 इज वेरी सुपरफिशियल, इट्स वेरी बेसिक. सो ऊपर ऊपर से सारी नॉलेज पता है, लेकिन जो मेहनत का एस्पेक्ट होता है कि हमें कुछ पता तो है कि एक्स वाई जेड हो रहा है दुनिया में, लेकिन क्यों हो रहा है हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, एंड टाइम आजकल बच्चों के पास है नहीं. मोर इम्पोर्टेंटली फोकस नहीं है. तो अगर आप बच्चों को एक 40 मिनट के 45 मिनट के पीरियड में हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स कुछ भी पढ़ाना चाह रहे हैं, 5 मिनट और बच्चे का अटेंशन गया. तो ये जो एक लॉकडाउन के बाद से हमने एक ट्रेंड देखा है, इट हैज बीन इमीडिएट एंड इट हैज बीन ऑनगोइंग. कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं, आई क्विकली गो ओवर दैट. अच्छी चीजों में यह है, पर्सनलाइज लर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं. पहले 1 मेथड फॉर ऑल का सिस्टम था, अब बच्चा एक विजुअल लर्नर है तो उसके लिए ज्यादा ग्राफिक्स हैं, ज्यादा वीडियो ऑडियो बेस्ड फाइल्स हैं जिससे वो अपने हिसाब से अपने पेस पे पढ़ सकता है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं. टीचर्स का, एजुकेटर्स का लोड बहुत कम हो गया है. दिस हैज बीन अ थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड कि अर्लियर जो रिपोर्ट्स और जो लेसन प्लान्स बनाने के लिए टीचर्स को एक एक दिन, दो दो दिन लग जाते थे, वो अब जल्दी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू डू इट. सो दैट जो उनका एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा टाइम है, दैट इज मोर पॉजिटिवली यूज्ड फॉर एक्चुअल टीचिंग. सो दिस हैज बीन अ वेरी गुड चेंज आई वुड से. अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है. पहले अगर हमारे पास रिसोर्सेज के लिए 4 बुक्स है तो 4 बुक्स ही है, बट नाउ डेज द वर्ल्ड इज आर ऑयस्टर एंड वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट जेन्युइनली इज अ वेरी good step in academia, I would say. And lastly, increased engagement.
1: Right.
3: Doesn't matter where the child is, they can attend your classes, doesn't matter what's going on, they are aware. But then again, there's a huge equity issue. Lockdown mein humne sabne notice kiya ki sare bachchon ke paas same technology nahi hone wali hai. Urban, suburban aur rural areas mein very much disparity. Then lack of critical thinking is something that I've already mentioned.
1: बिल्कुल. तो टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड्स हमें देखने को मिलते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विषय में जानते हैं एक बार फिर मिस फिजा से. हाउ डज ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अफेक्ट रिलेशनशिप मैम?
2: Yes, as ma'am has, you know, touched various aspects, in the same light, I would like to delve upon ki overuse of, or you can say, you know, the technology has limited our emotional interaction a lot. Jaise ki, aap dekhiye, people are less into talking, but they are more into chatting. And learners ke saath bhi yehi ho chuka hai. Aajkal you see a lot of WhatsApp groups are there, Instagram groups are there. School mein bhi, if I remember when I was in my school, so we did not had any such kind of WhatsApp group. So it was more of diary mein aap likh karke de rahe hai, and then you're showing it to the parents, then parents are inquiring on the same thing. this used to happen, and then there was an interaction part that also used to happen between the parents, the learner. But now what is happening is ki direct WhatsApp group pe wo circulate ho jata and the learner know ki that the parent has already seen that thing. To wo uske baare mein zyada baat cheet hoti bhi nahi hai. And you know, is wajah se kya ho raha hai, interaction jo hai parents mein, learners mein, teachers mein bahut kam hota chala ja raha hai. It is more of in a digital form. Also, we are also, you know, caught in this habit of ki too many people are sitting in one room, but nobody is talking to each other because they all are busy on their phone. So, itne sare log jab saath mein baith rahe hain, they have their all experiences, they have their thought process, they all have their own minds. To isme kitni sari productive cheeze hum, you know, unpe baat kar sakte hain, apne experiences share kar sakte hain. But what is happening nowadays is ki hum us point pe ja hi nahi pa rahe jahan pe hum dusron ke sath zyada khul kar baat kare ya engage ho. We feel more comfortable in ki hum, you know, will drop a text. Even call ke liye bhi aap dekhiye, if you want to call, to what we prefer ki rather than calling, let us drop a text, the person will immediately, you know, reply in that, because hum bach rahe kahin na kahin. You would see that this is really true. To aise mein kya ho raha hai, learners ke sath bhi they are more becoming passive. And when the learners, jab unki personality mein ye passivity aati chali jati hai, to eventually it is also reflected in their academic performance. Khud ke jo creative aspect ko, jo unki divergent thinking hai, jisko wo bahut zyada, you know, showcase kar sakte the apni academics, learning mein, apni personality mein, apne growth mein, wo aa hi nahi pata hai. And for that reason you would see that now we understand that EQ has more to do with the than IQ. Ki ek time tha jab hum samajhte the ki aap kitna behtar aapka cognition hai, aap kitne acche se, you know, exam mein perform kar pa rahe, all of this matter. But today we see that your emotional regulation, how well you are able to sense your emotions, feel them, convey them, and then, you know, feel all of it, the metacognition, jo hum apni thinking about the thinking, kya soch rahe hain, jo soch rahe hain wo kyun soch rahe hain, khud pe reflect kar rahe hain, ye sari cheeze bahut zyada kam ho chuki hai with the use of technology. We are more using the emojis thing. To ab learners ke sath kya ho raha hai, jaisa ma'am ne mention kara, they are going less into the playground mein nahi ja rahe hain, but what they are preferring ki at the same time apne friends se chatting karenge. So what they are doing, wo message type karna, emojis bhejna, and is tarike se express karna passively. Ab isi mein क्या होता है, समटाइम्स सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन्स, सम कन्फ्लिक्ट हैपन्स, एंड दिस रिजल्ट्स इन एंजाइटी. लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज द लर्नर्स आर फेसिंग फॉर द सेम रीजन. और एक ही चीज को मल्टीपल वेज में प्रेडिक्ट करना कि ये वाला इमोजी भेजा, मे बी दिस इज द रीजन, ये वाला चैट कलर है, मे बी दिस इज द रीजन. बाय लर्नर्स आर बिकमिंग सर्फेस लेवल पे उनकी लर्निंग इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि वो हर एक चीज को दे ट्राई टू इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. एंड देन वहीं पे वो इमोशनल डेप्थ में नहीं जाना, बातें नहीं करना.
4: बिल्कुल मैम, ये तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारे लर्नर्स जो हैं वो बदल रहे हैं, उनकी आदतें बदल रही हैं, वो टेक्नोलॉजी को लेकर हर दिन नया सोचते हैं और नए बदलावों को एक्सेप्ट भी करते हैं. एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिलता है आज के युग में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. सो अब शिखा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, AI एज वी नो इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ AI इंटीग्रेशन इन एजुकेशन?
3: Okay, so we know AI has taken over the world. It has become accessible to everyone.
4: Yes.
3: My core belief is it's good if it is balanced. AI has to serve your pedagogy and not the other way around. So make sure that you use AI, even if it is in the classroom or even if it is at home when you're teaching your own child. Aapko AI ko as a tool use karna hai to assist in the process of education, and you don't have to become fully reliant on them, because we do know that there is a level of bias and misinformation that can be that can seep through. But there are some really good benefits when it comes to using digital spaces, which I think I already mentioned earlier. But there is one thing that I would like to touch upon, and I completely agree with Fiza ma'am, because आजकल बच्चों को AI के बारे में, आई थिंक अ लॉट ऑफ स्कूल्स आर ऑल्सो एडवर्टाइजिंग दैट वी स्टार्ट टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट AI फ्रॉम ग्रेड 5, फ्रॉम ग्रेड 6. AI इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड द CBSE करिकुलम फ्रॉम 9th अपवर्ड्स. तो मेरा बस एक सजेशन है कि वेन एवर यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट AI, वाइल यू आर टीचिंग देम अबाउट prompt engineering and data literacy, great. Include ethical judgment in the curriculum.
4: Right.
3: Make sure कि आप बच्चों को ये भी बताएं कि how we can most humanly use AI. For example, ethical use क्या होता है, privacy की क्या important होती है, importance होती है. क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, हमें पूरी तरीके से एआई पे डिपेंड नहीं होना है, थिंग्स लाइक दैट. व्हाइल इट इज वेरी एक्सेसिबल, इट इज वेरी वेरी यू नो यूनिवर्सली कनेक्टिंग पीपल, इट इज ग्रेट. एंड आई थिंक ऑल आर स्टूडेंट्स, ऑल आर चिल्ड्रन फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दे शुड बी अवेयर अबाउट एआई, बट दे शुड ऑल्सो बैलेंस दैट काइंड ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट विद इट. And one small request to all the parents is that, जैसे मैम ने कहा कि you know, घर में सोने से 30 मिनट पहले, एक घंटा पहले आप फोन्स अलग दीजिए. एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में जिसे हम मॉडलिंग कहते हैं, मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर, कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है.
4: जो एक लाइन है, एक मिड लाइन है, वो हमें खींचनी होगी, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी के सकारात्मक जो भाव है, जो उसकी साइड है, उसको देख सकें, ना कि हम सब कुछ नेगेटिव ही लेते रहें. तो ये एक बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने आज के अपने सहयोग सत्र में जानी है हमारे दोनों ही पैनलिस्ट से. समय है कि सत्र को समाप्ति की ओर लेकर चलें और धन्यवाद करें हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का. हमारे साथ है मिस फिजा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम RIENCERT भोपाल से. मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. साथ ही धन्यवाद करते हैं मैम मिस शिखा झा का, हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर. मैम थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू सो मच.
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स को बता दें, यूजिंग नेम ऑफ सोशल मीडिया और एनी अदर वीडियो प्रोवाइडर इज जस्ट एक एग्जाम्पल, वी डोंट हैव एनी कंसर्न ऑफ दिस. चलिए कल प्रसारित होने वाले सत्रों से आप सभी को बताना चाहेंगे कि पहला जो सत्र है वो योग शक्ति.
5: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल, यह अपना भाषा है क्योंकि आदिवासी भाषा है। तो हमें बहुत खुशी होता है जब गांव और अंचल में जाते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सब तक पहुंचे, इस कोशिश को लेकर जब रेडियो मधुबन गांव गांव ढाणी ढाणी और गली गली शहर शहर में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी, बहुत कुछ मिलता है और सभी का बढ़ चढ़ कर हिस्सा भाग लेते तो हमें खुशी मिलता है। तो इस कार्यक्रम को आज सजाने के लिए हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रांगण में जो पीएम पार्क है, दादी प्रकाशमणि पार्क, तो उसी में आज बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए। आज थोड़ा दूर से सभी जो आए तो उनको भी एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आसपास क्या गतिविधि हो रहा है, खासकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या गतिविधि वो आज आप तक पहुँचाएंगे। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ बहुत सारे भाई बहन उपस्थित है, तो पहले शुरुआत करते हैं। हमारा भाई साहब उपस्थित है, तो आपको स्वागत है रेडियो मधुबन परिवार की ओर से और खासकर हमारा ग्रामवासियों की तरफ से, अंचल वासियों की तरफ से। आपका परिचय प्लीज।
1: मेरे शरीर का नाम विपुल है और ऐसे मेरा जो गांव है उसका नाम कंथारिया गांव है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं सूरत में हूँ, वहाँ मेरा अपना बिजनेस है और मैं लास्ट 36 साल से ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और ये राज्यों का अभ्यास मैं कर रहा हूँ अपने जीवन में।
0: राज्यों क्यों आवश्यक पड़ा आपका जीवन में, और हमारा जो ग्रामवासी सुन रहे अंचलवासी सुन रहे उनके लिए राज्यों कितना आवश्यकता है, उनका जीवन शैली में क्या परिवर्तन, जैसे आप अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या आपका परिवर्तन हुआ ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद?
1: ईश्वरीय ज्ञान से और खास करके जो यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर एक मन की सच्ची शांति, जो आज हर एक चाहते हैं। आज देखते हैं कि हर एक के जीवन में इतनी कंपटीशन है, कंपैरिजन है और इतना फास्ट लाइफ है कि जीवन के अंदर टेंशन, तनाव, डिप्रेशन और बीमारियां वो बढ़ती जा रही है और मेन इसका कारण है मेंटल। हाँ, तो हमने देखा कि राजयोग से हमारा जो जीवन के अंदर हम रिलैक्स रहते हैं और हम संतुष्ट, हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ है, गुण है, हाँ, जैसे संतुष्टता है, मधुरता है, हर्षित मुक्ता है, सहनशीलता है, ये सब दिव्य गुण भी हमारे जीवन में आते हैं। तो परिस्थितियाँ तो आती है, हर एक के जीवन में आती है, गांव में रहे, शहर में रहे, परिस्थितियाँ तो आती है, लेकिन उसको हम सहज भाव से कैसे उसको हम सामना करें, तो सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। और कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो समाने की शक्ति भी आती है, सहन शक्ति भी आती है, और हर एक के साथ हम कैसे एडजस्ट करें। हाँ, जैसे कंपनी में काम करते हैं 10 है, 15 है, हाँ, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़े लिखे है, तो हर एक को हम कैसे चलाएं, ये हमें आध्यात्मिक

0: आध्यात्मिकता सिखाती है, तो इसलिए हमारा जीवन एकदम इजी सरल रीति से चलता है।
1: विपुल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल भाई के लिए ताली बजा दो। सुंदर प्रस्तुति दिए और सूरत से और गुजराती होते हुए भी आज पूरा हमारा जो आसपास गांव के जो श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि आबू रोड जो है राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर में है, तो और एक हमारा साथ कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है उनको भी स्वागत करते हैं। सर आपका शुभ नाम?
2: ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है भिखू भाई।
1: अच्छा,
2: मैं ज्ञान में 14 साल से हूँ और मेरा गाँव है भावनगर। ठीक है, मेरा वैसे जॉब है, सरकारी कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और उसमें आप सब जानते हो कि कितना सारा काम रहता है। आज की जो परिस्थिति है, तनाव ज़्यादा बढ़ता है, जो कुछ भी है, तो उसमें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से सेल्फ रियलाइज आप नहीं करोगे तब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए फिर मुझे ऐसा संकल्प हुआ, बाबा से मिला, बाबा का ज्ञान लिया, और आज इतनी सारी खराब परिस्थिति है, जैसे कोरोना अभी पास हुआ, फिर भी मैं निश्चय और निश्चिंत था। तो उसी वजह से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आप सबको कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा की याद में रहो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते समुदाय में जो गतिविधि हो रही, जैसे आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, खासकर सूरत भावनगर से हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए भाई बंधु आए हैं, तो उनको भी आज सम्मान मिल रहा है, उनका आवाज़ भी आज दूर दूर तक पहुंच रहा है, ये हमारे लिए खुशी है। हमेशा तो गांव और अंचल का आवाज़ हम सुनाते थे, लेकिन आज थोड़ा हट के कुछ नया आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है और जीवन परिवर्तन करने के लिए राजयोग कितना आवश्यकता, हम भलीभांति अनुभव करते हैं और आप लोग भी जानते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आज जब रेडियो मधुबन खासकर पीएम पार्क में पहुंचे, यहाँ के जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत आगंतुक आते हैं, ब्रह्मा कुमारी भाई बहन, अपने जीवन को सरस सुंदर सहूलियत बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक बहन को हम माइक देते हैं, वो भी कुछ बात बताएंगे। क्योंकि बहुत समय हो गया कि गीत हो जाए, गीत ना हो, और हमारा श्रोता मित्र को खुशी मनोरंजन कराने के लिए एक गुजराती गीत हो चाहे हिंदी गीत, जो आपको पसंद है।
1: मेरा शरीर का नाम वर्षा बेन है और मैं सूरत से रहने वाली हूँ। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसाराणा, ओ हंसाराणा, तो चुगले चुगले राजयोग का मोती, तू चुगले चुगले राजयोग का मोती।

चुगले राजयोग का मोती, मेरे मन के मान सरोवर के ओ

0: जीती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है?
0: मारा शरीर नु नाम खुशाली छे। हूँ 6 महीना थी आध्यात्मिक માં જોડાયેલી છું અને મને ખૂબ જ સારો એવો અનુભવ થયો છે અને ખૂબ જ આ જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી ખૂબ જ શાંતિ, કઈ પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે રહેવું અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું કઈ રીતે સોલ્યુશન કરવું, હસતા મુખેથી આપણે બધી જ પરિસ્થિતિનો કઈ રીતે સામનો કરવો એના એ માટેનું ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન મને આમાંથી મળે છે, જેથી તમે પણ જોડાઈ શકો અને તમે તમારી પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન કઈ રીતે લાવી શકો એના માટે જોડાઈ શકો ખૂબ જ। હું ફિઝિયોથેરાપી કસરતમાં પાર્ટ નિભાવું છું। મેં મારું સ્ટડી એમાં કમ્પ્લીટ કરેલું છે અને હું અત્યારે બધા જ બીમાર લોકોની સેવા કરી રહી છું।
1: સુનો સુનો, ઓર રાજયોગ આપ તો શીખતી હૈ તો રાજયોગ સે આપકો ક્યા ફાયદા હુઈ?
0: રાજયોગ સે મુજે બહુત ફાયદા હુઆ હૈ। કોઈ ભી પ્રોબ્લેમ્સ આતે હૈ તો ઉસે કિસ તરહ સોલ્યુશન લાના ઓર કોઈ ભી પરિસ્થિતિ મેં કેસે હમે સામના કરના ચાહીએ હસતે હુએ ઓર ઇસ તરહ આગે બઢતી હું।
1: બહુત બહુત ધન્યવાદ। નામ કા સાથ
2: તાલી બજા ભાઈ જોર સે।
1: क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति है और हमें बहुत खुशी है। सबका भागीदारी देखने को मिलता है, छोटे बच्चे से बड़े तक। तो गांव और अंचल में इस तरह भावना को लेकर जब पहुंचते हैं राजयोग सीखते हैं तो राजयोग तो एक जीवन जीने की कला सिखाती है और राजयोग सीखना चाहिए। राजयोग से ही परमात्मा का और आत्मा का ज्ञान मिलता है और जैसे बहन अभी बता रही थी राजयोग से उनका जीवन में सुंदर सरस और उनका एम्बिशन में जो लक्ष्य रखे वो लक्ष्य को पार करने में अति सहज हो जाएगी और ये हमारा सुभावना है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ और एक बहन है तो वो भी अपना परिचय देंगे। आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। खासकर आप यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, क्यों आए और आपका लक्ष्य क्या है और क्या लेकर जाएंगे, कितना दिन हुआ यहाँ पर?
3: मेरा नाम स्नेहल है, मैं सूरत से अम्बा तलावड़ी सेंटर से आई हूँ। मैं यहाँ 5 दिवस ने योग पट्टी माँ शांतिवन में आई हूँ। मैं पहली बार आई हूँ, मुझे ऐसा अनुभव यहाँ हुआ कि कोई खुशी का पार नहीं है। मेरे मन की सब प्रॉब्लम दूर हो गई और मुझे इतनी शांति मिली कि मेरा जीवन का सब कुछ दुख था वो समाप्त हो गया और सभी समस्या का हल हो गया। और यहाँ इतना सुंदर परिचय दिया जाता है। मेरा नाम, शरीर का नाम तो स्नेहल है पर यहाँ आत्मा का ज्ञान दिया जाता है और मैं एक आत्मा हूँ ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है। और आत्मा से, परमात्मा से योग कैसे लगाए और परमात्मा से मिलन कैसे करे ये बहुत अच्छी अनुभूति कराते हैं और अनुभूति हो ही जाती है आसान से, कोई देर नहीं लगती। ओम शांति।
1: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी सुन रहे थे, अनुभव ही अनुभव सुना पाएगी। बहुत सुंदर रूप में आपने अनुभव, 2-4 दिन जो रिफ्रेश में होने के लिए आते हैं राजयोग सीखने के लिए परमात्मा से शक्ति लगते हैं, क्योंकि सबका जीवन में परमात्मा का शक्ति आवश्यकता है। तो रेडियो मधुबन कार्यक्रम में आज श्रोता मित्र सुन रहे हैं हट के राजयोग के बारे में, आध्यात्मिकता हमारा जीवन में कितना आवश्यकता, भक्ति पूजा आस्था विश्वास सभी करते हैं, उसका साथ साथ जब हम खुद को देखेंगे, खुद को जानेंगे और जब अंदर में झांकेंगे तो खुद को बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा, क्योंकि ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति सबका जीवन में आवश्यकता है, इनका बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो हमारा श्रोता मित्र भलीभांति जानते हैं और इस तरह से समझ जाते होंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें और एक भाई साहब है तो नाम बताइए।
4: ओम शांति। शरीर नो नाम अमित है। राजयोग ना ज्ञान द्वारा जीवन में जो परिवर्तनों जोया छे विश्वास न थई शके एटला बधा जबरदस्त छे। जीवननुं कोई पण क्षेत्र होय, चाहे सामाजिक जीवन छे, पारिवारिक जीवन छे के तमारा कोई कमर्शियल विषयनुं कोई पण फील्डनुं परिवर्तन जीवनमां आवे छे, अनबिलीवेबल छे, मान्य न करी शकाय एटलुं बधुं परिवर्तन आवे छे। ओम शांति।
1: धन्यवाद। केतना सुंदर प्रस्तुति और इसका साथ साथ क्या कहना चाहेंगे, व्यसन मुक्त जब सही जानकारियाँ होता है क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, शुद्ध भोजन का साथ साथ हमारा जीवन में जो नशा, नारायण नशा होना चाहिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, तो नशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: नशा के बारे में ज़्यादा तो मैं, हाँ नाश की तो जड़ है ही, मगर नशा के बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं मेरा बता सकता हूँ कि मैं तंबाकू का इतना आदि था, तंबाकू छूट गया है, उसका आगे मैं और लोगों का मैं नहीं बता सकता कि मेरा हो गया है, मेरा तंबाकू छूट गया है। और नशा जो उसके बाद जो नशा बनता है और वो जो ज्ञान का नशा ही बनता है, शिव बाबा का नशा बनता है, ब्रह्मा बाबा का नशा बनता है, उससे बड़ा कोई नशा है ही नहीं। ओम शांति।
1: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी, खासकर नशा नाश की जड़ है, नशा क्यों करते हैं और जब आदि हो जाता है, हावी हो जाता है, हैबिट में आ जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शुरू शुरुआत में तो थोड़ा स्लो पॉइजन जैसे, लेकिन जो भी नशा कर रहे हैं इस रेडियो मंच का माध्यम से नशा छोड़े और अपना गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए राजयोग ही एक सशक्त अस्त्र है जो कारगर साबित होता है। और अनुभव आधार से सभी लोग बताते हैं जे राजयोग का माध्यम से मैं अपना जीवन को नशा मुक्त बनाए, जैसे हमारा भाई साहब अभी अपना राजयोग का माध्यम से नशा मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गीत हो जाए, एक गुजराती गीत, क्योंकि बहुत समय से विषय पर चर्चा कर रहे नशा मुक्ति जीवन को सरल बनाने में, लेकिन एक गीत हो जाए तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, गुजराती गीत के लिए इंतजार कर रहे हमारा श्रोता मित्र, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, आप समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, भाई क्या पहुँचा दोगे है? भाई कहाँ पहुँचा दोगे? भाई मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। भाई सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे है? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आप सब सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल पीएम पार्क में। बहुत सारा हमारा भाई बहन आए हैं ब्रह्मा कुमारी दूर से आने के लिए, राज्य को सीखने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ सुंदर बनाने के लिए। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा दीदी जी उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी, तो अपना परिचय खुद देंगे। दीदी आप अपना परिचय दीजिए पहले।
4: इस शरीर का नाम सावित्री है और 42 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और बहुत बड़ों की बाप दादा की भी पालना ली है, मधुबन की भी लिए, पांडव भवन की भी ली है, बाबा से वरदान भी पाए हुए हैं और 20 साल से सेंटर पर समर्पित रूप में रह रही हूँ। तो अभी मैं अपने हाथ से बनाया हुआ जो गरबा है, गरबा गाऊँगी गुजराती में।

0: ओम शांति।
1: ताली बजा देवी के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इतने सुंदर प्रस्तुति दी। हमारा श्रोता मित्र आज तो झूम गए होंगे मधुबन रेडियो में और मधुबन का ही गीत। चलो मधुबन मैंने जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है, रेडियो मधुबन में मधुबन का ही महिमा हो रही है, क्योंकि जो मधुबन है परमात्मा का कर्तव्य भूमि है, दिव्य भूमि है और देवी देवता का वासस्थान कहते हैं, क्योंकि आरावली पर्वत में मधुबन है और मधुबन आने के लिए सब तरसते हैं, पूरा विश्व का ये मधुबन है, सभी लोग आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीदी जी को, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए और जैसे सभी को पूरा मधुबन गीत सुनते सुनते सब मधुबन आ गए जो नहीं आए साकार में, आप तो आ गए मधुबन, जो नहीं आए हैं जो रेडियो का माध्यम से सुन रहे हैं वो भी अपना भावना को लेकर पहुंच जाते हैं और खुशी लगता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक अब तो पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आज खासकर गुजराती और हिंदी मिक्स आपको सुनने को मिल रहा है और इसका पहले हमारा दीदी लोग भाई लोग ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपना आवाज सुनाए, कोई अनुभव सुनाया, कोई गीत गाए, लेकिन छोटी सी मासूम दोनों तोतली तोतली आवाज में सुनाएंगे और वो भी गुजराती में, है ना। तो नाम बताइए।
1: रोशनी।
0: अच्छा, पूरा रोशनी करेगा। तुम्हारा नाम?
1: सुहानी। सुहानी।
0: अरे रोशनी और सुहानी को वेलकम करते हैं आज का कार्यक्रम में। छोटी सी बच्चे हैं लेकिन ब्रह्मा कुमारी है और ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं और घर में मम्मी चलती तो मम्मी को देखकर बच्चे भी आ जाते, टोली खाते हैं और बाबा का बोली भी सुनते हैं। तो गीत गाएंगे कुछ? हाँ, अनुभव सुनाएंगे। और शिव बाबा को जानते हैं आप?
1: हाँ जी।
0: कितना साल से शिव बाबा को जानते?
1: बस 9 साल से।
0: और आपका?
1: 9 महीने से।
0: 9 महीने से। और उनका उम्र अभी 11 साल होगा। ज्ञान में चलते शिव बाबा को जानते?
1: पापा, मम्मी और मेरी बहन और मैं।
0: हेलो भाई, कैसा लगा बाबा घर स्वागत? किस लगा
1: जी?
0: खाना पीना ठीक से मिल रहा? ब्रह्मा भोजन?
1: हाँ।
0: मिल रहा टोली?
1: मुझे बाबा की टोली एक गोली के तरह लगती है।
0: बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं?
1: हाँ जी, हम अपने जीवन का अनुभव सुनाएंगे, हम कैसे ब्राह्मण जीवन में हमारा जन्म हुआ। हम लोग मम्मा के दिन पे घर पे थे, मम्मी ने बोला कि आज मम्मा का दिन है तो ब्रह्मा कुमारी में टोली रहेगी, माना प्रसाद होगा। तो पूरा दिन बारिश हुआ, फिर हमने शाम को बारिश बंद हुआ, हमारी बहन जी यानी कि मौसी की लड़की के साथ हम लोग सेंटर पे गए, फिर दीदी ने टोली खिलाई और बोले कि कल से आना शुरू कर दो। तो हमने दूसरे दिन से चालू कर दिया जाना। और फिर मेरी धारणा कैसे चालू हुई कि मेरी दीदी थी, इतनी पक्की धारणा करते हैं कि उनके पास से मैंने सीखा है धारणा करना।
0: धारणा क्या होता है?
1: धारणा माना अन्न शुद्धि नियम।
0: अन्न शुद्धि क्या है?
1: लहसुन प्याज नहीं खाना और बाहर का चीज नहीं खाना, ये सब मेरी दीदी ने सिखाया था, मेरी टीना दीदी थी।
0: आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? चलो बहुत अच्छा। ज्ञान अच्छा लगता है?
1: जी।
0: क्या अच्छा लगता है? ज्ञान सुनाओ तो एक श्री बाबा का एक मूल्य का पद सुनाओ।
1: मन मना भव।
0: अरे मन मना भव, जो कि गीता का सार है, मन मना भव मध्याजी भव, है ना। मन में परमात्मा को जब याद करेंगे तो मध्याजी में विष्णु जैसे बन पाएंगे, लक्ष्मी जैसे बन पाएंगे, है कि नहीं? सत्य जी में लक्ष्मी बनेगी ना नारायण बनेगी?
1: लक्ष्मी।
0: तुम क्या बोल रहे? नारायण।
1: हाँ जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। चले, और कुछ बोलना है?
1: हाँ, हम रोज मुरली सुनते हैं, हमारी मम्मी जाती है इसीलिए, और मुझे अपने करोदरा सेंटर की दीदी बहुत अच्छी लगती है।
0: मम्मी का नाम तो बताओ।
1: मनीषा बहन।
0: बहन हो गया मम्मी ने? बहन, वाह, इसको कहते पक्का धारणा वाले, मम्मी को भी बहन बना दिया है कि नहीं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, है ना, संस्था में जब आते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। अच्छा।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाई थी। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

0: आज भिन्न भिन्न आवाज को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक ही आवाज तो हमेशा सुनते थे, लेकिन आज सभी ब्रह्मा कुमार इस जीवन को पवित्र रहकर श्रेष्ठ बनाते हैं, उनका आवाज आप तक पहुंच रहा है और ये परमात्मा का देन है, परमात्मा का हम सब संतान आत्मा है। तो और एक आत्मा वो अपना आवाज को सुनाएगी गुजराती में, तो क्या नाम है?
1: नाथी बेन।
0: अभी गुजराती में हाँ चलो शुरू करिए।
1: उतारो यार तीज भगवान के।

0: ना थकान की चिंता ना नींद का ठिकाना है, दूसरों की मुस्कुराहट ही इनका असली खजाना है। दर्द में जो मरहम बने वही तो फरिश्ते हैं, नर्स का हर मरीज से इंसानियत का रिश्ता है। बात करें, शो शुरू हुए उससे पहले ही हमें कॉल आए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार भाव जी,
0: मुरलीलाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: अंतरिक्ष भाई और केवल भाई आए हैं।
0: यस,
1: उस मस्ती के साथ में मेरा भी एक गाना हो जाएगा तो आनंद आ जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरा भी मस्ती मेरा गाना है।
0: आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रुक करके बैठे थे जैसे मैं 8 बजे और सबसे पहला मैं कॉल करूँ और अपना गाना सुनूँ।
1: क्या कह रहा है आपके सामने, मुझे भी लेना है। जितने भी श्रेता है वो भी छुट करके आनंद लेंगे।
0: क्या बात है,
1: मस्ती के साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो बात ऐसी है वो निभाना पड़ेगा, एक जमाना तुझे आना पड़ेगा। ताजमहल है, मोहम्मद रफी की आवाज है।
0: क्या बात है,
1: गाने का नाम है, गाना है ताजमहल, फिल्म है ताजमहल, और गाने वाले है मोहम्मद रफी जी।
0: क्या बात है,
1: सुनाने वाले है अंतरिक्ष भाई और
0: केवल भाई।
1: और केवल भाई,
0: क्या बात है, वाह वाह,
1: मुरलीलाल जी,
0: सभी सभी श्रोता जो भी सुनेंगे सभी सुनेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: मस्ती में जब जो कोई आता है उसकी मस्ती इतनी लुटती है, इतनी लुटती है, बार मुझे शोर भी नहीं लुट सकते वैसे।
0: क्या बात है, आज तो मुरलीलाल जी का
1: क्या कह रहा है, खुशियों के साथ में, हंसी के साथ में, आज के साथ में मुझे भी रहना है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद सर, सब धन्यवाद। एक तो आपकी आवाज हमारे को साफ नहीं सुनाई दे रही।
0: आज सुनाई नहीं दे रही साफ,
1: कैसे करते हो उसका जवाब दे रहे तो कैसे दे रहे।
0: अच्छा, अब सुनाई दे रही है ठीक से?
1: अभी तो ठीक दे रही है, थोड़ी देर के बाद आवाज वैसे ऑटोमेटिक डिम हो जाती है।
0: अच्छा, ऑटोमेटिक डिम हो जाती है,
1: ऑटोमेटिक बिल्कुल आवाज कैसे छुट की आवाज आती है, आवाज बिल्कुल साफ नहीं आती।
0: अच्छा, आज अगर हो तो बीच में मुझे कॉल करके जरूर से बताए।
1: ठीक है, ओके सर, धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच मुरलीलाल जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जी हाँ दोस्तों, तो शो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मैं हूँ आपका दोस्त और इस सफर का साथी आपका दोस्त केवल, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख है 12 मई। वैसे तो हर दिन किसी ना किसी वजह से खास होता है, लेकिन आज का दिन उन फरिश्तों के नाम है जो बिना पंखों के हमारी सेवा करते हैं। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल नर्सेस डे। कहते हैं ना, दवा से ज़्यादा दुआ और परहेज काम आता है, लेकिन उस दवा को मुस्कुराहट के साथ देने वाली जो शख्सियत होती है वही तो असली नर्स है। एक मरीज जब हॉस्पिटल के बेड पर होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा सहारा एक नर्स की थपकी और उनका भरोसा होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की याद में मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज का दिन, आज दिल की बातों में हम सलाम करते हैं उन सभी नर्सों का जो अपनी नींद, अपना सुकून त्याग कर हमारी सेहत का ख्याल रखती है। कहते हैं ना कि हमारी मनसा यानी कि थॉट्स का असर हमारी सेहत पर पड़ता है। एक नर्स सिर्फ

शरीर का इलाज नहीं करती बल्कि अपना धैर्य और सहन शक्ति से हमारी आत्मा को भी बदल देती है। आज के दिन अगर आपके आसपास कोई नर्स है तो उन्हें एक छोटा सा थैंक यू जरूर करें। आपका एक छोटा सा शुक्रिया उनके दिन भर की थकान मिटा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे ही शो शुरू हुआ हमारे पास एक हमारे भूरीलाल जी ने हमें कॉल किया और आज उनकी भी हंसी खुशी और शायद वेट करके ही बैठे थे कि सबसे पहले कॉल आवे और मैं सबसे पहले बात करूँ। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के ये सफर जहाँ पे सबसे पहला नगमा ही हमारा बहुत ही प्यारा है कि प्यार बांटते चलो। आइए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

ना जात देखती है ना धर्म की दीवार, नर्स की हर थपकी में होता है बस प्यार। गाना तो सिर्फ बोल है, उन्होंने जी कर दिखाया है। हर मरीज में उन्होंने अपना भाई पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज नर्स डे पर मेरे जहन में एक ही धुन है, प्यार बांटते चलो। क्योंकि एक नर्स जब हॉस्पिटल में सेवा करती है तो वो ना जात देखती है ना धर्म, वो हर दुख में मरहम बस बनकर सिर्फ प्यार बांटती है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, उनके लिए तो हर मरीज बस एक जान है जिसे बचाना उनका फर्ज है। जी हाँ, आज नर्सेज डे के दिन एक पहली मेरे ध्यान में आई है, मुझे ये पूछना है आप सभी से, तो जल्दी से अपना फ़ोन हाथ में ले लीजिए हमें कॉल करने के लिए। जो प्रश्न है वो पूछ रहा हूँ कि आज जैसे मैंने कहा कि नाइटिंगेल के दिवस में उपलक्ष्य में ये आज नर्सेज डे मनाया जाता है, तो हम किसे नाइटिंगेल कहते थे, किसे हमने नाइटिंगेल की उपाधि प्रजा दी थी, तो जल्दी से उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए। अगर सही जवाब पता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414151415 पे, यानी कि 9414151415 पे। जी हाँ, जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ। ये भी इसी नर्स डे के निमित्त पे हमने आज प्लेलिस्ट में लगाया है ये गाना, तो सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

में यार दोस्तों, बहुत ही हिम्मत देने वाला, हिम्मत को बढ़ाने वाला ये गाना अभी हमने सुना। कितनी ही आप, कई ऐसी मुश्किलें होती है, कहीं आप कभी ऐसी चीज़ों में घबरा जाते हैं, जहाँ पे आपको ये गाना ज़रूर से सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत हिम्मत देती है ये चीज़ें। यहाँ आज हम यादों के झरोके से एक ऐसी फिल्म निकाल करके लाए हैं जिसकी सादगी और संवेदना की एक नई परिभाषा लिखी थी। साल था 1964 और फिल्म थी दूर गगन की छाव में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये किशोर कुमार जी के दिल के बहुत करीब थी। उन्होंने केवल इसमें मुख्य भूमिका नहीं निभाई, बल्कि इसका निर्देशन, लेखन और संगीत भी खुद ही तैयार किया था। फिल्म की कहानी एक पिता और उसके गूंगे बेटे के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें भावनाओं का समंदर है। इस फिल्म में किशोर कुमार जी के बेटे अमित कुमार ने बाल कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। संगीत का जादू इसमें किशोर दास जी ने दिया था। दो तीन गाने और भी थे, आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ और राह तू रुक मत जाना, जो अभी हमने गाना सुना, जैसे गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय है। यह फिल्म किशोर कुमार की उन फिल्मों में से है जहाँ उनकी कॉमेडी नहीं बल्कि उनके संजीदा अभिनय ने लोगों को दिल जीत लिया। तो दोस्तों, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस चलते रहना है, क्योंकि मंजिल कहीं ना कहीं हमारा इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह अगले नगमे की ओर, क्योंकि अगला नगमा और भी प्यारा है, सच्चा है। चलिए सुनते हैं ये अगला नगमा मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त केवल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

के साथ वापस आता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और फ्रेश ब्लड जब आता है तो हमें स्फूर्ति और ताकत दिखती है। के साथ वापस आता है टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और फ्रेश

0: ओम शांति, नमस्कार
1: दोस्तों। ये है रेडियो मधुबन 107.8 FM और कार्यक्रम है सहज स्वास्थ्य। डॉक्टर राहुल मोदी जी से बात करते हुए ये बात समझ में आई है कि स्वास्थ्य को

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। अगर फरास या रूसी हो जाए सिर में तो क्या करना चाहिए, ये समस्याएं आजकल बढ़ती जा रही है। और कहते ना, समस्या बढ़ती जा रही है और समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो और भी टू मच बढ़ जाएगी। इसलिए आप भले डॉक्टर को भी दिखाइए और घरेलू उपाय भी साथ ही साथ चालू रखिए, ठीक है। दवा और दुआ दोनों ही मिलकर के अच्छा काम करेगी। तो देखिए, फरास रूसी सिर में क्यों होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। सिर में रूसी हो जाने पर फिर बाल झड़ने लगते हैं। रूसी ज्यादातर बालों की भली प्रकार सफाई नहीं रख पाने की वजह से होती है, ये कारण है, ठीक है। बालों में से जैसे साबुन सही तरीके से नहीं धुल पाता है, या इस रोग में सिर पर सफेद रंग के छोटे छोटे भूसी के समान कण बन जाते हैं। कंघी करते समय या सिर खुजलाते समय ये कण अलग अलग होकर के सारे ही बालों में रक्त बीज की भांति फैलने और पनपने लगते हैं। रूसी के कारण बहुत ज्यादा खुजली मचती है। बार बार बेतहाशा खुजली करने पर सिर का वह स्थान गर्म हो जाता है। परिणाम यह रहता है कि उस स्थान के बाल पतले, रूखे और कमजोर हो

करके झड़ने लगते हैं। स्वस्थ बालों की सबसे बड़ी शत्रु होती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु रूसी। रूसी न केवल बालों की जड़ों को कमजोर बनाती है बल्कि इससे त्वचा से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। हमारी त्वचा के अंदर कोशों के टूटने और नवीनीकरण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है। ये प्रक्रिया सिर की त्वचा में भी होती है और मृत कोष अपने आप जड़ जाते हैं। किंतु यदि ये मृत कोष बहुत ज्यादा मात्रा में बनने और जड़ने लगे तो ये एक रोग है, ठीक है। इसका उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। रूसी दो प्रकार की होती है, शुष्क जो खुजलाने पर झड़ती है और चिकनी जो खोपड़ी पर चिपकी रहती है। जब सिर में बहुत अधिक पपड़ी जम जाती है ना तो बालों की जड़ों में हवा नहीं पहुंच पाती और बाल कमजोर होकर के झड़ने लगते हैं। तो इतने सारे कारण हैं, और भी कारण बताना चाहूंगी। बहुत अधिक मात्रा में रूसी होने का कारण सिर में गंदगी का होना, रक्त संचार में गड़बड़ी, इन्फेक्शन और असंतुलित भोजन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बचाव कैसे करेंगे? देखिए, ये एक छूत का रोग है, ठीक है। जिन लोगों को ये रोग है उनके कंघे, हेयर ब्रश, तौलिया, तकिया, ये सब अलग रखना चाहिए। जब ये बीमारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो चेहरे पर भोह और बरौनियों में भी हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? नहाने के पानी में थोड़ा सा डिटोल डाल करके नहाइएगा, छूत का रोग नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला बचाव ये करना है, नहाने के पानी में थोड़ा सा डिटोल डाल करके नहाइएगा, इससे छूत का रोग नहीं होगा। अब अगला उपाय सुनिए, 4 चम्मच खसखस दूध में पीस करके बालों की जड़ों में लगाइए। आधे घंटे के बाद सिर धोइए। धोने में शैम्पू या साबुन काम में ले सकते हैं। सप्ताह में 2 बार इस तरह बाल धोइए, रूसी बालों से निकल जाएगी। तो क्या करना है? 4 चम्मच खसखस दूध में पीस करके बालों की जड़ों में लगाना है। आधे घंटे के बाद सिर धो लेना है, ठीक है। सप्ताह में 2 बार इस तरह धोइए तो रूसी बालों से निकल जाएगी। अगला उपाय भी बहुत अच्छा है, 4 बड़े चम्मच बेसन 1 बड़े गिलास पानी में घोल करके बालों पर मलिए, फिर सिर धो लीजिए। इससे फरास या रूसी होगी तो दूर हो जाएगी। 4 बड़े चम्मच बेसन 1 बड़े गिलास में पानी डाल करके उसको घोलिए और घोल करके बालों पर मलिए, फिर सिर धो लीजिए। इससे फरास या रूसी होगी तो मिट जाएगी। तीसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, रात को 1 कप छिलके सहित अरहर की दाल में पानी में भिगो दीजिए। अरहर की दाल सुबह इसे पीस कर सिर में लगा दीजिए। आधा घंटे के बाद सिर धोइए, फिर गीले बालों में ही कंघी करिए, रूसी निकल जाएगी। रात को 1 कप छिलके सहित अरहर की दाल पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसके पीस करके सिर पर लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, उसके बाद सिर धो लीजिए, फिर गीले बालों में ही कंघी करिएगा, इससे रूसी निकल जाएगी। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, सप्ताह में 2 बार दही से बालों को धोइए, इससे फरास ठीक हो जाएगी। सप्ताह में 2 बार दही से बालों को धोएंगे तो इससे फरास दूर हो जाएगी। तो ये सारे ही जो उपाय बताए हैं आपको, लाजवाब है, आप आजमा सकते हैं। इनमें से देखे, इतने सारे उपाय बताए, उनमें से एक करना है। ऐसे नहीं कि सारे के सारे आप करने लगो तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर बोलेंगे उषा दीदी ने कहा था ना इसलिए हमने किया। ये इतने जो उपाय बताए उसमें से एक को कंटिन्यू करना, ठीक है। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है? ये आज का प्रश्न है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या दे सकती है? तो प्रश्न का जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना कार्यक्रम में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शांति, कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बहुत अच्छे हैं। अभी आपका लाइक आइकन चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे है। बहुत अच्छी बातें भी हो रही है, हमारे मित्र भी और जुड़ेंगे, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं होता कि दीदी आए नहीं आए, लेकिन आप आ गए हैं
0: जी।
1: हम आपसे बात भी कर रहे हैं, लोगों को भी बात करने का मौका मिल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का विषय मैं रख रही हूँ
1: जी।
0: आज का विषय है, किसी से बदला लेने की सोच बिल्कुल मत रखिए। खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि मन बदलने के मौके तो मिलेंगे पर शब्द बदलने के नहीं। क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल सही दीदी बताया। देखो, आज कई लोग बोल जाते हैं, ऐसे करते बोल देते हैं, तो बोलते कहते बोल देते, लेकिन ये शब्द राष्ट्र तक उस चीजों को लोग ध्यान याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हमने बोल दिया था तो उसको कुछ नहीं होगा, वो हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो समय आता है दीदी तो वो शब्द उसका उसको बहुत परेशान करता है, तो ऐसा शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग याद नहीं रखे, आप तो लोग याद रखते हैं। अब तो देखो दीदी, कई सारी बातें भी याद रखते हैं। तो हमारे ये नई भाई ने हमने शादी को बुलाया, वो खाने के लिए बुलाया था, हमको क्यों नहीं बुलाया, और वो नहीं बुलाया, इसने नहीं बुलाया, तो सभी याद रखते हैं। ऐसा नहीं है, तो सबसे तैसे किसी को बोलना ही नहीं है। ये शब्द वो तीर का जो लगता है तो इसका तो खार उठ जाते हैं, लेकिन जो ये शब्द होता है दीदी, वो जन्म तक रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे जैसे बोलना नहीं है, आज जैसा नहीं है, पहले से दीदी ऐसा नहीं था, इस जमाने में तो लेट को कर देते थे
0: जी,
1: लेकिन आज नहीं करते कोई।
0: आजकल तो पूरा बदला, एक सुनाया है सामने वाले ने तो हम चार नहीं सुनाएंगे तब तक हम शांत नहीं रहेंगे।
1: पूरा बदला ले लेते हैं। पहले तो क्या था, हम समझ जाते थे, चलो भाई वो बोल रहा है, उसको पता नहीं था बोलता है, कोई बात नहीं
0: जी,
1: लेकिन पूरा बदला ले लेते हैं। बस हम तो ऐसा दीदी कहेंगे की बस का ऐसा शब्द न बोले जो शब्द हमको लास्ट तक तो सुनना पड़े और याद रखे लोग
0: जी।
1: जी दीदी, हमारे और मित्र कोशिश करेंगे दीदी।
0: अच्छा, चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। कैसे हम छोटी छोटी बातों से तनाव में चले जाते हैं, घर में टेंशन उत्पन्न हो जाता है, आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है। चाहे भले विवाद न हो तो मन को कचोटता है, तो भी टेंशन से तो है ना, खुशनुमा जीवन तो हमारा नहीं है। तो हम कैसे के हम छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर के अपने जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे, इसमें आज का विषय बहुत ही सुंदर रखा है। हमारे श्रोता बंधुओं से बात करना चाहूंगी। हेलो।
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, भूरीलाल जी कैसे हैं आप?
2: अरे बात मतलब बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, आपका विषय भी अच्छा रखा है और बात को सुन करके मजा ले रहा हूँ मैं।
0: अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है,
2: आपका विषय बहुत बढ़िया विषय है। तो पका पका या दुनिया खाती है
0: जी,
2: पार के खाने में और पका हुआ उसको लगा करके पका के खाने में समस्या आती है
0: जी।
2: पड़ा या पका पकाया खाने में कोई समस्या नहीं आती, इसलिए अपन लाड़ी पे लाते वो मिल जाता है और उसको पकाने में बहुत परेशानी आती है, इसलिए कभी भी बोली निकालनी है, वाणी निकालनी है तो मीठी वाणी निकालनी है। अच्छा, उसके बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए
0: जी,
2: कभी भी बदले की भावना रखोगे तो अपने साथ में बुरा बर्ताव होगा
0: जी।
2: इस बुरे बर्ताव को बचाने के लिए अपन को अच्छी भावना, अच्छी बातें करते से अच्छा लगता है
0: जी,
2: हमारा भावना बहन जी
0: जी।
2: तो इसलिए हम ये चाहते हैं कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करना, उसकी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। बदला रखेंगे तो बदला अपने को ज्यादा डबल मिलेगा, इसलिए ये निवेदन है कि कभी भी किसी के साथ में बुरा वर्ताव, बुरा बदले की भावना नहीं रखनी है
0: जी।
2: और क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया, आप सभी की दुआ
2: हमारी क्लास है। आज के अंदर तो हम जब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक हमारे दिल के अंदर शांति नहीं मिलती है
0: जी।
2: शांति पाने के लिए, एक दूसरे की वाणी सुनने के लिए हमारे को संतुष्टि मिल जाती है
0: जी अच्छा, और आज का प्रश्न मैं दोहरा रही हूँ, आज के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। एक शिक्षित नारी, ठीक है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है?
2: शिक्षा होगा, नारी आगे बढ़ती रहेगी और बाद भी आएगी, मेरे परिवार भी आगे बढ़ता रहेगा।
0: अच्छा,
2: यदि शिक्षा नहीं है तो ज्ञान ज्ञान विज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। न बच्चे पढ़ेंगे न पढ़ेंगे, न आगे विज्ञान होगा, न काम कलंग काम काज होगा, न घर के अंदर रक्षा होगी, न कुछ नहीं होगा। इसलिए उसके साथ में शिक्षा हो तो बढ़िया वातावरण मिलेगा, बढ़िया काम होगा। ये मेरे निवेदन है सर
0: जी। चलिए देखते हैं बोरीलाल जी, आपका जवाब सही है गलत है, आप कार्यक्रम सुनिए, कार्यक्रम के अंत में जवाब देंगे, ठीक है?
2: ठीक है सर, बहुत नमस्कार।
0: हाँ जी, नमस्कार,
2: प्यार भरा नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से, आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। किसी से बदला लेने की सोच बिल्कुल मत रखिए, खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि मन बदलने के मौके तो मिलेंगे पर शब्द बदलने के नहीं। क्या कहेंगे आप, बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी आप मतलब व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं जवाब के तौर पर, अगर जुड़ नहीं पा रहे हैं तो। बाकी कोशिश करिएगा जुड़ने की। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप मैसेज के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट और बात कर सकते हैं, खुशनुमा जीवन की बातें कर सकते हैं, आज के विषय को स्पष्ट कर सकते हैं, आज के प्रश्न का आप जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है और विषय भी बहुत सुंदर है कि हम छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाते, किसी ने कुछ कह दिया तो भाई कैसे कह दिया, अब तो उसका बदला लेना ही पड़ेगा। हेलो,
3: हाँ भूरा राम बोल रहा हूँ दीदी, उषा बहन जी।
0: हाँ जी भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
3: बैठे हैं घाट पे, अभी बोले तो ट्रीटमेंट चालू है और आपको प्रोग्राम सुन के ये कर रहा हूँ। बाकी मैं बोला मैं उषा बहन जी को राम राम को बोल रहा
0: हूँ जी जी जी,
3: और तो... मधुबन भाइयों को और सबको मेरा प्रणाम
0: जी। आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे?
3: कौन सा विषय है
0: आज का? विषय है किसी ने कुछ कह दिया, जैसे कुछ अपशब्द बोल दिए हैं, तो हम जब तक उसको चार गाली वापस जवाब नहीं दे देते, चार अपशब्द नहीं बोलेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो ये बदले की भावना अच्छी है या खराब, क्या कहेंगे आप?
3: नहीं, ये बदले की भावना बहुत गलत है और किसी से ये गैर भावना रखनी बोले तो गलत है कि आगे वाला बोले और मतलब विपरीत बोले तो भी उससे क्या करना है, उसको गाली गलौज नहीं करना, अपने को दुख बैठने में पा जाए, ये भी फिर बाद में अपन भी वो भी आवेश में आ रहे और अपन भी आवेश में आ रहे तो झगड़े का मूल ज्यादा ही बढ़ जाता है, मतलब नहीं है कोई उससे। इससे तो अच्छा बेहतर है कि भाई ये टाइम ही जो अभी खराब है वो हिसाब से चलो, कि आगे वाला तो बोल रहा है लेट गो करके सुख साफ बैठ जाओ
0: जी,
3: और फिर बाद में उनका निर्णय साफ होता है, कोई बस ये होता है और क्या
0: जी,
3: और इतना ही बोलता हूँ चलो।
0: अच्छा, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: कौन सा प्रश्न है?
0: आज का प्रश्न है एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है?
3: अरे बहुत बढ़िया, ये तो आपने सुना है उसका बैठ जी, मेरी
0: जी।
3: लड़की मैंने पढ़ाया, ये फॉर्म करके
0: जी
3: सर्विस पे लगाया,
0: क्या बात
3: और
0: है,
3: और वो आज मैं बीमार हूँ तो उसका ससुराल से भी संभालती है और मेरे को भी आके वो रोज आके मेरे को ट्रीटमेंट करके जाके नर्सिंग होम में है।
0: अच्छा,
3: लेकिन वो मेरे को भी आप ट्रीटमेंट करके जाती है, मेरी आत्मा शांत होती है कि मेरे बच्ची ने पढ़ाया और लिखाया
0: जी,
3: दोनों घर का वो संभालती है,
0: मेरे
3: घर का भी उनके सास ससुर है उनकी भी सेवा करती है और मेरी भी सेवा करती है, मतलब एक शिक्षित नारी बोले तो दो घर संभालती है,
0: जी
3: दोनों को घरों का पवित्र उतार सकती
0: है। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है संस्कारिक होती है, दोनों तरफ संभालती है, बहुत बढ़िया जी। चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम के अंत में इसका जवाब देने की, ठीक है। हाँ जी, आभार आपका। तो ये थे भुराराम जी ओर से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया और आज वो दो दो परिवार को संभाल रही है, बहुत बड़ी बात होती है। बेटियां कभी अपने माता पिता को भी नहीं भूलती और ससुराल के फर्ज को भी हमेशा याद रखती है, उनका भी बड़े प्यार से सेवा करते हैं और ऐसी नारी शक्ति को मैं दिल से सलाम करती हूँ। आइए अब यहाँ पर एक अल्पविराम लेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का विषय बहुत ही सुंदर है, खुशनुमा जीवन का। किसी से बदला लेने की सोच बिल्कुल मत रखिए, खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि मन बदलने के

के तो मिलेंगे पर शब्द बदलने के नहीं, क्या कहेंगे आप? तो आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या दे सकती है, यह आज का प्रश्न है। तो प्रश्न और विषय दोनों में ही आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि बात चल रही थी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़े, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है इस विषय को कि भाई बदला लेने की क्यों सोचते हो, किसी ने कुछ गाली दे दी या कुछ अपशब्द बोल दिया तो ऐसे तीर की तरह चुप जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस चार सुना दूर सुना देते खरी खोटी, उसके बावजूद भी चैन नहीं मिलता, उसने मुझे कैसे सुना दिया। अरे भाई आपने चार सुना दिया तो शांति से बैठ जाइए, अब आपने सुना है तो उसके भी तो दिल पर लगी होगी, लेकिन वो भले लगी, शुरुआत जिसने की होती ना उसको लोग छोड़ते नहीं, फिर उसको कितना ही सुनना पड़ता है उसके बावजूद भी रिश्ते में दरार पड़ जाती है और यही कहते कि आपने हमें ये सुनाया। अगर वो सामने वाला स्पष्ट करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है कि भाई आपने भी तो सुनाया, तो बोले हमने सुनाया वो तो आपका पलटवार किया हमने, लेकिन आपने हमें बोला ही कैसे, ऐसा हो रहा है। कहते ना बहुत सारे कारण है रिश्ते टूटने में, परिवार में दरार आने के बहुत सारे कारण है, उसमें से एक कारण ये भी है सहन शक्ति नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। कभी कभी इंसान मजाक के मूड में भी बोल देता है, लेकिन मजाक भी कहते ना सभ्यता से की जाती है, अपशब्द अगर उसको मजाक के रूप में माना जाए तब तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी मजाक मजाक में ही कोई ऐसा बोल देता है कि सामने वाले का सीधा दिल में चला जाता है तो भी दूरियां बढ़ जाती है। तो ऐसी मजाक करनी ही क्यों, क्या मजाक करने के लिए हमारे पास अच्छे शब्द नहीं है? लेकिन ऐसा भी होता है, बहुत सारे कारण है, फिर गुस्सा आता है तब तो बात ही मत पूछिए, मुंह से डायरेक्ट ही अब शब्द की बौछार निकलेगी, अरे भाई हम क्या सुना रहे हैं, वो ठीक है जो सुना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसको सुना रहे हैं उसकी जगह अपने आप को लेकर के बैठिए कि अगर यही शब्द वो सामने वाला शुरुआत करता तो क्या हम सह पाते, क्या हम पलटवार नहीं करते, करते ना, और जो नहीं करते मैं तो उनको बहुत अच्छा समझती हूँ, क्योंकि कचरा लेने से फायदा ही क्या है, किसी ने अपशब्द कह दिए, गलत शब्द कह दिए, वो कचरा ही हुआ, हमारे काम की चीज नहीं, उसको फेंक दीजिए, क्यों लेना है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत विशाल हृदय चाहिए, हर किसी के बस में नहीं होता है, पलटवार हर कोई फटाफट कर लेता है, लेकिन बात है कि भाई शुरुआत हमें ऐसी करनी ही नहीं है कि सामने वाले का दिल दुखे। कहते हैं ना कि मन खराब होता है तो भी कुछ के कुछ निकलते हैं और सामने वाले को कितना ही कुछ सुना देते हैं, फिर मन तो थोड़ी देर के लिए खराब हुआ है, उसके बाद बदल भी जाता है मन, अच्छा भी हो जाता है, लेकिन क्या रिश्तों में मधुरता हो पाती है, रिश्ते सुधर पाते हैं, रिश्ते अच्छे हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सामने वाले ने उस बात को पकड़ ली कि आपने ऐसा कहा, अब हमें आपसे रिश्ता नहीं रखना है। कितने ही अच्छे अच्छे रिश्ते इस तरह टूट जाते हैं, जिनके हमें रात दिन जरूरत पड़ती है, जिन्हें हमें उनके बिना काम ही नहीं चलता है, फिर भी अगर इस तरह की बातें हो जाती है तो रिश्तों में दूरियां आ जाती है, फिर कितने ही काम हमारे रुक जाते हैं, हम कितनी मनुहार करते हैं, कितना ही मनाते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब आ भी जाइए, मान लीजिए, माफ कर दीजिए, अब आइए, लेकिन नहीं, आपने हमें ऐसा कहा ही क्यों, कहा है तो बस अब आप भुगत, हम नहीं आएंगे, हमारे में ताकत नहीं ये सब कुछ सुनने की। इस तरह की बातें होती है, विवाद बढ़ता है और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। वैसे आजकल सीमित रिश्ते होते जा रहे हैं, पहले तो मामा मौसी सब होते, अब आजकल तो एक बेटा एक बेटी या दो बेटे या दो बेटियां है ना, तो कहां परिवार बड़ा हुआ है। आने वाली पीढ़ी के सामने न मौसी है न चचेरे भाई बहन है, कुछ भी नहीं है ना, तो वैसे ही परिवार सीमित होते जा रहे, उसमें भी अगर हम शब्दों का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम अपने पर संयम नहीं रखेंगे तो और भी रिश्ते टूटेंगे, भाई कौन सुनेगा, हर कुछ सुनाएंगे कौन सुनेगा। आजकल तो ऐसा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे हैं लोग, मतलब एक आपने सुनाया तो चार में सुनाऊंगी तभी मैं शांति से

लेकिन किसी से उलझिए मत, किसी का मन खराब है और किसी ने आकर के, बच्चे भी देखे, बच्चों ने भी आके कह दिया मम्मी भूख लगी है, पापा ये चीज चाहिए, जिसका मन खराब है 10 बात बच्चों को सुना देंगे, बच्चे सहम करके चले जाएंगे, फिर दूसरी बार वो खुल करके सामने नहीं आएंगे, पता नहीं किस मूड में होंगे मम्मी पापा, हमें बात नहीं करनी। तो आपने तो एक बार सुना दिया, एक बार आपका मन खराब हो गया, लेकिन जिंदगी भर वो दहशत फैली रहती है, ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अरे हमने तो इतना सा कह दिया क्या फर्क पड़ गया, अपना समझ के कहा। अरे भाई अपना समझ करके अच्छी बातें भी तो कह सकते थे। ऐसा होता है कितनी बार कि अरे हमने तो अपना समझा ना इसलिए हमने उनको ऐसा बोल दिया। भाई ऐसा क्यों बोला, अपना समझे हो कोई बात नहीं, आपके अपने ही है, लेकिन अच्छा भी तो बोल सकते हैं, नेगेटिव भी क्यों। गलती हर एक से होती है, प्यार से टेकल करिए। परिवार में एक छोटा बच्चा है वो भी प्यार की आशा रखता है, प्यार से कोई भी बुलाएगा परायों के पास भी चला जाएगा, धुतकार करके बुलाएगा, कड़कपन से बुलाएगा तो अपनों से भी बच्चे दूर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ हर एक के लिए बात है, चाहे दोस्ती हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी पति पत्नी हो, चाहे देरानी जेठानी हो, घर परिवार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कोई गलती है सामने वाले से भी हुई है तो भी आप प्यार से उस बात को रखिए। मन खराब है तो स्वयं को अन्य कार्य में अपनी रुचि है उसमें व्यस्त रखिए। उस समय बोलने का मूड नहीं है तो मत बोलिए, और बोलना है तो अच्छे शब्दों में ही बात करिए, यही सभ्य इंसान की पहचान है, ठीक है। बाकी कहते ना कि खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाएंगे, उसे हमें तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो तोड़ ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप गिर जाते हैं। ऐसे ही बदला नहीं लेना है कि उसने मुझे ये कहा है तो देखो, कोई कोई तो ऐसे उस समय तो सुन लेते हैं, फिर 4 जनों के सामने ऐसा सुनाते कि सामने वाले की बोलती बंद। ऐसा भी हमें नहीं करना है। कौन सा तीर मारना है, क्या जीतना है हमें, सभी के दिलों को जीतना है, न कि हमें कुछ और जीतना है, ठीक है। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा, संभल के रहिएगा। मन खराब है तो मन खराब मत कीजिए, है तो अपने आप को अपनी जिसमें रुचि है उसमें अपने आप को व्यस्त कर दीजिए, लेकिन सामने कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या बोलने जा रहे हैं। यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते, इस विषय को यही समाप्त करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत ही फोन कॉल्स करिएगा 94-14-15-14-15 पर। बाकी आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, एक शिक्षित नारी समाज को क्या दे सकती है, यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्प विराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का, तो आइए पधारिए आशियाना के किचन में। आज आपको सिखाएंगे लसोड़े का भरवा अचार। लसोड़ा जिसको राजस्थान में गुंदा बोला जाता है, अभी गुंदे का सीजन चल रहा है, केरी का भी सीजन चल रहा है, तो गुंदा केरी का भरवा अचार आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट अचार है, नई रेसिपी है, आप लिख सकते हैं ठीक है और बना सकते हैं, बनाकर जरूर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और साल भर के लिए भी आप टिका करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। आप ले लीजिए कच्ची केरी देसी, ठीक है, फिर आप लीजिए गुंदा। जैसे आप 250 ग्राम माने पाव भर गुंदा ले रहे हैं तो एक कच्ची केरी ले लीजिए मीडियम साइज की। ठीक है, अब आप लीजिएगा जो अचार में डालने के सरसों के दाने आते हैं उसकी दाल। ठीक है, वो अचार की स्पेशल दाल होती है, दालिया भी बोलते हैं इसको, सरसों के दाल। फिर आप लीजिए सौंफ, मेथी, हींग लीजिएगा, धनिया पाउडर लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और सरसों का तेल। ये हो गई सामग्री जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आप ले लीजिए गुंदा, केरी, फिर आप लीजिएगा सौंफ, सौंफ जिसको वरियाली कहते हैं गुजराती में, फिर आप लीजिएगा राई की दाल, सरसों की दाल तो नहीं बोलते उसको, मोटी राई होती ना राइडा, उसके दाल, उसको सरसों का दाना भी कहते हैं, तो दाल आती है, भले आप राई की दाल बोलेंगे तो भी मिल जाएगी आपको मार्केट से। ठीक है, तो वो दाल लेनी है, अगर नहीं है तो फिर मोटी वाली राई लीजिए, उसको अतकचरा कूटना है। ठीक है, तो इस तरह लीजिएगा, फिर मेथी लीजिएगा, हींग पाउडर लेना है, लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा और नमक लेना है स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लीजिएगा और सरसों का तेल लेना है। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, गुंदा केरी जो भी लिया है अच्छी तरह धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद आप गुंदे के बीज को निकालिएगा, जहाँ गुंदे का मुंह होता है ना, बीट होता है, उस बीट को निकालना, उसके बाद चाकू से धीरे से अंदर से गुठली निकाल देना, तो सारे गुंदे के धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके बीट की तरफ से बीज निकालना है। गुंदा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, भरवा अचार बना रहे हैं तो तोड़ना नहीं है, ठीक है, और बीज आपको निकालना है और केरी के छिलके उतार करके इसको कद्दूकस कर लीजिए। अब कद्दूकस की हुई केरी आप तैयार रखिएगा, इधर जो मेथी ली है, सौंफ लिया है, इनको आप थोड़ा सा गर्म करिए, ठीक है, और जो दाल ली है राई की, हल्का सा ही एक दो पलटी मारनी है बस, और गैस बंद कर देना है। ठीक है, अब आप मेथी, सौंफ, इन सबको अतकचरा कूट लीजिए। अगर राई की दाल नहीं मिली है तो राई को भी इसके साथ अतकचरा कूट लेना है। फिर ये के जो कद्दूकस के कर रखी है ना केरी, इसमें डाल दीजिए इन मसालों को, जो आपने अतकचरा किया है इन मसालों को डालिए, साथ ही साथ आप धनिया पाउडर डाल दीजिए थोड़ा। अब आप डालिए लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और हींग, ये सब डाल करके अच्छी तरह स्वाद के अनुसार नमक डाल करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। कद्दूकस की हुई केरी के अंदर ये सारे मसाले मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद अब गुंदा के बीज निकल चुके हैं तो इन मसालों को गुंदा में भर दीजिए। ठीक है, एक एक गुंदा में आपको सारा मसाला भर के खत्म करना है और ये जब सारे गुंदे आप भर लो उसके बाद तेल को गर्म करिए। गर्म हो जाने पर थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए थोड़ा सा हींग पाउडर तेल में डाल दीजिए और भी इसको अच्छी तरह ठंडा होने दीजिए और ये जो गुंदा आपने भरवा मतलब मसाला भरा है इसको आप एक कांच के बर्तन में रख दीजिए और जब ये तेल ठंडा हो जाए तो ऊपर से डाल दीजिए और अब इसको आप बंद करके रख दीजिए। दो दिन इसको गलने दीजिए, उसके बाद आप इस अचार को खा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और अभी आप टेम्परेरी तो बना ही दीजिए, है ना, टेम्परेरी तरह तरह के अचार का आप आनंद ले सकते हैं बना बना करके। जब आपको लगता है कि अब साल भर का बनाना है तो
तो गुंदा थोड़ा सा बड़े वाले लेना और केरी थोड़ी, और आप अगर जून महीने में लेंगे तो अच्छी बात है। कहते हैं ना एक बारिश हो जाए उसके बाद वो कच्ची केरी का आप अचार डालेंगे तो वो 12 महीना टिकेगा और अचार भी स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह लसोड़े का भरवा अचार तैयार हो चुका है। केरी गुंदा भी कहते हैं, लसोड़े को गुंदा कहा जाता है राजस्थान में। तो केरी गुंदे का भरवा अचार बनाया है। विधि में फटाफट दोहरा रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनकर के अच्छी तरह बनाइएगा। आप क्या करेंगे, केरी की धुलाई करके छिलके निकाल करके इसको कद्दूकस करके रख दीजिए। गुंदे की धुलाई करके जो बीट है, बीट की तरफ आप बीट निकाल करके वहां चक्कू से धीरे से खड्डा करके बीज निकाल दीजिए। गुंदे को तोड़ना नहीं है, ठीक है, दो टुकड़े नहीं करना है। और अब ये कद्दूकस केरी करके रख रखी है, इसमें आप नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालिए और सौंफ, राई की दाल और मेथी, इनको हल्का सा सेक करके दरदरा पीस करके डाल दीजिए इसमें, और धनिया पाउडर ये सब डाल करके मसाले को अच्छी तरह मिक्स करिए। और मसाला में देखिए ना तो तेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कद्दूकस की हुई केरी इसमें पानी छूटता है ना, गीली होती है, इसी में ये मसाला मिक्स हो जाएगा। फिर इस मसाले को आप गुंदे के अचार, जो गुंदा के बीट आपने निकाला है, बीट तोड़ करके बीज अंदर से गुठली निकाली है, अब इसमें भरिए, एक एक गुंदे में आप भरिए ये मसाला, और फिर एक कांच के बर्तन में रख दीजिए सारे गुंदे भर जाए तो। और फिर तेल गरम करिए, सरसों का तेल लेना है। तेल गरम हो जाए तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर हींग पाउडर डालिए, फिर और अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो आपने कांच के जार में जो गुंदा रख रखा है इसमें तेल डाल दीजिए। बस आप ये ध्यान रखिएगा पहले आधा तेल डालना है, ठीक है, जितना आपने गुंदा भर के रखा है उससे आधा तेल डाल करके एयर टाइट ढक्कन लगा करके आप रख दीजिए। दूसरे दिन देखिए अचार थोड़ा नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि तेल की थोड़ी सी कमी है तो थोड़ा सा और ऊपर से डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, हमारा अचार अंदर डूबना चाहिए, तेल ऊपर रहना चाहिए, तो ये मसाला, ये अचार टिकेगा, नहीं तो 2-4 दिन में ही फूग आ जाएगी, ठीक है। और एक गुंदे के फूग आई तो पूरा अचार ही बिगड़ जाएगा धीरे धीरे, इसलिए तेल आप तरमा रखिए। तो तुरंत ही आपको इतना तेल नहीं डालना है, क्योंकि अचार बनाते हैं ना ये बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। आप रात भर छोड़ देंगे तो ये बैठ जाएगा, फिर देखिए आप दूसरे दिन देखिएगा तेल ऊपर आ गया, फिर आपको लगेगा अभी भी गुंदे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा तेल ऊपर से और डाल दीजिए, ठीक है। तो कोई भी हम सात्विक चीज बनाते हैं, अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद ही आप इस अचार का आनंद लीजिएगा। 2 दिन रखे रहिए, 2 दिन के बाद आप खा सकते हैं इस अचार को, ठीक है। तो चलिए, स्वादिष्ट सुंदर आपको केरी गुंदे का अचार सिखाया है। अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे पुनः, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर सिर में फरास हो जाए, रूसी हो जाए तो क्या करना चाहिए, किस कारण से होता है, कैसे उसको ठीक करना है, ये सब कुछ आपने जाना है। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में जो आपको केरी गुंदे का भरवा अचार सिखाया है, जरूर बना करके खाइएगा, ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और आज का प्रश्न तो भाई बहुत ही सुंदर था। आज का प्रश्न था, एक शिक्षित नारी समाज को क्या देती है। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं ने जवाब दिया है, इसमें से नाम सुनाना चाहूंगी। नीलम राठी माउंट आबू से आपने कहा है शिक्षित समाज, बिल्कुल सही है। श्यामली बहन रेडियो मधुबन के संगीत टीचर है, आपने भी निर्भयता कहा है। स्वर्ण लता जी आप भी आरजे है रेडियो मधुबन के, आपने भी सही जवाब दिया है, निर्भयता और एक संस्कारी अच्छा सुदृढ़ समाज। फिर अलका काबरा कपासन से आपका भी जवाब सही है। सुरेश भाई जोटाना से आपका जवाब भी सही है। भूरीलाल जी मानपुर से आपने जवाब नहीं दिया है, नहीं आपने भी दिया, परिवार आगे बढ़ेगा, मतलब एक नारी शिक्षित होगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। फिर भूराराम जी आपका भी जवाब सही है। तो वेदांत उदयपुर रहता है, रेडियो का आरजे रहा हुआ है, तो आपका भी जवाब सही है। तो आप सभी ने सही जवाब दिया है, संस्कार, जागरूकता और उज्जवल भविष्य। तो इसमें ये सब आ जाता है, ठीक है। एक शिक्षित नारी होगी तो वो संस्कारिक होगी, अच्छे उसके अच्छे संस्कार पूरे परिवार पर, बच्चों पर, समाज पर पड़ेगा। जागरूकता, खुद जागरूक है इसलिए सभी को जागरूक करेगी, और भविष्य तो उज्जवल है ही, और जो भी उनके संपर्क में आएंगे, जो बच्चे भी जन्म लेंगे वो भी शिक्षित होंगे। इसलिए बहुत ही सुंदर शॉर्ट में जवाब है, संस्कार, जागरूकता, उज्जवल भविष्य। फिर किसी ने निर्भयता भी कहा है, सही जवाब है। और आप विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई छोटाना से, और भूराराम जी और से, भूरीलाल जी मानपुर से, आप तीनों के लिए भी क्योंकि आप विषय में जुड़े हैं। बाकी सभी ने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जवाब दिया है, ठीक है। और आज का मीठा मोती है, अपने मार्ग में आने वाले किसी भी विघ्न से घबराए नहीं, हर विघ्न को उन्नति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी समझे। अब मैं आपको मदर्स डे पर माँ पर प्यारी सी कविता सुनाऊंगी। परसों मदर्स डे था, और वो कहते ना एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता है, माँ का तो आप सम्मान हर रोज करिए, एक दिन मना करके भूल नहीं जाना है माँ को, ठीक है। इसलिए माँ पर प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मासा सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। माँ ममता की छाव है, माँ ममता की छाव है, जीवन की वो ठाव है, दुख में देती हिम्मत हमको, खुशियों की वो नाव है, दुख में देती हिम्मत हमको, खुशियों की वो नाव है। थक जाए जब ये दुनिया सारी, माँ फिर भी मुस्कुराती है, अपने आंचल की खुशबू से हर पीड़ा दूर भगाती है, अपने आंचल की खुशबू से हर पीड़ा दूर भगाती है। माँ से सुंदर रिश्ता कोई इस जग में हो नहीं सकता, माँ के चरणों से बढ़कर कोई मंदिर हो नहीं सकता, माँ से सुंदर रिश्ता कोई इस जग में हो नहीं सकता, माँ के चरणों से बढ़कर कोई मंदिर हो नहीं सकता। और अंत में यही कहना चाहूंगी, माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है, माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है, खुद भूखी रहकर भी औलाद की झोली खुशियों से भर देती है, खुद भूखी रहकर भी औलाद की झोली खुशियों से भर देती है।
3: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
5: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है, इसमें रेलवे की सहायता करें।
3: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था फिर क्वेश्चन का ही पता नहीं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि इतने सारी चीजें होती हैं, समझ में ही नहीं आता कि भाई सोल्यूशन क्या है, और कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, और सोल्यूशन सोचते सोचते हम किस बारे में सोच रहे थे वो ही भूल जाते हैं। बाप रे, इतनी सारी चीजें चल रही होती है जिंदगी में, इतनी सारी चीजें चल रही होती है दिमाग में, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा इजी करें, लाइफ को थोड़ा आसान बनाएं लव यू जिंदगी के साथ। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले कल्पना जी का स्वागत करते हैं, ग्लोबल अस्पताल से जुड़े हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी।
0: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि रेडियो के जाने माने आरजे भी हैं और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। लगी जिंदगी के एक और एपिसोड में आप सभी से फिर रूबरू हूँ, क्या खुशी हो रही है।
0: जी बिल्कुल, और जितनी लाइफ आसान होती है उतनी खुशी डबल होती जाती है, ये तो अब हम समझ गए हैं। और पिछले ही एपिसोड में हम बात कर रहे थे अपनी सोच की, थॉट्स की, जिनकी स्पीड बड़ी तेज होती है, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा कई बार। और हमें कल्पना जी बता रहे थे कि चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, तो मैं सबसे पहले यही एक बार शुरुआत में मैं जानना चाहूंगी दीदी आपसे कि जो आपने चार प्रकार के थॉट्स बताए थे उसकी अवेयरनेस किस तरह से हम बढ़ाएं या सेग्रीगेशन कैसे बेटर कर पाए, अगर उस बारे में आप कुछ बताएं।
1: सबसे पहले श्रोताओं को एक काम है कि अपने विचारों में से 5 ऐसे विचार बताएं जो उनको लगता है कि पॉजिटिव है। हमें पता है कि श्रोता सुन रहे हैं और वो जरूर अपने आप को ये काम देंगे कि सोचे कि कौन से पॉजिटिव विचार मेरे मन में आते हैं। तो जब भी हम सोचते हैं तो हमारे सोच के 3 ही दायरे होते हैं। दायरे मतलब कि स्थान होते हैं, वो मर्यादा होती है। तो हमारी सोच पहले अपने लिए चलती है, मैं मेरे लिए सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे लिए क्या सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे नेचर पसंद है, मैं बहुत खुशमिजाज हूँ, या फिर मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। तो ये विचार जब मेरे आते हैं तो उन्हें पॉजिटिव विचार कहा जाता है। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसका डर लगता है, ये व्यक्ति जो ऐसे करते हैं ना, मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मैं बार बार गुस्से में आ जाती हूँ, छोटी छोटी बात में मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती है, मुझे अपने पर डाउट है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं है। सो ये जो अनसर्टेनिटी है मेरे थॉट्स में, उसको नेगेटिव विचार कहा जाता है। अननेसेसरी थॉट्स क्या है कि पहले कभी 10 साल 15 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, बार बार वही मुझे याद आता है, वो शायद बुरी घटना थी, तो मुझे बार बार याद आके उसके कारण डर लगता है, या मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ। फलाना व्यक्ति सामने आता है तो उसके साथ मेरा जो बुरा अनुभव हुआ था वही मेरे विचारों में आता है, और 2-4 दिन तक लगातार वही मेरे मन में चलता रहता है, ये अननेसेसरी है। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता में सारा दिन मैं बिता देती हूँ, ये अननेसेसरी है। और जब मैं ऐसे विचार करती हूँ जो कि शांति से रिलेटेड होते हैं, कि मैं नकी लेक घूमने के लिए जाऊं, वहां पर खूबसूरत नेचर को देखते हुए मुझे शांति का एहसास हो, मुझे बहुत खुशी हो, पीसफुल फील हो, और मेरे मन में विचार आए कि अरे मैं कितनी अच्छी जगह पर रह रही हूँ, मुझे कितना परमात्मा ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं वॉक कर सकूं, मैं नेचर का आनंद ले सकूं, या मैं अपनी बालकनी में बैठ के पौधों को देखती हूँ, फूलों को देखती हूँ, तो मुझे खुशी होती है और शांति महसूस होती है। फिर मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, सो मुझे पता है कि मेरी ये कैपेसिटीज है और इस एरिया में मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, तो इन विचारों को एलिवेटेड थॉट्स कहा जाता है। पीस से रिलेटेड, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड। तो हमें अक्सर अपने थॉट्स को देखने का अभ्यास जब हम करते हैं तो पता चलता है कि ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा, उसके बारे में जब हम फील करते हैं ना, पॉजिटिव थॉट्स हमें खुशी देकर जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमें दुख देकर जाते हैं, परेशानी देकर जाते हैं, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं।
0: मुझे एक सवाल था बस इसमें से, आपने जैसे कहा कि भविष्य के बारे में थॉट्स जो हमारे अनसर्टेनिटी के लेकर डर है, या फिर हमें लगता है ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन भविष्य के बारे में तो हम सोचेंगे ही क्योंकि हमें प्लानिंग करनी है, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज तो उसमें आएगी ही, तो क्या अननेसेसरी होगा ही वो चीज?
1: ओके, मैं आपको एक काम देती हूँ, एक प्रश्न है, आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती है?
0: ओके,
1: कैसा देखना चाहती है? सो आप जरूर पॉजिटिव ही सोचेगी कि मैं अपने आप को इस आरजे के पोस्ट पर देखना चाहती हूँ, इस तरह से देखना चाहती हूँ। तो आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ? जब ये सवाल अपने आप से पूछती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ये डायरेक्शन है, मेरा ये प्रोफेशन है और इसमें मुझे यहाँ पहुंचना है। एज अ पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो मुझे यहाँ पहुंचना है। तो आप प्लान्ड बुद्धि से अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, लेकिन जब आपके पास कोई विजन नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं है, तब आप वेग थॉट्स के साथ फ्यूचर के बारे में कंफ्यूज्ड होकर सोचते हो। जैसे आपने पहले गाना बताया ना, कंफ्यूजन मी कंफ्यूजन है,
0: सॉल्यूशन का पता नहीं,
1: सॉल्यूशन का पता नहीं
0: जी, राइट, वेग है वो, सब नहीं क्या सोच रहे हैं, बहुत कुछ, ओके, डायरेक्शनलेस मतलब हम सोच रहे हैं, तब वो उस कैटेगरी में जाता है। ओके श्रीनिधि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी दो चीजों में डिफरेंस। एक तो क्योंकि हम थॉट की अवेयरनेस की बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में भी, तो एक तो हम कहते हैं कि ख्याली पुलाव पकाना ना, दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, सोच रहे हैं कुछ अच्छा, सोच रहे हैं खुशी हो रही है बट वो रियलिटी नहीं है, और एक मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि आप जो आप चाहते हो वही सोचो। तो डे ड्रीमिंग और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है?
2: मैं कल्पना जी की जहां बात छोड़ी, मैं वहां से उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को 5 साल में कहां देखते हैं, ये सिर्फ मैं समझता हूँ थेरेपी के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिजनेस के जगत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर हम लोग जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक व्यक्ति को जब आप एक ऐसे पोजीशन पे हायर कर रहे हो जब उसका अनुभव बहुत लंबे समय का है, तो हम अक्सर उनसे पूछते हैं कि आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, इस कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं, यहाँ पर आप काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो ये पूछने का सबब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति कितना ग्रो करना चाहता है, इसके मायने ये होते हैं कि हम ये भी समझते हैं कि जब वो अपने आप को इतना ग्रो करने के बारे में एक विजन रखता है, तो उसके इस सफर में उसके साथ जो भी लोग होंगे वो भी ग्रो करेंगे, या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम करेगा वो भी ग्रो करेगा। इसे हम एक ग्रोथ माइंडसेट के रूप में कहते हैं, यानी हम अपने आप के बेहतरी के लिए कि हम आगे कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव वे में हम किस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को देखें, अपने बढ़ते हुए स्वरूप को देखें। तो आप ख्याली पुलाव की बात कह रहे थे, ख्याली पुलाव वैसे टेस्टी तो बहुत होता है मगर वो खाने को नहीं मिलता, वो ख्याल में ही रहता है। तो यहाँ पर जो चीज है कि मैनिफेस्टेशन में और ख्याली पुलाव में अंतर है कि ख्याली पुलाव सिर्फ ख्याल में है, वो जुबान तक नहीं आता। मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन में हम इस चीज को यूं देखते हैं कि जैसे मैंने वो चीज हासिल कर लिया है, मैं ऑलरेडी वो हूं, ये चीज मैं समझ कर चलता हूं, मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा करूंगा, इसके बारे में मैं नहीं सोचता कि इसको करने के लिए मुझे ये करने की जरूरत है। अक्सर हम इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं कि हम तिकड़म लगाते रहते हैं, हालांकि ये लफ्ज बहुत ही स्टैंडर्ड लफ्जों में नहीं गिना जाता, मगर उर्दू की जुबान में तिकड़म को एक अच्छा लफ्ज गिना जाता है। यानी मैं कैलकुलेशंस करते रहता हूँ कि भाई मैं ये करूंगा तो ये होगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाए तो वो हो जाएगा, बट वो कुछ भी हुआ नहीं है। आप सिर्फ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा, मगर अपने आप को जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, आप अपने लिए एक विजन क्रिएट करते हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं ये हूँ 5 साल में। हो सकता है कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 5 साल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ किसी कंपनी या किसी डिपार्टमेंट का, मैं सीईओ हूँ, या एक विद्यार्थी ये कह सकता है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैं एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन चुका हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, या मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत लिया है, मैं विनर हूँ। ये मैनिफेस्टेशन के लिए ये मेरा विजन बोर्ड है कि मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ कि मैं विजेता हूँ, मैंने वो चीज हासिल कर ली है। क्योंकि मैं अपने आप को उस तरीके से देखता हूँ और ऑलरेडी मैंने अपने आप को ऐसा विजुलाइज करना शुरू कर दिया है, तो उस जर्नी पर पहुंचने में मुझे बहुत आसानी होती है। मैं तिकड़मबाजी नहीं करता, मैं कैलकुलेशंस नहीं करता, जीवन के चैलेंजेस आते हुए भी मेरे मन में वो गोल क्लियर रहता है कि मुझे तो करना ही है, वो मैं हूं ही। इसके लिए अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर बात कही जाती है और खास ही मैनिफेस्टेशन के लिए ये बात कही जाती है कि द बेस्ट वे टू बिकम इज टू बी, कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा नहीं, मैं ऑलरेडी हूं. ये चीज समझ लेना, अपने आप को उस जामे में अपने आप को देखना, वो जामा अपने आप को पहना लेना, वो सक्सेस के करीब आपको ले जाता है. और आज इतने ज्यादा लाइफ कोचेस हो गए हैं, मैनिफेस्टेशन कोचेस हो गए हैं, इतने ज्यादा कोर्सेज होने लगे हैं इसके विषय पर. लोग लाखों रुपए देकर आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, आप देखो अपने आप को ऐसा. यही सीक्रेट है कि कोई गोपनीय या गुह्य बात नहीं है कि अगर आप हासिल करना चाहते हो अपने सामने वो छवि बनाओ. कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप 1 करोड़ रुपए आप कमाना चाहते हो 5 साल में तो आप लिख के लगा लो, 1 करोड़ रुपए का चित्र आपके सामने बेडरूम में लगा होना चाहिए. सुबह उठते, रात को सोते, आपको वो चीज देखना है, देखना है, देखना है. और लोग कहते हैं कि भाई 5 साल बाद वाकई में मेरे साथ हुआ. अगर आपको एक मर्सिडीज कार चाहिए या स्पोर्ट्स कार चाहिए या एक ऐसा बंगला चाहिए, लोग बोलते हैं वो सामने रखो, अपने सामने विजन रखो उस चीज का. और विजन रखने का अर्थ ये नहीं है कि मैं सिर्फ विजन रखूं और मैं कुछ काम नहीं करूं. नहीं, काम तो मैं करी, मगर मैं अपने लिए वो विजन साफ बना रहा हूं और मेरे पास वो चीज है, उसे मैं देख रहा हूं, उसे साफ साफ नजरिए से मैं देख सकता हूं. ये मेरी मंजिल है. और मंजिल के लिए रास्ता तो हम तय करेंगे ही, मगर बिना रास्ता तय किए हुए कोई मंजिल नहीं पहुंचता. मगर अगर मंजिल ही डिसाइड ना किया जाए और हम यूं ही रास्ते पे चलते रहें, अच्छा चलो इधर आया तो इधर चल दिए, उधर आया तो उधर चल दिए, तो फिर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते.
0: मतलब जो डे ड्रीमिंग है उसमें कहीं ना कहीं टाइम जायर हो रहा है और जो मैनिफेस्टेशन है उसमें टाइम इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि उसमें एक्शंस भी जुड़े हैं साथ में. और आपने जैसे बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचते रहो, करना भी है और जो बनना है वो बन गए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव होकर सोचना है. तो कल्पना जी, जैसे आप थॉट्स बता रहे थे कि 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए थे, तो ये एलिवेशन में आता है, एलिवेटेड थॉट्स में आता है कि पॉजिटिव थॉट्स में इसको काउंट करेंगे?
2: मैं एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा इससे पहले कि कल्पना जी इसका जवाब दें. बहुत बार जो ख्याली पुलाव है उसमें हम ख्यालों में ही खोए रहते हैं. हमें लगता है कि जो डे ड्रीमिंग की आप बात कर रहे थे, दिवा स्वप्न की आप बात कर रहे थे, उसमें हम उसी में खुशी महसूस करने लगते हैं. हमें लगता है कि वाह, खुशी रहते हैं, वाह ये मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा. ये बिल्कुल वैसा ही है कि नाम इनका त्रिलोकीनाथ है और रहते हैं किराए के चौबारे पे. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ हमारे कुछ कॉन्क्रीट एफर्ट्स होने चाहिए. बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, मगर हम कुछ करने वाले हैं उसके लिए दिन ब दिन छोटे छोटे एक एक कदम तो रखने की जरूरत है. जिगर मुरादाबादी का एक शेर मुझे याद आता है, वो लिखते हैं, फिक्र मंजिल है ना होश ज्यादा ये मंजिल मुझे, जा रहा हूं जिस तरफ ले जा रहा है दिल मुझे. कहने का मतलब ये है कि हमें मंजिल क्या है उसकी फिक्र नहीं करनी है. अगर मुझे सिर्फ ये तय करना है कि ये मेरी मंजिल है और मुझे अपने दिल को ये बता देना है कि ये मेरी मंजिल है और दिल मुझे उस तरफ ले जाएगा, अगर इतना अगर हम करें, अपने दिल को वो डायरेक्शन दे, अपने मन को वो सही दिशा दे दें, वो मंजिल दे दें, तो मन हर दिन मुझे उस मंजिल के करीब ले जाएगा.
0: क्या बात कल्पना जी. आपसे अगेन मैं उसी क्वेश्चन पे आती हूँ, या आप कुछ ऐड करना चाहें तो, कि ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट जो हम कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज होने लगे हैं आजकल, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, गुरुज हैं, बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, रील्स में आते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी ऑफ थॉट्स में आता है?
1: ये है एलिवेटेड थॉट्स. मैनिफेस्टेशन कोई दिवा स्वप्न नहीं है या कोई ख्याली पुलाव नहीं है. मैनिफेस्टेशन जो भी हम सोचते हैं, हमारी सोच का पहला असर हमारे हार्मोन्स पर होता है, हमारे संपूर्ण शरीर की एक्टिविटी पर होता है. और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करने लगते हैं, और जैसा हम फील करते हैं वैसी ही हमारी वृत्ति अर्थात एटीट्यूड बनता है. तो अगर हम थॉट की जर्नी को देखें, तो थॉट को अगर हम सीड कहे, तो थॉट के बाद नंबर आता है फीलिंग्स का, इमोशंस का, इमोशंस के बाद नंबर आता है एटीट्यूड का, वृत्ति का, वृत्ति के बाद नंबर आता है व्यवहार का, एक्शंस का. सो जैसा थॉट होता है, बीज होता है, वैसे ही फीलिंग्स बढ़ती हैं, वैसा ही एटीट्यूड होता है, और वैसे ही एक्शंस ऑटोमेटिकली होने लगती हैं. तो दूसरा असर जो होता है आपके थॉट का आपके बॉडी के बाद, दूसरा असर होता है आपके एनवायरमेंट पर। आपका एनवायरमेंट आपके थॉट के अकॉर्डिंग बदलने लगता है और वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड होने लगता है। सो आज की एक बात बताती हूँ। एक क्लाइंट है, पुराने मेरे युवा साथी है, जो निराशा से घिरे हुए रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। पिछले कुछ एक डेढ़ साल में उन्होंने नौकरी किया, अच्छा परफॉर्म किया स्कूल में एज ए टीचर, तब वो ठीक थे, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई, अभी वो घर में बैठे हैं। आज उन्होंने मुझे मैसेज लिखा कि मैं रोज 108 बार लिखता हूँ कि मैं मर जाऊं, मैं इतना निराश हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आपको लिखना ही है, तो मृत्यु आपके हाथ में तो है नहीं, जब होनी है तब होगी, क्यों नहीं आप ये लिखते हो 108 बार कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, सक्सेस मेरा कदम चूमती है और मैं विजय जरूर होऊंगा। तो दो थॉट्स है कि मैं, मेरी मृत्यु जल्दी हो जाए इतना मैं निराश हूँ, या फिर मैं एक विजय व्यक्ति हूँ, सक्सेसफुल हूँ और मेरी सक्सेस मेरा कदम चूम रही है। इन दोनों ही थॉट से मेरी फीलिंग क्या हो, एक से मेरी निराशा बढ़ेगी और दूसरे से मेरा होप क्रिएट होगा। सो आप निराशा के साथ चलना चाहते हैं या होप के साथ चलना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। निराशा के साथ चलेंगे तो हाथ में निराशा ही आएगी। तो जब हम अपने थॉट्स को पहचानना शुरू करते हैं तब हम उन्हें चेंज कर सकते हैं।
0: तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने कही थी। मैं बस एक इसमें से सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे हमारे साथ ऐसा होता है, अचानक से हमारे अंदर डर बढ़ गया, पहले हम इतना नहीं डरते थे, अब ज्यादा डरने लगे हैं या ज्यादा हर्ट होने लगे हैं, यानी हमारे थॉट्स चेंज हो गए हैं, थॉट की अवेयरनेस हमें लानी है, हमें मतलब देखना है कि हम किस प्रकार से सोच रहे हैं। अगर हम फील कर रहे हैं हर्ट ज्यादा या फील कर रहे हैं डर ज्यादा आजकल, पहले नहीं करते थे, यानी थॉट्स में चेंजेस हैं।
1: बिल्कुल, हमारे थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं इसलिए हमें फियर फील हो रहा है। ओके, अगर मुझे डर लग रहा है किसी बात से, और अगर मैं खुद से कहूं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो पॉजिटिव है, और मैं डरती नहीं हूँ, हिम्मत मेरा, करेज मेरा स्वभाव है, तो तुरंत हमारा माइंड हमें उसका रिस्पॉन्स करता है। फियर की जगह हम करेज को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, भले वो थॉट आपको लगेगा कि झूठा है, अरे मुझे लग तो डर रहा है और मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं बहुत बहादुर हूँ, तो झूठा लग सकता है, बट वो झूठी चीज भी धीरे धीरे हमारा मन स्वीकार करने लगता है और फिर फियर की जगह हम रिप्लेस करते हैं करेज, हिम्मत को, ऑटोमेटिक ये होता है। तो इसी के लिए एक टेक्निक है जिस टेक्निक को कहा जाता है थॉट रेगुलेशन की कोर टेक्निक है ये। उस टेक्निक को कहा जाता है कैच, चेक एंड चेंज। तीन वर्ड्स है, सी से शुरू हो रहे हैं, कैच, चेक एंड चेंज। आपको डर लग रहा है, डर ही आपकी महसूसता है, परंतु डर के लिए आपके मन में विचार कौन सा चल रहा है, अरे मेरा बॉस मुझे आज डांटेगा क्योंकि मैंने कोई गलती की है, है ना, विचार ये है और उसकी फीलिंग ये है, डर लग रहा है आपको उसके सामने जाने की, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी,
0: थोड़ी सी
1: है ना
0: ऑकवर्ड सी,
1: कॉन्फिडेंट वाली नहीं,
0: कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा,
1: नहीं होगी। सो एक थॉट ने आपको फीलिंग की तरफ बढ़ाया, बॉडी लैंग्वेज की तरफ बढ़ा दिया, और बॉस के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो सचमुच आप डांट मिलेगी क्योंकि आपने शुरुआत थॉट से की। उसकी जगह पर एक प्रैक्टिस करके देखना, भले आपने गलती की है लेकिन आप ये सोचना कि गलती करके ही तो मैं सीखता हूँ और इस बार जो गलती की है मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा और बॉस को मैं ये विश्वास दिलाऊंगा, तो आपकी फीलिंग क्या होगी कि नहीं बॉस डांटेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप को प्रूफ भी करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो आपके बॉडी लैंग्वेज में डर नहीं होगा लेकिन एक आत्मविश्वास दिखाई देगा, और वो आत्मविश्वास लेकर जब आप बॉस के सामने जाएंगे
0: जी,
1: तो ऑटोमेटिकली ये एक असर है आपके बॉडी लैंग्वेज का सामने वाले के ऊपर, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ मिलेगा। हो सकता है वो डांटे लेकिन प्यार से डांटे, देखो आप बहुत कैपेबल हो, आप कर सकते हो, इस बार आपकी गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान देना। तो एकदम गुस्से वाली डांट एक असर्टिवनेस वाली समझ के साथ बदल सकती है क्योंकि आप कॉन्फिडेंस के साथ गए। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, अभी हम कर सकते हैं, हमारे श्रोता भी कर सकते हैं, कि आप इमेजिन करो कि आपको किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाकर कुछ बोलना है, कुछ कहना है, अपनी बात कहनी है, और आपको उसमें हिचकिचाहट, डर लगता है, तो आपकी केवल बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने से आपके थॉट में वो करेज आ जाएगा। जब आपके मन में डाउट होता है, फियर होता है, तो आपके कंधे झुके हुए होते हैं, आपकी गर्दन झुकी हुई होती है। लेकिन जब आपके थॉट में कॉन्फिडेंस होता है तो आपके कंधे कैसे होंगे, चौड़े होंगे, गर्दन सीधी होगी। तो ये वाइस वर्सा है, थॉट्स थोड़े कमजोर है लेकिन हम बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा अलर्ट कर ले, और उस अलर्ट बॉडी पोस्चर के साथ अगर हम सामने जाए तो आपको महसूस होगा कि आपके थॉट में भी वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। सो ये करके देखना कि जब भी किसी के सामने जाना है तो बहुत अलर्ट बॉडी पोस्चर के साथ जाए, सीधे खड़े हो, कंधे चौड़े हो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो, और जो भी बोलना है हम फ्लो में आराम से बोलते जाए। देखना बॉडी पोस्चर का आपके थॉट्स पर भी असर होगा।
0: एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये भी,
1: हाँ,
0: कहीं ना कहीं। तो कहाँ से शुरू करें? मैं श्रीनिधि जी आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या पर्सनली आपने कभी फील किया कि आपने इस पे काम किया हो, एंड यू नो आपने कोई भी टेक्निक को यूज किया हो, अगर कोई चीज आई, कोई भी यू नो ऐसी फीलिंग आई जो आपको लगा कि नहीं मेरे लिए करेक्ट नहीं है, तो थॉट्स पे काम किया हो या वाइस वर्सा?
2: जो बात आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ, कल्पना जी बता रहे थे कि कैसे हम अपने बॉडी पोस्चर को उसके ऊपर काम करके मुस्कुराते हुए इन चीजों को करते हैं तो भी मतलब आप बेहतर कर सकते हैं। जब हम इन चीजों को इस तरीके से करने का प्रयास करते हैं तो कुछ चीजें हमारे लिए तो हेल्पफुल है ही, मगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी वो एक बहुत ही, ये कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव छवि क्रिएट करता है, तो एक सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, वो व्यक्ति आपसे अच्छे शब्दों में प्रभावित होता है। और मैं समझता हूँ कुछ चीजें जो मेरे को अपने करियर की शुरुआत में मुझे सीखने को मिली वो यही चीज थी कि आप सब कुछ जानते हैं इतना काफी नहीं।
0: okay.
2: बहुत बार हमारे पास, जैसे एग्जाम की बात करते हैं, आप तो एग्जाम में सब कुछ पढ़ के जाते हैं, बट अगर आप एग्जाम के समय पर आपके मन में स्ट्रेस है या फिर एंग्जाइटी है, या आप ये सोचते हैं कि पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वही प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, आप इसी डाउट के साथ अगर आप चलते हो तो फिर शायद जो प्रश्न आए होते हैं आप सारा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ लेते हैं कि जो मैंने पढ़ा है पहले वो क्वेश्चन कहाँ है उसको मैं आंसर करूँ इसके, फिर आप कोशिश करता हूँ, तो उसके सत्य होता ये है कि मैं जो पढ़ा है उसे छोड़कर जो अलग सवाल आए हैं उन सवालों के बारे में ज्यादा टेंशन लेने लगता हूँ कि भाई वो अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो स्कूल में हमारे टीचर्स ने मेरे को ये सिखाई थी वो ये थी कि पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करो, जो सबसे पहला सवाल आए जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ ये मैं आंसर कर सकता हूँ या इसके बारे में मैंने पढ़ा है तो पहले उसको अटेम्प्ट कर देना है, पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं।
0: Okay.
2: तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं ये जवाब जानता हूँ और इस जवाब को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ।
0: कॉन्फिडेंस बढ़ गया,
2: वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
0: तो
2: ये एक तरीके का मेंटल प्रिपरेशन है,
0: राइट,
2: और ये आपका मानसिक प्रिपरेशन है, आपके मन के अंदर हो रहा है, इसे कोई देखता नहीं। मगर इस तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ तो ये चीज आपको धीरे धीरे बेहतर चीजें करने के लिए एक सीढ़ी बनाकर देता है कि स्टेप बाय स्टेप आप बिल्ड करते जाते हो एक चीज के ऊपर। मैं अपने बिजनेस के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया मुझे कभी भी अपने अपीयरेंसेस पर ज्यादा ध्यान नहीं था कि मैं किस प्रकार के कपड़े पहनता हूँ और क्या मुझे पहनने की जरूरत है, क्योंकि मैं उस चीज को इतनी अहमियत नहीं देता था, बाहरी एक्सटीरियर्स पर अपीयरेंसेस पर मुझे कभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ जिस पहली कंपनी में मैंने जॉब किया, मैं अभी भी कॉलेज स्टूडेंट था, मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के ऑफिस गया। पहले एक हफ्ता तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, एक हफ्ते बाद हमारी टीम लीडर ने मुझे एक चीज कहा कि तुम क्या मॉल घूमने आए हो?
0: अच्छा।
2: मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो उन्होंने बोला एक हफ्ते से हम देख रहे हैं तुम टी शर्ट और ये जीन्स पहन के आ रहे हो, तो ऑफिस आ रहे हो तो तुमसे उम्मीद की जाती है कि भाई तुम प्रोफेशनल कपड़े पहन के आओ। और फॉर्मल्स पहनने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो मेरा तुरंत जवाब ये था कि मैंने कभी फॉर्मल्स खरीदे ही नहीं, मेरे पास फॉर्मल कपड़े ही नहीं है जो मैं फॉर्मल पहन के आऊं। और मैंने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट हूँ, तो मैं उन्हीं कपड़ों में आऊंगा। तो उन्होंने कहा शायद तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम फॉर्मल कपड़ों में आओगे तो लोग तुम्हें एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करेंगे, अगर तुम जीन्स और इन्हीं कपड़ों के साथ आओगे तो लोग तुम्हें यही समझेंगे कि ये कॉलेज स्टूडेंट है और तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसलिए तुम्हें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत। और बिल्कुल हुआ वही, मैं अगले हफ्ते गया, मैंने एक फॉर्मल पैंट खरीदा, शर्ट मेरे पास था ही, और जब मैं वो पहन के आया तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि मतलब ही इज नो लॉन्गर अ कॉलेज किड, ये कॉलेज जाने वाला लड़का नहीं है। और मेरे अंदर भी मैंने ये देखा कि अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ जैसे बर्ताव करता था उसी तरीके का बर्ताव मैं अपने वर्क प्लेस पर कोलीग्स के साथ नहीं करता था। वहां पर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो चीज मेंटेन करना मेरे लिए आसान था। बॉडी पोस्टर्स की बात कही जाती है, हम जानते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर में भी हम लोगों को ये चीज सिखाते हैं कि भाई आप अपने दोस्तों के कंधों पर हाथ रख के घूम सकते, बट यही चीज आप अपने ऑफिस में नहीं कर सकते। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उस तरीके का जो डेकोरम आप मेंटेन करते हो, आप अपने आप को याद दिलाते हो कि मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे से इस प्रकार का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, तो आप अपने आप को एक मोल्ड में डाल लेते हो और उसकी वजह से आप उसी तरीके से बिहेव करने लगते हो। और मैं समझता हूँ ये जो हम बातचीत कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए भी, हम एक मोल्ड तैयार कर रहे हैं अपने लिए, एक सांचा तैयार कर रहे हैं कि मैं ये हूँ। और मैं ये नहीं सोचता कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनूंगा, नहीं, वो मोल्ड तैयार करते हैं। मैं हर दिन अपने आप को उस सांचे में बिठाकर उसी तरीके से अपने आप को डिलीवर करता हूँ, उसी तरीके से मैं अपने आप को कैरी करता हूँ और उसकी वजह गुण आपके अंदर आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम लोग कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग कराते हैं और करते भी थे, जैसे हम जानते हैं एयर होस्टेसेस होते हैं, गगन सखियां होते हैं या गगन सखा होते हैं, जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं हवाई जहाज में आते हैं, वो हर एक से मुस्कुरा के बातचीत करते हैं, वो मुस्कुरा के वेलकम करते हैं, हालांकि वो उनके अंदर की खुशी नहीं है, ये उनके जॉब का रिक्वायरमेंट है कि वो मुस्कुराए। तो उनको यही चीज सिखाया जाता है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी अगर आप अपने आप को आदत डालेंगे तो वो आपको एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह दिखाएगा और धीरे धीरे वो एक अच्छी आदत बन जाती है कि हाँ हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना हमारे काम का हिस्सा है। और धीरे धीरे मैं इस मुस्कुराहट के चलते लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी आसानी से डील कर सकता हूँ।
0: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल भी है। और जैसा आपने बताया कि एटीट्यूड का फर्क थॉट्स पे, थॉट्स का फर्क फीलिंग्स पे, और किस तरीके से आप एक पे काम करते हैं तो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन थॉट्स पे काम जब आप करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो आपकी फीलिंग्स, फिर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, सब कुछ बदल जाता है और आपकी डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। और कल्पना जी ने हमें एक होमवर्क भी दिया कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप वो पहले से वो डर में उस रिस्पॉन्स के उसमें मत जाएं, ऐसे मुझे बोलेंगे, ये होगा वो होगा, अपनी एक मेंटल इमेज क्रिएट करें आप ये कि नहीं ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस से बात करूंगा और ये डील इस तरह से करूंगा, वो पॉजिटिव होके जाएं ताकि बॉडी लैंग्वेज में भी आपके वो शो करे। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मिल गई है हमें जो हमें करनी है, और इनको कुछ मैं तो ये भी कहूंगी दोस्तों, नोट करके रखिए ताकि हम भूल ना जाए आगे करने के लिए। पर फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का, हम और भी चीजें सीखेंगे कैसे थॉट्स को रेगुलेट करें, कि प्रश्नों के और भी जवाब आपको मिलेंगे लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। कल्पना जी, श्रीनिधि जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आरुषि जी, कल्पना जी, और हमारे सारे श्रोता मित्रों का भी जो हर कड़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं और इन चीजों को सुनते हैं,
0: काफी शुक्रिया। तो दोस्तों फिलहाल लेते हैं इजाजत और दिल से कहते हैं लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया कह सकते हैं। मारो गांव मारो अंचल ये अपना भाषा है, क्योंकि आदिवासी भाषा है। तो हमें बहुत खुशी होता है जब गांव और अंचल में जाते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते समुदाय का गतिविधि सब तक पहुंचे, इस कोशिश को लेकर जब रेडियो मधुबन गांव गांव ढाणी ढाणी और गली गली शहर शहर में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी बहुत कुछ मिलता है और सभी का बढ़ चढ़ कर हिस्सा भाग लेते तो हमें खुशी मिलता है। तो इस कार्यक्रम को आज सजाने के लिए हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रांगण में जो पीएम पार्क है दादी प्रकाशमणि पार्क, तो उसी में आज बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी उपस्थित है। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए। आज थोड़ा दूर से सभी जो आए तो उनको भी एक चांस

0: और ये राजयोग का अभ्यास मैं कर रहा हूँ अपने जीवन में।
1: राजयोग क्यों आवश्यक पड़ा आपका जीवन में, और हमारे जो ग्रामवासी सुन रहे, अंचलवासी सुन रहे, उनके लिए राजयोग कितना आवश्यकता है, उनका जीवन शैली में क्या परिवर्तन, जैसे आप अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या आपका परिवर्तन हुआ ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद?
0: ईश्वरीय ज्ञान से और खास करके जो यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर एक मन की सच्ची शांति, जो आज हर एक चाहते हैं। आज देखते हैं कि हर एक के जीवन में इतनी कंपटीशन है, कंपैरिजन है, और इतना फास्ट लाइफ है कि जीवन के अंदर टेंशन, तनाव, डिप्रेशन और बीमारियां वो बढ़ती जा रही है, और मेन इसका कारण है मेंटल। तो हमने देखा कि राजयोग से हमारा जो जीवन के अंदर हम रिलैक्स रहते हैं और हम संतुष्ट, हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज है, गुण है, जैसे संतुष्टता है, मधुरता है, हर्षित मुक्ता है, सहनशीलता है, ये सब दिव्य गुण भी हमारे जीवन में आते हैं। तो परिस्थितियां तो आती है, हर एक के जीवन में आती है, गांव में रहे, शहर में रहे, परिस्थितियां तो आती है, लेकिन उसको हम सहज भाव से कैसे उसको हम सामना करें, तो सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। और कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो समाने की शक्ति भी आती है, सहन शक्ति भी आती है, और हर एक के साथ हम कैसे एडजस्ट करें। हाँ, जैसे कंपनी में काम करते हैं 10 है 15 है, हाँ, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़े लिखे है, तो हर एक को हम कैसे चलाए, ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। तो इसलिए हमारा जीवन एकदम इजी, सरल रीति से चलता है।
1: विपुल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल भाई के लिए ताली बजा दो। सुंदर प्रस्तुति दिए, और सूरत से और गुजराती होते हुए भी आज पूरा हमारा जो आसपास गांव के जो श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि आबू रोड जो है राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर में है, तो और एक हमारा साथ कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको भी स्वागत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम?
2: ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है भिखू भाई।
1: अच्छा,
2: मैं ज्ञान में 14 साल से हूँ और मेरा गाँव है भावनगर। ठीक है, मेरा वैसे जॉब है, सरकारी कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और उसमें आप सब जानते हो कि कितना सारा काम रहता है। आज की जो परिस्थिति है, तनाव ज्यादा बढ़ता है, जो कुछ भी है, तो उसमें मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से सेल्फ रियलाइजेशन आप नहीं करोगे तब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए फिर मुझे ऐसा संकल्प हुआ, बाबा से मिला, बाबा का ज्ञान लिया, और आज इतनी सारी खराब परिस्थिति है, जैसे कोरोना अभी पास हुआ, फिर भी मैं निश्चय और निश्चिंत था। तो उसी वजह से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आप सबको कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा की याद में रहो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते समुदाय में जो गतिविधि हो रही, जैसे आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, खासकर सूरत भावनगर से हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए भाई बंधु आए हैं, तो उनको भी आज सम्मान मिल रहा है, उनका आवाज भी आज दूर दूर तक पहुंच रहा है, ये हमारे लिए खुशी है। हमेशा तो गांव और अंचल का आवाज हम सुनाते थे, लेकिन आज थोड़ा हट के कुछ नया आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है, और जीवन परिवर्तन करने के लिए राजयोग कितना आवश्यकता, हम भलीभांति अनुभव करते हैं और आप लोग भी जानते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आज जब रेडियो मधुबन खासकर पीएम पार्क में पहुंचे, यहाँ के जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत आगंतुक आते हैं, ब्रह्मा कुमारी भाई बहन, अपने जीवन को सरस सुंदर सहूलियत बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक बहन को हम माइक देते हैं, वो भी कुछ बात बताएंगे। क्योंकि बहुत समय हो गया कि गीत हो जाए, गीत न हो, और हमारा श्रोता मित्र को खुशी मनोरंजन कराने के लिए गुजराती गीत हो चाहे हिंदी गीत, जो आपको पसंद है।
1: मेरा शरीर का नाम वर्षा बेन है और मैं सूरत से रहने वाली हूँ। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तो चुगले चुगले राजयोग का मोती, तू चुगले चुगले राजयोग का मोती।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आप सब सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल पीएम पार्क में। बहुत सारा हमारा भाई बहन आए हैं ब्रह्मा कुमारी दूर से आने के लिए, राज्य को सीखने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ सुंदर बनाने के लिए। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा दीदी जी उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी, तो अपना परिचय खुद देंगे। दीदी आप अपना परिचय दीजिए पहले।
4: इस शरीर का नाम सावित्री है और 42 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और बहुत बड़ों की बाप दादा की भी पालना ली है, मधुबन की भी ली है, पांडव भवन की भी ली है, बाबा से वरदान भी पाए हुए हैं और 20 साल से सेंटर पर समर्पित रूप में रह रही हूँ। तो अभी मैं अपने हाथ से बनाया हुआ जो गरबा है गरबा गाऊंगी गुजराती में।

0: ओम शांति।
1: ताली बजाओ दीदी के लिए। चलो
2: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इतने सुंदर प्रस्तुति दी। हमारा श्रोता मित्र आज तो झूम गए होंगे मधुबन रेडियो में और मधुबन का ही गीत। चलो मधुबन मैंने जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है, रेडियो मधुबन में मधुबन का ही महिमा हो रही है, क्योंकि जो मधुबन है परमात्मा का कर्तव्य भूमि है, दिव्य भूमि है और देवी देवता का वासस्थान कहते हैं, क्योंकि आरावली पर्वत में मधुबन है और मधुबन आने के लिए सब तरसते हैं, पूरा विश्व का ये मधुबन है, सभी लोग आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीदी जी को, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए और जैसे सभी को पूरा मधुबन गीत सुनते सुनते सब मधुबन आ गए जो नहीं आए साकार में, आप तो आ गए मधुबन, जो नहीं आए हैं जो रेडियो का माध्यम से सुन रहे हैं वो भी अपना भावना को लेकर पहुंच जाते हैं और खुशी लगता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक अब तो पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आज खासकर गुजराती और हिंदी मिक्स आपको सुनने को मिल रहा है और इसका पहला हमारा दीदी लोग भाई लोग ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपना आवाज सुनाए, कोई अनुभव सुनाया, कोई गीत गाए, लेकिन छोटी सी मासूम दोनों तोतले तोतले आवाज में सुनाएंगे और वो भी गुजराती में, है ना? तो नाम बताइए।
1: रोशनी।
0: अच्छा, पूरा रोशनी करेगा। तुम्हारा नाम?
1: सुहानी। सुहानी।
0: अरे रोशनी और सुहानी को वेलकम करते हैं आज का कार्यक्रम में। छोटी सी बच्चे हैं लेकिन ब्रह्मा कुमारी है और

0: धारणा करना।
1: धारणा क्या होता है?
0: धारणा माना अन्न शुद्धि नियम।
1: अन्न शुद्धि क्या है?
0: लहसुन प्याज नहीं खाना और बाहर का चीज नहीं खाना, ये सब मेरे दीदी ने सिखाया था, मेरी टीना दीदी थी।
1: आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना?
2: चलो बहुत अच्छा।
1: ज्ञान अच्छा लगता है?
0: जी
1: क्या अच्छा लगता है? ज्ञान सुना तो श्री बाबा का एक मूल्य का पॉइंट सुना।
0: मन मना भव।
1: अरे वाह, मन मना भव, जो कि गीता का सार है, मन मना भव मध्याजी भव, है ना? मन में परमात्मा को जब याद करेंगे तो मध्याजी में विष्णु जैसे बन पाएंगे, लक्ष्मी जैसे बन पाएंगे, है कि नहीं? सत्य जी में लक्ष्मी बनेगी ना नारायण बनेगी?
0: लक्ष्मी।
1: तुम क्या बोले? नारायण।
0: हाँ जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। चले, और कुछ बोलना है?
0: हाँ, हम रोज मुरली सुनते हैं, हमारी मम्मी जाती है इसीलिए, और मुझे अपने करोदरा सेंटर की दीदी बहुत अच्छी लगती है।
1: मम्मी का नाम तो बताओ।
0: मनीषा बेन।
1: बहन हो गया मम्मी ने? बहन, वाह, इसको कहते पक्का धारणा वाले, मम्मी को भी बहन बना दिया है कि नहीं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है ना, संस्था में जब आते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। अच्छा।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाई थी। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

0: आज भिन्न भिन्न आवाज को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक ही आवाज तो हमेशा सुनते थे, लेकिन आज सभी ब्रह्मा कुमारी जीवन को पवित्र रहकर श्रेष्ठ बनाते हैं, उनका आवाज आप तक पहुंच रहा है। और ये परमात्मा का देन है, परमात्मा का हम सब संतान आत्मा है। तो और एक आत्मा वो अपना आवाज को सुनाएगी गुजराती में। तो क्या नाम है?
1: नाथी बेन।
0: अभी गुजराती में है, चलो शुरू करिए।
1: उतारो यार तीज भगवान के।

0: भारती रेडियो से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 इयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां है। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता।
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए है।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: हाँ। अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आई, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी,
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल के।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं, कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। माना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था 3-4 मंजिली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़ा नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडीज स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में माना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप?
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहे कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ। है
1: खेल बील, पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविताओं वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छा लगते थे मेरे को। पहले से पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़े करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 76 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपके बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
1: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
2: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
2: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे है ना?
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना,
0: अंतर्राष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता था।
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे?
1: हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी जी जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छा अच्छा आइटम किचन में बनाना। हमारे मोदक, उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी।
0: पूरन
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं नहीं रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: 2 बरस तक की।
0: अच्छा,
1: और 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपए
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी जी जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपका बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15 साल 17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी। सोना 140 रुपए है
0: तोला।
1: तोला
0: जी जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुनः छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
1: तो छोड़ के बम्बई में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बॉम्बे में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: हाँ, इस बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई
1: बचपन से। ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
2: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उनको, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
1: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
2: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
1: सिलाई का।
2: हाँ,
1: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
2: पुणे में ही किया था।
1: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
2: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
1: अच्छा, कभी आपने मॉल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
2: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
1: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
2: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
1: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
2: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
1: तो पूरे आपका ग्रुप था?
2: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
1: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
2: सत्संग नहीं इतना किया हम।
1: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
2: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
1: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
2: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
1: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
2: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
1: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
2: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, एक घंटा होता था तब भी जाती थी।
1: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
2: एक दो बरस तक गई।
1: एक दो साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
2: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
1: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
2: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
1: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
2: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
1: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
2: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरीका विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
1: अच्छा, पर सारे मराठी में।
2: हाँ,
1: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने दो लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
2: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
1: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
2: नहीं,
1: कभी कोशिश नहीं की?
2: नहीं, याद भी नहीं आए।
1: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां है, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
2: बाजू वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
1: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
2: हाँ।
1: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
2: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
1: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
2: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
1: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए।
2: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
2: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
1: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
2: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
2: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए। और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
1: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
2: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
1: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
2: नहीं, उसने नहीं किया।
1: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
2: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी के भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बंबई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
1: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
2: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
1: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
2: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैडम, आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते जी।
2: आपका शुभ नाम?
3: तेजश्री।
2: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
3: जी हम बड़े हैं।
2: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आपको किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
3: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा, ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेलीप्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था, तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
2: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए?

0: जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको।
1: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है। पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का, जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है, जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
0: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
1: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
0: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्ही वजह से लिया या आप बताएंगे?
1: जी देखो, ये शादी ये एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी। और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ। पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है, तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा। और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
1: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
1: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा। इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी, तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना, तो ये मेरी सदिच्छा है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
1: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी, इसीलिए हम उसके साथ आए।
0: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए।
1: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
0: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
1: 2 साल हुई।
0: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
1: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
0: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
1: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
0: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
1: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मन।
0: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
1: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं हो के भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
0: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं, तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: The power to withdraw. I visualize myself within a deep blue circle of energy. I'm surrounded by a powerful silence, far stronger than the speed of my thoughts. And I get ready to take a journey through my vast inner world. Have the courage to continue through to the end, to be aware of the source of my feelings, of my motivation to live each day. Deep within me is the mirror of truth that helps me discover from where I can start to change. In that silence,

0: नमस्ते, मैं हूं हंसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: I allow my body to relax.

notice the shapes. The colors. The fragrances.

ओम शांति। आज 12 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। प्रीत बुद्धि आत्मा के लक्षण क्या है और विपरीत बुद्धि का विनाश कैसे होता है, उस बात को बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। साथ ही बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को सबसे पहली बात दुनिया के मनुष्य को समझाना है, एक तरफ शिव बाबा की महिमा लिख करके दूसरी ओर से कृष्ण की महिमा लिखनी है और फिर दोनों का अंतर बताना है। साथ ही साथ अतीत पावन, क्या परमात्मा है या पानी की गंगा है, इस बात का भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हुए सबको समझाना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य अगर ये कहे कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर प्रीत किससे करे, किसको याद करे, इसीलिए इसको असत्य कहा जाता है। तो सत्य और असत्य बात को भी सबके सामने स्पष्ट करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने 6 निशानियां बताई है। पहली निशानी, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता, वह आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। वह आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी निशानी, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीचि ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठी बात, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो एक तो बाबा ने कहा, एक बाप से ही बुद्धि योग रहेगा, किसी देहधारी को आशिक या माशुक नहीं बनाएंगे, प्रीत बुद्धि सदा विजयी बनेंगे, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहेंगे, रोज अमृत वेले उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे, दधीचि ऋषि की तरह सेवा में हड्डियां देंगे और उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा कहते ये ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजयी पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। भले मालिक तो दोनों बनते हैं लेकिन पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है,
बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते मैं खुद कहता हूं, क्या कहते हैं कि उनका विनाश होगा, जो विपरीत बुद्धि होंगे उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजयी होगी, ये बाप खुद कहते हैं। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। दुनिया में जितने भी संबंध हैं, वहां प्रीत नहीं है, स्वार्थ है। इसलिए बाबा कहते इस दुनिया में प्रीत तो कोई है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन, यह तो जरूरी है ना। दूसरा, पहली बात तो शिव बाबा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखनी है। दूसरा, बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए किनको? बाबा कहे सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, जो लौकिक दुनिया में गीता पाठशाला वाले हैं उनको देना चाहिए, वह तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए। क्यों क्यों उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए? क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं, वही रास्ता भूले हुए हैं कि परमात्मा कौन है, और सबको भी भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना, तो जो समझ में आए सो करना, तो मनुष्य भी समझे। ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है, गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है, गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं, बाबा आकर के सत्य में सत्य ही बताते हैं। मनुष्य जो अर्थ करते वो बिल्कुल रॉन्ग है, कोई भी सत्य नहीं कहते हैं, मैं ही सत्य बताता हूं। सबसे पहली बात कौन सी बाबा ने सत्य बताई? परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है, ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी है। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं दूसरी बात, फिर एक तो सर्वव्यापी की बात हो गई, बाप कहते हैं यूरोप वासी यादव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है, पारस बुद्धि थे फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल, बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा ही पाते हैं, जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, सर्विस करने वालों को ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है, कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होंगी। बाबा कहे बाप से प्रीति नहीं है, चाहे सगे बने व
सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कब पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर, 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर से कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहां गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर से कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, क्या कहते हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं है। भारत की बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं। जो भी किंग आदि थे उनके स्टैच्यू तो बाहर रास्ते पर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, उनको कोई बाहर रास्ते पर नहीं बिठाते हैं, उनके लिए घर मंदिर बनाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पूज्य थे। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होंगी, एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है तो शिव बाबा को भी इतना नहीं करते हैं। हम बाबा कहते हैं आपस में लगाव हो जाता है, तो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है, या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम भी नहीं सुनाते, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं है। सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता वह आता है ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो,
ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं। जो बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमें समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए, कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर से कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। चित्र फाड़ देने से कोई सत्य झूठ नहीं हो जाता है, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रडिया नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहां तो कोई मजा नहीं है, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हीरे हुए हैं वह यहां ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। बाबा अपना अनुभव सुनाते, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से, यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। इस पढ़ाई में ग्रहचारी जरूर बैठती है।

के लिए जो बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहां तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा, वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। निधन के जो होंगे वैसे मरेंगे और जो धनी के होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहने इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। इतनी अच्छी बात बताई, तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। बॉम्बजादी बनाते हैं उन करोड़ों से तो अपना विनाश करते हो, और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। इतनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, इतना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है? सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एकरस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हो। हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एकरस स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना।
इतना अंतर हो गया। अच्छा, ओम शांति।